0: सच्चे हैं और झूठों को भी तुम जान लेते। जो लोग अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो कभी तुमसे ये दरख्वास्त न करेंगे कि उन्हें अपनी जानो माल के साथ जिहाद करने से माफ रखा जाए। अल्लाह मुत्तकियों को खूब जानता है। ऐसी दरख्वास्तें तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान नहीं रखते, जिनके दिलों में शक है और वो अपने शक ही में मुतरद्दिद हो रहे हैं। अगर वाकई उनका इरादा निकलने का होता तो वो उसके लिए कुछ तैयारी करते, लेकिन अल्लाह को उनका उठना पसंद ही न था, इसलिए उसने उन्हें सुस्त कर दिया और कह दिया कि बैठ रहो बैठने वालों के साथ। अगर वो तुम्हारे साथ निकलते तो तुम्हारे अंदर खराबी के सिवा किसी चीज का इजाफा न करते। वो तुम्हारे दरमियान फितना परदाजी के लिए दौड़ धूप करते, और तुम्हारे ग्रोह का हाल ये है कि अभी उनमें बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनकी बातें कान लगाकर सुनते हैं। अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। इससे पहले भी इन लोगों ने फितना अंगेजी की कोशिशें की हैं और तुम्हें नाकाम करने के लिए ये हर तरह की तदबीरों का उलट फेर कर चुके हैं, यहां तक कि इनकी मर्जी के खिलाफ हक आ गया और अल्लाह का काम होकर रहा। इनमें से कोई कहता है कि मुझे रुख्सत दे दीजिए और मुझको फितने में न डालिए। सुन रखो, फितने ही में तो ये लोग पड़े हुए हैं और जहन्नम ने इन काफिरों को घेर रखा है। तुम्हारा भला होता है तो इन्हें रंज होता है, और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये मुंह फेर कर खुश खुश पलटते हैं और कहते जाते हैं कि अच्छा हुआ हमने तो पहले ही अपना मामला ठीक कर लिया। इनसे कहो हमें हरगिज कोई बुराई या भलाई नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। अल्लाह ही हमारा मौला है और अहले ईमान को उसी पर भरोसा करना चाहिए।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

इनसे कहो तुम हमारे मामले में जिस चीज के मुंतजर हो वो इसके सिवा और क्या है कि दो भलाइयों में से एक भलाई है, और हम तुम्हारे मामले में जिस चीज के मुंतजर हैं वो ये है कि अल्लाह खुद तुमको सजा देता है या हमारे हाथों दिलवाता है। अच्छा तो अब तुम भी इंतजार करो और हम भी तुम्हारे साथ मुंतजर हैं। इनसे कहो तुम अपने माल खा राजी खुशी खर्च करो या बकराहत, बहरहाल वो कबूल न किए जाएंगे क्योंकि तुम फासिक लोग हो। इनके दिए हुए माल कबूल न होने की कोई वजह इसके सिवा नहीं है कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया। नमाज के लिए आते हैं तो कसमसाते हुए आते हैं, और राह खुदा में खर्च करते हैं तो बादले ना खास्ता खर्च करते हैं। इनके मालो दौलत और इनकी कसरत औलाद को देखकर धोखा ना खाओ।

بوجهك الكريم عنا ولا تفضحنا بسرائر.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صلی

0: सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
1: वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। और अभी तक की कहानी में हमने बहुत कुछ समझाने और समझने की कोशिश की है, आइए अब आगे का सफर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए अब इस किताब के पेज पलटते हैं और जानते हैं कि इसने मजीद हमें क्या समझाने की कोशिश की है। दोस्तों चलिए पहले ऑथर मेल रिप्सन का छोटा सा बैकग्राउंड समझते हैं। मेल एक अमेरिकन ऑथर, स्पीकर और लॉयर हैं, जिनका टेडएक्स एसएफ 2011 टॉक ने उनको ग्लोबल पहचान दी। उनकी लाइफ में ऐसा वक्त भी आया जब फाइनेंशियल स्ट्रेस, एंजाइटी और डेली रूटीन से निकलना मुश्किल था, और उसी दौर में ये रॉकेट लॉन्च काउंटडाउन से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी जिंदगी में 5 सेकंड काउंटडाउन लगाया और सुबह बेड से ही लॉन्च किया। यही जरिया बाद में किताब बन गया। दोस्तों आइए अब इस बारे में बात करते हैं कि किताब आखिरकार लिखी क्यों गई। मेल कहते हैं कि मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, दिमाग कंफर्ट को चूज करता है, नया काम अनसर्टेन लगता है, इसलिए अगर आप इंपल्स को 5 सेकंड्स में एक्शन से ना जोड़ें तो दिमाग इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है। किताब ऐसी एक्शन फर्स्ट सोच को रोजमर्रा के मसाइल पर अप्लाई करना सिखाती है। 2010 के बाद से सेल्फ हेल्प में माइक्रो हैबिट्स और बिहेवियरल नजेस पॉपुलर हुए। 5 सेकंड रूल भी एक मेटा कॉग्निटिव टूल के तौर पर डिस्कस होता है, यानी आप अपने सोचों को ऊपर से देखकर उन पर कंट्रोल पाते।

करते हैं। इससे हैबिट हेजिटेशंस ब्रेक होती हैं। तो दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मेन थीम और इम्पोर्टेंट वाले, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि हेजिटेशन वर्सेस एक्शन, भाई इंपल्स आए पांच से उल्टा गिनिए। फिजिकल एक्शन ये फीलिंग ओवरराइड कर देता है। वहीं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेशन की बात करें तो काउंटडाउन से डिसीजन रीजन एक्टिवेट होता है। एनालिसिस पैरालिसिस टूटता है। पॉपुलर समराइज इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। एवरीडे करेज की बात करें तो बड़े हौसले की जगह रोजाना छोटे फैसले, मीटिंग में बोलना, फोन उठाना, स्टेयर्स लेना, ये क्यूम्युलेटिव कॉन्फिडेंस बनाता है। स्टार्टिंग रिचुअल्स एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से काम शुरू करने की पहली कोशिश सबसे मुश्किल होती है, तो काउंटडाउन उस एनर्जी को सप्लाई करता है। सोचिए आप घर आकर टीवी ऑन करते हैं, अंदर से आवाज आती है आज किताब का एक चैप्टर पढ़ लूं, 5 4 3 2 1 रिमोट ऑफ, किताब खोल दीजिए। या ऑफिस में टीम कॉल चल रही है, आपके पास एक बेहतरीन आइडिया आता है तो फौरन 5 4 3 2 1 माइक्रोफोन अनम्यूट, मेरा ख्याल से और शुरू कर दीजिए। कहने का मकसद, छोटी फिजिकल मूवमेंट, बेड से उठना, रिमोट ऑफ करना, हाथ उठाना, दिमाग की रेल बदल देता है। भाई कुछ मिसाल लेते हैं। सहरी के बाद नींद यानी नमाज, कुरान की तिलावत या वॉक, काउंटडाउन करके पहला कदम शुरू कीजिए। वर्क ईमेल्स की बात करें तो जो मुश्किल ईमेल्स लिखनी है, 5 4 3 2 1 सब्जेक्ट लाइन टाइप करो, बॉडी फ्लो करेगी। और नई आदत, दिन के अंदर 10 पुशअप्स, काउंटडाउन शुरू कीजिए, पहले 5 ही करिए और फिर कल 6। तो दोस्तों कहीं भी मत जाइएगा, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, यूं गए क्यों वापस आए, और आने के बाद जानेंगे कि आज की बुक का खास मैसेज क्या है।

0: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
1: वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। और अभी तक की कहानी में हमने बहुत कुछ समझाने और समझने की कोशिश की है, आइए अब आगे का सफर करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। सेल्फ हेल्प और कॉरपोरेट कल्चर में बायस फॉर एक्शन बहुत कीमती स्किल है। 5 सेकंड रूल ने लोगों को ये सिखाया कि राइट टाइम का इंतजार मत कीजिए, उल्टी गिनती के साथ छोटा कदम उठाइए और मोमेंटम बनाते जाइए। मीडिया कवरेज और बिजनेस कॉलम्स इस रूल को हैबिट चेंज और डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल बता रहे हैं। 2025 के दौरान कई लीडरशिप फीचर्स ने बताया कि सीईओज और मैनेजर्स काउंटडाउन को स्विफ्ट डिसीजन के लिए यूज करते हैं। यह हेजिटेशंस को डिसरप्ट करके प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस को पुश करता है। दोस्तों, जरूरी बात ये कि पीयर रिव्यूड डायरेक्ट स्टडीज इस स्पेसिफिक रूल पर काम कर रही है, लेकिन सीबीटी बिहेवियरल मोमेंटम और सेल्फ रेगुलेशन की प्रिंसिपल से ये अलाइन करता दिखता है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस पॉडकास्ट और एकेडमिक रिव्यूज इस तरह की एंटीसिडेंट इंटरवेंशंस पहले से क्यू देना को एविडेंस तोड़ने और रिस्पॉन्स इनिशिएट करने के लिए समझते हैं। इसलिए रूल प्रॉमिसिंग टूल है, मगर हर इंसान के लिए यूनिफॉर्मली साइंटिफिकली प्रूवन क्योर कहना ओवर क्लेम होगा। मॉडर्न डे रेलेवेंस से बात करें तो आज के जमाने में फोन, सोशल फीड्स और डूम स्क्रोलिंग से अटेंशन हाईजैक होता है। मेल रिप्सन खुद अपने प्लेटफॉर्म्स पर डोपामीन, फोकस और स्क्रीन बाउंड्रीज पर बात करते हुए प्रैक्टिकल स्टेप्स देती हैं। यहाँ भी 5-4-3-2-1 एक फिजिकल ब्रेक देकर आपको स्क्रॉल से निकलने में मदद करता है। तो दोस्तों, सबक ये कि हेजिटेशन को नाम दीजिए। ये मेरा दिमाग मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, पर मुझे छोटा कदम लेना है। 5-4-3-2-1 एंड मूव। और वहीं छोटे एक्शंस को डिजाइन कीजिए। कैलेंडर, अलार्म अक्रॉस द रूम, फर्स्ट स्टेप डिफाइन, काउंटडाउन से उस पहले कदम को लॉक कर दीजिए। और वहीं डेली खर्च के हवाले से हर दिन 2-3 छोटे फैसले, ईमेल भेजना, कॉल करना, मीटिंग में बोलना कंपाउंडेड कॉन्फिडेंस बनाते हैं। हमारा मुआशरा फास्ट है, ओवरथिंकिंग और फेयर ऑफ जजमेंट आम है। 5 सेकंड रूल कहता है फीलिंग का इंतजार नहीं, एक्शन पे आइए। अगर आप अपनी जिंदगी में माइक्रो विंस ऐड करते जाएं तो माइक्रो चेंज नेचुरली आता है। और याद रखिए, ये टूल है, कोई जादू नहीं। इंसानियत, तहजीब और आपकी वैल्यूज हमेशा पहले हैं। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में इस किताब का खुलासा ऐसे समझें कि 5 सेकंड रूल एक सीधा प्रैक्टिकल टूल है जो हेजिटेशन को एक्शन में बदल देता है। काउंटडाउन के साथ पहला कदम उठाना चाहिए। इसकी रूट्स मेल रिप्सन के 2011 टेडेक्स टॉक और 2017 की बेस्ट सेलिंग किताब से आती हैं। साइंस लेंस के मुताबिक ये मेटाकॉग्निशन सीबीटी प्रिंसिपल से अलाइन करता है। डायरेक्ट क्लिनिकल स्टडीज लिमिटेड हैं, लेकिन डेली लाइफ में इसकी यूटिलिटी स्ट्रॉन्ग है अगर आप कंसिस्टेंट रहें। तो दोस्तों, जिंदगी के बड़े गोल्स अक्सर छोटे कदम मांगते हैं। आज ही से जब भी दिल कहे ये करना चाहिए तो बस 5-4-3-2-1 और चल पड़िए, चाहे वो फिटनेस हो,

0: पढ़ाई हो, करियर या रिश्ते, हर रोज दो तीन माइक्रो एक्शंस आपको अपने बेहतरीन वर्जन के करीब लाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: The books that changed the world. RJ Sarwar Mirza ke saath. Only on FM 107. Dil se Desi. Alfaz jo tareef likhte hain.

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सभी कराम प्रोग्राम में कुरान के मोती के आज के सफर में आपका खैर मकदम है। तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। सभी कराम, पिछले हलके में आपने सुना होगा कि हमने वहन और ईमान की कमजोरी के हवाले से गुफ्तगू की थी। आज हम इसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे। जरा तसव्वुर कीजिए सामने कराम, एक वक्त था कि आप किसी ऐसे प्रोग्राम या स्क्रीन के सामने बैठना पसंद नहीं करते थे जिसमें हराम मनाजिर हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता निगाह मानूस हो गई। पहले दिल कहता था ये मेरे लिए मुनासिब नहीं, फिर कहा आजकल तो हर जगह यही है। फिर एक दिन वो चीज़ जिस पर दिल बेचैन होता था बिल्कुल मामूल बन गई। अब यहाँ सवाल सिर्फ इस बात का नहीं कि आखिरी अमल का फिकही हुक्म क्या है। फिकही हुक्म से दूर हटकर जरा अपने कल्ब का ग्राफ भी देखिए कि मेरी हसासियत ऊपर जा रही है या नीचे। और इसी हसासियत के मौजू को डीप से समझने के लिए हमें वहन और ईमान की कमजोरी की अलामात पर आना होगा। जिस्मानी बीमारी में डॉक्टर पहले अलामात पूछता है, बुखार है तो दर्द कहाँ है, कितने दिन से है, शिद्दत कितनी है, क्योंकि अलामत बीमारी तक पहुँचने का सुराग देती है। कल्बी बीमारियों की भी अलामात होती हैं और ईमानी कमजोरी या वहन की पहली बड़ी अलामत है नफा बख्श आमाल के लिए दाफियत और हिम्मत का कम हो जाना। ये लफ्ज याद रखिए, दाफियत यानी मोटिवेशन। आप कोई नफा बख्श काम करते थे और दिल में उसके लिए कुव्वत मौजूद थी। क़ियामुल्लैल, तिलावत कुरान, अज़कार सुबह शाम, हफ्तावार दर्स, वालिदैन की खिदमत का कोई मुस्तकिल मामूल, किसी खैराती या समाजी खिदमत में शिरकत, कुरान सीखना या सिखाना, कोई भी ऐसा खैर का काम जिसे आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ था, फिर अचानक सब कुछ गायब। आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करते हैं काम वही है मगर अंदर से उठने वाली कुव्वत वो नहीं रही। पहले दिल कहता था कि कब वक्त आएगा, अब दिल कहता है करना जरूरी है क्या। अब हर मर्तबा खुद को धकेलना पड़ता है, ये एक वार्निंग साइन है। फिर दूसरी अलामत है इबादत और खैर के मामूलात का मुसलसल नीचे आना। यहाँ लफ्ज मुसलसल अहम है। किसी हकीकी मसरूफियत, बीमारी, सफर या हंगामी हालत की वजह से मामूल कम हो जाना अलग बात है। जिस कैफियत की बात हम कर रहे हैं वो ये है कि कोई वाज़ेह आरजी सबब नहीं मगर आपकी दीनी जिंदगी का जो सक़्फ़ है, हजम है, वो मुसलसल नीचे आ रहा है। पहले हर महीने कुरान की तिलावत होती थी, तदब्बुर के लिए वक्त निकालते थे, फिर दो महीने, फिर पूरे कुरान को ख़त्म करने के लिए तीन, फिर ख़त्म कुरान का कोई वाज़ेह मामूल ही नहीं रहा। पहले सुनन और नवाफिल की हिफाजत थी, फिर एक एक करके कम होने लगे। पहले वितर का खूब एहतमाम था, फिर मकदार घटी, फिर कभी हुआ कभी नहीं। देखिए यहाँ मसला ये नहीं, दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि नफल छोड़ने को फौरन हराम करार दे दिया जाए, ये फिकही मसाइल हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, यानी फिकही मसाइल की बात नहीं हो रही है। सवाल ये है कि मेरा कल्बी ग्राफ जो है वो किस समत जा रहा है। अगर इंसान जानता है कि मैं पहले ज्यादा खैर पर कायम था, फिर बगैर किसी माकूल उजर के मुसलसल पीछे हट रहा हूँ, तो उसे सिर्फ ये कहकर मुतमईन नहीं होना चाहिए, ये तो फर्ज नहीं था। फिक्र एतबार से हो सकता है कि आप पर गुनाह न हो, मगर कल्ब एतबार से सवाल फिर भी बाकी है कि जो नेकी कभी मेरे लिए महबूब थी आज उसकी कदर मेरे दिल में क्यों कम हो गई। याद रखिये, दिल की भूख का एक खतरनाक मरहला वो है जब उसे भूख लगना भी बंद हो जाए। और अब वहन की तीसरी अलामत जो शायद पहले दोनों से भी ज्यादा बारीक है, सोच और दिलचस्पियों का मरकज बदलने लगना। यहाँ इंसान के अमाल से पहले उसकी गुफ्तगू उसे बेनकाब करती है। आप किसी नौजवान के साथ दो साल पहले बैठते थे, उसकी गुफ्तगू क्या थी? कोई अच्छी किताब बताएं, ये आयत समझाएं, अपने नफ्स की कमजोरी कैसे दुरुस्त करूँ, कुरान हिफ्ज करना चाहता हूँ। उसके सवाल बताते थे कि उसका दिल कहाँ रहता है। दो साल बाद उसी शख्स के पास बैठिए, अब गुफ्तगू का पूरा नक्शा बदल चुका है। सिर्फ गाड़ियाँ, ब्रांड्स, तफरी, मशहूर शख्सियात, आमदन और लाइफ स्टाइल, कौन सा नया फोन आया, कौन किसके साथ है, कौन किससे अलग हो गया, ये चीजें बजाते खुद हर सूरत में ममनू नहीं। असल सवाल ये है, क्या दुनिया मेरी गुफ्तगू का हिस्सा है या मेरी पूरी गुफ्तगू दुनिया बन चुकी है। मसला ये है कि कहीं काम ने मकसद जिंदगी की जगह तो नहीं ले ली। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज दिल में गूंजते हैं, हुब दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत। हुब दुनिया का मतलब ये नहीं कि आप घर न बनाएं, कारोबार न करें, खानदान के साथ खुश न रहें। असल खतरा ये है कि दुनिया हाथ से उठकर दिल में बैठ जाए, दुनिया मियार बन जाए, फिर इंसान हर चीज को उसी तराजू में तोलने लगे। मुझे क्या मिलेगा, मेरी इनकम, मेरी इमेज, मेरी एंटरटेनमेंट, मेरी ख्वाहिश, और आहिस्ता आहिस्ता आखिरत जिंदगी के मरकज से निकल कर हाशिए पर चली जाती है। ये सोच के पैटर्न का बदलना है, और कभी यही कमजोरी की बहुत गहरी अलामत होती है। अब हम चौथी एक निहायत हसास अलामत की बात करेंगे, और वो है जाहिरी हयात और तर्ज जिंदगी में ऐसी तब्दीली जो किसी अंदरूनी तब्दीली की खबर दे रही हो। इस बात को बहुत एहतियात से समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ किसी के लिबास, दाढ़ी, हिजाब या जाहिरी अंदाज को देखकर उसके ईमान का फैसला करना मकसूद नहीं। ना हर जदीद लिबास वहन या ईमान की कमजोरी है, ना हर रिवायती लिबास तकवा की जमानत। असल सवाल लिबास से ज्यादा है कि वो बदला क्यों है। फर्ज कीजिए कि एक शख्स हमेशा से एक मखसूस मुबाह अंदाज का लिबास पहनता आया है। वो जीन्स पहनता है, अपनी माशरती या पेशावराना जरूरत के मुताबिक लिबास इख्तियार करता है, और उसी के साथ नमाज, इल्म, जिक्र और दीन के दूसरे तकाजों में मजबूत है। यहाँ उसका लिबास बजाते खुद हमारे मौजू का मसला नहीं, क्योंकि वो उसी तर्ज जिंदगी में मुस्तहकम है। लेकिन एक दूसरी सूरत देखिए कि एक शख्स ने अपने दीनी सफर में कुछ जाहिरी आमाल और शायर को शौरी तौर पर अपनाया था। उसके लिए वो महज कपड़े या अपीयरेंस नहीं थे, वो उसकी दीनी वाबस्तगी के एक बड़े मजमुए का हिस्सा थे। फिर कुछ अरसे बाद आप देखते हैं कि सिर्फ लिबास नहीं बदला, पूरी सिमत बदल रही है, और इसी के साथ इबादत का मैयार भी नीचे आ रहा है, दीनी हसासियत भी मद्दम हो रही है, तरजीहात भी तब्दील हो रही हैं। यहाँ सवाल पैदा होगा कि क्या बाहर की यह तब्दीली अंदर की किसी तब्दीली का अक्स तो नहीं। दोबारा कह रहा हूं, एक उसूल बहुत वाज़े रखिए, जहन नशी कर लीजिए कि फिक्ही हुक्म और ईमानी कैफियत एक ही सवाल नहीं है। कभी कोई चीज शरण मुबाह हो सकती है, लेकिन एक खास शख्स के लिए उसकी तरफ मुंतकिली उसके अपने रूहानी सफर में किसी बड़ी तब्दीली का हिस्सा हो सकती है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या यह हराम है, क्या यह हलाल है, ये सवाल नहीं, बल्कि एक दूसरा सवाल भी है कि मैंने ये तब्दीली क्यों अपनाई है, क्या तरजीहात में कोई तब्दीली आ गई है। वो तरजीहात जो मेरी इबादत, इल्म, हया और दीनी दिलचस्पियों में भी नजर आ रहा है। ये फर्क बहुत अहम है। इस सिलसिले में हमें शैतान की एक बड़ी चाल से वाकिफ हाल रहना चाहिए, क्योंकि शैतान की एक चाल ये भी है कि वो हमेशा पहले मरहले में इंसान से सरी हराम का मुतालबा नहीं करता। कभी वो कहता है कि सिर्फ इतना बदल लो, अरे ये तो हराम नहीं। फिर कुछ अरसे बाद कहता है कि ये भी तो गुंजाइश में है। फिर कहता है कि इसमें भी क्या मसला है। अब हर कदम को अलग अलग देखा जाए तो इंसान अपने आप को मुतमईन करता रहता है, लेकिन चंद साल बाद जब वो पूरी तस्वीर देखता है तो मालूम होता है कि मसला किसी एक कदम का नहीं था, बल्कि पूरी सिमत का था। इसीलिए सामने इकराम अपने रूहानी सफर को सिर्फ आइसोलेटेड डिसीजंस में मत देखिए। कभी ये भी सोचिए कि मैं कहाँ से चला था, आज कहाँ हूँ, और मेरी हरकत किस तरफ रवा दवा है। अब मजीद एक और अलामत की तरफ आते हैं। ईमान की कमजोरी की अलामत के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही है, और तकरीबन चार अलामत पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। अब ये बहुत ही दर्दनाक और हसास अलामत है कि नेकी तो बाकी है, मगर नेकी की कदर दिल से निकलने लगी है। इंसान कुरान अब भी पढ़ रहा है, लेकिन पहले कुरान खुलता तो दिल में इंतजार की कैफियत होती, किसी आयत पर रुक जाता, कोई जुमला अंदर उतरता था। अब सिर्फ सफहात मुकम्मल करता है, फिर कुरान बंद कर देता है। बस दिल में इतना इत्मीनान कि आज चलो इतना पढ़ लिया है, यानी कुरान की लज्जत खोने लगा है। समझ लीजिए कि ये अलामत बहुत बारीक है। क्योंकि इंसान ने नेकी छोड़ी नहीं। अभी सब कुछ जाहिरन मौजूद है लेकिन नेकी की कीमत दिल में कम होने लगी है। अलबत्ता यहाँ भी तवाजुन जरूरी है, क्योंकि इबादत में हर वक्त एक जैसी लज्जत महसूस होना ईमान की सेहत की लाजमी शर्त नहीं। कभी मोमिन खुशू महसूस कर सकता है, कभी नहीं। कभी कुरान पढ़ते हुए आंख नम होती है, कभी इंसान सिर्फ अपने आप को पाबंद करके पढ़ता है, और कभी तो असल इखलास यही होता है कि लज्जत न होने के बावजूद बंदा इताअत नहीं छोड़ता। इसलिए ये मत समझिए कि आज नमाज में मजा नहीं आया, मुझे मेरे ईमान में कमजोरी है या मुझे वहन हो गया है। नहीं, हम एक मुसलसल कैफियत की बात कर रहे हैं। जब मुद्दत से नेकी की कदर कम हो रही हो, दिल की रगबत मुसलसल घट रही हो और उसके साथ बाकी अलामात भी जमा हो रही हों, तभी एक ऐसा इशारा है जिसे संजीदगी से लेना चाहिए। क्योंकि आज इंसान नेकी कर रहा है मगर उसकी कदर महसूस नहीं कर रहा, और अगर यही कैफियत मुसलसल रही तो खतरा है कि कल दिल कहे कि जब मुझे इसमें कुछ महसूस ही नहीं होता तो मैं ये करता क्यों रहूं। तो पहले लज्जत जाती है, फिर रगबत, फिर पाबंदी, और आखिर में कभी खुद अमल भी छूट जाता है।
0: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ FM 107 पर।
1: तो सामने किराम, अब तक वाहन की हमने 5 अलामात बयान की है। पहली, नफा बख्श आमाल के लिए दाफियत, मोटिवेशन और हिम्मत का कम होना। दूसरी, इबादत और खैर के मामूलात में बिला उजर मुसलसल कमी आना। तीसरी, सोच गुफ्तगु दिलचस्पियों और जिंदगी की तरजीहात का बदल जाना। चौथी, जाहिरी हैयत और तर्ज जिंदगी में ऐसी तब्दीली जो एक वसी तर ईमानी पिसपाई का हिस्सा बन रही हो। पांचवी अलामत, नेकी अभी मौजूद हो मगर उसकी कदर, मानवियत और लज्जत दिल में मुसलसल कम होती जा रही हो। तो सामिन इकराम, ये 5 चीजें हमारे लिए आईना हैं, हमें अपने दिल को देखकर अपनी सिमत पहचाननी है। लेकिन अब असल सवाल शुरू होता है कि हमने बीमारी का तारुफ जान लिया, उसके मराहल समझे। जैसे कि ईमान की कमजोरी के हवाले से जो 3 मराहल हमने पिछले हल्के में भी बयान किए थे, एक है वहन, दूसरा दौफ, तीसरा इस्तकानत। अब उसकी अलामात भी देख लिए, मगर डॉक्टर अगर सिर्फ बीमारी का नाम और अलामात बताकर मरीज को घर भेज दे तो इलाज मुकम्मल नहीं होता। अब पूछना होगा कि वहन, ईमान की कमजोरी, आता कहाँ से है? वो कौन से दरवाजे हैं जिनसे ये बीमारी दिल में दाखिल होती है? यानी असबाब वहन पर हम गुफ्तगू करेंगे कि दिल कमजोर कैसे होता है। कुरान शैतान के बारे में हमें एक वाज़ह हकीकत बयान करता है, इन शैतान लकुम अदुवन फत्तखिज़ूहु अदुवा, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है लिहाजा उसे दुश्मन ही समझो। तो आयत में कहा गया है फत्तखिज़ूहु अदुवा, तुम भी उसके साथ दुश्मन वाला मामला करो, यानी उसकी चालों से गाफिल मत रहो। शैतान हर इंसान की कमजोरी को एक ही दरवाजे से नहीं आजमाता। किसी के लिए माल का दरवाजा ज्यादा खतरनाक है, किसी के लिए शहवत, किसी के लिए शोहरत, हसद, मायूसी, फिक्री शुबहात, बेमकसद मसरूफियत, मुसलसल तफरी, किसी के लिए तारीफ की ख्वाहिश, और किसी के लिए खुद नेकी ही में ऐसा गुलू कि कुछ अरसे बाद थक कर सब कुछ छोड़ बैठे। गोया हर दिल की कमजोर जगह मुख्तलिफ हो सकती है, और शैतान का काम ही ये है कि इंसान को अल्लाह के रास्ते से हटाने के लिए मुनासिब दरवाजा तलाश करे। इसलिए मोमिन को भी अपने बारे में जानना होगा कि मेरा दरवाजा कौन सा है। ये समझना कि मैं कई साल से नेकी पर हूँ, अब शैतान शायद मुझे छोड़ चुका होगा, खतरनाक गफलत है। शैतान आपको शेल्फ पर रखकर भूल नहीं गया। जिस दिन एक दरवाजा बंद होता है वो दूसरे की तलाश करता है। अगर गुनाह से नहीं गिरा सकता तो शायद मायूसी से, मायूसी से नहीं तो गुरूर से, गुरूर से नहीं तो थकन से, और अगर दीन छोड़ने पर आमादा नहीं कर सकता तो कभी सिर्फ इतना चाहता है कि दीन आपकी जिंदगी में रहे मगर बेजान होकर, नमाज हो मगर बेअसर, कुरान हो मगर ताल्लुक ना हो, इल्म हो मगर अमल ना हो, जाहिर बाकी रहे और अंदर से अजम निकलता जाए। ये भी एक बड़ी शिकस्त है। और सामने के नाम, हमारे जमाने में वहन के, ईमान की कमजोरी के असबाब पर गुफ्तगू इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाती है कि दिल पर हमला करने वाली चीजें अब यानी हर वक्त हमारे साथ हैं, मुसलसल आती रहती हैं। सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन ही को ले लीजिए, सुबह, रास्ते में, काम के वक्फे में, घर आए, सोने से पहले, यानी कल्ब को एक फितने से निकलकर संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि दूसरी चीज सामने आ जाती है। तो अगर ईमान की कमजोरी या वहन के असबाब पर हम गुफ्तगू करें तो इन असबाब में सबसे पहला निहायत अहम सबब यही है कि दिल को रोजाना मुसलसल और बड़ी मकदार में फितनों के सामने पेश कर देना। जरा इस जुमले को दोबारा सुनिए, اپنے دل کو ہر روز مسلسل بے حساب فتنوں کے سامنے پیش کرتے رہنا. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ دل بہت مضبوط ہے، ایک ویڈیو سے کیا ہوگا، ایک شبہ سے کیا ہوگا، ایک غلط مجلس سے کیا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک، پھر ایک کے بعد ایک، دل ہر روز کتنا کچھ جذب کر رہا ہے. دل تو پتھر نہیں، دل متاثر ہوتا ہے. جو بار بار دیکھتا ہے اس سے مانوس ہوتا ہے، جو بار بار سنتا ہے اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے. جس فتنے کے سامنے بار بار کھڑا کیا جائے اس کے خلاف مزاحمت تھک سکتی ہے. اور شاید وہن یا کمزوری کے اسباب کو سمجھنے کا پہلا اصول یہی ہے کہ آپ اپنے دل کو روزانہ کس کس چیز کے سامنے کھڑا کرتے ہیں. فتنے دل کو ایک ہی ضرب میں نہیں توڑتے، بلکہ وہ تو مسلسل آہستہ آہستہ کمزور کرتے ہیں. اور یہی سامعین کرام قرآن کی اہمیت آ جاتی ہے. وہن کا سب سے بڑا علاج قرآن ہے. یاد رکھیے، جہاں کبھی ہم وہن کی بات اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کمزوری، ایمان کی کمزوری. تو یہ وہن دراصل کمزوری ایک بیماری کا نام ہے، اور یہ بیماری مرحلہ بمرحلہ دل میں بہت بھیانک اور خطرناک روپ لے لیتی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ پہلے وہن، پھر ضعف، پھر استکانت کا آخری مرحلہ. اب سامعین کرام ہم قرآن کی ہدایت لیں گے، قرآن اس سلسلے میں ہمیں کیا کہتا ہے، چونکہ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دل کو بیماری سے بچانا کیسے ہے. فتنوں کے مقابلے میں قرآن کے ایک مختصر سا حکم دیکھیے. اللہ فرماتا ہے ولا تمدن عینیک، اپنی نگاہیں مت پھیلاؤ. گویا قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے ضروری نہیں کہ آپ اسے دیکھ لیں. ہر منظر آپ کی آنکھ کے لیے نہیں، ہر گفتگو آپ کے کان کے لیے نہیں. ہر چیز کو دیکھ لینا آزادی نہیں، کبھی کچھ چیزوں سے نگاہ بچا لینا دل کی حفاظت ہے. کبھی کبھار ہم دل سے نور مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر اسی دل کو دن بھر ایسی چیزیں بھی دکھا رہے ہیں جو اس نور کو مدھم کرتی ہیں. اور اس طرح اگر انسان مسلسل اپنے آپ کو شہوانی مناظر، فحش مواد یا دوسرے شدید فتنوں کے سامنے بے حفاظتی سے رکھتا رہے، تو یہ کیفیت آگے بڑھ کر حرام تعلقات، فحش مواد کی عادت یا دوسری سنگین لغزشوں تک بھی لے جا سکتی ہے. اسی لیے قرآن کا طریقہ صرف آخری گناہ سے منع کرنا نہیں، گناہ تک پہنچانے والے دروازوں کی بھی حفاظت کرنا ہے. اسی لیے ولا تمدن عینیک، اپنی نگاہ کو ہر طرف مت پھیلاؤ. یہ حکم آیا ہے جو دراصل اس وہن کا سب سے اہم اور بڑا علاج ہے. اور اب چلے وہن کے دوسرے سبب کی طرف آتے ہیں. دل میں کمزوری پیدا کرنے والا ایک اور اہم سبب ہے راستہ دین کی مشکلات کا پہلے سے ادراک نہ ہونا. یہ نقطہ کافی اہم ہے. بعض لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو ان کے ذہن میں غیر شعوری طور پر ایک تصور ہوتا ہے کہ اب میں اللہ کا فرما بردار بن گیا ہوں تو زندگی آسان ہو جائے گی، میں حرام چھوڑ رہا ہوں تو رزق کے تمام دروازے فوراً کھل جائیں گے، میں حجاب اختیار کر رہی ہوں تو سب لوگ احترام کریں گے.

0: के बावजूद सिमत महफूज रहे। यही वजह है कि दीन के सफर में दाखिल होने वाले शख्स को सिर्फ फसाइल न सुनाए जाए, उसे सबात की कहानियां भी सुनाएं। सिर्फ ये ना बताइए कि अल्लाह की इताअत में सुकून है, ये भी बताइए कि इताअत के रास्ते में आजमाइश भी आ सकती है, क्योंकि जिस मुसाफिर को पहले से मालूम हो कि आगे चढ़ाई है, वो चढ़ाई देखकर सफर पर शक नहीं करता। वो कहता है मुझे बताया गया था, ये भी इसी रास्ते का हिस्सा है। कुरान इसीलिए साबिका अहले ईमान के इब्तिला और सबात की दास्तानों से भरा हुआ है, और सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें ये बताती है कि किस तरह साबिका अहले ईमान को इंतहाई शदीद जिस्मानी अजियतें दी गई मगर वो अपने दीन से न फिरे। ये वाकयात हमें अजियत की तमन्ना करना नहीं सिखाते, बल्कि इस्लाम इंसान से ये नहीं कहता कि मुसीबत तलाश करो। सबक तो ये है इसमें कि अगर आजमाइश आ जाए तो आजमाइश को इस बात की दलील न समझो कि रास्ता गलत है। मोमिन तो आफियत मांगता है, मुश्किल को दावत नहीं देता, जायज आसानी तलाश करता है। लेकिन अगर हक पर कायम रहने की कोई कीमत सामने आ जाए तो सिर्फ कीमत देखकर हक की कदर कम नहीं कर देता। कभी आजमाइश बहुत बड़ी नहीं होती, एक रिश्ता आया बात न बनी, किसी ने आपके जाहिरी दीनी अंदाज को पसंद नहीं किया, एक जॉब एप्लीकेशन रद्द हो गई, दो जगह सीवी कबूल नहीं हुआ, किसी ने आपकी दीनदारी का मजाक उड़ा दिया। अगर इतनी सी रुकावट पर इंसान अपनी पूरी दीनी सिमत बदलने लगे तो असल मसला रुकावट के हजम से ज्यादा दिल की तैयारी में हो सकता है, क्योंकि जिस शख्स को ये बताया ही नहीं गया कि सफर में इम्तिहान भी होगा, उसे छोटा पत्थर भी पहाड़ महसूस होता है। लेकिन जिसने कुरान से सीख लिया फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, वो मुश्किल देखकर पूछता है इस मुश्किल को हिकमत, सबर और शरी तरीके से कैसे उबूर करना है।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर।
0: अब दीन के रास्ते में जो मुश्किलात दरपेश होती हैं, जैसे कि हमने बताया कि ये भी कभी कभार दिल में ईमान की कमजोरी का सबब बनते हैं, तो इस दूसरे सबब का इलाज क्या है? उसका इलाज यही है सामिन इकराम के अपने जहन में दीन के सफर की हकीकत दुरुस्त कीजिए, कुरान में अहले सबात को पढ़िए, अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाकयात पढ़िए, सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगियां पढ़ें, देखिए कि अल्लाह के महबूब बंदों ने आजमाइश को किस तरह समझा। ये दरअसल दिल की ट्रेनिंग है, ये आपके अंदर एक जहनी कुव्वत पैदा करते हैं कि मुश्किल आएगी तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, दरवाजा बंद होगा तो मैं हलाल दूसरा दरवाजा तलाश कर लूंगा, मुझे तकलीफ होगी तो अल्लाह से मदद मांगूंगा, मगर अल्लाह की तरफ सफर को बजाते खुद कोई मसला नहीं समझूंगा। ये है सबात की नफसियात। मजीद सामने कराम वहन के तीसरे सबब दिली कमजोरी ईमान के हवाले से, इसका तीसरा सबब है सालेह और मुतवाजन माहौल का न मिलना। ये मसला बहुत से नौजवानों के लिए हकीकी है। एक नौजवान के दिल में तब्दीली आती है, वो नमाज की तरफ बढ़ता है, कुरान से ताल्लुक बनाना चाहता है, हराम से बचने की कोशिश करता है, लेकिन घर का माहौल उस सफर में उसका साथ नहीं देता। वालिदैन शायद इस तब्दीली को नहीं समझते, भाई बहन उस मिजाज के नहीं, पुराने दोस्त मजाक उड़ाते हैं, क्या हो गया मौलवी बन गए। आसपास ऐसी मस्जिद या इल्मी मजलिस भी आसानी से नहीं मिलती जहां वो अपने जैसे खैर के तालिब लोगों से मिल सके। तो पहला महीना तो जज्बे से निकल गया, दूसरा भी फिर तन्हाई महसूस होने लगी, और यहाँ अब दिली कमजोरी खामोशी से दाखिल हो जाती है। क्योंकि इंसान तो सिर्फ जज्बात और ख्यालात से नहीं जीता, इंसान को सोबत चाहिए, कोई ऐसा शख्स जो कहे चलो फजर के लिए उठते हैं, आज दर्स है, कुरान का सबक क्या है, परेशान हो तो बात कर लो, गिर गए तो कोई बात नहीं दोबारा उठो। ईमान के सफर में बाज़ औक़ात इस तरह सामने किराम एक साले दोस्त की जरूरत पड़ती है जो आपके अज़म का सहारा बने, और जब इंसान के इर्द गिर्द सिर्फ ऐसी आवाजें गूंजे जो मुसलसल ये कहती हों कि इतनी सख्ती क्यों, जिंदगी इंजॉय करो, सब यही करते हैं, छोड़ो ये सब, तो अगर उसके पास कोई मुतबादल साले सोबत न हो उसकी मुजाहमत थक जा सकती है। फिर पहले वो तनहा लड़ता है, फिर थक जाता है, फिर कुछ समझौते करता है, फिर उन्हीं समझौतों को मामूल समझने लगता है, और एक दिन वहीं वापस पहुंच जाता है जहां से सफर शुरू किया गया था। फिर इस मसले के एक दूसरा रुख भी है सामने इकराम, वो ये कि कभी सालेह माहौल उसे मिल तो जाता है मगर इंसान ने उसकी एक ख्याली फरिश्तों जैसी तस्वीर बना रखी होती है। वो सोचता है मैं दीनी लोगों में जाऊंगा तो वहां कभी इख्तिलाफ नहीं होगा, कोई आलिम सख्त लफ्ज नहीं कहेगा, कभी اس طرح کی دینی تقریبات میں کبھی بدنظمی نہیں ہوگی۔

0: दीनी कारकुनों से कभी गलती नहीं होगी। सबके दिल बिल्कुल साफ, मिजाज यकसां और मामलात बेऐब होंगे। फिर वो मस्जिद में जाता है, दीनी माहौल में जाता है। अब दो लोग किसी बात पर बहस कर रहे हैं। किसी दीनी शख्स ने कारोबारी मामले में गलत कर दी, दो अहले इल्म के दरमियान इख्तलाफ देख लिया और वो कहता है ये है दीनी लोग। इस तरह के सवालात करने वाले दरअसल वहन और दिली कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। दिल में मायूसी आ जाती है, फिर फासले, फिर ये कहने लगता है कि अगर यही माहौल है तो मुझे नहीं चाहिए। तो इस हकीकत को सामने किराम सही से समझ लीजिए कि सालेह माहौल का मतलब मासूम लोगों का माहौल नहीं। दीनदार इंसान भी इंसान है, उसे गलती हो सकती है, उसके मिजाज में सख्ती हो सकती है, वो किसी मामले में कमजोर हो सकता है। दीनी जमात या मस्जिद में होना जन्नत में दाखिल हो जाना नहीं। हर इंसानी माहौल में खूबियां भी होंगी और खामियां भी। हाँ, जिस जगह जुल्म, बदउनवानी या मुसलसल नुकसान हो उसे सिर्फ सब्र के नाम पर बर्दाश्त करना जरूरी नहीं। जरूरत हो तो और भी बेहतर माहौल तलाश कीजिए, हुदूद कायम कीजिए और अहले एतमाद से मदद लीजिए। लेकिन आम इंसानी खामियों को देखकर असल दीन से बदजन हो जाना ये एक अलग गलती है। फिर कभी हम दीन को लोगों के जरिए नापने लगते हैं। फुला दीनी शख्स ने गलती की तो दीन में मसला है, फुला मस्जिद में इख्तलाफ देखा तो मस्जिद ही से दूर हो जाओ। नहीं, लोगों को दीन से नापिए, दीन को लोगों से मत नापिए। कुरान मेयार है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मेयार है। इंसान उस मेयार के करीब भी हो सकता है, दूर भी। आप किसी की गलती से सबक लीजिए, जरूरत हो तो उससे फासला रखिए, लेकिन किसी इंसान की कमजोरी को अल्लाह से अपने ताल्लुक के दरमियान दीवार न बनने दीजिए। इसीलिए सालेह माहौल के बारे में दो इंतहाओं से बचना चाहिए। एक तरफ ये कहना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी हूँ, ये हमेशा दानिशमंदी नहीं, और दूसरी तरफ जब तक मुझे बिल्कुल परफेक्ट लोग नहीं मिलेंगे मैं किसी दीनी माहौल से नहीं जुड़ूंगा, ये भी गैर हकीकी तवक्को है। आपको फरिश्ते नहीं अच्छे इंसान तलाश करने हैं, ऐसे लोग जिनकी मजमूई सिमत अल्लाह की तरफ हो, जिनके साथ बैठकर ईमान बढ़े, जो गलती करें तो वापस आए, जो आपकी इसलाह करें और आप उनकी, जिनकी खूबियां उनकी इंसानी कमजोरियों से ज्यादा हों, यही अमली तौर पर सालेह सोहबत है। और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल मौजूद ही नहीं तो ये मत कहिए कि मेरे इलाके में कोई ही नहीं लिहाजा मैं भी नहीं कर सकता। यहाँ आपका इलाज जद्दोजहद है। सालेह माहौल तलाश करना, दूसरी मस्जिद देखना, किसी मोतबर इल्मी हल्के से जुड़ना, एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो उस ताल्लुक की हिफाजत कीजिए, मोतबर अहले इल्म से राबता रखें, जरूरत हो तो मुफीद ऑनलाइन इल्मी माहौल को मुआविन बनाइए। याद रखिए कभी माहौल मिलता नहीं, बनाया जाता है। दो अच्छे लोग मिल गए, तीसरे को साथ ले लीजिए। कुछ कुरानी मुजाकरा हो, इल्मी मुजाकरा हो, एक दूसरे की खबर गिरी, एक दूसरे की हाल पुरसी करें। इस तरह सामने कराम कभी एक साले दोस्त ही पूरे माहौल की इब्तिदा होता है। तो इस तरह सामने कराम हमने काफ़ी डीपली वहन के असबाब तक पहुंचने की कोशिश की, उनके इलाज पर भी गुफ्तगू की है। अब वहन के असबाब को यानी दिली कमजोरी, ईमान के हवाले से जो दिली कमजोरी आती है, इसके असबाब को अगर हम अलग अलग खानों में रखकर समझने की कोशिश करें तो ये आसान है, लेकिन अमली जिंदगी में ये असबाब अक्सर अकेले नहीं आते हैं। इस बात को भी जहन नशी कर लीजिए कि कभी एक ही वक्त में कई रास्तों से दिल पर दबाव पड़ रहा होता है। एक तरफ इंसान अपने आप को मुसलसल फितनों के सामने रखता है, दूसरी तरफ उसके पास साले सोबत भी नहीं, तीसरी तरफ दीन के रास्ते में कोई आजमाइश आ जाती है, चौथी तरफ नफ्स अपनी पुरानी ख्वाहिशों की तरफ खींच रहा होता है, और जब ये सब कुव्वतें एक ही दिल पर जमा हो जाएं तो वो दिली कमजोरी की बात वो दोबारा हावी हो जाती है। गोया एक तरफ से दीवार में दरार पड़ी, दूसरी तरफ से हवा दाखिल हुई, तीसरी तरफ से बारिश, और फिर इंसान हैरान, मेरा दिल पहले जैसा क्यों नहीं रहा। याद रखिए इंसान जिन लोगों के साथ मुसलसल रहता है उनके गुफ्तगु आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन की गुफ्तगु बनने लगती है। अगर 24 घंटों में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो आपसे कहे अल्लाह को याद करो, कोई ऐसा नहीं जो पूछे कुरान कैसा चल रहा है, कोई ऐसा नहीं जिसके साथ बैठकर आखिरत याद आए, तो दिल को अपनी ग़िज़ा कहाँ से मिलेगी। और इसीलिए सालेह सोहबत ये कोई लग्जरी नहीं, बाज़ लोगों के लिए उनके ईमानी सफ़र की शरियान हयात होती है। और जब सालेह दीनदार नेकोकार लोग मिल जाए तो उनसे फरिश्तों जैसी परफेक्शन मत मांगिए। कुरान ने हमें एक और उसूल दिया है, वतवासौ बिलहक़ी वतवासौ बिस्सब्र, वो एक दूसरे को हक की नसीहत करते हैं और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करते हैं। और कीजिए अगर सब पहले ही कामिल होते तो तवासी की क्या जरूरत होती, मैं कहीं कमजोर हूँ आप मुझे संभालें, आप कहीं कमजोर हो मैं आपको याद दिलाऊं, मैं गलती करूं आप इसलाह करें, आप थकें तो मैं हौसला दूं। साले सोबत का मतलब बेआयब लोगों का मिल जाना नहीं, एक दूसरे को अल्लाह की तरफ संभालते हुए चलना है। मजीद सामिन इकराम, अब वहन के चौथे सबब की तरफ आते हैं और ये सबब दरअसल इंसान के अपने नफ्स के अंदर है और वो इस तरह के जब ख्वाहिश और शरीयत आमने सामने आ जाए। बाज लोग दीन के रास्ते पर आते हैं लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हें एक नई कशमकश महसूस होती है। वो कहते हैं, दीन इख्तियार करने से पहले मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें थी, जिंदगी में बहुत कम बाउंड्रीज थी। फिर इंसान दीन सीखने लगा, अब उसे बताया गया कि ये जायज है ये नाजायज है, इस ख्वाहिश को इस तरह पूरा नहीं किया जा सकता है, ये माली मामला दुरुस्त नहीं, ये मवाद देखना जायज नहीं। अब पहली मर्तबा इंसान के अंदर एक तसादुम पैदा होता है, दिल अल्लाह की तरफ जाना चाहता है मगर नफ्स पुरानी लज्जतें वापस मांग रहा है। यही अगर इंसान ने दीन को सही तौर पर न समझा तो दोबारा वो दिली कमजोरी हावी हो सकती है। वो सोचता है तो क्या दीनदारी का मतलब ये कि जिंदगी की सारी खुशी खत्म, क्या इस्लाम सिर्फ मना करता है ये ना देखो ये ना करो यहाँ ना जाओ उस ताल्लुक से बचो तो फिर खुशी कहाँ है? ये सवाल बहुत अहम है और उसका जवाब सिर्फ ये नहीं कि बस हराम है छोड़ दो, हुक्म अपनी जगह हक है लेकिन दिल की तरबियत जरूरी है। यानी इस्लाम इंसान को बेलज्जत जिंदगी नहीं देना चाहता, इस्लाम चाहता है कि इंसान लज्जत का मफहूम ही बड़ा कर दे। हमने लज्जत को चंद जिस्मानी एहसासात तक महदूद कर दिया है, अच्छा खाना पीना सुनना जो चाहे करना, हम समझते हैं कि अरे यही सब कुछ है। लेकिन दीन आकर कहता है नहीं, इंसान सिर्फ जिस्म नहीं, उसके पास दिल भी है, रूह है, अकल है और जिस तरह जिस्म की लज्जतें हैं उसी तरह दिल की भी लज्जतें हैं। बल्कि बाज लज्जतें ऐसी हैं जिनके मुकाबले में बहुत सी फौरी जिस्मानी लज्जतें छोटी महसूस होने लगती हैं। अल्लाह को पहचानने की लज्जत, अल्लाह के कुर्ब की लज्जत, सजदे में अपने रब से बात करने की लज्जत, कुरान की एक आयत का अचानक दिल के अंदर उतर जाने का जायका, गुनाह की शदीद ख्वाहिश के बावजूद सिर्फ अल्लाह के लिए उसे छोड़ देने का सुकून, किसी इंसान के काम आने के बाद दिल में पैदा होने वाली पाकीज़ा खुशी, हलावत ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें हो वो ईमान की हलावत पाता है। जरा लफ्ज देखिए ना, हलावत ईमान, ईमान की मिठास, गोया ईमान का एक जायका भी है। अब हलावत ईमान की बात पर अगर कोई ये कहे कि मुझे तो महसूस ही नहीं हो रही है, मैंने बहुत सी चीजें छोड़ दी, लेकिन जिस खुशी जिस सुकून जिस हलावत की बात की जाती है वो कहाँ है? और दूसरी तरफ पुरानी ख्वाहिशें अभी भी आवाज देती हैं। समीन इकराम, अब इंसान दो दुनियाओं के दरमियान खड़ा है, पुराने गुनाह की लज्जत याद आ रही है और नई इताअत की लज्जत अभी पूरी तरह महसूस नहीं हो रही है। ये मरहला बहुत नाजुक है, यहाँ अगर दिल को सही रहनुमाई ना मिले तो वो कह सकता है कि फिर मैं वापस ही क्यों ना चला जाऊं, और यही दिली कमजोरी का दरवाजा बन जाता है। कुरान यहाँ एक निहायत खूबसूरत जवाब देता है, वस्तबिर लिइबादती, उसकी इबादत पर खूब साबित कदम रहो। कुरान ने सिर्फ इसबिर नहीं फरमाया, कहा इस्तबिर, यानी अपने आप को सबर पर मजबूती से कायम रखो, मुसलसल जिद्दोजहद करो। हकीकत यह है कि हर सजदे में तो आंसू नहीं आते, हर तिलावत में दिल नहीं कांपते, हर नमाज में वही कैफियत नहीं होगी और ईमान की बुलंद मनाजिल सिर्फ चंद हफ्तों की मश्क से नहीं मिलती। कभी बंदे को दरवाजा खटखटाते रहना पड़ता है और इस तरह इबादत जारी रखने से लज्जत का दरवाजा मिलता है। कभी हम तरतीब उलट देते हैं तब जाकर मसला पैदा होता है, हम कहते हैं कि पहले दिल लगे फिर कुरान पढ़ूंगा। शायद उसका जवाब यह है कि कुरान पढ़ते रहिए, दिल लगना भी सीखेगा। कयाम करते रहिए, अल्लाह सुभान व तआला आपको रास्ते में मिलेंगे। मजबूती से चलते रहिए, चूंकि बाज लज्जतें सफर के आगाज पर नहीं सफर के अंदर मिलती है या सफर के अंजाम में मिलती है। मजीद इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि ख्वाहिश के सरचश्मों को खुश कीजिए, वो अकाउंट्स जो बार बार फितने की तरफ ले जाते हैं, वो जगहें जो पुरानी लग्जिशों को जगाती हैं, वो कॉन्वर्सेशंस जो साबिका नाजायज ताल्लुकात को जिंदा रखती हैं, वो कंटेंट जो ख्वाहिश को मुसलसल खुराक देता है, आप इन तमाम चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। क्योंकि कभी इलाज ये होता है कि आग से फासला बढ़ाया जाए, इसका मतलब ये भी नहीं कि इंसान दुनिया की हर जायज खुशी छोड़ दे। इस्लाम जायज लज्जतों को हराम नहीं करता, हलाल खाइए आराम कीजिए, खानदान के साथ खुश रहिए, जायज तफरी इख्तियार कीजिए, लेकिन फर्क यह है कि ख्वाहिश आपकी जिंदगी का हिस्सा रहे, आपकी जिंदगी का खुदा न बन जाए। और फिर अल्लाह ताला का वादा सुनिए, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو مرد یا عورت ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی، یعنی قرآن ہمیں ایک ایسی زندگی کی طرف لے جاتا ہے جس میں بندے کا تعلق اپنے رب سے اس کی زندگی کو معنی، سمت اور باطنی خیر دیتا ہے. اسی لیے ابھی بھی اگر وہ حلاوت پوری طرح محسوس نہیں ہو رہی تو فوراً یہ نتیجہ نہ نکالیے کہ دین نے مجھے کچھ نہیں دیا. اپنے سفر کا جائزہ لیجیے کہ کیا میں واقعی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، کیا گناہ کے سرچشمے میں نے پہلے سے بند کیا ہے یا نہیں. کیونکہ بسا اوقات مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے طریقہ سفر میں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. پروگرام قرآن کے موتی کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
2: دل سے دیسی.
3: کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کا کام بولتا ہے، ان کی محنت، ان کی لگن ہزاروں لاکھوں کو انسپائر کرتی ہے. اور اونچی کرسی یہ پوزیشن کے پیچھے ایک شخص ہوتا ہے جس کی کہانی لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور وہی کہانی ہم پہنچائیں گے آپ. یہ باتیں ہوں گی تھوڑی سی پروفیشنل اور بہت ساری پرسنل، تو سنیے گا ضرور. امبیسڈر آف دا منتھ آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعرات کو شام 5 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
4: Cricket ho
5: and he's hooked that away. That's 4 runs.
4: Football ho ya koi aur bada sporting action, hum laate hain aap tak har angle, har story aur har highlight bilkul seedhe saade andaaz mein.
6: To agar aap rehna chahte hain updated aur connected sports ki duniya se,
4: tune in kare Sports Roundup with our sports journalist Mohammad Amin every Tuesday at 1 p.m.
6: क्योंकि यहां होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की. स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: FM 107. Time check.
1: जवान क्या सुबह हो गई है?
2: Yes, sir.
1: क्या 6:01 हो रहे हैं?
2: Yes, sir.
1: क्या तुमने WhatsApp पे मैसेज किया?
2: Yes, sir.
1: अगला क्या सवाल था छोटे? अगला सवाल कुछ नहीं ना. क्या किसी और ने WhatsApp पे मैसेज किया?
2: Yes, sir.
1: मुझे तो नहीं दिख रहा. किधर है? नहीं किधर है? झूठ क्यों बोलते हो यार?

0: यार लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप।
2: हाँ जी मैगा जी अस्सलाम वालेकुम। 6:00 दो मिनट हो लिए आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आजरा जी क्या हाल है बढ़िया। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड आई होप कि एवरीथिंग इज फाइन एवरीथिंग इज गुड सब बढ़िया चल रहा है भाई यही उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही चल रहा होगा। ऐसा लग रहा है मैं खत लिख रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी इस तरफ सब बढ़िया चल रहा होगा प्रिय। मेरी तरफ तो सब बढ़िया चल रहा है भाई। अभी मैं सुबह आ रहा था मैंने पता ऑफिस में देखा हमारे प्रमाइसिस में कुछ लोग बड़े शानदार तरीके से रनिंग करने लगे हैं भाई ग्रुप बना के। मैं डेली इंस्पायर होता हूँ पता है आपको कर कुछ नहीं पाता मैं इंस्पायर डेली हो रहा हूँ मैं इस बात की पूरी पूरी गारंटी भाई। इंस्पिरेशन में कमी को नहीं भाई आप लेकिन मैसेज कर दो उससे भी इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। 666-22107 नंबर है 666-22107। कुछ मैसेज आ चुके हैं मेरे पास मैं जरा एक एक करके पढ़ देता हूँ। भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जब्बार भाई अल्हम्दुलिल्लाह जब्बार भाई क्या हाल है भाई आप। एक तो नाम ऐसा है ना आपका मुझे लगता है मैं अगर कोई पूछेगा कि कबीर कहाँ काम करते हो जब्बार भाई के लिए काम करता हूँ हमारे जब्बार भाई बहुत गुस्से वाले हैं। एक मैसेज है आसिफ भाई का अस्सलाम वालेकुम हमने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है आपके लिए देख लीजिए एक बार और प्लीज़ हमारी हाजिरी कबूल कर लीजिए। अरे क्या तीर भेज दिया भाई इन्होंने रोको जरा इनका भी देख ले भाई कुछ भी भेजते रहते हैं हमारे आसिफ भाई भी अलग तीर अंदाज है भाई। नहीं इधर तो कुछ नहीं भेजा आपने अच्छा इधर ही भेजा है। अरे मेरे आसिफ नाश्ता नहीं होना आज। एक मैसेज है अगर छुट्टी हो गई है सर गुड मॉर्निंग मोहम्मद इकरम साहब कैसे हैं भाई। और आसिफ भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कमांडर साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई बहुत सारा प्यार भाई को। आसिफ भाई क्या चल रहा है बाकी सब बढ़िया। एक मैसेज है मोहसिन भाई का रोल नंबर 2 आ गए मोहसिन भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भाई क्या हाल है भाई के। और सुभाष भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग एंटरटेनमेंट का जॉइंट भाई बहुत सारा प्यार सुभाष भाई बहुत सारा प्यार भाई को दिल से। एक और मैसेज आसिफ भाई का हम आपसे इंस्पिरेशन लेते यार मेरा भाई क्या बात है थैंक यू भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आप मेरी ज़िंदगी में आए। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम हेलो कबीर भाई मुझे आपको कॉल करना है। मैं एक मैसेज पढ़ना चाहूँगा प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा सुनिएगा सॉरी इनका नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया QUAI लिखा हुआ है।

0: मेरी लड़ाइयों के लिए, ये हो सकता है। कॉल आ रही है, अस्सलामुअलैकुम।
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: बिग बॉस चाहते हैं क्या आप बताइए सुम्बुल बहन, आपने तो सीधा ट्रॉफी की बात
1: कर दी। ऑलरेडी एक कैंडिडेट सुम्बुल करके आ चुकी थी उसमें, देखा होगा।
0: हाँ यस यस यस यस यस यस यस। तो
1: क्या थी यार, मतलब हाँ। जाना है मुझे।
0: तो आप जीत जाती। नहीं मुझे मुझे ऐसा लग भी रहा है।
1: आप कर लो अपना शो
0: हैं,
1: कभी द सर्वाइवल शो
0: है ना, मैं कुछ कुछ बनाऊंगा पता है मैं आगे जाके, मुझे बहुत मन कर रहा है मैं। और उसमें जितने ये सुनने वाले हैं ना, मुझे लग रहा है कि आप उसमें ट्रॉफी ले जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है इस बात पे। मुझे पता है।
1: नहीं तो? और भी बहुत से टैलेंटेड लोग हैं।
0: अरे
1: उससे भी ज्यादा
0: टीचर साहिबा
1: टॉक्सिक हो गए।
0: तो ये आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है क्या, मतलब ये रिश्तेदारों से जीत जाती हैं आप, या मतलब अभी
1: हाँ, बिल्कुल
0: ये वही ना।
1: देखो भाई हाँ। क्या मतलब वहाँ पे क्या है भाई, मीठी छुरी बने रहो बस।
0: मैनिपुलेशन चल रहा हूँ, मैनिपुलेशन।
1: नहीं मैंने पता है, मैंने आपकी तरह मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं है, लेकिन मतलब वही वाली बात है कि रील्स पे आता है लोग बात करते हैं। मतलब मेरी खुद की कलीग्स हैं, वो मतलब हमारे नेबरिंग कंट्री है, उन्होंने पूरे एपिसोड देखे, सारे देखे। उनसे पूछती है क्या बिग बॉस में क्या चलता है, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम क्या चलता, हमारे रिश्तेदार खुद बिग बॉस बना देते हैं।
0: तो आप लड़ लड़ के जीतती हैं, तो आपकी इमेज क्या होती है बिग बॉस में, आप लड़ाई झगड़ा करने वाली होती है कि क्या करने वाली होती है, लगता है लड़ाई झगड़ा होता है आपका।
1: अच्छा आप मुझे बताइए, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ सक्सेस होता है?
0: हाँ हाँ, अरे बिग बॉस में होता है, बिग बॉस में फायदा मसाला है वो।
1: आज कल वो हिसाब है ना कि बटरिंग करते रहो भाई, मस्का फ्री का मिलता है।
0: गारंटी है इस बात की, आप वोटिंग लाइन की भी जरूरत नहीं है, ऐसी अंधाधुन वोट देंगे सब आपको। क्या बात है, शुरू करना पड़ेगा बहन आपके लिए कुछ। और बताएं क्या चल रहा है स्कूल में आजकल?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
0: अभी तो बच्चों के कुछ रिजल्ट्स वगैरह भी आ रहे हैं, मैंने सुना।
1: क्या
0: रिजल्ट्स वगैरह भी आने वाले हैं बच्चों के, पीटीएम वगैरह कुछ
1: एग्जाम्स हुए हैं?
0: अच्छा कुछ स्कूलों के हुए होंगे, क्योंकि अभी एक दो बच्चों ने बोला कि उनका पीटीएम
1: एग्जाम
0: हो गए। हाँ अच्छा अच्छा ओके ओके ओके ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। तो मैं समझ गया, आप बिग बॉस की
1: अरे आप कभी भाई ऐसा शो बनो, देखो आप हिट हो जाओगे, मैं सही बता रही हूं। आपकी ऑलरेडी फैन फॉलोइंग बहुत
0: ज्यादा है। कैसा वाला बताओ, कैसा वाला?
1: जैसे बिग बॉस है।
0: अच्छा बिग बॉस जैसे कुछ बना दो, कबीर चाहते हैं।
1: हाँ मतलब उसमें सीसीटीवी कैमराज होते हैं, देखो ना, और हमारे रिश्तेदारों के आंटीज होती हैं जो सीसीटीवी कैमराज भी खतरनाक तरीके से नजर रखती हैं। मतलब उनके पांचों सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं।
0: हाँ हाँ ये तो मैं अग्री करता
1: हूँ। एक सीसीटीवी के तो मेरे ख्याल से उसमें ऑडियो या वीडियो वाला होगा, लेकिन नहीं इनके पांचों काम करते हैं, वो बता देते हैं कि भाई इस वक्त जो इंसान बात कर रहे हैं ना तो, उसका रंग भी कैसा होगा।
0: तो रिश्तेदारों में कोई ऐसी खास आंटी है जिनसे आपका मतलब हुआ है, झड़प हुई है थोड़ी बहुत बातों की, कोई तो होगा जो आपका शिकार बना होगा? बहुत है। अरे भाई तो फिर तो बात ही खत्म हो गई।
1: आपकी बातों के साथ, आपके बात करने के टोन के साथ, आपकी बॉडी का कलर बताती थी भाई, ऐसे बात करते हुए पीली पड़ रही थी, हरा रंग दिखा रही थी।
0: ये डायलॉग कितने टाइम बाद सुना है।
1: एक मेरे घर के सामने एक आंटी रहती है ना, तो वो मतलब वो एक्चुअली वो थोड़ा गांव से बिलोंग करती, कहा बता भैया ऐसा ही लड़ाई जाए, ऐसा ही लड़ाई पीली पड़ गई। सॉरी
0: कहा बताए भैया पीली पड़ गई, चिल्ला चिल्ला के
1: भैया जाऊ कतई तमीज नाम नहीं लड़की को हद कर दई। आई एम सो सॉरी, मेरा एक्सेंट पहली बार सुनाओ।
0: अरे बहुत बहुत बढ़िया निकला एक्सेंट। ये मैं यूज करूंगा, ये मैं डायलॉग यूज करूंगा, लड़ते लड़ते पीली पड़ गई, इतना चिल्लाई इतना चिल्लाई।
1: और एक बात और, वो ऐसे बोलती ये क्या बताया आजकल की लौंडियन को, कतई जो है कतई मर्दों की इज्जत ना करन जानत। यार आप भी सोचोगे पता नहीं कैसे बोलती है, लेकिन मैं बोल देती हूँ खाली लैंग्वेज
0: में। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप फुली ट्रेंड हो गए, क्या बात है यार। मैं तो भाई हॉर्न बजाओ, क्या बात है मैम, एक नंबर एक नंबर, बहुत बढ़िया।

0: मजा दिला दिया आपने सुबह सुबह। अब ये मैं डायलॉग पूरे हर जगह बोलूंगा मैं एक हफ्ते तक, ये मेरे जुबान पे चढ़ गया है।
1: नीली बिली पड़ती है।
0: डन हो गया बहन, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया ये सिखाने के लिए हमें सुबह सुबह। आज कुछ सीखा मैंने सुबह सुबह, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और हमारी एक और बहन है, हफ्सा बहन ने मैसेज किया, वो लिखती है, गुड मॉर्निंग, हैव अ लवली डे, एंटरटेनमेंट चाहते हो? और चाटा मारते हुए एक विजाफ स्टिकर। बिल्कुल बहन बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ। और नसीमा कह रहे हैं क्या बेशरम हो तो जीत जाओगे। भाई मैं तो जीत जाऊँगा, मैं थोड़ा सा तो होना ही पड़ेगा भाई। देखो आपका भाई तो मतलब कैमरा फ्रेंडली है भाई। एक मैसेज है, ऐसी कोई आंटी बुलाओ अपने शो पर। क्यों भाई? बहुत से भाई कह रहे ऐसी कोई आंटी बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी खाला को बुला सकता हूँ, आई विश वो आ सकती है, क्योंकि उनकी उनकी टोन जो है बड़ी कमाल की है मेरी खाला की ना, वो भी ऐसी ही बात करती हैं। उनको मैं डायलॉग ज़रूर सिखा दूंगा, शी हैज़ दैट रिदम ऑफ टॉकिंग नो। अरे भैया काली पीली पड़ गई, वो खींच खींच कर जो बोलती है ना, ओहो हो, उसमें मज़ा है भाई, उसमें फ्लेवर है। तो मैं सवाल दोहरा देता हूँ, सवाल मेरा ये है कि अगर आप बिग बॉस के घर पे होते तो क्या आप बिग बॉस जैसा शो जीत पाते, या कितना हफ्ते आप सर्वाइव कर पाते? ईमानदारी से बताओ, आप अपने आप को तो बेहतर जानती हो, तो आपको क्या लगता है आपका सर्वाइवल कितना होता, एक हफ्ते दो हफ्ते या ट्रॉफी उठा के निकलते? बिकॉज मैं अपना जानता हूँ भाई, मैं दो हफ्ते के बाद तो मैं मतलब मेरे झगड़े शुरू हो जाते, पक्की बात है, गारंटी गारंटी। और फिर मैं ऐसा मसाला देता ना टीवी पर लोगों को, ओए होए होए होए, या तो जीत जाता भाई, या बिना जीते भी ऐसा लगता कि यही जीता है। अफसर बहन ने मैसेज किया, लिखती है, एक घंटा। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं एक घंटे में आपका झगड़ा पक्का हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? अब मुझे लग रहा है अफसर बहन, आई थिंक वहाँ पे सारा का सारा अग्रेशन निकल जाता और दो तीन लोग जो होते वो कह नहीं झगड़ा नहीं, तो फिर कैसे एक घंटा तो सर्वाइव ज़्यादा कर लेंगे आप। मैं नाराज़ हो के आ जाती, अरे ये क्या बात है। लेकिन किससे नाराज़ होके आ जाती बहन, मतलब वाई? और एक और मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं भाई मैं बिग बॉस के घर में अगर होता तो मेरी शायद बहस सलमान खान से ही हो जाती। अरे नहीं होता ऐसा, मुझे पता है, बट कितने घंटे या कितने दिन सर्वाइव कर पाते, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। देखो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, बिग बॉस का फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, उसमें ना जितने हफ्ते आप रुकते हैं उसमें पैसे मिलते हैं भाई रुकने के, ऐसा नहीं कि आपको रुकने के पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो कितने हफ्ते आप सर्वाइव कर पाते हैं आपकी स्किल पे, ये बताओ। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई, भाई क्या हाल है भाई? अगर मैं बिग बॉस में जाता तो मैं ऐसे सेट होता कि क्या पूछो मत, क्योंकि खाना बनाना मुझे आता है, सोना तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, और मुझे तो वो हाथ जोड़कर सलमान खान खुद आकर मेरी रिक्वेस्ट करते कि भाई शो शुरू होकर ख़त्म हो गया, तुम जीत भी गए लेकिन मैं ना आता, पैसे भी अच्छे कमाता और सुकून से दिल में आता, बनाता खाता और आराम से जाता। ऐसे ही पब्लिक की तलाश है सैयद अली हैदर शाह साहब। भाई पहला कैंडिडेट तो मिल गया हमें। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, मिसेस अहमद हेयर कभी नहीं जीत पाती, रोकर या जलील होने से बेहतर है चुपचाप निकल लो। पर बहन मैं फिर भी जानना चाहूंगा, आप कितने हफ्ते सर्वाइव कर पाती हैं? एक हफ्ता एटलीस्ट अ वीक आई थिंक, एक हफ्ता तो रह लेती हैं, ऐसा तो नहीं है। तौफीक साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अलवकरा से। तौफीक भाई तो नहीं रुक पाते, मैं तौफीक भाई को जानता हूँ, तौफीक भाई नहीं रुक पाते बिग बॉस, बहुत ही इज टू शरीफ फॉर द शो। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई क्या हाल है भाई के?
2: भाई
0: एकदम बढ़िया चल रहा भाई,
2: भाई?
0: बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए क्या हाल है?
2: ठीक है, तेरे भाभी को छोड़ के आया हूँ, कल वापस।
0: चलो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में?
2: बस क्या छकास रे, चालू हो गया, क्या करें,
0: काम चालू हो गया,
2: काम चालू, दसवां में चालू, 10, 11, 12 पहला दूसरा तीसरा पांचवा।
0: अच्छा चलो मुबारकबाद, आई एम रियली रियली हैप्पी भाई आपके लिए, बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए।
2: आज 10 दिन के लिए लेके आता हूँ, फिर जाऊंगा दो महीने, फिर लेके आऊंगा 8-10 दिन के लिए।
0: ठीक है बढ़िया है,
2: आप नहीं है, कोई है नहीं ना, मुसीबत है, फैमिली कोई नहीं है ना, इसलिए मुसीबत।
0: अरे कोई बात नहीं, आप तो कल्ले कल्ले काफी हैं भाई, क्या टेंशन है, आपको कोई परेशान थोड़ी कर सकता है।
2: दुबई में है
0: क्या क्या? अरे आपको कोई परेशान थोड़ी कर सकता है,
2: उम्रा भी कर लेती है क्या, फिर घूम लेता।
0: अच्छा ठीक है मेरा भाई, आपको मुझे पता है कि अपनी बात करनी, इस टॉपिक पे तो कोई बात करनी नहीं है आपको, है ना?
2: तू
0: कोई बात नहीं, चलो ठीक है। देखो अभी बाकी पब्लिक को टाइम देना, सुनो सुनो मेरी बात, सुनो मेरे भाई बा इज्जत, मैं आपसे कह रहा हूँ, सुन दो, अरे सुन लो, अरे अरे मेरी जान सुन लो, बाकी लोगों को मौका देना भाई क्योंकि शो का फॉर्मेट है, और बाकी अपनी बातें करनी तो आप मैसेज कर देना मुझे, ठीक है?
2: मैसेज मेरे को आता नहीं है ना।
0: कोई बात नहीं, फिर वॉइस नोट भेज देना मुझे, ठीक है?
2: नोट भेजूं?
0: हाँ नोट भेज देना, नोट भेज देना, क्योंकि भाई हमारा टॉपिक कुछ और चल रहा है, मैं उस पे हटना नहीं चाहता उस चीज से, ठीक है?
2: अच्छा टॉपिक मैं सुन लूंगा, तो तेरा टॉपिक क्या मैं देखता हूँ, ठीक है?
0: ओके ओके डन, चलो ख्याल रखो अपना, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो इनके बाद एक और मैसेज आया कि इनकी वाइफ आ गई, नहीं इनकी वाइफ चली गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं ये, क्योंकि इनको ज़्यादा स्ट्रेचिंग का मौका दे देता ना मैं तो अभी बहल जाते वो। एक मैसेज है, जब तक सल्लू भाई का ऑटोग्राफ नहीं मिल जाता रह लेंगे, ये हुई बात, क्या बात है। ये मैसेज अहमद ने मैसेज किया है, और इनके बाद एक और कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम कबीर भाई,
0: क्या हाल है भाई के?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अरे शो के मेन कैरेक्टर को तो आपने टॉपिक ही डिस्कस नहीं कराया
0: भाई, वो डिस्कस कुछ नहीं करते, उनकी गाड़ी जो है ना वो हमेशा एग्जिट मिस कर देती है भाई, तो कहीं से कहीं चला जाता मामला।
3: अगर ये देखो मैं बता रहा, अगर ये शो में रहना तो जितने लोग बोल रहे ना मैं जीतूंगा मैं आऊंगा, वो कोई नहीं आएगा।
0: क्यों भाई?
3: नहीं आएंगे
0: तो आपको आपको क्या लगता है, आपके सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं नदीम भाई?
3: देखो कभी ना अपन तो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं।
0: अच्छा कहीं पर
3: कहीं सा भी रूम कुछ भी हो, अपन अपना पढ़े रहते हैं, किसी से ज्यादा टेंशन नहीं, लड़ने पे आएंगे तो लड़ भी लेंगे।
0: हाँ।
3: तो अपना अपना सर्वाइवल तो एकदम मस्त है।
0: हाँ, चिल मूड कहीं भी, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब मुझे लगता है आखिरी हफ्ते
3: हर सब्जी के साथ आलू फिट हो जाता है, तो अपन आलू है, अपन कहीं भी घुस जाते हैं।
0: मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको जितना मैं जानता हूँ ना, भले ही ना जीतते लेकिन आखिरी हफ्ते तक तो रह लेते आप बिल्कुल चिल मोड में,
3: घुस जाते मतलब। हाँ ठीक है, लोग पसंद कर लेते हैं इतना तो गारंटी है।
0: हाँ निकलने के बाद देखे थे कि यार वो नदीम बहुत बढ़िया था यार।
3: हाँ, लोग पसंद तो कर लेते एक बार शो में घुसकर। और वो मैं बता रहा था जी कमेंट पूछ रहे थे ना, तो वो मेरे को लगता है बिग बॉस ही छोड़ छोड़ के चले जाते हैं अगर ये जाएंगे तो। क्योंकि जो आपके शो के अंदर जो होता है ना कभी कभी,
0: हाँ।
3: जब पारा चढ़ा हुआ होता है तो बिग बॉस के साथ वैसा हो जाएगा, तो बिग बॉस बोलेगा मैं शो ही नहीं कर रहा मैं जा रहा
0: है ना। ये मेरे साथ तो है, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मेरा मामला चलता है ना कोई तो भिड़ी जाता है। तो हमारा शो बिग बॉस से कम थोड़ी है, सारा मसाला है भाई हमारे पास, पर बस
3: कबीर का दरबार।
0: दरबार, अरे यार ये थोड़ा सस्ता वर्जन लग रहा है भाई बिग बॉस का, नाम चेंज करना पड़ेगा ना दीपा। दरबार देखो तो सही। अच्छा लेकिन एक एक बात तो है, आपका ये तो है झगड़ा तो नहीं होता नदीम भाई, होता क्या मुझे लगता
3: मेरा है। क्या है पता है, बाकी चीजें सब कर लेते हैं, सब में सेट हो जाता, एक मेरी दिक्कत आती है वो टास्क में।
0: टास्क में दिक्कत आती
3: है वो? हाँ क्योंकि अपन इतने आलसी है ना साला, टास्क करने जानता है लोग ऐसे ऐसे टास्क देते और दिमाग खराब हो जाएगा बंदे का।
0: पर मुझे लगता है वोटिंग से बच जाते भाई, मुंबई वालों से वोटिंग करवा लेते आप और सिंपैथी में जीत जाते।
3: है ना जैसे अभी अपना पता, आपको पता होगा शायद स्काउट ओपी गया हुआ, कह रहे हो तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, अपन भी करवा लेते गेमिंग कम्युनिटी से कि भाई हमारी भी गेमिंग कम्युनिटी है करो।
0: ये भाई आप तैयार लग रहे हैं मुझे नंदी भाई, आप तो अभी से तैयार लग रहे हैं मुझे, तैयार हैं आप कुछ करें इस चीज का। मुझे लग रहा है जिस दिन आपने स्ट्रीमिंग चालू कर दी आपको कॉल आ जाएगी सीधा सलमान भाई की, आ जाओ भाई साहब बिग बॉस में। लग रहा मुझे। अरे यार पर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने के लिए, और मुझे पता है कि
3: यार एक बंदा अपने को ऐसा चाहिए साथ में, जैसे अभी यंग और स्काउट है वैसा एक बंदा चाहिए।
0: हाँ मतलब साथ ही चाहिए,
3: सर्वाइवल और आसान है,
0: एनर्जी मैच करने के लिए चाहिए, थोड़ा पंप देता रहे बीच
3: में। बस एक बंदा चाहिए जिससे सिंक्रोनाइज हो जाए बस, फिर तो कितने भी महीने रख लो।
0: चलो फिर भाई चलते हैं, फिर मैं भी आपके साथ चल लूंगा भाई, देख लेंगे कितने भी होंगे। डन हो गया नदीम भाई, फ्यूचर प्लान डन है हमारा। ठीक है भाई, ख्याल रखो।
3: एक बंदा प्रिंस भाई जैसा।
0: नहीं नहीं नहीं प्रिंस भाई पता, अगर प्रिंस भाई चले गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है।
3: हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। लफड़े ज्यादा के वो जो वो मतलब वो एक दो बंदे वैसे होते हैं ना कि अपना बहुत ज्यादा सेंस केयर करते हैं, तो हाँ। उनको अगर वो सामान नहीं मिलेगा टास्क के बाद तो लफड़े हो जाएंगे।
0: अगर
3: मेरा सामान कम करवा दिया,
0: अगर प्रिंस भाई को रखा ना बिग बॉस में तो रील्स बहुत बनेंगी बाहर मसाले के लिए ना, रील्स बहुत कटेंगी, वो मटेरियल होंगे मसाले के लिए, लिख के दे रहा हूँ मैं, है ना?
3: हाँ ये बात है। वो मतलब हर शो में मेरे को ऐसा लगता है कि एक जन ऐसा आता है ना जो अपनी सेल्फ केयर बहुत ज्यादा

0: फैसला करता है।
1: हाँ।
0: तो वो फिर वो बिग बॉस जानबूझ के उनको सामान उनका ही कम कर देते हैं कि यार तुम लोगों ने टास्क में ऐसा किया था, अब ये सामान तुमको कम मिलेगा, फिर वो लफड़ा करता है बाकी लोगों से।
1: ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है आपने। मैं तो अगर प्रिंस भाई भी सुन रहे हैं, प्रिंस भाई आप कुछ करो भाई, आपको बिग बॉस में होना चाहिए। मजा ही आ जाएगा भाई। आपने तो यही आप यहाँ पे कतर में शुरू करना चाहिए बिग बॉस, सीरियसली। मेरे पास तो है पब्लिक सुबह वाली कि मैं अपने शो में से ही टॉप 5 निकाल के दे सकता हूँ सीधा बिग बॉस को। मजा आ जाएगा भाई। और एक जुल्कानन भाई को रखेंगे बिग बॉस।
0: वो भी सही है, वो भी
1: है ना। अरे
0: बहुत टाइम से आए नहीं वैसे जुल्कानन साहब, बहुत टाइम हो गया उनका।

0: بيت
1: ठीक है भाई अल्लाह के वरना ओके भाई लाफिस तो नदीम भाई ने एक विचित्र मुझे आईडिया दे दिया है और मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया आईडिया है एक ना पीरी ये वालेकुम अस्सलाम राज भाई ने मैसेज किया है कल से उसी भाई एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम मैनिपुलेशन मैनिफेस्टेशन करके 4 वीक्स काम चल जाता वाइल्ड कार्ड में फिर एंट्री मारने की कोशिश करता आई वुड ट्राई टू बी एज आई ट्राई टू बी देयर एज मच एज पॉसिबल ये जज्बा चाहिए खाजा भाई मैं आपके साथ हूँ भाई आप मुझे भी ले चलो बहुत कमाएंगे भाई जाके एक कॉल आ रही है अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि
1: क्या हाल है
2: अल्हम्दुलिल्लाह
1: जी मेरा भाई बताइए
2: बात कर लीजिए बच्चों से
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
3: अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है जहाँ बना क्या हाल है तुम्हारे नहीं नहीं कैसे भूल गया मैं भूल ही नहीं सकता मैं क्या बात कर दी अच्छा ये बताओ बिग बॉस देखते हो क्या
3: हाँ?
1: बिग बॉस देखते हो
3: मेरे डैडी दिखते हैं अच्छा, मेरे डैडी है अभी
1: तो अच्छा तो डैडी के साथ बैठ के देखते हो डैडी भगा देते हैं कि ये मत देखो क्या सीन रहता है घर पे
3: नहीं नहीं नहीं अगर अगर कहीं ऑफिस जा रहे रात में तो होमवर्क कर लो बोलते फिर उसके बाद अगर फ्राइडे रहा तो कुछ काम बच गया तो ले लेके जाते फ्राइडे को ले लेके जाते कुछ काम हो गया छोड़ दिया
1: अच्छा नहीं पर मुझे मैं एक बार बताऊं मुझे लगता है कि बेटा आप तो बिग बॉस में जरूर होते हैं आप जीत जाते हैं मुझे पूरा यकीन है क्वालिटी है आपके अंदर मुझे पूरा यकीन है कोई शक नहीं है मुझे बेटा आप अच्छा क्या सीन चल रहा है अभी आज क्या है स्कूल में कुछ खास है
3: कल मार्क्स मिले थे आप कॉल ही नहीं करे
1: अरे रे कल नंबर मिल गए कितने कौन से सब्जेक्ट के नंबर मिले
3: तो मैं 45 से ऊपर है
1: क्या बात कर दी यार ये तुम्हारे लिए ये। क्या बात है कि सब में 45 से ऊपर आए
3: 50 पे आए 50 के अंदर आए
1: वेरी गुड यार वेरी गुड वो जो हिंदी का पेपर था उसका भी आ गया क्या
3: उसका भी 49 आया उसका 49
1: बच्चे आपने मुझसे झूठ बोला
3: आप... से बच गया मैं उसके लिए
1: आज... बढ़िया तरीके से पास हो गए ना देखो 60 में से 49 इज अ गुड नंबर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बढ़िया नंबर है ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है तो सब 50-50 के आसपास 50 से ऊपर भी आए किसी में
3: नहीं 55.5
1: अरे मुबारक हो है बहुत बहुत मैं तालियां बजा रहा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह भाई कांग्रेचुलेशंस क्या बात है फिर तो पार्टी होनी चाहिए मम्मी पापा ने क्या बोला नंबर बताया मम्मी पापा को क्या बोला उन्होंने
3: अभी तो नहीं बताया अभी वो हम लोग को स्टूडेंट्स को सब पहले बताया कि चेक करो
1: अच्छा अभी नहीं बताया घर पे नहीं पता अभी
3: घर पे बताया
1: अरे यार
3: मार्क्स बुरे
1: अच्छा घर वालों के नंबर बुरे हैं ऐसा घर वालों को घर वाले ज्यादा नंबर चाहते हैं क्या मतलब 50 से ऊपर चाह रहे हैं क्या नंबर अच्छे नहीं है क्या उनके हिसाब से अरे रे
3: मेरे डैडी बोले कि अगर 58-60 आया तो मेरे को PS5 दिला दो क्या अभी वो हाथ से चले गया
1: अरे रे रे रे 59 पे दिला रहे 59 पे दिला रहे थे
3: दो मार्क्स होना था
1: हाँ
3: 2.5 होना था मार्क्स
1: अरे ना इंसाफी है खो दिया तुमने पता है जीतते जीतते रह गए ये क्या बात हो गई चलो कोई नहीं बेटर लक नेक्स्ट टाइम और जब नंबर घर पे पता लगे ना तो कॉल जरूर करना मुझे ठीक है उस दिन हम आराम से बात करेंगे ठीक है ठीक है
3: वैसे एक चीज पूछना था शाम में कौन बात करती
1: है शाम में कौन
3: बात करती है शाम में भी बात करते हो
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैं सुबह ही आता हूँ शाम में किससे बात कर ली तुमने शाम में कौन
3: नहीं पता नाम ही नहीं पूछा मैं भूल गया
1: अमिता अमिता
3: हाँ शायद
1: हाँ अच्छा हाँ शाम में
3: टीचर का डे था ना और टीचर सब हट गया
1: टीचर कौन टीचर
3: टीचर से बोला
1: क्या अच्छा ओके नाजिया नाजिया बहनों सर्वर को सुना क्या आपने हाँ आप समझा मैं टीचर से याद आया अच्छा ठीक है मैं बता दूंगा तुमने कॉल करके उन्हें याद किया था डन हो गया ठीक है ख्याल रखो अपना ओके चलो
3: बाय
1: बाय अल्लाह हाफिज़ अल्लाह

0: तो भाई ये लाडला जो है 2 नंबर से रह गया, नहीं तो उसने गेमिंग कंसोल जीत लेना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा था कि बिग बॉस के घर में अगर आप होते तो क्या करते, जीत पाते? एक भाई कह रहे हैं, समी भाई कहते हैं, मेरा मैसेज पढ़ा, मैं थोड़ा बिजी हो गया था भाई, तला भाई कर लेंगे, तला भाई जीत जाएंगे, तला भाई आखिरी में ट्रॉफी उठाएंगे, पूरी बात है। एक मैसेज है सैयद अली हैदर शाह साहब का, लिखते हैं कबीर भाई एक और बात, कुछ लोगों को तो बीवी के डर और दूरी से खुशी में बिग बॉस में लंबा सर्वाइव कर लेते। नो कॉमेंट्स ऑन दैट, आपके चक्कर में लपेटा जाऊंगा। एक मैसेज है अबू अहमद साहब का, मुझसे नहीं होगा, जैसा सब लड़ाई झगड़ा करते हैं मुझे नफरत है लड़ाई से। अबू अहमद भाई मैं भी कह रहा हूँ मत जाइएगा, आपके लिए नहीं है भाई। तो मैन कहती है अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं तो एक दिन भी सर्वाइव ना कर पाऊँ, क्योंकि घर जितना भी बड़ा हो एक बाउंड्री के अंदर रहना है सोच की भी एंग्जाइटी होती है। इन अमेरिकन एक्सेंट इन द एनवायरनमेंट यू नो इट्स वेरी टॉक्सिक। या ये तो मैंने ब्रिटिश एक्सेंट बोल दिया ना, सॉरी। ये एक्सेंट ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या कर रहा हूँ मैं, एक कॉल और आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई, खैरियत?
0: खैरियत भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाई क्या हाल है पार्टी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है भाई। बिग बॉस में मैं गया तो सब लोग मेरे को निकाल देते भाई बाहर।
0: क्यों निकाल देते आपको मेरे भाई?
1: मेरा जो मिजाज है ना एकदम सुकून वाला है।
0: हाँ तो आपके लिए नहीं है भाई मेरे। भाई आपको हैदराबाद के इंडियन आइडल में जाना चाहिए भाई। है? क्या बोलते हो पब्लिक?
1: इंडियन आइडल में जाना बोल रहे हैं?
0: हाँ वहाँ जाओ ना भाई।
1: अच्छा यहाँ खतर से निकले तो वहाँ जाएंगे
0: और क्या भाई, उसके लिए फिट हो भाई। बिग बॉस नहीं जाना आप बता रहा हूँ, मत जाना। और बताओ भाई सुबह सुबह क्या चल रहा है?
1: तो चल रहा है, मैं सुबह आपका शो सुनता हूँ जाते हो, दोपहर में सरवर भाई का सुनता हूँ।
0: अच्छा
1: तो ये बच्चा है ना सुबह आपको फोन करके परेशान, दोपहर में सरवर भाई का फोन।
0: नहीं भाई मेरी तो दोस्ती है भाई, मैं परेशान नहीं होता, बहुत बढ़िया इसकी मेरी दोस्ती पुरानी है।
1: कल सरवर भाई से बात कर रहा था बच्चा, मैं कल सरवर भाई को भी बहुत कॉल्स कर रहा था पर लगे नहीं।
0: अच्छा नहीं मैं तो वेट करता हूँ, मैं तो वेट करता हूँ उनका, ये सुबह मुझे कॉल पहले से करते आ रहे हैं बहुत पहले से, तो मैं वेट करता हूँ कब कॉल आएगी। तो मेरी और उसकी दोस्ती अलग ही, हम लोग नंबर भी डिस्कस करते हैं।
1: तो डेली सुन रहा हूँ आपको।
0: थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार आपको, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और सुनिएगा और भी, देखते हैं लोग क्या कहते हैं, बहुत प्यार भाई, थैंक यू, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। भाई की आवाज़ वैसे भी एकदम दूर से आ रही है भाई, एकदम मतलब ओए होए होए। और मैं पूछा था कि अगर आप बिग बॉस के घर में होते तो क्या सरवाइव कर लेते? ये मैसेज क्या है, हमारे माजू भाई ने कहते हैं, माज भाई डोंट फॉरगेट शेख हुसैन। हाँ नहीं शहजादा सलीम तो भाई ये नहीं सरवाइव कर पाते, सुम्बुल टीचर को भी, सुम्बुल बहन तो कह के गई है, मोना बहन सुबह सुबह कह रही है मैं तो ट्रॉफी लेके निकलूंगी सीधा। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, आज तक बिग बॉस का एक भी एपिसोड नहीं देखने का घमंड है, लेकिन आप जाएंगे तब देख सकता हूँ। मेरा भाई यार हाउ स्वीट ऑफ यू मेरा भाई। ये इश्तियाक अंसारी भाई कह रहे हैं आपका भाई जाएगा तो फिर भाई सब ताबड़ तोड़े हुए वहाँ पे। सुभाष भाई लिखते हैं बिग बॉस शो में मैं टॉप 5 तक तो पहुँच जाता क्योंकि मैं आग लगाने में एक्सपर्ट हूँ। आगे लिखते हैं औरों का झगड़ा लगा देता हूँ और साइड में बैठकर मजे लेता हूँ। भाई मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, बिग बॉस उनका नया लुक देख के बहुत इम्प्रेस हुआ तो मैंने भी बाल उड़ा दिए। सही है भाई, करना चाहिए कभी कभी ऐसी चीज़ें जो अपने लिए खास हो भाई, विद यू भाई। सुरजीत भाई लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे मैं? बढ़िया भाई। और कमाल भाई वालेकुम अस्सलाम, हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, अब एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: बढ़िया भाई, आप सुनाए भाई क्या हाल है?
2: मेरा नाम रियाज है
0: जी। रियाज भाई
2: आप जानते हो ऐसे न किसी बंदे को?
0: भाई मैं बहुत सारे रियाज को जानता हूँ, आप कौन से वाले रियाज है?
2: ये कुछ टाइम पहले आपका पड़ोसी हुआ था फिर आ गया।
0: कुछ टाइम मेरा पड़ोसी हुआ करता भाई, मेरी इतनी खतरनाक याददाश्त नहीं है। ये मुझसे पहलिया मत पूछो।
2: मैं वही रियाज हूँ जो सऊदी गया था।
0: अच्छा अच्छा वो वाले रियाज है, आप समझ आएगा ऐसा बोलने का भाई, ऐसा बोलने का। आप RAIRIAZ वाले रियाज है ना?
2: जी जी
0: हाँ, बस भाई स्पेलिंग से पता है मुझे। और बताइए रियाज भाई क्या चल रहा है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बताए क्या चल रहा
0: है? बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बिल्कुल
2: बिग बॉस का शो शुरू किया आपने,
0: तो भाई अगर आप बिग बॉस के शो में हो तो कितने हफ्ते सरवाइव कर जाते रियाज भाई, ईमानदारी से बताओ भाई।
2: मुझे मैं तो यार मतलब फिनाले में जाता या तो पहले हफ्ते निकाल लेते।
0: अच्छा या आर या पार?
2: क्योंकि आर या पार।
0: अच्छा क्यों?
2: मैं

0: Metori Șarară de Cartanat, jese Big Boss ko bolta agar himmat hai to samne aa jao.
1: भाई रहन दो फिर पे भाई मुझे एंड तक लग रहा है भाई चार दिन के अंदर भाई घर पे
0: नहीं मैं बिग बॉस को देखना चाहता हूँ कि ये पीछे ये कौन है इसके पीछे.
1: हाँ अच्छा ये देखना चाहता हूँ
0: वही है.
1: रियाज भाई आपके साथ एक विश करना चाहता हूँ क्योंकि बच्चा स्कूल पहुंचने वाला है. गुड मॉर्निंग कबीर भाई, आई एम अफान खान, आई एम गोइंग स्कूल विद हशीर. तो हशीर मैं आपका मैसेज पढ़ रहा था लेकिन अभी रियाज भाई कॉल आ गई थी, तो बहुत सारा प्यार है, ऑल द बेस्ट फॉर द स्कूल. अब बताओ रियाज भाई, तो आप जो है बिग बॉस को क्यों देखना चाहते हैं भाई? क्यों देखना है?
0: मैं देखना चाहता हूँ कि इसके पीछे कौन है, ये आवाज किसकी है.
1: अरे एक बंदा है वो मेरी तरह है, उसकी आवाज और उसकी शक्ल मैच नहीं होती भाई, जैसे मेरी मैच नहीं होती.
0: हाँ ये नहीं, एक बात है, ये रेडियो पे आवाज और मतलब ये मैच नहीं होती है, ये बात सही है,
1: है ना? हाँ वो मुझे पता है, वो मुझे पता है.
0: लग रहे
1: हैं. हाँ हाँ.
0: अब मैं अभी जैसे बिग बॉस में दिन को सोना मना है तो मैं जानबूझ के कभी कभी एक कोना पकड़ के सो लेता. वो जो कुकड़ू को बजता है ना, वो क्या बोलते हैं
1: उसको, उठाने के लिए अलार्म बजता है.
0: उठाने के लिए वो जानबूझ के करता, ऐसी थोड़ी बहुत जानबूझ के करता, या तो वायरल हो जाता लास्ट तक
1: भाई, वायरल
0: तो पहली
1: वायरल
0: पहले दो चार दिन में निकाल लेते कि भाई आपके बस.
1: नहीं आप जैसे लोगों की ही तलाश है बिग बॉस को मेरा भाई, आप ही तो मसाला है शो का. बहुत बढ़िया.
0: ये जैसे कहने का आइटम कम हो जाए उसको कहीं छुपा दो.
1: हाँ
0: किसी को पता ना चले.
1: मुझे पूरा यकीन हो गया बात करते करते, आप बढ़िया कंटेंडर हैं भाई बिग बॉस के लिए रियाज भाई, बहुत बढ़िया भाई.
0: नहीं तो 10 में तो आ जाऊंगा.
1: नहीं आ जाएंगे आपके साथ सर्वर भाई को भी रख देंगे भाई, दोनों उधम काट देना बिल्कुल.
0: सही है सही. नहीं आप भी साथ में होंगे, आपके बगैर होगा ही नहीं.
1: अरे मैं तो ट्रॉफी लेके जाऊंगा ना भाई.
0: ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? आप लेके जाओगे?
1: मैं लेके जाऊंगा ना भाई. चलो चलो मैं बिग बॉस और आप लोग खेल लेना उसमें, ठीक है?
0: चलो चलो
1: ठीक है. ठीक है रियाज भाई, बहुत प्यार भाई, थैंक यू,
0: बहुत सारा प्यार.
1: ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज. और रियाज भाई के बाद एक मैसेज आया हसन भाई का, लिखते हैं गुड मॉर्निंग कबीर भाई, नहीं भाई अपना एग्जिट जल्दी हो जाता. हसन भाई ने पहले ही बोल दिया. और कहते हैं आसिफ भाई, थैंक यू सो मच आसिफ भाई, करना पड़ता है कभी कभी, समझ रहे हो ना. एक मैसेज है, टॉप फाइव डोंट मिस, प्रिंस भाई, सुम्बुल बहन, स्कूल किड, तला भाई, मास, डू यू स्टिल विश टू कंटिन्यू. तो ये ख्वाजा भाई ने हमारे FM 107 के टॉप फाइव लिसनर्स निकाले हैं जो बिग बॉस के अच्छे कंटेंटर हो सकते हैं. नंबर वन पे उन्होंने प्रिंस भाई को रखा है, दूसरे पे सुम्बुल बहन को रखा है, तीसरे पे बच्चे को जो भी कॉल करता है हमारा, और उसके बाद तला भाई को, और फिर मास भाई को. मैं इसमें लिस्ट में और नाम जोड़ना चाहता हूँ भाई. इश्तियाक उस्मानी भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, सिर्फ तभी सर्वाइव कर पाता अगर मुझे बिग बॉस किचन का कैप्टन बना देते, मुझे लड़ाई झगड़े से सख्त नफरत है, इसलिए जब बाकी सब हॉल में चिल्ला रहे होते मैं चुपचाप किचन में बैठकर उनका हिस्से का पराठा और चिकन खा रहा होता, वो लोग TRP बढ़ाते और मैं अपना वजन बढ़ाता. क्या बात है. वो लिखते हैं आगे, जो जब दो लोग आमने सामने चिल्ला रहे होते मैं बीच में आकर कहता आपकी आवाज़ में वो दम नहीं है. इश्तियाक उस्मानी भाई, यू विल सर्वाइव टिल द लास्ट वीक, आखिरी हफ्ते में निकलते हैं आप, जहाँ तक मुझे लग रहा है. एक मैसेज है, हाय बिग बॉस, अगर मैं अपने घर में नहीं जीत पाता. क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सुनो भाई. और एक मैसेज है, बिग बॉस को देखने के लिए भी भाई को टपकना पड़ेगा. वालेकुम अस्सलाम हमारे जेज भाई, क्या हाल है भाई के. और इरफान भाई ने मैसेज किया, इरफान भाई क्या बढ़िया DP लगाई यार, मैं तो पहचान ही नहीं पाया. और वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, मेरे बच्चे चाहते हैं आई शुड बी इन बिग बॉस, मैं 100% सर्वाइव कर लेता, आई स्टार्टेड वॉचिंग बिग बॉस व्हेन पाकिस्तानी सेलिब्रिटी वीना मलिक पार्टिसिपेटेड. मुझे इरफान भाई, मुझे भी लगता है सर्वाइव कर जाते, आपके अंदर है भाई टैलेंट, कर जाते भाई. मास भाई कह रहे हैं, नो आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस, आई डोंट. भाई मास भाई आपके ऊपर नहीं है, ये पब्लिक वोट कर रही है आपके लिए मेरा भाई, आपके ऊपर थोड़ी है, आपको जाना पड़ेगा, कैसे नहीं जाओगे. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज क्या है, उज़ैर इकबाल भाई ने, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान. और फरद भाई कह रहे हैं, अगर क्या है बिग बॉस होगा वॉइस किसकी होगी, मेरी होगी भाई, अगर से कबीर भाई की वॉइस होती तो तला भाई तो आप की बात ही नहीं सुनते और हमेशा जेल में होते, क्योंकि सच सुन क्या कुछ सुनते ही नहीं, सीधा बोल जाते हैं मैं चला. सरवर भाई तो किचन संभाल लेते, आई थिंक क्या

0: अगर हमारे लिसनर्स में से बिग बॉस में डाला जाए ना, तो मेरे पास टॉप 5 कंटेंडर्स हैं, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कौन कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू।
0: क्या हाल है भाई के? क्या हाल है भाई के? मैं तो बढ़िया भाई।
1: भाई बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया भाई।
0: क्या बात है, माशाल्लाह। आप बताओ मेरे भाई,
1: टॉप 5 लिस्ट तैयार हो गई?
0: मैं वो लास्ट में बताऊंगा, पहले आप बताओ आप सरवाइव कर लेते कि नहीं सरवाइव करवाते बिग बॉस का घर, ये बताओ।
1: हाँ, 2-4 हफ्ते तो कर लेते भाई साहब।
0: 2-4 हफ्ते कर लेते कि क्या वजह रहती है आपकी, क्या आपको निकाल दिया जाता, क्या लगता है आप?
1: चुगली करके लड़वाता रहता मैं तो भाई साहब, देखता लड़वाता रहता, मजे लेते रहता। 2-4 हफ्ते तो सरवाइव करते रहते।
0: ओके ओके, मुझे लगता तो है कि आपका आपका सर्वाइवल 2 हफ्ते तो रह जाता। वो था ना, वो चुपके चुपके से सर्वाइव कर जाते हैं, लोग आंखें खोलते हैं थोड़ा टाइम बाद, वैसा सीन रहता आपके साथ।
1: लड़वाते रहते भाई साहब लड़ाई, क्योंकि लड़ाई करवाना तो कंपलसरी है ना वहाँ पे, इधर से इधर, इधर की उधर करना, उधर की इधर करना।
0: हाँ।
1: भाई साहब मजे लेना, बाद में बैठ के हंसना, हा मजा आ रहा है।
0: ओके ठीक है, तो आप तो सरवाइव कर जाते, वेरी गुड वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। और बताओ भाई, सवेरे सवेरे क्या हो रहा है?
1: सवेरे सवेरे अब मैं कह रहा हूँ भाई साहब, जब अगर आपके जो टॉप 5 जाए ना, तो किचन जो है सरवर भाई को नहीं देना है बिल्कुल भी।
0: नहीं, मेरी लिस्ट में सरवर भाई को मैंने रखा भी नहीं है, बिकॉज आई नो कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे बिग बॉस के घर, मैं जानता हूँ उनको। वो आदमी ना अलग इमोशनल एंगल पे हैं, वो बेचारा नहीं कर पाएंगे सरवाइव। पर मैं जानता हूँ कि मेरे लिस्टनर्स में से कौन कौन है जो टॉप 5 सरवाइव कर जाएंगे, बन सकते हैं, वो मैं बताऊंगा भाई कुछ देर में। ये मैं जरूर बताऊंगा, बहुत तगड़ी लिस्ट है भाई मेरे पास, 5 से ज्यादा भी हो सकती है। डन है भाई, बहुत प्यार भाई, थैंक यू सो मच। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शहजादा सलीम ने मैसेज किया, बिग बॉस में मेरी एंट्री लाजमी है। भाई आप तो बिल्कुल होते शहजादा सलीम, बिल्कुल होते आप, एंटरटेनमेंट क्वेश्चन होते हैं उनके। जमाल भाई ने भी अपनी अर्जी डाल दी, कहते हैं मैं उर्दू सिखाता सबको। अरे भाई मेरी लिस्ट में नाम जुड़ते ही चले जा रहे हैं। मैसेज, बिग बॉस की आवाज़ निकालो गब्बू भाई। भाई मेरी आवाज़ इतनी वो नहीं है, हैवी नहीं है। मैं तो भूल भी गया, कॉपी कर लूँगा अगर मैं थोड़ी सी सुनूंगा तो। एक मैसेज है, माज यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, डू यू स्टिल थिंक लाइक दैट? अरे आपने कह दिया तो इनको खाजा भाई रखेंगे हम, कहाँ भागेंगे। एक मैसेज, इरफान भाई के नंबर की वजह से वोट आउट कर देंगे। मोइन भाई कह रहे हैं इरफान भाई का वोट आउट इसलिए होगा, कहेंगे गाड़ी का नंबर इनका बहुत बुरा है, इनको बाहर रखो यार। इरफान भाई आप टाइम आ गया भाई नंबर प्लेट बदलने का, भाई थोड़ा खर्चा करो भाई नंबर प्लेट पे, आप ये दुनिया जो है ना छोड़ेगी नहीं। एक मैसेज, कबीर भाई फिलहाल तो मैं अपने बिग बॉस को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, आप ही ले आओ अपने हिसाब से। जावेद भट्टी साहब ने तो सीधा भैया हाथकटा कर दिए। और शब्बीर भाई आप बताओ, शब्बीर को मैं जानता हूँ पर्सनली, आई थिंक बिग बॉस में शब्बीर भी सर्वाइव नहीं करता। ये लड़का थोड़ा अलग हुआ है, इमोशनल है लड़का अंदर से, यो मैंने देखा भाई। और ये कह रहे हैं इरफान भाई को नंबर प्लेट के कारण फर्स्ट वीक में निकाल देते। एक कॉल आ रही है, रुक जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: और आसिफ भाई क्या चल रहा है भाई?
2: बिग बॉस चाहते हैं कबीर भाई।
0: भाई मैं ही बिग बॉस हुआ है।
2: आप अपना शो शुरू किया जाए।
0: मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर किसी दिन बजट हो गया ना मेरा, इंशाल्लाह मैं बना दूंगा एक शो, सही बता रहा हूँ मैं, मजे करा देंगे भाई लोगों के। हाँ
2: भाई, भाई भाई मैं तो फिर टॉप लिस्ट में आऊंगा पहले नंबर पे तुम्हारे शो में।
0: अरे क्या बात है,
2: तो आप भाई 5 तो ढूंढते रह जाना शो खत्म हुए तक का आपके।
0: पर मेरे को सच्ची बताओ, क्या आप मतलब बिग बॉस में रह पाते, सर्वाइव कर पाते? आसिफ भाई क्या लगता है अपने, आपको तो जानते ही हो कितना रुक जाते।
2: भाई मैं पहले बताता हूँ आपको, मेरे घर में ना बिग बॉस पगलू है सब।
0: हाँ।
2: भाई मेरी माँ, मेरी बहन, यहाँ तक मेरा पापा भी।
0: अच्छा,
2: वो लोग पहले मतलब बिग बॉस देखते थे तो मैं ऐसा रूम घर में घुसता था, मैं बोला मम्मी बंद करो यार झगड़े लफड़े हो रहे, कितने झगड़े लफड़े हो रहे, बाजू में भी नहीं इतने झगड़े लफड़े होते।
0: हाँ।
2: तो भाई जब फिर मैं भी देखना शुरू किया तो मैं भी मतलब देखना शुरू कर दिया, मगर अब ऐसा लगता है मेरे को मैं सिर्फ 10-5 मिनट रुक सकता हूँ घर के अंदर।
0: अरे क्यों यार, ऐसी बात तो नहीं है, रुक तो जाओगे इतना देख लिया तो।
2: भाई हाँ। मैं फोड़ फाड़ दूंगा किसी को, सच्ची बता रहा हूँ। मैं अच्छा। अलग लेवल का बंदा बन जाऊंगा, मैं अंदर जाके बोलूंगा भाई तुम्हारी माँ का नहीं मांगता भाग।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, चलो ठीक है आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, एंड लेट्स सी कि क्या आता है इनका जवाब बाकी होगा। पर मेरी भी टॉप 5 की लिस्ट है जो मैं आखिरी में जरूर बताऊंगा।
2: बिग बॉस चाहते हैं आपको नॉमिनेट किया जाए।
0: बिल्कुल, नॉमिनेशन में देखता हूँ कौन कौन आता है मेरी लिस्ट में, कुछ लोग हैं मैंने पॉइंट आउट कर दिया, उन सबको मैं रखूंगा, देखो कितना बढ़िया बनाते हैं हमारे लिसनर्स में से, लिस्ट मेरे पास तैयार है। ठीक है,
2: चलो भाई ठीक है,
0: ओके मेरा भाई, चलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। एक मैसेज आया ताहिर भाई का, लिखते हैं ये जो मोटरवे के फास्ट लेन में 100 की स्पीड पर कार ड्राइव करते हैं उन्हें भेज दें, उन्हें दूसरों का रास्ता रोकना खराब करना खूब आता है। इसे ना हिंदी में कटाक्ष कहते हैं, कटाक्ष। ताहिर भाई बहुत बढ़िया बढ़िया कटाक्ष था। आयाज बलूच साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, स्कूल ड्रॉप टाइम, ऑल द बेस्ट। तला भाई कह रहे हैं कमोलिका निकल रही है सबके, हाँ पर तला भाई आपको पता लगा सुबह सुबह लोगों ने बोला कि तला भाई सर्वाइव कर जाते हैं, आई थिंक तला भाई जीत भी जाते हैं, इज़ वेरी गुड एट। एक मैसेज है आसिफ को बिग बॉस के गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करना। ये क्या बात है, अरे अरे अरे। एक मैसेज है शब्बीर का, लिखता है आई विल कम आउट एज विनर। नहीं भाई शब्बीर यार आप मतलब यू आर इंटेलिजेंट बट यू आर नॉट शातिर शातिर, आई नो यू आर पर्सनली भाई, ब्रो आपको मैनिपुलेट कर लेते यार, सीधे हो तुम इस दुनिया के लिए लाडली। एक मैसेज आया गुड मॉर्निंग कबीर भाई, आज तक बिग बॉस कभी नहीं देखा, नेवर, बट इफ आई वुड हैव पार्टिसिपेटेड आई थिंक आई कुड हैव थ्रोन आउट 4-5 ऑफ देम एंड देन आई माइट हैव किक्ड आउट, मे बी आई कैन सर्वाइव टिल द लास्ट बिकॉज आई कुड कंटिन्यू लिसनिंग टू द रेस्ट ऑफ देम विदाउट गेटिंग इन टू कॉन्फ्लिक्ट। सुदीप्त सर बिकॉज आई नो यू सुदीप्त सर, आई थिंक आपकी घर में इज्जत बनी रहती और आप लास्ट के एक हफ्ता पहले तब आपको शायद निकाल देते, बट आपको रखते लोग वोट आउट तो नहीं करते आपको, दैट इज वॉट आई फील। एक मैसेज है भाई टॉप 10 की लिस्ट बना लो प्लीज, हमारे कुछ लिसनर्स के दिल टूट जाएंगे, मैं बनाऊंगा अभी। रियाज बहन मैसेज किया भाई एक बात भूल गया, अगर प्रिंस भाई जाएंगे तो मेडिक्योर पेडिक्योर के लिए खिदमत के लिए अलग बंदा लगेगा। अरे वो मसाला होते भाई, रियाज भाई क्या बात कर रहे हो। फरहत भाई कह रहे हैं जमाल भाई सच में सीखना चाहिए, जमाल भाई सच में सीखना चाहिए, जोक सपाट। एक मैसेज है कबीर भाई तला फ्रॉम अलखोर, नहीं यार बिग बॉस में जब खुद को मज़ा नहीं आता तो क्या फ़ायदा रुकने का, पैसे मिलते हैं भाई, बढ़िया कमाई होती है, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो ब्रो। एक मैसेज है हाय कबीर, शुएब काजी साहब फॉर्मेट नाम की चीज़ होती है मेरी जान, तो आई एम सॉरी आई कॉन्ट रियली हेल्प यू विद शब्बीर, अरे अपना वाला शब्बीर माज भाई। एक मैसेज है भाई शाम में सिक्योरिटी, हाँ सलाम सिक्योरिटी गार्ड। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, ये क्या नाम है आपका, नाम नहीं पता मुझे इनका। एक और मैसेज है गुड मॉर्निंग, मेरा वोट तो नदीम भाई के लिए, आवाज़ सुनते ही हंसी आ जाती है। अरसलान भाई ने सीधा नदीम भाई को वोट दिया। वैसे अरसलान भाई क्या आप सर्वाइव कर पाते कि नहीं, और एक मैसेज मेरे बेटे का नाम, अच्छा आपने बेटे को ये मशाल नाम रखा आपने उसका, ये ऐसे ही पढ़ते हैं, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, बड़ा अलग किस्म का नाम रखा है आपने, मतलब ये मैंने कभी इससे पहले सुना नहीं, पंजाब में सुने मैंने 2-3 बार ऐसे नाम, पर बताइए मुझे अयाज बलूच भाई। वालेकुम अस्सलाम कमालुद्दीन शेख साहब, कैसे हैं भाई कमाल भाई, और मैं सवाल एक बार दोहरा दूँ, कह रहे हैं अरसलान भाई ये तारीफ थी ये बेइज्जती, कुछ समझ में नहीं आया, तारीफ थी भाई आपकी, ऐसी बात थोड़ी है। मैं सवाल दोहरा देता हूँ, मैं पूछ रहा था आप जो सुन रहे हैं मुझे, अगर आप बिग बॉस के घर में होते तो कितना सर्वाइव कर पाते ये बताइए आप, कितने हफ्ते आपकी कैपेसिटी है रुकने की। एक मैसेज है कबीर भाई, अगर तला भाई बिग बॉस क्या बिग बॉस जीत गए ना तो उनके अंदर सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि घर से निकलने के बाद जब वो FM 107 के स्टूडियो आएंगे तो नॉर्मल बात नहीं करेंगे, माइक ऑन होते ही चिल्लाएंगे बिग बॉस कभी ने मेरे शो का टाइम स्लॉट चुराने की कोशिश की, अभी इसी वक्त नॉमिनेट किया जाए। जीत तो जाते यार, अगले लास्ट वीक तक तो इनकी गाड़ी खिंच जाती ऐसा मुझे लगता है, तो आप डिसाइड कर लीजिए आप कितने हफ्ते रुक पाते हैं। बाकी हमारे लिसनर्स की जो लिस्ट है उसमें से एक लिस्ट मेरे पास भी है, कौन कौन से हमारे लिसनर्स बिग बॉस की लिस्ट में आ सकते हैं, डिजर्व करते हैं घर पे होना, बता दें जिंगल के बाद।

0: FM 107. Time check.
1: Check. घड़ी में हो रहे 7:02 एंड यू नो आप भी मेरा 7:02 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट यू ये 7:02 कहने में फील ही नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम जिन्होंने सवेरे ट्यून कर लिया। बात चल रही है बिग बॉस की। मैं कह रहा था कि अगर आप बिग बॉस के घर में होते तो आप कितने हफ्ते सर्वाइव कर लेते, क्या सीन रहता। तो माज भाई ने कहा शब्बीर जीत जाता। नहीं भाई मुझे नहीं लगता हमारा वाला शब्बीर जीत पाता। बाकी विमलेश भाई ने मैसेज किया है, वो कह रहे हैं माज भाई के लिए कि अगर माज भाई बिग बॉस में होते तो मैं भी बिग बॉस में होता। विमलेश भाई यू कुड हैव सर्वाइव्ड आई थिंक। आप रह जाते भाई लंबे वक्त तक रह जाते, कैपेसिटी है आपकी, कैपेसिटर मैं जानता हूँ आपका। मेहर अजीज भाई कह रहे हैं प्रिंस भाई जाते तो बिग बॉस से बाहर आकर कंटेस्टेंट बन जाते और प्रिंस भाई प्रिंस भाई जाते तो बिग बॉस खुद कंटेस्टेंट बन जाते और प्रिंस भाई को कहते भाई आप बिग बॉस बन जाइए कल से आप संभाल लीजिएगा। अब बाकी तला भाई कह रहे हैं प्रिंस भी लाइक टॉक टू माई हैंड। तला भाई इसलिए लोग आपको वोट दे रहे हैं, समझ रहे हो आप। सुभाष भाई कह रहे हैं फॉर श्योर बिग बॉस का नेक्स्ट वॉइस कबीर भाई हो सकता है। भाई यार हाउ स्वीट ऑफ यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत प्यार आपको। एंड मोना लिखती है, मोना बहन कह रही है वाइल्ड कार्ड बिनीश और श्वेता को भेजते, देखते कैसे टिकते विमलेश और शब्बीर। आई टेल यू व्हाट बहन, ये आपकी और मेरे गॉसिप की बात है, पर चाहो तो उस गॉसिप को फैला दो, आपको तो बताइए आपका भाई को डर को नहीं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप बिनीश जो कि हम जानते हैं उसको अगर भेज देते ना और बिनीश अगर लड़ाई में चिल्लाती तो ना तो श्वेता ना विमलेश ना शब्बीर कोई ना टिकता भाई। मैं तो खुद टीवी फोड़ देता मर 7:03 में दोहा वाला कबीर FM 107 पे। और मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप अगर बिग बॉस के घर में होते तो कितने हफ्ते आप सर्वाइव कर पाते। और कुछ देर में मैं लिस्ट बताऊंगा आपको कि हमारे लिसनर्स में से कौन कौन है जो मेरी टॉप 5 या टॉप 10 की लिस्ट में है जिन्हें बिग बॉस के घर में अगर रख दिया जाए तो भाई बढ़िया एंटरटेनमेंट मिलेगा भाई। बाकी तो मैं नू कह रहा था मैं तो हवा में हूँ भाई। एक मैसेज है फजल भाई हियर, क्या कह रहे हैं, मैं तो वेल प्रिपेयर्ड फॉर बिग बॉस, आई विल एंटरटेन एवरीवन। क्या बात है मेरा भाई, रेडी, मैं हवा में हूँ। सुभाष भाई वोट कर रहे हैं माज भाई को। मैं तो हवा में हूँ मनिंदर पुत्र, मैसेज कर देना भाई मारे धोरे

मैं भी भाई हवा में हूँ, ऑन एयर राइट नाउ FM 107 पे 76 बाय द क्लॉक। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ क्योंकि आई एम ऑल्सो ऑन एयर।

0: वेक अप।
1: क्या हाल है भाई साहब, 7:07 हो लिए और क्या चल रहा है। मैं तो ये कर रहा हूँ कि बिग बॉस के घर में अगर आप होते कितना सरवाइव कर लेते। इस बात पे लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया अपने अपने जो है बातें आगे रखी हैं। कुछ मैसेज मैं पढ़ देता हूँ पहले, तो एक सेकंड कोई मैसेज मिस ना हो जाए। वेयर इज प्रिंस भाई, ही वुड हैव डन वेल इन बिग बॉस। मुझे लगता है कि वो खुद ही बिग बॉस होते। मोना फैन, आई एम ऑल्सो सर्चिंग फॉर हिम, आई डोंट नो वेयर ही इज राइट नाउ, बट एज सून एज ही कम्स मैं जी कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। और अनीस भाई कह रहे हैं, अनीस भाई जामे वाले भाई, कर दो, कर दिया भाई। क्या हाल है अनीस भाई, और कुछ मेरा भाई। अनीस भाई बहुत सारा प्यार। जावेद भाई वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज है। कबीर भाई, क्या दौर था जब एक चिट्ठी लिखकर लोग हफ्ते हफ्ते अपनी फरमाइश का इंतजार करते थे, और एक आज का दौर है जहां सब कुछ बदल गया। लेकिन इस डिजिटल जमाने में लोग रेडियो को इस कदर जुड़े हैं और आपसे दोस्तों की तरह बात करते हैं, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और वक्त बदला, रेडियो का वही पुराना अपनापन आज भी जिंदा है। भाई मैं एक सीरियस बात कह दूं भाई, बीच में हंसी मजाक के, इश्तियाक उस्मानी भाई ने एक तो बहुत प्यारी बात कही है। मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ा इस मामले में खुशनसीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आई फील के मुझे, मैं बाकी भाई मैं सुन नहीं पाता, मुझे अपने शो का पता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसे बात करते हैं कि अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अपने भाई से बात कर रहे हैं। मुझे बहुत बढ़िया फील आती है भाई, मैं सही बता रहा हूँ, खून बढ़ जाता है कसम से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टू मेक इट लाइक दिस, दिस शो इज़ बिकॉज यू मेक मी फील दिस वे। सो बहुत सारा प्यार भाई को। बाकी जी मैसेज पर आ जाते हैं, कह रहे हैं भाई मैं सीधा इंसान कहाँ सर्वाइव कर पाता। ये तला भाई कह रहे हैं। तला भाई आप पे ना सिर्फ जुर्माना लगता बल्कि आप जीत भी जाते। यास भाई कह रहे हैं, अच्छा यास भाई थैंक यू सो मच, एक मैसेज है मेरा भाई, मेरा भाई और जमकर वाला भी प्ले करो बस, मैं निकालूंगा गाना। कहते हैं 8 साल से डिलीवरी कर रहा हूँ भाई, शुरू में बहुत दुख होता था, अब किसी चीज़ का ये बात से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे घर हो या बाहर। अच्छा एंड तक सर्वाइव कर लेंगे भाई, क्या बात है, यही तो चाहिए, यही जज्बा चाहिए। एक मैसेज, सलाम भाई मैं ट्रक हूँ और रोड पर हूँ। कि मतलब बासिम भाई, मैं ट्रक हूँ और रोड पर हूँ, ओके वॉट एवर यू से मेरा भाई। वालेकुम अस्सलाम करीम भाई, क्या हाल है। एक मैसेज, कबीर भाई मैक्सिमम 5 मिनट सर्वाइव कर पाता, किसी को ज़बरदस्त वाला तोड़ देता, हर टाइम लड़ता और सिर्फ बातें करता। भाई लड़ाई में बात नहीं, हाथ पैर चलाए बंदा तब मज़ा आता है। तो भाई आप 5 मिनट थोड़ी रुकते हैं बिलाल भाई, आप आगे तक जाते हैं। आपकी तो फोटो जो आपने DP लगाई है व्हाट्सएप पे, वो साफ बता रही है भाई कि आप 5 मिनट वाले नहीं हैं, आप तो भाई एंड तक जाते। खादिर भाई वालेकुम अस्सलाम, और एक मैसेज है, जबकि ज़्यादातर लोग एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इश्तियाक भाई आधे ज़्यादा लोग नहीं मिले एक दूसरे से, एंड दैट्स व्हाई मुझे बहुत खास फील होता है, आई फील स्पेशल कि आप लोगों को स्पेशल फील हो रहा है। बड़े कमाल का, ये बड़ी अजीब किस्म की मोहब्बत है। एक मैसेज है, माई वोट विल गो फॉर प्रिंस भाई, तला भाई। अच्छा ये सुदीप तो सर ने अपनी लिस्ट दी है बिग बॉस के लिए, अगर FM 107 पे बिग बॉस होता तो उसमें प्रिंस भाई हैं, तला भाई हैं, विमलेश भाई हैं और सुम्बुल महन है। एक्चुअली प्रिटी डिसेंट लिस्ट आई थिंक। खादिर भाई ने भी मैसेज किया है, वो कह रहे हैं कबीर भाई हु इज बिग बॉस, मैं वेरी वेरी सिंपल ब्रो, एक वैसे इसलिए तो कह रहा हूँ, डू अ मीट अप फॉर लिसनर्स। माज बेटे ये बजट कौन लाएगा बेटे, कहाँ करें हम। वैसे मैं तो 5 मिनट भी नहीं रुक सकता, अब्दुल करीम भाई कह रहे हैं। भाई मैं इतना तो समझ सकता हूँ आपका, थोड़ा सा सीन अलग है। मैं अब कॉल लेना शुरू कर रहा हूँ, और एक तो कॉल भाई मैं इनको कर दूँ, क्योंकि कहानी की तरफ भी बढ़ना है मुझे। कहानी के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया, जबकि बताना था मुझे, बट आई एम गोना टेल यू अबाउट इट इन अ वाइल। एक वैसे मुझे कभी ऐसे गेस्ट अपेयरेंस के लिए बुला लेना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे भाई।
2: वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है
1: आपके। तला भाई मैं तो बढ़िया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए भर भर के वोट आया भाई सुबह से।
2: भाई ये तुम ये ना लोग समझते नहीं है, तुम्हें मासूमियत में ले लेते, मेरे भाई सारे के सारे ना, बहन भाई जितने भी सारे बड़े मासूम लोग हैं। ये समझते नहीं है ये कलेशी औरत है, ये कबीर जो नाम का बंदा है ना, कलेशी औरत।
1: भाई मैं तो बिग बॉस हूँ ना, आप समझ क्यों नहीं रहे बात को।

0: मेरा तो काम है
1: भाई, तुम कमोली का भाई, तुम्हारा काम भाई पेट्रोल पंप का ओनर भाई, तो पेट्रोल आग लगाने वाली बला है।
0: वो वाला साउंड इफेक्ट लेके आ जाऊंगा, वो निका
1: भाई मेरे मुंह भाई दिमाग में चला है सुबह जब भी जब ट्यूनिंग किया ना,
0: हाँ।
1: ये टॉपिक सुना ना मैंने,
0: हाँ।
1: तो मैंने मेरे मुंह मेरे दिमाग में ही चला, मैं
0: निका कितने हफ्ते रुक जाते, मुझे लगता है आप जीत ही जाते, क्या कहते हो?
1: चल तो जाते हैं,
0: पर आपका मुझे लगता है शांति से नहीं गुजरता भाई, आपका आए दिन झगड़ा होता, पब्लिक वेट करती है आज तला भाई किससे लड़ेंगे।
1: यार देखो भाई, देखो पब्लिक मांग में, देखो जो पब्लिक मांगती है वो, भाई आप भी चला रहे हो दुकान, रोजी रोटी का सवाल है ना भाई। कर लेते भाई।
0: देखा मैंने कहा था सही सही कंटेंडर हो भाई, सही कंटेंडर
1: भाई, भाई यो यो ने बोला है मुंह का पीसा, मुंह का पीसा है ना, तो भाई मुंह का पीसा दिख रहा तो कुछ भी कर लेगा मैं।
0: क्या बात है भाई के लिए, भाई के लिए, भाई के लिए क्या सॉलिड बात बोले भाई। तो अपन तला भाई एक लिस्ट बना रहे थे, आपके हिसाब से हमारे लिसनर्स में से कौन कौन शामिल हो सकता है बिग बॉस की लिस्ट में, पांच बता दो जितने लिसनर्स आपने सुने
1: यार। देखो पहले तो सबसे पहले तो भाई मैं अपने आप को रखूंगा, सही है ना,
0: रखो हाँ।
1: प्रिंस आ जाए, मार आ जाए, और अपना सुम्बल मैडम आ जाए, सुम्बल मैडम ना आज, लेकिन वो डॉली वाली हरकत ना करे, बाकी बर्दाश्त हो जाएगी।
0: तो आप हो गए, मास भाई हो गए, प्रिंस भाई हो गए, और एक जो है वो क्या कहते हैं सुम्बुल बहन हो गई, और आई थिंक एक एक एक जुल्कनैन भाई को भी रखेंगे साथ में।
1: नहीं नहीं नहीं कौन से वाले जुल्कनैन, नहीं नहीं नहीं
0: यही तो मैं चाहता हूँ, मसाला, आई वॉन्ट मसाला ऑन द शो ब्रो, आई वॉन्ट मसाला।
1: भाई वो बेहतरीन बंदा है, मुझसे नहीं होगा बर्दाश्त, अच्छा तो उनका रख लो, अमीन भाई को रख लो जिन्होंने गाका था हमें।
0: हाँ हाँ सही है सही है सही है, उन्हें रख सकते हैं, यस यस यस, एक ऐसा भी तो बंदा चाहिए। अच्छा आइडिया है
1: यार, यही चल रहा है यार। एक बात बता, तुमने, मैं जो बदनाम हो रहा हूँ शो पे, ये भाई बोल रहा है मेरा एक, दाला भाई सुनते नहीं तुम्हारी, मैं सुनता क्यों, कम नहीं हूँ भाई तुम्हारी हर बात
0: भाई, मैंने कुछ कहा को नहीं भाई, मारा बस की कुछ नहीं भाई, ये मैंने नहीं कहा भाई,
1: भाई ये तो
0: गाड़ी में बैठे हुए सीट पीछे करके सोच रहे हैं, हाथ भी लगे यार बहुत इज्जत कमा ली यार, वक्त आ गया है थोड़ा सो लिया जाए।
1: मैं भाई जो है
0: काम लाया, सनन करके बेइज्जती करके निकल गया, सनन करके हो गया। और ये जो है एक और भाई है, वो कह रहे हैं कि इसमें शामिल कर देना चाहिए फवाद भाई को और इरफान भाई को भी, तो ये भी दो कंटेंटर आ रहे हैं।
1: इरफान भाई ना खर्चा नहीं कर रहे ना, मसला ये इरफान भाई की, आप हाँ। पिक्चर तो बड़ी अच्छी लगा ली इरफान भाई ने,
0: हाँ।
1: लेकिन अल्लाह का वास्ता थोड़ा सा नंबरों पे भी काम कर लेते, नंबर प्लेट वगैरह बेहतर हो जाता यार। इरफान भाई यार मतलब
0: बाकी से बढ़िया इरफान भाई, यार नंबर बहुत बुरा भाई,
1: नंबर बहुत बुरा इरफान भाई,
0: चल रहा है बहुत बुरे लग रहे हो। ये लिस्ट अभी
1: उसके भी नंबर रात को मिटा रहे थे बैठे हुए, मिटा दो दिखने नहीं चाहिए।
0: इरफान भाई हंस भी रहे हैं क्योंकि, पर मैं सच बता रहा हूँ इरफान भाई इज अ ग्रेट कंटेंडर, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मजे आ जाएंगे आपको बिग बॉस के घर में आ गए तो। हाँ ये बात पक्की
1: है, इरफान भाई ने वही छपरी बना दी थी एक वक्त पे।
0: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके मेन नेमेसिस है आपके लिए।
1: भाई बीकअप रख लो, कसम बोला कि मुझे अपनी ना छवि क्लियर करनी है, परसेप्शन क्लियर करना है, मैं अच्छा खानदान हूँ भाई, अच्छा बंदा हूँ भाई, अच्छा पहन लेता हूँ थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं हूँ मैं कबूरी बिल्कुल ही।
0: हाँ
1: भाई बताओ भाई, तुम भी तो बता दो,
0: मैं आपके साथ जो हो रहा है उसके बाद मेरा फायदा हो रहा है ना भाई, मतलब मेरे शो में मसाला आ रहा है ना, तो मैं क्यों छवि क्लियर करूं, मेरे को बताओ।
1: अच्छा

0: मुझे शॉर्ट्स में लोग समझ रहे हैं, शॉर्ट और बनियान में घूम रहा हूँ।
1: फटी हुई वो भी। अरे यार थैंक यू सो मच यार तला भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार भाई, ख्याल रखो अपना। तो भाई लोग क्या है कि तला भाई के बाद जो अभी कॉल नहीं ले पाऊंगा मैं सीधा बहुत सारे मैसेजेस मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ। तो फवाद भाई का है क्या, फवाद भाई क्या हो गया, पक्का ड्राइव करते हुए टाइप किया इन्होंने। प्रिंस भाई वालेकुम सलाम, आ गए भाई प्रिंस भाई, मैसेज तला भाई से बजट का 50% लिया जाए क्योंकि पब्लिक ने उन्हें विनर घोषित कर दिया, बाकी के लिसनर्स 50% कंट्रीब्यूट करेंगे। इश्तियाक भाई सही कह रहा हूँ भाई, एक मैसेज है मैं, इन्होंने अपने आप को गया उस्मान मोहम्मद भाई ने मैसेज किया है। और मुना बहन लिखती हैं यू हैव एन अमेजिंग एनर्जी विच मेक्स अस फील सो वार्म एंड वेलकम, थैंक यू सो मच बहना, बहुत बहुत बहुत बहुत प्यार। काश ऐसी बात माज भी किया करते, लेकिन कड़वा मुंह ना आदमी का, कह रहे हैं माज अगर जाते बिग बॉस तो राशन का थोड़ा मसला हो जाता। फिकर देख रहे हैं आप कहाँ चल रही है, फिकर अलग फिकर चल रही है। और माज भाई वो नाम हमने वो डबल कोटिंग करके चेंज किया है, समझ रहे हैं माज भाई, डबल कोटिंग है। पर माज भाई कड़वे हो यार आप। एक मैसेज है कबीर भाई, आपकी लिस्ट में टॉप पर वो भाई होना चाहिए जिन्होंने आपको कहा था कि कॉल छोटी लिए करें, वो जो गुस्सा करके चले गए। हाँ वो तो होना चाहिए उसमें बहन, आई कंप्लीटली एग्री, उनको तो मैं ज़रूर रखूंगा इस लिस्ट में डेफिनेटली। और फरद भाई ने मैसेज किया है अस्सलाम वालेकुम तलाब वाले, वालेकुम सलाम की तरफ से। और तब उसमें लिखती है कांट स्टॉप लाफिंग कबीर भाई, योर शो रियली फील्स लाइक गैदरिंग ऑफ कजन्स एंड हैविंग फन ऑन एनी टॉपिक विदाउट बीइंग सीरियस, नो मैटर हाउ मच स्ट्रेस्ड वी ऑल गेट फ्रेशन्ड एंड लाफ बाय हार्ट बिकॉज ऑफ योर शो। बहन थैंक यू सो मच, दिस इज सो सो स्वीट ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए हैप्पी कि आप लोग इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और आपने जो कहा ना कि शो ऐसा लगता है कि सारे कजन्स बैठ के बात कर रहे हैं, दिल जीत लिया आपने पूरा, मतलब एक हुटर हो जाए भाई हमारे शो के लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जमाल शेख साहब कह रहे हैं भाई बिग बॉस की हैरत में डाल देंगे, आखिर तक भेज के देख लो। अरे आज क्या हो गया जमाल भाई। क्या कहा लिया आज। कबीर भाई डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, ऑफकोर्स एनी डे ब्रो। एक मैसेज तला भाई इज फन एंड कॉमेडी एलिमेंट इन बिग बॉस, माइट एज वेल विन द शो ब्रो। और माज हमजा भाई कह रहे हैं ऑन आर ईजिली तला भाई बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ ना, बिल्कुल सही बात है। एक में से अगर कबीर कमोलिका तो इरफान वीना तो तला भाई रागी सावंत। अरे भाई मुझे क्यों तोड़ा इरफान भाई, मुझे क्यों तोड़ा आपने, मैंने क्या किया। कह रहे अगर कबीर कमोलिका तो इरफान वीना और तला भाई रागी सावंत, वॉट इज इज यार। अरे रे रे रे रे रे। ओह मुझे क्यों लपेटा अचानक से, मैंने क्या किया। एक मैसेज मैं क्यों लपेटा जा रहा हूँ माज भाई, एक चीज होती है भाई कर्म, ठीक है वो लौट के आते हैं भाई। समझ रहे तो वही है भाई, है ना, समझ रहे होंगे आप। बाकी जो है भाई मैं एक हमारे ये फवाद भाई हैं कुछ कहना चाह रहे हैं तो इनको भी ज़रा हम संपर्क साध लेते हैं। और एक मैसेज है मुझे बिग बॉस बना दो, अगर मैं कंटेंटर बना दो या फोकस ऑन विनिंग। अस्सलाम वालेकुम, बढ़िया फवाद भाई आप बताओ भाई क्या हाल है भाई के।
0: बिल्कुल सही है, जैसे ही आप क्या ऑन किया रेडियो आपने कहा 5 मिनट में क्या होता है, तो मैंने कहा ये कोई ना कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हो रही है।
1: मैं बताता हूँ शुरुआत से आपको। तो फवाद भाई मैं सबसे पहले सवाल ये पूछ रहा था कि आप जो सुन रहे हैं आपको क्या लगता है बिग बॉस के घर में कितना हफ्ता सरवाइव कर जाते, पहले तो आप बताओ ये।
0: आपको पता है भी नया नया पाकिस्तान में चल रहा है तमाशा है, तो मेरे बच्चे कह रहे हैं कि बाबा आपको भी आना चाहिए क्योंकि आग लगाने में आप सबसे ज्यादा माहिर
1: है। अच्छा तो बच्चों ने नॉमिनेट किया आपको। क्या बात है यार। पर मुझे भी ऐसा लगता है फवाद भाई यू कुड हैव मेड इट टू द लास्ट वीक, आई थिंक चले जाते आप भी आगे तक, है आपके अंदर कैपेसिटी, मैं जानता हूँ। छुपे रुस्तम है आप।
0: नहीं, वो बच्चे कहते हैं कि बेटा बाबा आप गेम भी है किस तरह खेलते हैं, जिंदगी मौत का सवाल है। और वैसे भी लड़ाई तो आप कर ही लेते हैं।
1: हाँ तो हर लिहाज से आपको जो है वो विजेता बनाने में लगे हुए। पर फवाद भाई आपको अगर 107 पे बिग बॉस करना होता तो 5 कंटेंडर कोई लिसनर्स के नाम आपको याद आते हैं जिनको आप रखना चाहेंगे बिग बॉस के घर में।
0: तला भाई है, माज है, प्रिंस है, कहते हैं क्योंकि अमीरी भी होनी चाहिए गरीबी भी होनी चाहिए, तला भाई गरीबी में आ गए, अभी तो उन्होंने बोला विनायक भट्टी भी है।
1: वो बेचारे कह रहे
0: हैं नहीं बनाने उनके लिए।

0: होता है भाई भाई के बारे में सोचता है, दिस इज सो स्वीट ऑफ यू मेरा भाई।
1: वो भी नेक्स्ट ले जाऊंगा जहां से मैं देता
0: हूँ। मेरी लिस्ट में आप भी हैं भाई फवाद भाई, वैसे तो आई स्ट्रांगली बिलीव भाई।
1: Yeah. पर एक बहन हमारी कॉल करती
0: है। हाँ, सुमुल बहन ना, वो तो
1: टोटके तो चाहिए ना, कमरे में टोटके भी चाहिए होते हैं ना।
0: ऑफ कोर्स वी वांट मसाला ब्रो, ऐसे थोड़ी शो बिकेगा, इसके लिए थोड़ा अपने को बनाना पड़ेगा, इट्स टू हैव सम एलिमेंट। वेरी गुड
1: चाचा जी।
0: नो कमेंट्स ऑन दैट ब्रो, कोई कमेंट नहीं करूंगा। यहां मैं पिघल गया भाई, यहां मैं डर गया आपसे। ठीक है, इतना सही है। तो मैं भी अपनी लिस्ट बताऊंगा।
1: बिग शो जो बिग बॉस है ना, तो ये कहते हैं होना कहाँ पे है?
0: ये भाई यहीं रख देंगे कहीं पे बीच में, जब जाड़े का सीजन आएगा ना भाई, जाड़े का सीजन तब रखेंगे कहीं पे। गर्मी में बाहर सेटअप नहीं करवाएंगे।
1: देखें यहाँ पे छुट्टियां सबको इतनी नहीं मिलती है।
0: हाँ, उस दो दिन का रखवाओगे क्या बिग बॉस? अब ये दो दिन फ्राइडे सैटरडे रखेंगे भाई।
1: हर दो घंटे बाद नॉमिनेशन, क्योंकि हफ्ते से ज्यादा छुट्टियां लेनी सबके लिए फिजिबल नहीं है सर।
0: आपके अंदर का HR जाग उठा गया भाई, क्या दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत क्या आ रही है भाई?
1: तो KPI होगा, KPO चल रहे होंगे, एवैल्यूएशन में आएगा, बिग बॉस पे गए थे।
0: मैं समझ गया आपका जो है, सवेरे सवेरे आज मन बहुत कर रहा है काम करने का भाई, आज लग रहा है जुझारू एम्प्लॉय जा रहा है आज ऑफिस। वेरी गुड ठीक है फवाद भाई, बहुत प्यार आपको, और आप मेरी लिस्ट में है ये आपको बता देना चाहता हूँ मैं, डेफिनेटली आप लिस्ट में रहेंगे भाई, बहुत प्यार आपको,
1: बहुत शुक्रिया।
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। तो इनके बाद जो है कुछ मैसेज और पढ़ता हूँ। प्रिंस भाई ने कहा है कि भाई मैं तो फोकस करता कि सीधा जीत ही जाऊँ अगर बिग बॉस ना बनता। कबीर भाई शो का क्या नाम रख लोगे? प्रिंस भाई आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। रेडियो का बड़ा भाई, समथिंग रियली फैंसी भाई। एक मैसेज है, इरफान भाई शुड ऑल्सो मस्ट बी इन द बिग बॉस। ये इरफान भाई के लिए वोट दिया है मुजाहिद बुखारी भाई ने, पूरा वोट कर रहे हैं उन्हें। अयाज बलूचिस्तान ने मैसेज किया, सरोवर भाई को भी डाल दो बिग बॉस में, ऑफकोर्स। और मोना फैन कह रही सीरान बीच पर रखेंगे बिग बॉस, और वेरी गुड आइडिया इनफैक्ट, बट जाडे के सीजन में। अमन भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग ब्रो। हाँ भाई, अंदर से पंजाबी हिरण भी सब निकल जाती है बीच बीच में। एक मैसेज है आया भाई का, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई जो लिस्ट में लोग अगर बिग बॉस में गए तो नेक्स्ट डे एक्सप्लिसिट लैंग्वेज कंटेंट की वजह से बैन कर दिए जाएंगे। नहीं, वो हम कहीं और चलाएंगे। एक मैसेज और आया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, गुड मॉर्निंग ड्राइविंग। राबिया जी ने मैसेज किया, राबिया जी थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, एंड प्लीज़ ड्राइव सेफली। और जमाल भाई यार राखी सावंत को बहुत इज्जत दे दिया यार, अरे अरे थैंक यू भाई। तीन और थी, तीन कहानी है ये, क्या बात हुई इरफान भाई, क्या अरे कहना क्या चाहते हो? एक मैसेज तला भाई के साथ, नाइंसाफी हो गई भाई। मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, नाइंसाफी अच्छी लगी मुझे। एक और भाई कह रहे हैं कबीर्स किंगडम, अरे क्या आइडिया है नदीम भाई, लाइक दी आइडिया बाय द वे। एक और कॉल ज़रा कर लेते हैं, उसके बाद वी विल मूव ऑन। अच्छा बाय द वे, आज की जो कहानी है ना, कमज़ोर दिल वाले ज़रा दूर रहे हैं आज की कहानी से, क्योंकि मैं किसी और से लड़ नहीं पाऊंगा आज दोबारा से। कोई फिर आ गया मुझसे चिल्लाने के लिए, ये क्या करती रहती हो, वो क्या बोलती रहती हो। तो इससे बढ़िया है कि भाई अगर सेंसिटिव हो ना आप सॉफ्टी, तो कृपया डिस्टेंस बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। 7:24 ऑलरेडी हो रहे हैं, और हमने कॉल लगाई है उस्मान भाई को, उस्मान भाई ने अगर उठा ली तो बात हो लेगी, नहीं तो दिक्कत को नहीं भाई। बेल तो जा रही है, बिनवल मैसेज पढ़ देता हूँ भाई। सिंस इट्स वॉइस बिग बॉस, क्यों ना बस वॉइस हो, आवाज़ें गूंजे बस। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम जनाब,
0: अरे आपकी आवाज़ तो सच में बिग बॉस वाली हो रही है भाई। क्या बात है,
2: माशाल्लाह।
0: ये भी सही है, कोई बात नहीं। आप बताओ मेरा भाई, आप कितना हफ्ते सर्वाइव कर जाते बिग बॉस में?
2: बस मैं इसका ना जो लिस्ट आप इकट्ठी कर रहे हैं लोगों की, माशाल्लाह सारे बड़े काबिल हैं, लेकिन शो का नाम चारों आप रखते हैं बिग अफसोस।
0: बिग अफसोस, क्या बात है, पर अफसोस काय को रखना है भाई, क्यों इतना सैड क्यों रखना है, हम तो कुछ अलग चाह रहे थे भाई।
2: नहीं, मैं इनको कुछ को मैं सुनता हूँ, जानता हूँ, कुछ लोगों को नहीं जानता, लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा है शो का नाम ऐसा ही होना चाहिए।
0: अच्छा ऐसा है क्या? ओके, और आप कितना सर्वाइव कर पाते?
2: मैं भाई नहीं रुक पाता एक हफ्ता भी।
0: एक हफ्ता नहीं रुक पाते? रीजन क्या है? व्हाई डू यू थिंक सो? भाई
2: जो अभी नाम ले रहे हैं शो में डोली और सारे, ये इस तरह कहाँ टिकेंगे हमारे जैसे छोटे करेक्टर है भाई।
0: अरे रे रे,
2: इतना लेवल
0: मासूम है भाई यार, माशाल्लाह कितना मासूम है।
2: अरे माशाल्लाह
0: माशाल्लाह। तो अभी यहाँ खुली है आपकी, नाश्ता वाश्ता कब हो रहा है भाई? फिर
2: नाश्ता भाई अभी तो बस बच्चों को ड्रॉप किया तो थोड़ा खुशहाली आई है गाड़ी में।
0: ले मैं आपकी खुशहाली में खलल नहीं डालूंगा, मैं चाहता हूँ भाई बढ़िया चाय वाय पियो भाई, और आप सुनो बढ़िया कहानी सुनूंगा आपको, मजे आ जाएंगे आपको।
2: ठीक है, बस एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बेटी उस दिन कह रही थी आपका मैं लगा देता हूँ एफएम सुबह में
0: जी,
2: तो वो छोटी बेटी है 6 साल की।
0: अच्छा,
2: तो वो मुझे अक्सर बोलती कॉल मिलाओ, तो वो कभी करता हूँ तो आप बिजी होते, वो कहना ये चाह रही कि इनको मिलना है। मैंने कैसे मिलेंगे, मैंने उसको टालने के लिए बोला, मैंने कहा भाई ये बेटा इनको पे करना पड़ता है,
0: अरे भैया
2: भाई उसको टालने के लिए बोला ना, तो ऐसे नॉर्मल से टालने करती ओके पे हिम।
0: आपने आपने मुझे विलन बना दिया यार बच्चे की नजर में, बताओ क्या इनको अंकल को पे करना
2: पड़ता है। नहीं
0: नहीं भाई बिल्कुल मिलूंगा भाई, मैं आपको गलत साबित करूंगा, आप कह रहे हैं तो गई यार सुमन भाई। मुझे नाम क्या है आपकी बेटी का वैसे?
2: मिरहा।
0: मिरहा नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम रखा है भाई। ऐसे नहीं करो यार, पता नहीं वो वाला अंकल बन गया जिसके बारे में माँ बाप कहते हैं ना बेटा अंकल देख रहे अभी मारेंगे।
2: शो की ये खासियत है या क्या, हम लोग को तो इस टाइम पे वो मूवीज भी देख रहे होते तो करेक्टर का नाम बाद में जाके पता चलता था, अभी एफएम पे आपको देखा नहीं कभी, तो उसको नाम से बोलती है मुझे कभी कॉल कबीर
0: भाई,
2: कबीर का शो लगाओ मुझे कबीर को मिलना है।
0: आज मैं जीत गया भाई, आज मैं सच में जीत गया भाई, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, सच्ची बता रहा हूँ मैं। बहुत प्यार भाई, आई विल कांटेक्ट यू भाई, मिलूंगा जरूर मैं डेफिनेटली
2: इंशाल्लाह। ठीक है
0: भाई, ख्याल रखो, बहुत प्यार भाई, ख्याल रखिए भाई। ये तो मामले खत्म हो गया भाई, आज तो अवार्ड मिल गया, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। थैंक यू सो मच भाई फॉर बीइंग टू काइंड एंड मेरे नाम की पर्चियां फट रही है मार्केट में भाई, कह रहे अंकल पैसे लेते हैं। ये क्या बात है यार? अभी मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बच्चे हैं ना, वो भी मुझे विलन बना देते हैं खामखा। मैं बैठा हुआ हूँ बच्चे को प्यार जता रहा हूँ, कह रहे अंकल जो है ना ऐसे शैतान है, अंकल जो है बहुत मारते हैं, ये क्या बात हुई? बट थैंक यू फॉर बींग सो काइंड भाई। मैं आज मुझे लग रहा है कि जैसे अवार्ड फंक्शन है, सारे अवार्ड मिले जा रहे हैं मुझे, तो बहुत प्यार। एक मैसेज अनीस भाई कहते हैं भाई ये सच है, मेरी बेटी भी बोली कबीर को लगाओ। भाई कैसी बात करती है, कोई ऐसी बात? आप ये मत कहना अनीस भाई उनसे कि ये अंकल पैसे लेते हैं मिलने के लिए। कितना अजीब हो जाएगा। एक मैसेज, शो का नाम कबीर बॉस का वेकअप शो, लंबा नाम हो गया खाजा भाई, इसको थोड़ा छोटा करते हैं लेकिन बढ़िया नाम है। और एक मैसेज आया आयशा का, वो कहती हैं सलाम भाई। वालेकुम सलाम बहन, नदीम भाई को भी रख लें लिस्ट में, और उन्होंने लिस्ट भेजी है मुझे, कहती हैं तला भाई, नदीम भाई, फवाज भाई, सुम्बुल एंड अमीन भाई मस्ट। कम्प्लीटली अग्री विद योर लिस्ट, दिस इज द बेस्ट लिस्ट। इरफान मैंने मैसेज किया है, लिखते हैं माई सेल्फ एज काम कंटेस्टेंट, भाई अब्दुल रऊफ को सब वाइड एंट्री आए। तला भाई जलेबी जैसे सीधे साधे भाई, वो पोइट्री वाले भाई। जमाल भाई हैव अ लवली डे और टू ऑल। छोटे इरफान कह रहे हैं 23 से 31 अक्टूबर तक बच्चों की ऑफ है, बनाना आइलैंड वेन्यू फॉर बिग बॉस। इरफान अली भाई ने सब सेट कर दिया दिमाग में। तला भाई कह रहे हैं सरोवर भाई तो एक्स्ट्रा खाना भी डालना, ये भी है बड़ा भाई ऑन एयर, ये भी अच्छा नाम हो सकता है, इट कैन बी लाइक यूज इन अ सर्टन वे। बट एनीवे मेरी एक लिस्ट है, बिफोर आई मूव ऑन टू द स्टोरी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बिग बॉस बनाते FM 107 पर और हमारे लिसनर्स उसमें शामिल होते तो उसमें एक तो मैं डेफिनेटली तला भाई को ज़रूर रखता, डेफिनेटली रखता, नदीम भाई को रखता, उसमें दोनों इरफान भाई को रखता, दोनों के अंदर बहुत चुलबुली टाइप की क्वालिटी है, नदीम भाई को रखता इसमें, मैं भाई साथ में जुल्कनन भाई को रखता, माज को रखता, विमलेश भाई को रखता, सुम्बुल बहन को ज़रूर रखता, और कौन कंटेंटर हो सकता है यार, एक दो जो मुझसे भिड़े हैं ना बीच बीच में उनको भी रख देता, वाइल्ड कार्ड एंट्री। और हम सब बाकी जो है दूर से देखते भाई, मज़ा ही आ जाता। एक मैसेज सरवर भाई का बिग बॉस में फूड मैनेजर रखना है, हाँ सरवर भाई भी होते बिग बॉस में, सॉरी वो भी होते, मेरा नाम भूल गया नहीं आयस बलूच साहब, आप भाई आप हमारी वाली लिस्ट में क्यों नहीं है आपको बताऊं मैं, कई मरतबा ऑडियंस बनने में फ़ायदा है भाई, इसलिए मैंने अपने आप को नहीं रखा बिग बॉस, मैं भी ऑडियंस हूँ। एक मैसेज है, मेरा वोट तो माज भाई को जाता है, दिन जैसा भी है जाए मॉर्निंग की शुरुआत कबीर भाई की वजह से हैप्पीनेस और लॉफ्टर से भर जाती है। थैंक यू सो मच भाई, भाई दैट मीन्स अ लॉट भाई, आज इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं ना मुझे, जीत गया भाई आज मैं। थैंक यू सो मच सुभाष भाई, थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड मेरा भाई, बहुत बहुत बहुत बहुत प्यार। और याया भाई कह रहे हैं चाचा को भूल गए, हाँ चाचा वो भाई उनकी भी वो नहीं, प्रिंस भाई को तो रखा है मैंने, नदीम भाई मेरी लिस्ट में है प्रिंस भाई, चाचा की वाइल्ड एंट्री। और एक मैसेज आया है आसिफ भाई का, और कह रहे हैं बहुत हार्ड ब्रो, एक नंबर है ना, अच्छी लिस्ट है ना, एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मिसिंग भाई, गुड मॉर्निंग भाई लिखना चाह रहे हैं माजिद भाई, टाइपो है मैं समझ सकता हूँ। हमजा भाई कह रहे हैं कबीर भाई आज वीकेंड का वार लेके आते, ये

ये भी है, कर सकते हैं हमजा भाई, मैं लेके आता वीकेंड का वार सुनते थोड़ी ये लोग मेरी। अच्छा एक मैसेज है, तनानना क्या ताना बाना निवास, जहां सुबह शाम सिर्फ ताना मिल, ये बहुत बढ़िया नाम है इस चाक उस्मानी भाई, ताना बाना निवास। अरे भाई भाई भाई डन डिसाइडेड भाई, क्या नाम दिया है भाई सुपर भाई, बहुत क्रिएटिव नाम है ये ताना बाना निवास, मैं भाई आपके साथ हूँ, एक नंबर। एक और भाई ने लिस्ट जारी करी है, कह रहे हैं टॉप फाइव डोंट मिस, प्रिंस भाई, सुम्बुल बहन स्कूल के बच्चा अच्छा, और तला भाई अनमास, डू यू स्टिल विश टू कंटिन्यू। और वैसे बहुत अच्छी लिस्ट है आपकी भाई, मान गए ब्रो, थैंक यू भाई। वैसे आसिफ भाई भी उस लिस्ट में होते हैं, क्योंकि होना चाहिए आदमी ना ग्रेविटी के लिए। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, इतने महंगाई इतनी बढ़ गई है, दुआ करें कुदरत से इसमें लगाम आ जाए। इरफान अल कासमी साहब अलग ही टॉपिक लेके आए के बीच में, आओ मैं तुम्हें महंगाई दिखाता हूँ। बट आप लोग लिस्ट से एग्री करते नहीं करते, आई डोंट नो, मैं तो ऐसी लिस्ट रैंडमली बनाई है मैंने, इसमें चेंजेस करते रहेंगे, मगर फिलहाल जो कंटेंटर मैंने बताया हमारे, ये एकदम सही है भाई। लिस्ट मिस हो गई, मैं बता देता हूँ आपको। सो उसमें तला भाई रखेंगे, प्रिंस भाई रखेंगे, नदीम भाई रखेंगे, दोनों इरफान भाई को रखेंगे, सरवर भाई को रखेंगे, और वो जो हमारे चचा हैं उनको रखेंगे, और एक दो जो मुझसे भिड़ के गए उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री दिला दूंगा, और हमारे एक भाई हैं जिन्होंने जिनके मैसेज बड़े अलग होते हैं, ये सैयद अली हैदर शाह, इनको ज़रूर रखेंगे। इतने प्यारे लोगों की लिस्ट डाली, आप होते तो हम भी होते। मुझे भाई आप हैं लिस्ट में, हाउस में बाहर नहीं जाना भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत प्यार आपको भी। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सैयद अबरार साहब का मैसेज है, मोहम्मद अमीन भी होते इसमें में से मुझे भी डाले आप अबरार भाई, थोड़ा सा जल्दी बाहर आ जाते मेरे साथ साथ इरफान भाई ग्रेविटी के लिए तो रखना पड़ेगा ना आसिफ भाई को कहते और मैं क्या, और भाई मैं सलमान खान की तरह बनकर आता वीकेंड पर, इन लोग शक्ति क्लास लगाता, ऐसा है ज्यादा हो रहा भी वो मेरा काम पे छोड़ दो ना। एनीवे अब मैं क्योंकि कहानी की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ आपको पहले बताता हूँ बिफोर आई मूव ऑन टूवर्ड्स द स्टोरी टुडे। भाई जिनके कमज़ोर दिल हैं, जो बैठे रहते हैं कि कबीर कुछ बोले और मैं उससे कॉल करके लड़ूं, तो प्लीज़ पहले भाई साहब साइड हो जाओ, इंडिकेटर दे दिया मैंने पहले, मैं नहीं चाहता कि आज इतने अच्छे माहौल में कोई भी आए। तो अगर आपका अगर आप थोड़े से कमज़ोर दिल के हैं तो आज की कहानी आपके लिए नहीं है। एक मैसेज, एक भाई उस शो में कॉल करेंगे और बोलेंगे ये शो जो भी है ना इंटरनेशनल शो है, आप ऐसी लंबी लंबी बातें नहीं कर सकते तवज्जो मैन, अरे क्या बात है, दिस इज कॉल्ड ट्रू कटाक्ष। यहाँ भाई कह रहे हैं भाई टैगलाइन फॉर द ऑडियंस ऑन एवरी ब्रेक, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू। अरे भाई टैगलाइन भी मिल गई भाई, ताना बाना निवास शो का नाम और टैगलाइन यहाँ भाई ने दे दी है, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू। भाई कमाल की जनता भाई सुबह की। एक बजे अस्सलाम वालेकुम भाई, तला भाई को सब है, वो एक टारगेट तो होना चाहिए ना बीच में, उन्होंने टारगेट बनाएंगे मोहम्मद भाई। और आपने कहा ऑडियंस की तरह देखूंगा, तो भाई मैं सलमान खान बनकर होस्ट करूंगा, कर लो भाई आप ही का शो है मैं बढ़ रहा हूँ कहानी की तरफ। तो एज आई मैंशनड, आज की कहानी छोटी ज़रूर है मगर कुछ है भाई इसमें खास जो आपको सुन के मज़ा आएगा। बट प्लीज़ सॉफ्ट दिल वाले इस कहानी से भाई सब थोड़ा सा दूरी बना के रखें, वन आर्म डिस्टेंस। आ रहे हैं दिलजीत, इसके उस पार सीधा कहानी है, 2:51 के बाद 7:35 बजे क्लॉक में दोहा वाला कबीर FM 107 पर।

0: ये चलता रहा और 2-3 महीनों से ये किस्सा चल रहा था। सबको पता लग गया था कि इस घर के अंदर, इस अपार्टमेंट के अंदर दो बुजुर्ग रहते हैं। बस इतना ही पता था। लोग बातें बड़ी करते थे, जैसे कि लोग करते हैं, आप देखते हैं ना, ड्रामे करते हैं कि अरे रे रे बेचारे बेचारे, कोई मदद करने आगे नहीं आता था। सेम सिचुएशन थी जूलियन की। और फिर आई तारीख 16 जनवरी 1960, दोपहर का वक्त था। 75 साल के ये जूलियन ओपीए बाहर से ग्रोसरीज लेकर घर की तरफ आ रहे थे, अपने अपार्टमेंट की तरफ बड़े। और ये अपार्टमेंट था टुलोन में। टुलोन जो है एक बेसिकली शहर है फ्रांस में। और ये अपने अपार्टमेंट के अंदर आए, उन्होंने काउंटर पे ग्रोसरीज का बैग रखा और अपने छोटे से बैग में से ग्रोसरीज निकालते हुए किचन की तरफ देख रहे थे, क्योंकि जैसे ही घर में आ गए थे ना, उनका दिल बहुत भारी हो गया था वापस। वो थक गए थे अपनी लाइफ से, इन्हें अपने किचन की तरफ देख रहे थे। फिर उनकी आंख से एक आंसू निकला, उन्होंने आंसू को पोंछा और फिर किचन में वापस काम करने लग गए। ग्रोसरीज को छांट रहे थे, कटिंग बोर्ड पे चॉपिंग कर रहे थे, वेजिटेबल्स बना रहे थे। वो बेचारे ऐसे खाना ढूंढते थे कि जल्दी जल्दी बना सकूं, कुछ ऐसा भारी ना बनाऊं। पर इतने में उनको अपनी वाइफ की आवाज़ आई, जो ऑब्वियसली मूव नहीं कर पा रही थी। मेरी 77 ईयर्स की थी, वो बेडरूम से आवाज़ लगा रही थी और उनकी आवाज़ बड़ी मफल्ड थी। वो पूरे सेंटेंसेज नहीं बोल पाती थी बिकॉज पैरालाइज थी। तो वो बेचारी वहाँ बैठी हुई थी वहाँ पर, वो भाग के गई, शायद कोई मदद चाहिए हो। तो उन्होंने देखा कि शी वॉज फाइन, मगर ये जो कई वक्त से जो मिस्टीरियस इलनेस है, जो बीमार हो गई हैं, उसकी वजह से अभी वो तकिया बट्टिका लगा के वो बैठी हुई हैं। एंड हो ही रहा था कि मियां बीवी में एक किस्म की चिढ़न पैदा हो गई थी, क्योंकि वो चिल्लाती रहती थी। हालांकि अब आप बोलेंगे यार उनका भी दर्द है, वो भी समझना चाहिए, पर वो चिल्लाती रहती थी। कभी कभार ऐसा होता था कि दोनों के बीच में अजीब झड़प होती थी। वो कहते थे तुम बाहर क्यों गए, और वो कहते थे खाना कौन बनाएगा। तो कहते मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे डर लगता है। और जूलियन कहते थे अगर मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा तो हम भूखे मर जाएंगे, क्या करेंगे। और ये दोनों के बीच में ये चलता रहता था और दोनों ही एक दूसरे को समझ सकते थे। वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, वो भी उस उम्र के पड़ाव पे आके जहां पे इंसान सोचता नहीं है कॉम्प्लिकेशन। पर जूलियन इस बीमारी की वजह से, क्योंकि फुल केयर टेकर बन चुके हैं, तो वो बहुत थक चुके हैं और डिप्रेस्ड हो चुके थे ओवर टाइम। एंड जूलियन ने सोच लिया भाई अभी बहुत हो गया। और जब वो गुस्से में आ रहे थे, मेरी जो थी उन्होंने बोला कि मत जाओ किचन में, किचन में पक रहा था सामान। जूलियन को बोला तुम मत जाओ, यहीं रुको। एंड जूलियन ने आर्ग्यू नहीं किया, ठीक है खाना जल जाएगा मेरी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बोला जल जाने दो। और बैठे रहे, बोले मेरे लिए पानी लेकर आओ। एंड जूलियन की बात हम लोग समझ नहीं सकते। आई कैन ओनली टेल यू कि जूलियन के साथ क्या हो रहा था, वो आपके ऊपर है, आप उन्हें किस तरह से लेते हैं। खैर जूलियन ने जो भी मदद वदद करी, उनको सुलाने की कोशिश करी, फिर किचन में गए, अपना काम ख़त्म किया। फिर रात के वक्त जो उनकी आदत थी इतने सालों की, उस आदत के मुताबिक वो आए बेडरूम में। मैरी को अच्छे से उन्होंने तकिए पर सुलाया और उस वक्त किताब निकाली और उनके लिए कहानी पढ़ने लगी, क्योंकि उनकी आदत थी कि अपनी बीवी को वो कहानी पढ़ के सुनाते थे। जब देखा कि वो सोने लगी है, उन्होंने देखा कि पिलो एडजस्ट हो चुका है, उन्होंने लैंप बंद किया और रूम से बाहर निकले। बाहर निकल के न जाने उनको कुछ एक चीज ने हिट किया। होता ना कि आपका दिल कभी कभार आपको कुछ ऐसा करने पे मजबूर कर देता है, एक इम्पैक्ट जो आपको पता नहीं कि गलत या सही है, बिकॉज दिमाग इस टाइम वाइट और ब्लैक में नहीं सोच रहा है, ग्रे शेड में सोच रहा है, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। उस सिचुएशन में थे जूलियन, तो वो अपने क्लोजेट की तरफ बढ़े और उन्होंने उस क्लोजेट में वहां पे से रोप निकाली, एक रस्सी निकाली, फिर एक चाकू निकाला और वो उस अंधेरे बेडरूम की तरफ गए। मैरी के पास खड़े हुए थे। फॉर अ मिनट उन्होंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, व्हाट एम आई थिंकिंग। उन्होंने लंबी सांस खींची और अपने हाथ जो उनके कांप रहे थे उन्होंने ऊपर की तरफ किया चाकू को, और बहुत हाथ कांप रहे थे। सिर्फ उम्र की बात नहीं थी, ही डिड नॉट नो कि वो क्या कर रहे हैं। एक किस्म का अपनी बॉडी से काबू छूट रहा था, ग्रिप जारी थी, और उन्होंने बस अपनी आंखें बंद करी, उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने चाकू को सीधा नीचे की तरफ लाए। ठीक इसी टाइम इत्तफाकन जो इनका पड़ोसी था, जिनकी बल्कि दीवार चिपकी हुई थी जो पड़ोसी था, इत्तफाकन अब दूसरे अपार्टमेंट में एक बंदा था, उसका नाम था रॉजर मोनकुसो। तो रॉजर साहब जो थे वो सोने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें एकदम से एक आवाज़ आई, और क्योंकि दीवार एकदम लगी हुई है साथ में, तो वो जो चीखने की आवाज़ थी वो बड़ी अनयूजुअल थी, और लेट नाइट आना तो बहुत अजीब थी। तो रॉजर जो थे एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते अपने बेड से भागे, उतरे, कूद कर और सीधा जूलियन के अपार्टमेंट की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजे को पीटना शुरू किया और आवाज़ें आ रही थी चीखने की लगातार, वो दरवाजे को पीटे जा रहे। जब उन्हें लगा कुछ नहीं हो रहा है तो उन्होंने फिर आवाज़ों के साथ साथ अपने कंधे से दरवाजे पे मारना शुरू किया, जोर जोर से मारा दरवाजे पे, और फिर फाइनली दरवाजा तोड़ दिया। जब वो अंदर की तरफ आए तो उन्होंने चीखों को, जो चीख उन्हें सुनाई दे रही थी, उसको फॉलो किया और सीधा बेडरूम की तरफ पहुंच गए। जब रॉजर बेडरूम की तरफ पहुंचे तो वो बिल्कुल जम गए, जैसे तुम जहां थे वहीं के वहीं रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने सामने वो चीज देखी जो किसी मिरेकल से कम नहीं थी। ही कुड नॉट बिलीव, वो क्या देख रहे हैं। तो हुआ क्या, बेसिकली जूलियन जो थे वो थक चुके थे अपनी लाइफ से। उन्होंने कहा बहुत हो गया, मैं और केयर टेकर नहीं बन पाऊंगा, मैं पहले इसको खत्म करूंगा फिर अपने आप को खत्म कर लूंगा। तो उन्होंने वो चाकू ऊपर उठाया, और क्योंकि उनके हाथ कांप रहे थे तो उनसे टारगेट मिस हो गया। उनका प्लान था कि वो चेस्ट की तरफ वार करेंगे उससे नाइफ से, लेकिन वो गलती से सर की तरफ लग गया चाकू, जिससे हुआ ये कि एक बहुत ही बड़ा शॉक पहुंचा मैरी को, बहुत ही गहरा शॉक। एक तो वो नींद में थी, ऊपर से ये अटैक। उस शॉक की वजह से, उस इंपैक्ट की वजह से वो बेड से लिटरली उठ के खड़ी हो गई, और उनके पड़ोसी जानते थे कि वो उठ नहीं सकती हैं, वो चल फिर नहीं सकती हैं। मगर राइट नाउ जब रॉजर बेडरूम की तरफ पहुंचा तो उसने देखा सामने, शॉक्ड था वो, कि मैरी जो थी वो ना सिर्फ खड़ी हुई हुई उस टाइम पे, उनका हाथ जो है उनके माथे पर है, एंड वो तो पैरालाइज थी। ये कैसे हुआ, ही कुड नॉट बिलीव, वो बड़ा कंफ्यूज था। और फिर उनको संभालते हुए, उनको बिठा के वो आवाज देने लगा, जूलियन। उसने देखा जूलियन जो है वो शायद अपने आप को शायद कुछ करने के लिए गया है, एंड एट द राइट टाइम वो पहुंचा और जूलियन को भी बचा लिया। तो डॉक्टर्स का इस पे क्या कहना था पहले वो जान लीजिए। डॉक्टर्स का ये कहना था कि मैरी कोई एक्टिंग नहीं कर रही थी पैरालाइज की, वो पैरालाइज थी, बट वो जो मेंटल ब्लॉक था वो मेंटल ब्लॉक ही था। मगर जब ये नाइफ उनके गलती से माथे पे पड़ा जूलियन के अटैक से, तो एक शॉक उनके सिस्टम में गया, उनका सिस्टम एक तरीके से रीसेट हो गया, और एक किस्म की बहुत पुरानी नींद से वो उठ के खड़ी हो गई। उनका पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया। जूलियन, क्योंकि ही वॉज वेरी हॉरिफाइड एट दैट टाइम, और वो अपने आप को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए तैयार थे, वो चले भी गए थे राइट टाइम पे, उनको भी रॉजर ने बचा लिया। मगर दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब आप सोचेंगे कि जूलियन ने जब ऐसा किया मैरी के साथ, लिटरली उन्हें डिलीट करने के लिए, बट हो नहीं पाया उनसे, तो क्या हुआ होगा, क्या कोई केस हुआ होगा? नहीं, यू नो व्हाट हैपेंड, कोई केस विस नहीं हुआ। इनफैक्ट मैरी और जूलियन की मोहब्बत और ज्यादा गहरी हो गई, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। इनफैक्ट दोनों के दोनों 20 साल और जिए एक दूसरे के साथ, एंड उतना खुश रहे जितना वो शायद पहले कभी नहीं रहे थे। एंड जो पड़ोसी था वो उनके लिए एक बेटी की तरह बन चुका था, बिकॉज रॉजर ने जब ये देखा तो रॉजर को रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ उनका पड़ोसी नहीं है, समवेयर डाउन द लाइन वो एक पर्सनल लेवल पे उनसे कनेक्ट कर पा रहा है, एंड उसको बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम पे कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो उसके बाद दे लिव्ड रियली रियली वेल टुगेदर एज लिटरल फैमिली, मतलब पड़ोसी होने के बावजूद रॉजर वॉज ट्रीटिंग दैम जैसे वो उनके माँ बाप हों, और वो भी रॉजर को ट्रीट करने लगे कि वो जैसे उनका बेटा हो। अब ये जो काफ़ी मॉर्बिड रीजन की तरफ से ये कहानी किधर की किधर गई, आई नो ये छोटी कहानी है, बट अंडरस्टैंड कुछ चीज़ें समझ के बिल्कुल परे होती हैं। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, हर चीज़ जो परफेक्ट ना हो, सॉरी जो परफेक्ट हो वही अच्छी हो ज़रूरी नहीं है। कई मरतबा जो इम्परफेक्शंस होते हैं, इम्परफेक्ट स्टोरीज़ होती हैं, वो ज़्यादा आपके जहन पर इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं, और ये उन्हीं में से एक इम्परफेक्ट स्टोरी है जो शायद आपको याद रहेगी, क्योंकि इस कहानी में कुछ भी सीधी तरह से नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत ही वियर्ड तरीके से हुआ है। मैं जूलियन को जज नहीं कर सकता, जूलियन ने जो किया, आई एम नोबडी टू जज हिम। मैं ये भी नहीं कह सकता कि जूलियन सही था कि गलत था, आई जस्ट डू नॉट नो, आई डू नॉट नो वो क्या महसूस कर रहे होंगे, क्या नहीं महसूस कर रहे होंगे, आई कैन नॉट से इट। ऑल आई नो इज कि सब ठीक रहा बाद में। तो ये किस्सा आपके हवाले है, आप जज कर सकते हैं ज़रूर, क्योंकि मैंने इस कहानी को खुद पढ़ा और आपको अभी आपको सुनाया है, तो मेरा थोड़ा पर्सनल अटैचमेंट हो चुका है इसे, तो मैं इसे ज़्यादा जज नहीं करूँगा, लेकिन आप पे छोड़ता हूँ। 666-22107 नंबर है, 666-22107। डू लेट मी नो कि आप इस कहानी को लेकर क्या सोचते हैं। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आप जूलियन को लेकर क्या सोचते हैं, आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं। आर यू ऑल्सो इन अ काइंड ऑफ शॉक कि भाई ऐसा भी होता है, तो मुझे बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग। 666-22107 नंबर है, 666-22107, और आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर, 443-443-77 पर। डू लेट मी नो, ये छोटी सी कहानी बहुत टाइम से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था पर मुझसे हो नहीं पाई, मगर ये है इसमें कुछ कहानी में है। वैसे भाई कहते हैं बहुत बहुत छोटी थी मगर बहुत प्यारी थी। भाई सलाम ब्रो, तुम क्या, तुमको भाई थैंक यू सो मच, भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार। एक मैसेज, बहुत अच्छी कहानी थी। अबू सऊद अहमद साहब ने मैसेज किया है, जजाकल्ला भाई, वालेकुम अस्सलाम। और एक और मैसेज आया है, प्लीज टेल योर ऑडियंस डोंट ट्राई दिस एवरी टाइम, नॉट सेम थिंग्स हैपनिंग इन द सिचुएशन। मैं अजीज भाई इतना तो खैर माशाल्लाह अकलमंद है अपनी ऑडियंस। अमन भाई कह रहे हैं गुड स्टोरी, थैंक यू भाई। तो आई डोंट नो जूलियन के बारे में क्या सोचते हैं भाई, मैं उसके बारे में ना अच्छा सोच पा रहा हूँ ना बुरा सोच पा रहा हूँ, बड़ी कन्फ्यूजन सी चल रही है दिमाग में। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: कबीर भाई।
0: हाँ भाई बोलो।
1: तो बिग बॉस के लिए मेरा नाम लिखा
0: नहीं? आपका नाम लिखा है, सबने बोला कि चाचा को तो होना ही चाहिए बिग बॉस में, आपका नाम है भाई, हमें भी तो थोड़ा सा
1: फार्म खाली पड़ा, मेरा फार्म पड़ा इधर।
0: हाँ,
1: इधर बनाएंगे
0: आपकी तरफ ही करेंगे, आपकी तरफ ही करेंगे, ऊँटों से घेर के करेंगे भाई।
1: वो सुनो ना, खाना भी फ्री मिलेगा।
0: हाँ,
1: तबक भी है, खाना भी फ्री मिलेगा, सब कुछ। आखिर खाना भी चाहिए ना।
0: हाँ सही बात है, सही बात है, खाना भी चाहिए।
1: मेरा नाम टॉप है।
0: आपका नाम सबसे टॉप पे भाई, सबसे पहले आप ही है।
1: वो तला मला को छोड़ो, तला मला को सबको लेके आओ,
0: तला मला
1: वो सबको लेके आओ, बोलो मेरे साथ मुकाबला करो, मुश्किल नहीं।
0: तो भाई ठीक है, सुन लिया होगा, तला मैंने, तला है मुकाबले के लिए तैयार है अभी। तला
1: मला को बेले के वो दूसरा जो भी है, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार है, तैयार।
0: एक्सेप्टेड भाई, उनके बिहाफ पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपका चैलेंज, टेंशन मत लो।
1: साल की उम्र में वो फिल्म देखा था, तेरे को मालूम है जिन वाला पिक्चर, क्या नाम है,
0: कौन सी वाली,
1: वो जिन वाला, 5 साल की उम्र में जिन वाला पिक्चर, वो नहीं क्या मैं जिसमें संजय कपूर जिन बन जाता है वो।
0: इतनी पुरानी पिक्चर नहीं पता मुझे, कहाँ ले आ रहा हो टाइम को,
1: वो पुराना पिक्चर नहीं मालूम है।
0: हाँ मुझे नहीं पता,
1: पिक्चर जिन रूप तब्दील हो जाता है उसका, 7 रूप लेता है।
0: अब मुझे नहीं पता ना,
1: हाँ वो पिक्चर मैंने छोटे उम्र से देखा, नहीं डरा, तो अभी कैसा डरेगा मैं।
0: अरे आपको डरा सकता क्या भाई, हम आपसे डरते हैं, आपको कौन डरा है, किसी में हिम्मत आपको डराने।
1: आप कसम से कभी। हाँ। भाई मेरा फोन काटा ना, मेरे को सुकून नहीं आया अंदर, दिल में सुकून बिल्कुल नहीं आया।
0: अरे ऐसी आग मशाल जलती है आपके दिल में ना, मतलब
1: यार बात कर लिया करो, दिल खुश होता है। वो छोटा बच्चा से मिल लेना, पैसा नहीं लेना उससे।
0: हाँ।
1: तो बेटी से पैसा नहीं लेना।
0: अरे तो मैं क्यों पैसे लूंगा, मिले मेरे अंदर ब्लड नहीं बचा है। अंकल अंकल अंकल तुम हो ना, बच्चों के लिए तो अंकल ही हुआ ना चाचा, कैसी बात कर दिया।
1: पैसा नहीं लेना, नहीं लेना।
0: अरे मैं क्यों लूंगा पैसा,
1: वो तो पहले से बोला अंकल पैसा लेके आऊंगा।
0: अरे मेरे प्रधान, मैं कोई पैसा
1: को
0: नहीं
1: खा, तो मेरे को पता है ना, मेरे को पता है
0: कि
1: मेरे
0: भाई,
1: तो मेरे को मालूम है ना, यहाँ पे ऐसा थोड़ी मिलता, ऐसा नहीं मिलेगा।
0: बोल लो पहले, खत्म कर लो भाई, फिर मैं बोलूंगा आराम से। पहले बोल लो, रेल गाड़ी चल रही चाचा की,
1: कहानी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कहानी,
0: फिर
1: मानो कहानी नहीं मिस नहीं करता वो।
0: अरे भाई बहुत प्रेम है आपसे।
1: देखा ना लंबा टांग उसका, इतना लंबा टांग था, वो भी कब्रिस्तान में दफन नहीं हुआ, वो बहुत क्या बात।
0: हाँ वो अच्छा लगा ना, वो कहानी बढ़िया लगी आपको?
1: बहुत अच्छी, चकास
0: ये बात हुई, क्या बात है।
1: कबीर भाई ऐसे खुश रहा करो, हमें खुश रखो, तुम्हारी भाभी चली गई है, अभी मैं क्या करूँ अकेला अकेला।
0: अरे अकेले क्या है यार, मोहब्बत में दूरियां जरूरी है मेरा भाई, सुनो तू।
1: ये रेशमी जुल्फे, ये शरबतियाँ, देख के जी रहे है सभी,
0: क्या बात है क्या बात है क्या बात है। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो भाई, बाकी पब्लिक कोई मौका दो ठीक है।
1: 9 बजे तेरा प्रोग्राम सुनता हूँ, अभी तो 8 बजे, 1 घंटा बाकी है।
0: अरे तो बाकी को तो मौका दो बोलने का। चलो ठीक है,
1: मैसेज देता, आपको कौन कॉल करता है सर, मैसेज भेजता, मेरे को मैसेज लिखना नहीं आता।
0: कोई बात नहीं, अरे चाचा बाकियों को मौका दे दो यार, आप इतने लोग भी तो चाहते ना चाचा रुक जाए, हमें भी मौका दे बोलने का, उनको भी दे दो मौका।
1: जिंदा रहो, सोफे सोफे,
0: बिल्कुल
1: सोफे,
0: चाचा जिंदाबाद।
1: सुनो सुनो,
0: हाँ
1: तहज्जुद पढ़ लिया करो, खुदा के बंदे सोफे में सोते जा नमाज पढ़ के रात को।
0: अरे हाँ मौलाना साहब, अभी तो रख दो फोन, बागियों को बात करने तो मेरे भाई। ओके खुदा हाफिज, खुदा हाफिज भाई साहब। देखो आप समझ रहे हैं, आप आपको तो कुछ नहीं जाता, मेरा बहुत कुछ चला जाता। एक मैसेज है कहानी का, लिखते हैं इन द एंड एवरीबडी लिव टुगेदर। भाई ये तो है जो अमन भाई मैसेज है, शाम साहब का लिखते हैं, सुपर्ब, थैंक यू सो मच भाई। एक कॉल उठा लेता हूँ मैं, अब कौन है? अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वरकातहू।
0: शहजाद सलीम, अगर तुमने कहानी के अलावा कुछ बात करी, अभी मेरा दिमाग से बिल्कुल सर्किट वायरिंग खराब हो चुकी
2: है। बिग बॉस में अगर मेरे की जगह बनती है ना, वो है ना चाचा की जगह बनती है, इसमें कोई झटकी नहीं है। उनको रहना चाहिए। और मैं और मैंने बिग बॉस का जो है ना कैरेक्टर है ना, मेरे को अगर मौका मिला ना, मैं ट्राई करूंगा, जरूर ट्राई करूंगा। मैं, मेरी एक ख्वाहिश भी है, क्योंकि मैंने अपने लिए ना एक कैरेक्टर ऐसा लिया ना, वही पुराना जो है ना पगड़ी और है ना शहजादों वाला, और उस एक नक्की वाली तलवार कमर में लटकी हुई, उसी तरह मैं इंप्रूव करूंगा। हाँ
0: क्या भाई साहब, अलग फैंटेसी वर्ल्ड चल रहा है भाई साहब। शहजादा सलीम,
2: सलमान भाई है ना, मेरे को है ना अपना नॉमिनेट करने के लिए भी ना 50 बार सोचेंगे यार, ये कैरेक्टर यार कहीं घूर गया तो मेरे शो का क्या होगा।
0: सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। नहीं आप हमारे शो की लिस्ट में हैं, कभी अगर करना पड़ा तो आपको तो जरूर शामिल करेंगे, डन है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा कैरेक्टर है ना अपना चाचा तो है ही है, उसके बाद है ना जमाल भाई हमारे,
0: जमाल भाई है, बिल्कुल जमाल भाई रखेंगे,
2: एकदम बेस्ट है। उसके बाद है ना करीम भाई भी है
0: भाई, आप लोगों के बीच में एक दो शरीफ तो रखना पड़ेगा, आप लोगों के बीच में एक दो शरीफ तो चाहिए।
2: हाँ तो उसमें बाबा जी हो जाएंगे, बाबा जी फिर अपना पंडर है ना, आसिफ भाई अपना पंडर है,
0: क्या बात है,
2: एकदम बिल्कुल। हाँ आसिफ भाई तो और चार जान लग जाएंगे।
0: ठीक है शहजाद सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए, और अभी जिंगल का टाइम हो रहा है, आपको बहुत प्यार भाई। ठीक है शेखू, ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो आसिफ भाई आपको पता भी नहीं है, और आपकी बेस्ट फ्रेंडशिप हो चुकी है इनसे, जिंगल टाइप।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूव प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक। हमें कॉल जल्दी से उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल है आपके?
1: भाई एकदम बढ़िया, आप सुनाए मेरे भाई। एकदम खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, थोड़ा डैमेज हो जाता है बीच बीच में, ठीक है।
2: आज का वही था क्या, क्या कहते हैं उसको,
1: जी
2: क्या नाम है, बिग बॉस का था अच्छा टॉपिक।
1: जी भाई, मैं कह रहा था कि आप बिग बॉस में कितना सर्वाइव कर पाएंगे, और बाकी कहानी नहीं सुन पाया मुझे लगता है।
2: नहीं नहीं, मैंने सुन ली पूरी कहानी सुनी, और कहानी जबरदस्त थी।
1: थैंक यू भाई।
2: मेरा ख्याल है कि मैंने मैसेज भी किया आपको, आपने अभी तक छोड़ा नहीं।
1: मैं बस आप मैसेज की तरफ बढ़ रहा हूँ बस मैं। हाँ,
2: तो उसमें ये था कि जूलियन जो है ना, उसके लिए सिंपैथी है मेरे साथ, जो मेरे पास के जो जिस वो चीज से गुजर रहा था, लेकिन उसका सलूशन बड़ा आसान था ना, दे कैन हायर अ केयर टेकर, अगर हायर नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट। अच्छा, ये जगह कौन सी थी वो मुझे नहीं पता।
1: ये फ्रांस थी भाई, फ्रांस थी।
2: अच्छा, फ्रांस में। तो अगेन वो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कोई गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मिल रही होगी, वरना दूसरी कंट्रीज में वो लोग तो इसको शिफ्ट कर देते हैं ना, हॉस्पिटल वगैरह में भी कर सकते हैं और ओल्ड एज वगैरह होम में डाल देते हैं।
1: पता नहीं 1960s में बेचारे के दिमाग में क्या चल रहा हो यार, वही मैं इसलिए मैंने कहा मैं ज्यादा जज नहीं कर सकता उसको।
2: जो उसकी कैफियत थी ना, मेरे ख्याल वो चूंकि बहुत ज्यादा सारा दिन इसी बारे में सोचता होगा, तो वो उसने हावी कर लिया अपने ऊपर।
1: आई थिंक अकेलापन के चक्कर में,
2: अकेलापन वो
1: बहुत भारी हो गया
2: उस वजह से डर गया, वरना अगर पहले ही वो नेबर से रब्ता कर लेता हो सकता है, वो कहता है भाई मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ,
1: हाँ मे बी हेल्प करता हूँ। यस ट्रू,
2: लेकिन मेरा ख्याल ये जो हुआ ना, ये अच्छा हुआ कुदरत की तरफ से कि उसको होश आ गई और वो सेट हो गई, तो ये चीज ये इंसिडेंट ओवरऑल इनके बेनिफिट में रहा,
1: ट्रस्ट में मुझे भी नहीं पता, और मुझे पूछने की
2: जगह पता करें,
1: पूछने की हिम्मत भी नहीं है। अरे भाई माफ करो भाई,
2: ऊंट वगैरह देखते हैं क्या करा रहे हैं, क्या करते हैं ऊंटों के साथ, ऊंटों ने इनके साथ क्या किया जो ये हमारी सबकी जो है ना फिर ऐसी की तैसी करते हैं।
1: ये ऊंटों के कान में बहुत कुछ सुनाते हैं उन्हें, जैसे हमें सुनाते हैं।
2: अच्छा, इनकी मैंने ना, अच्छा मुझे याद आ गया, मुझे काफी अर्सा पहले मैंने इनकी कॉल सुनी थी।
1: हाँ।
2: और वो खातून एक और होस्ट है उनकी शो में, इन्होंने कॉल की थी मॉर्निंग में ही ना।
1: अच्छा,
2: तो उसमें तो अलग ही कहानियां चल रही होती है ना, तो उसमें चाचा के लेवल यही था सेम उस वक्त भी, और वो अपना बता रहे थे, मेरे ख्याल 5 साल की उम्र में यहाँ आ गए थे शायद, यहाँ के
1: क्योंकि
2: रेस तो नहीं हुई थी इनके साथ।
1: वही जड़ वही से
2: चले, ठीक है यार, टेक केयर,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार भाई, बहुत प्यार, अल्लाह हाफिज़। तो भाई के बाद जो है एक दो मैसेज जरा मैं पढ़ देता हूँ। उस्मा मरिया जी ने मैसेज किया है, कर दिया कट कर दिया। अच्छा मैं अब मैसेज पढ़ दूँ जल्दी, क्योंकि बहुत भाइयों ने मैसेजेस किए। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, कबीर भाई सुपर नाइस स्टोरी, मेमोरी फॉर्मेट आज बच गया, आज बंदे नहीं मरे, कबीर भाई सुपर स्टोरी, थैंक यू सो मच भाई, फॉर्मेट आलम देखिए भाई यार क्या बात करते हो, क्या चाचा की लोकेशन दो मिलने जाऊंगा, आई हैव सिंपैथी विद जूलियन बट एट द सेम टाइम ही कुड हैव हायर समवन, ये अभी हमें कॉल पे बताया माजिद भाई ने, माजिद भाई बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। नदीम भाई कह रहे कबीर भाई अलग अलग कमाई कर रहे हैं भाई, अपना अलग ही सिस्टम चल रहा है भाई। तबस्सुम बहन ने कहानी के लिए मैसेज किया था, वो कह रही हैं कहानी तो बहुत प्यारी थी, लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि उसने अपनी बीवी जाने की कोशिश करी, मैरी की जर्व है कि उसने अपने हस्बैंड को माफ़ कर दिया। हाँ ठीक भी है, क्योंकि नई जिंदगी मिली थी उसे, मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई। और ये मोना बहन लिखती हैं कि चाचा के दिमाग का चैनल बहुत स्पीड से चेंज हो रहा, अरे वो स्पीड से कभी न्यूज़ कभी स्पोर्ट्स। अभी सुनूंगा आसिफ भाई आपका भी। अब्दुल रहमान मोहम्मद लिखते हैं चाचा संजीव कुमार की फिल्म जानी दुश्मन के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा ये आपने अच्छा भी नहीं आके खोल दी भाई। प्रिंस भाई कह रहे हैं भाई स्टूडियो तो कमाल की थी, मजा आ गया सुनकर, और आपकी आवाज़ में तो क्या ही कहना, और लिखते हैं लेकिन आज जो कैरेक्टर रिवील हुए हैं ऑन एयर ये तो कमाल में धमाल है। आप सुबह से डिस्कशन का हिस्सा हैं, आपको नहीं पता है तो। फरद भाई कह रहे हैं भाई स्टोरी जबरदस्ती, शॉर्ट थी लेकिन सच्ची स्टोरी और मज़ेदार आ गया, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। और एक वॉइस नोट वो भी सुनता हूँ। फिर मेहर भाई कहते हैं जब आप चाचा से बात कर रहे थे सेम फील हो रही थी सलमान भाई जब इस बाबा से बात कर रहे थे। मेहर भाई क्या निकाला है भाई आपने ये, एक मैंने चाचा चका चक अब्दुल रजाक साहब का मैसेज है, सब लोग पहुंच जाएंगे, क्या कह रहे हैं मत बताना सब लोग पहुंच जाएंगे, नहीं बताऊंगा अमन भाई डोंट वरी।

0: क्या
1: अरे यार
0: लखनऊ
1: से इतनी दूर प्रिंस ना पहुंचा दो यार कि जा कभी कभी क्या कहते हैं अरे सफर करने के लिए किराया भी ना।
0: देख लीजिए आप, मैं बता रहा ये है मोहब्बत, देख रहे हैं आप, आपको सिर्फ मोहब्बत यहाँ से नहीं मिल रही है, पब्लिक सुन के आपको मोहब्बत दे रही है भाई, बड़ी बात है ये।
1: नहीं भाई पता है आपको मुझे या आपको सबको मोहब्बत कहाँ से मिलती है पता है आपको
0: कहाँ से मिलती है?
1: मैं बताता हूँ।
0: बताइए।
1: जहाँ जहाँ से आपके दिल, आपके जज्बात और आपके हृदय में मोहब्बत का वो फूटता है ना शगुफा, तो वहीं से फिर लोगों से मोहब्बत मिलना शुरू हो जाती है।
0: बहुत प्यार भाई,
1: क्योंकि जब आप किसी को मोहब्बत करते हैं ना तभी कोई आपको महबूब समझता है।
0: बेशक बेशक भाई, ये बात तो है भाई। लेकिन पता है आप हो भी भाई एक अलग अलग कैटेगरी के हैं, मैं बताऊं आपको, बहुत बढ़िया बातें कर जाते हैं और आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। आप
1: भाई सुने सुने, अपना तो एक उसूल है,
0: क्या
1: किसी ने कहा था कि मक्तल की तरफ आते हम तेज कदम आते, आवाज तभी होती हम तेरी कसम आते, आह रे खुददारी झुकने न दिया तूने, लिखने के लिए वरना सोने के कलम आते।
0: अरे लाइए मैं सोने का कलम अभी लिख दूं भाई, मैं दो तीन चीजें तो दिमाग में आ रही है। बहुत बढ़िया।
1: सुबह से एक चीज का तस्करा कर रहे थे, आप सुबह से एक चीज का तस्करा कर रहे थे कि यार मुझे जब इतनी मोहब्बत लोगों से मिलती है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मतलब प्राउड फील करता हूँ मैं।
0: नहीं भाई, आई एम रियली प्राउड भाई, मैं पता है सिर्फ अपने ये नहीं कह रहा कि मुझे प्राउड फील होता है प्यार से, मुझे अच्छा ही लगता है कि लोगों को सुबह जिस तरीके से लोग बात करते हैं ना इस शो में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि वो खुल के बात करते हैं, मुझे पता है कि ये दिल से बात कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और मेरे, मुझे बड़ा अच्छा
1: मेरे भाई वही तो बोल रहा हूँ मैं कि मोहब्बत की शुरुआत जब होती है आपके आपसे है ना, तो फिर धीरे धीरे वो एक घना बादल बन के और उस पर
0: कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे जमाल भाई ने बहुत प्यारी प्यारी बातें करी हैं और इन प्यारी बातों के साथ साथ कुछ मैसेज भी है, लेकिन हम कुछ जिन्हें पढ़ेंगे पहले, तो हम बढ़ेंगे आगे। चलो पढ़ देता हूँ मैसेज में, जमाल भाई बहुत अच्छी बात कही। ओके, एक मैसेज है, बा खुदा बादशाह खान क्या बात है, अग्री टू जमाल भाई। माजिद भाई ने मैसेज किया है, कॉम्प्लीमेंट्स जमाल भाई, उर्दू शायरी देनी पड़ेंगे भाई, देखो क्रेडिट तो है मुझे भाई, फर्स्ट वाला शेर टाइप करके दे दो जमाल भाई फर्स्ट वाला शेर दे दो भाई अपना, कमाल का था वो। मुझे जल्दी चलवा दें तो कॉल मी बिग बॉस अनफेयर गेम है, कबीर भाई तुम मुझसे अनफेयर हो। मैं कैसे अनफेयर हूँ अभी सुनूंगा। और तला भाई कहाँ से मीम पकड़ पकड़ के लेके आ रहे। खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम, कबीर भाई बहुत ट्राई किया फोन कॉल करने का, चाचा चक की वजह से ख़राब हो गया। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, ये कि भाई सोने के कलम के लिए मैं झुकेगा। डेफिनेटली भाई, वरना तो बेस्ट जनता। एक मेरे पास मैसेज आया, बहुत प्यारा मैसेज है इंजीनियर जुबैर साहब का, वो लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आई एम लिसनिंग योर शो सिंस लास्ट टू मंथ्स, दिस इज़ वेरी गुड शो एंड एवरी मॉर्निंग आई फील फ्रेश एज आई गेट इन द कार। आई लव्ड वन स्टोरी अ लॉट, दैट वॉज पेंटर हु रिफ्यूज टू कॉपी पेंटिंग्स एंड प्रिटेंड देम एज ओल्ड पेंटिंग्स एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। आई नीड द ऑडियो ऑफ दिस स्टोरी, इफ यू कैन सेंड मी प्लीज। जुबैर भाई का मैसेज है, थैंक यू सो मच जुबैर भाई। ऑफकोर्स ऑफकोर्स। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
0: कैसे हैं कमल भाई? मैं बढ़िया भाई, आप सुनाइए भाई।
2: भाई आपने तो कहानी जो सुनाया
0: जी भाई,
2: उसमें तो रंग थे, लेकिन जमाल भाई ने जो रंग भरा है,
0: हाँ हाँ
2: वाह कमाल, फाइव स्टार दे दिया भाई,
0: फाइव स्टार है भाई, एकदम फाइव स्टार, सेवन स्टार भाई, फाइव में कुछ नहीं।
2: जमाल भाई की उर्दू माशाल्लाह
0: एकदम, मतलब
2: सुन के दिल करता है कि भाई एक साइड में उनको भी बिठा दिया जाए।
0: तभी तो मैंने बोला बिग बॉस के बहुत बढ़िया कंटेंडर है भाई, ये बनता है
2: ममता है भाई। अच्छा मैंने एक मूवी देखी थी इससे,
0: जी जी जी,
2: 1982 की मूवी है,
0: अच्छा
2: सत्ते पे सत्ता अंताप की,
0: हाँ
2: थोड़ी बहुत इसी बेस है,
0: हाँ
2: वो भी पैरालाइज होती है, ये रहता है मतलब जेल से निकला हुआ, उसको मिलता है मतलब उसको मारने का,
0: हाँ
2: तो मारने जाता है तो उठ के खड़ी हो जाती है,
0: तो इसी से इंस्पायर्ड तो नहीं है?
2: हो सकता है,
0: हो सकता है,
2: कहानी तो इंस्पायर होती है भाई। अभी ये कहानी 60 की है, आप बोल रहे ना
0: 60s की, हाँ,
2: 60s और ये जो है, और ये जो है 82 की मूवी थी।
0: अच्छा 82 में आई थी,
2: तो
0: क्या?
2: तो है,
0: यस, यस, यस,
2: हाँ, 1982 में आई थी।
0: कहीं ना कहीं लोगों किससे मिलते होंगे, कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड तो डेफिनेटली, या आई बिलीव सो।
2: तो कहानियां तो होती है, बस यही है कि भाई उसको अपने सच्चाई का रूप दे दिया है,
0: पर आपको
2: कहानी थी
0: ये आपको कहाँ तक, आपको कहाँ पे आके शौक लगा आपको इस कहानी में, कि बहुत सारे मोमेंट्स?
2: हाँ शौक तो लगा कि मतलब जो है आपने पैरालाइज को मतलब खड़ा कर दिया सच्ची में, कि मारा नहीं उसने।
0: हाँ, हाँ. हाँ.

0: जिंदा होगी, मतलब जो है।
1: और जूलियन के बारे में क्या कहेंगे?
0: 20 साल तक जो है,
1: जूलियन के बारे में
0: नहीं भाई क्या करेंगे, देखिए वो ऐसे जज्बात होते हैं ना कबीर भाई कि जब आदमी अपने आप से भी हार जाता है किसी के लिए भी, क्योंकि आगे पीछे जब कोई है नहीं, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं, अकेले ही जब वो रहता है तो टूट जाता है इंसान।
1: नहीं बात तो सही है,
0: वो कदम टूट के वो कदम उठाया उसने।
1: बिल्कुल बिल्कुल, नहीं पर थैंक यू सो मच।
0: यही है कि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, कुछ दिन और जिंदा था उनके साथ में,
1: कुछ दिन नहीं सालों,
0: बाद में भी सर्वाइव किया
1: सालों भाई,
0: 20 साल।
1: यस डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। लेकिन कमाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए।
0: ओके कबीर भाई,
1: ओके मेरा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो पार्टी बात सारी ऐसी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देन बहुत सारी कॉल्स भी हैं एंड काफ़ी सारी बातें करनी और खबरें भी हैं, तो बच के रहना। बादशाह डिवाइन निकिता गांधी, गुड मॉर्निंग दिल से।

0: 아님.
1: एक तो ये डिवाइन का हाँ हाँ, पर मुझे मेन मिमिक्री करने में मजा आता है बोहिमिया की भाई, वो बोहिमिया वाजी की मिमिक्री करने मजा है। और ये अगला गाना मेरा प्रोमो सुनो जदू चलता FM 107 ते।

0: रूम करे शेकअप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो, वेक अप. Hey,
1: अजी
0: तो हवाला में कबीर,
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप.
1: तो 8:22 बजे क्लॉक में दो हवाला कबीर एफएम 107 पे. एंड मैं जरा आपको कुछ खबरों की तरफ ले चलता हूँ, उसके बाद मैं एक दो कॉल्स कर लूंगा. तो सबसे पहली जो खबर है वो कतर के उस कदम की तरफ है, बारे में है, जो हेल्थ सर्विसेज के लिए एक और बहुत बड़ा कदम. तो मकसद हमेशा से रहा है कि इन्हांस किया जाए एफिशिएंसी को और एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा दी जाए हेल्थ सर्विसेज की कतर में. और ऐसे में अहली हॉस्पिटल और अलखुत इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनी ने साइन किया है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जिसमें जिसका मकसद ये है कि स्ट्रीमलाइन किया जाए एक्सेस टू मेडिकल केयर सारे के सारे गेस्ट को जो कवर्ड किए जाते हैं अल खुद इंश्योरेंस के अंदर आते हैं. तो ये भी बहुत आसानी पहुंचेगी बहुत सारे लोगों को. एंड इंश्योरेंस आपका वैसे भी रखना चाहिए, अगर अभी तक नहीं रखा है आपने, कोई भी इंश्योरेंस नहीं लिया है, डू गो फॉर इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काम आता है भाई जरूरत के टाइम, पता नहीं होती, बस गो फॉर इट, ये तो नहीं कहूँगा. इसके बाद अंडर द पेट्रोनेज ऑफ हिज एक्सीलेंसी ऑफ एक्सीलेंसी द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी और द नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया 5th नेशनल साइबर गवर्नेंस एंड अश्योरेंस अफेयर्स कॉन्फ्रेंस. एंड इसकी सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी जब बाहर मीडिया के जितने भी पॉइंटर्स आएंगे तो आपको इंशाल्लाह हम जरूर शेयर करेंगे. हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, इस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी पोस्ट किया जाएगा. इसके अलावा सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑन होली कुरान एंड ह्यूमन नॉलेज ये कन्वीन की गई है इन दोहा आज के दिन ही. और ये जो इवेंट है इसका जो मकसद है वो ये कि एडवांस साउंड ह्यूमन नॉलेज के साथ साथ कुरान के बारे में और कुरान के मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं वो आज की दुनिया में किस तरीके से आपके पैरवी करती है, किस तरीके से आपको गाइड करती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात होगी. एंड ये इट वाज रियली किक्ड ऑफ को करंटली विद द ओपनिंग ऑफ बुक ऑफ उम्मा फोरम. ये अगर आपने नहीं चेक किया तो ऑनलाइन चेक कीजिएगा, बहुत बड़ा इवेंट रहा है. एंड ये दोनों के दोनों ये साथ में चले हैं टुगेदर विद द पैंथियन ऑफ रिसर्चर्स. इसमें एकेडमिक्स स्पेशलिस्ट हैं, 9 कंट्रीज के स्पेशलिस्ट हैं एंड देर अंडरस्कोरिंग इन द स्ट्रॉन्ग एकेडमिक इंटरेस्ट इन द इवेंट. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी चीज़ के लिए भी, हो सकता है कि आपके डाउट्स बहुत सारे क्लियर हो जाएँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट. इसके अलावा कतर टूरिज्म अवार्ड्स जो कि बनाए गए हैं इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अनाउंस की है एक शॉर्ट लिस्ट फॉर इट्स 4th एडिशन एंड पब्लिक वोटिंग इज नाउ ओपन. उसमें आप भी वोट कर सकते हैं. टोटल 2076 नॉमिनीज हैं, 276 नॉमिनीज जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया है. और 276 नॉमिनीज कितने में से, 1623 में से. तो काफ़ी फिल्ट्रेशन के बाद 276 के नंबर मिला है. एंड ये सबमिशन जिन्होंने सबमिशन किया और उसके बाद ये जब सेग्रीगेट किया गया तो 35 सब कैटेगरीज हैं, 75 सब कैटेगरीज और 7 मेन कैटेगरीज. तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट के बाद ये कैटेगरीज बनाई गई हैं और वोटिंग उसमें जारी है. तो देखते हैं हु विल विन, विच प्लेस विल विन. तो ये रिजल्ट जब आएंगे तब आएंगे, बट यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस. बाकी यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग. वालेकुम सलाम यूसुफ भाई, कैसे हैं मेरा भाई? और जो है हमें कॉल किया, मतलब कॉल करने के लिए कहा गया था तो हमने ज़रा कॉल मिला दी है. और एक भाई कह रहे हैं शेयर मी भाई, रीडिंग के लिए स्टोरी को आपको फिर ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं इजीली एआई के ज़माना है, आपको स्टोरी की सोर्स मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह.
1: जी भाई कैसे हैं प्रिंस भाई?
2: बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया.
1: हाँ बताइए क्या कहना चाहेंगे आप, नाश्ता कर रहे थे आप?
2: हाँ भाई
1: क्या चल रहा है आज? मुझे लग रहा है काफी चिल मोड में हैं आप.
2: अरे भाई मजे ही आ गए आज ऑन एयर, तो
1: मजे आ गए
2: बहुत ही बढ़िया.
1: आपको कितना याद किया लोगों ने, हिचकी आई आपको? बहुत याद किया भाई आपको, भर भर के याद किया लोगों ने आज.
2: हाँ इसीलिए आज मुझे पानी की बोतलें ज्यादा लग गई
1: है ना. वही तो आज आज सब कह रहे थे अगर अगर बिग बॉस किया जाए तो भाई सबसे पहले जो है प्रिंस भाई को शो में शामिल किया जाए, ये आपके लिए डिमांड आ रही थी बहुत भारी भाई.
2: कमाल है भाई.
1: तो क्या लगता है आपको, आप कितने हफ्ते सरवाइव कर जाते वैसे भाई?
2: अब वो तो पब्लिक बेहतर जाने भाई, क्योंकि अगर वोटिंग का मतलब होगा तो पब्लिक बेहतर जाने,
1: पब्लिक तो जिता रही है आपको, लेकिन आप खुद पे कितना भरोसा रखते हैं इस बात को लेके, ये भी इम्पोर्टेंट।
2: पब्लिक का प्यार नहीं तो और क्या है,
1: और क्या है रे पगले प्यार नहीं तो और क्या है
2: तो भाई ये प्यार से तो हम लाजम सी बात है टाई का कप, सॉरी विनिंग कप उठा के निकलेंगे।
1: वेरी नाइस, आपके लिए एक मैसेज किया तला भाई ने, वो कह रहे हैं प्रिंस भाई वॉइस ट्यून करके आए हैं आज, क्या बात है तो देख रहे हैं आप एक अपनी ही ऑडियंस बना ली है
2: तला भाई, मैं भी बहुत सारी ज्यादा चीजें ट्यून करता हूं जो मैं आपको बता नहीं सकता सॉरी
1: ये क्या मैकेनिकरी चल रही है भाई नहीं बट वेरी नाइस वेरी नाइस, आज आज मुझे सच में बहुत ये टॉपिक अच्छा हुआ, मैंने छेड़ा बहुत मजा आया, लोगों ने बहुत दिल लगा के पार्टिसिपेट किया, आई एम रियली हैप्पी विद दैट, तो इंटरेस्टिंग।
2: मैंने तो आपकी स्टोरी भी सुनी,
1: स्टोरी पे क्या कहेंगे आप?
2: हाँ स्टोरी भी तो कहूंगा, माशाल्लाह स्टोरी बहुत बढ़िया थी, और बंदे की किस्मत ये अच्छी थी कि उसने किसी शार्प ऑब्जेक्ट का सहारा लिया, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अल्लाह सुभान अल्लाह,
1: पर क्या आप जूलियन को सजा देते, क्या आपको जूलियन के कैरेक्टर को लिखे उसके उसके बारे में क्या सोचते हैं आप कंसिडर?
2: मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदी को पहले तो पता ही नहीं है कि उसके साथ में हुआ क्या है, बंदी को पता ही नहीं है,
1: मे बी I think so. पर considering the fact कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ है तो शायद
2: सिंपल सी चीज होती है भाई, एक स्टेज होती है कोमा। उस बंदे के साथ में आपने क्या किया, उसको कैसे ट्रीट किया, या फिर चाहे जो भी हुआ हो, जब वो वापस कोमा से फिर नॉर्मल लाइफ में आता है तो पिछली बातें उसको याद नहीं होती, लेकिन जिसने किया है किसने बता दिया भाई तुम्हारे साथ में ये हुआ था इसीलिए तुम आज अच्छे हो गए हो, he feels great और she feels great कि हाँ भाई बच तो गए
1: मुझे
2: none of the business के क्या हुआ क्या है,
1: आपकी तो है ना? आपकी इस थ्योरी पे मुझे भरोसा हो रहा है, पता होगा, आई बिलीव सो, ऐसा कुछ हुआ होगा, आई थिंक ये मिली भगत है कि उसको पता भी नहीं क्या हुआ डेफिनेटली नहीं पता
2: होगा उसको, ये है कि हाँ जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी मैं उस लाइफ में वापस आ चुकी हूँ, दैट थिंग इज ग्रेट,
1: वो जरूरी है
2: सब जाए बाहर में,
1: वो जरूरी
2: और वैसे भी शौहर नहीं पालना है मुझे, इसके साथ में नहीं रहूंगी तो किसके साथ में रहूंगी, मरी तो नहीं ना
1: 70 एकदम चिल कहानी बना दी आपने, एकदम चिल जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अरे रे चीटी मर गई चीटी मर गई कुछ बोल दिया, अरे तुमने अपने सर पे खुद ही मार लिया यार और कुछ नहीं हुआ,
2: तो खुद मैरिड हो और मेरे कई सारे आपके कई सारे लिसनर्स जो है वो भी मैरिड है,
1: जी जी,
2: कभी शको शुबा के घेरे में सभी आए होंगे, पड़ोसन से बात ही कर लो या किसी को प्यार भरी नजरों से देख ही लो, उसमें माफी नहीं मिलती तो ये मारने पे कहां से मिलेगी
1: प्रिंस भाई आज नाश्ता करने की बहुत जरूरत है, आपके चक्कर में जो है बहुत लोग बेचारे अपने वॉल्यूम को धीरे कर चुके प्रिंस भाई आप 100 की स्पीड में हैंड ब्रेक क्यों लगवा रहे हैं भाई
2: ड्रिफ्ट
1: समझ रहा हूँ मैं, थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, आपने
2: वहां माफी नहीं मिलती है भाई, यहाँ कहाँ से मिल जाएगी, ये तो बंदा धारदार हथियार लेके पहुंच गया था
1: मैं कुछ नहीं कह रहा था, आपने जो रिवाइव किया ना दो तीन बार बोल बोल के, लोग अभी बेचारे गाड़ी साइड में लगा रहे हैं, अरे मुझे उतरना है गाड़ी से उतरना है जल्दी, कुछ काम याद आ रहा है
2: मैं तो उनका सोच रहा हूँ जो साथ में वाइफ को ड्रॉप करने के लिए जा रहे हो,
1: हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये आपकी मेहरबानी है भाई, आपने वॉल्यूम गिरवा दिया,
2: बेचारे मेहरबानियां मैं करता ही रहता हूँ भाई,
1: बहुत शुक्रिया उनके बिहाफ पे भाई उनके बिहाफ पे बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका,
2: और वो हमारे शायर साहब जमाल लुधियानवी,
1: जमाल लुधियानवी
2: अरे वाह
1: है ना,
2: जो अशार पढ़ते हैं माशाल्लाह, लेकिन मुझे शौक तब लगा जब उन्होंने बोला शगुफा और उसके साथ में बोला हृदय, अरे वाह हिंदी और उर्दू का जो कॉम्बिनेशन, मुझे कल वाली अपनी बात याद आ गई भाई, इसको कुछ करते हैं अरबिक प्लस
1: नहीं वो तो मैं करूंगा, अरबिक और हरियाणवी का जो हमने कल डिस्कशन किया वो तो करना पड़ेगा भाई
2: जी।
1: अगले प्रोमो में ये करने वाला हूँ, डेफिनेटली करेंगे।
2: और चाचा का तो मुझे ऐसा लगा कि भाई उन्होंने अपने आप को रात में चार्ज पे लगाया था, सुबह 100% बैटरी
1: और वो सॉकेट जो है ना वो निकालना भूल गए, वो सुबह सुबह अभी भी चार्जिंग में थे वो
2: अब वो शाहन मुतनकल पर हैं, वो क्या कहते हैं उसको, शाहन मुतनकल
1: पावर बैंक क्या क्या वर्ड यूज किया आपने उससे पहले?
2: शहन मुतनकल।
1: अच्छा ये पावर बैंक का वर्ड है
2: जी?
1: अच्छा वो बड़ा डिफिकल्ट है भाई ये तो।
2: सीख जाएंगे इंशाल्लाह।
1: इंशाल्लाह जरूर सीखेंगे। ठीक है प्रिंस भाई,
2: चाचा की बात मानिएगा, पैसे मत लीजिएगा।
1: बिल्कुल नहीं भाई, मैं मेरी तौबा भाई, मैं
2: मुझे तो लगा कि भाई आज मेरे भाई की नौकरी गई।
1: मैं तो अपनी खुद की कंपनी को बोलने जा रहा हूँ, अरे मुझे मत दो पैसा, चाचा ने मना किया है।
2: मुझे तो ये लगा कि भाई बेचारे जो भी जहाँ भी आज है उनको अल्लाह अच्छा रखे।
1: आमीन आमीन।
2: तो वो चले गए, मुझे लगा चाचा ने पैसों का टॉपिक डिस्कस कर दिया। प्रिंस भाई की नौकरी गई।
1: प्रिंस भाई आज आपको भाई बहुत जरूरत है, नाश्ता करें भाई आप जो है। आगे जा रहा मामला। ठीक है भाई,
2: चलो नहीं छेड़ते इस टॉपिक को।
1: हाँ,
2: भाई और भी लोग होंगे कतार में, लाइन में, खत में।
1: थैंक यू
2: लाइन, एवरीथिंग इज सेम।
1: थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल धड़क रहा मेरा जोर से। ख्याल रखो भाई,
2: आप भी अपना ख्याल रखे भाई, मैं सबका ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, ओके भाई।
2: मुझे लगता है मुझे बिग बॉस में आ ही जाना चाहिए।
1: बनता है आपका भाई। ठीक है,
2: वीकेंड के बार में तो और ज्यादा मजा आएगा इंशाल्लाह।
1: डन डन डन डन डन डन, एकदम डन।
2: थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ब्रो।
1: नो प्रॉब्लम।
2: एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आप
1: बेहद बेहद जरूरी है मेरा भाई। थैंक यू सो मच
2: हम सब के लिए भाई।
1: बहुत प्यार, बहुत प्यार। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और भाई भाई के बाद जो है एक बढ़िया सा गाना चला देते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है ये किधर गया, ये लो जी ये वाले चलाएंगे आज। एक भाई कह रहे हैं हरियाणवी गाना हो जाएगा भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, हाफ ऑफ द स्टोरी इज फिट इन माय पेरेंट्स, माय मदर इज पैरालाइज्ड एंड माय फादर इज टेकिंग केयर ऑफ हर फ्रॉम लास्ट 10 years एंड इज रिटायर्ड एंड गोइंग फुल टाइम टू माय मदर एक्सेप्ट cooking. My father is doing everything. May Allah give him sabr and ajr in the world. Also, please keep remember my parents in prayer. Of course, mera bhai. Of course. Ye Naushad Aftab Alam bhai likha hai. Bhai, bahut sari duaen aapke maa baap ke liye. Bahut bahut pyar aur hamari taraf se bhar bhar ki duaen. And शुभ भाई ने मैसेज किया है, शुभ मंसूर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज शावरिंग लव। वो कह रहे हैं कि मेरा मन ही नहीं करता कहीं भी जाने का, जो आपका शो सुनता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत प्यार। और यार प्रिंस भाई को क्या है भेजना चाहिए, काय को भाई। इनके बाद एक और मैसेज आया, भाई पैसा ला रहे आप कबीर भाई, चाचा ने आपका राज खोल दिया। अरे चाचा चाचा चाचा चाचा। ओके भाई, इफ यू वांट टू लर्न हरियाणवी ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स टू लर्न इट। जाट ने जाट तेरा गाड़ी ले रहा। 835 बोलिए भाई।

Wake up. Assalamualaikum. एक भाई कह रहे हैं कि भाई आपकी हरियाणवी बहुत अच्छी है. थैंक यू सो मच भाई. भाई ये इमोशन के हिसाब से निकलती है. जब मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना होता है तो मैं हरियाणवी बोलने लग जाता हूँ. जब मुझे बहुत मोहब्बत जतानी होती है तो थोड़ी बहुत उर्दू है वो निकल जाती है. और वैसे घर की वो थोड़ी पंजाबी निकल जाती है. सब कुछ ये अकॉर्डिंगली निकलता है भाई. और अंग्रेजी में थोड़ा हार्ड टाइट है तो भाई वो मार्केटिंग के टाइम पे निकलती है जब कुछ चीज़ बेचनी हो मुझे. बाकी तो बस चैट है भाई. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा आज कुछ दिन है जो मार्क्ड किए गए हैं इंटरनेशनली, उनके बारे में ज़रा जिक्र करना चाहूँगा. तो आज नूडल डे है. आपको पता है, मतलब मुझे रिसेंटली पता लगा, मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली. अब आप मुझे जज करना चाहें जज कीजिए, मैं तो भाई फिर बोलूँगा मोहल्ले की आंटी वाली बात हो गई. पर नूडल्स जो हैं जब दूध में थोड़े पकाए जाते हैं और फिर उसमें चीज़ डाली जाती है, भाई क्या बनते हैं नूडल. ट्राई किया अपने वाले? रे रे रे रे रे रे रे. अगर कोई ढंग का बनाने वाला हो ना नूडल ऐसे वाले ये दूध में जो बनाने वाले, फील आ जाएगी भाई आपको. सही बता रहा हूँ मैं. ओ हो. बस कौन सा मत पूछो फरत भाई. मैं नाम नहीं ले सकता ब्रांड का, आप समझ जाओ बस. मैं आप पे छोड़ता हूँ. वैसे तो हर नूडल बन सकता है बट ओए होए होए. फिर से बुक लगवा दी मैंने. आज है कोचेस डे. आप किसी भी फील्ड के किसी भी कोच को आज थैंक यू बोल सकते हैं फॉर गिविंग यू राइट अमाउंट ऑफ कोचिंग. एक मैसेज भाई, कोई पैगाम सरोवर भाई के लिए. आप बहुत लेट आए भाई. सरोवर भाई को हमने बिग बॉस के घर में शामिल कर लिया है. ये मैं आपको लेटेस्ट बता दूं. हुसैन भाई और क्या चल रहा है मेरे भाई. एक वैसे मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्या बात कर रहे हो. अरे मुझे लगा मैं अकेला रह गया भाई. नूडल एक्चुअली में दूध में उबाले जाते हैं, सच में उस दूध में, और उसमें चीज़ वगैरह भी डलती है. क्या बात करें, मेरे घर पे बनते हैं भाई, ऐसे खतरनाक बनते हैं. आपको इतने क्रीमी ओए होए मत याद दिलाओ यार, अपने आपको याद दिला दिया मैंने. अच्छा आज एक और दिन है. आज है ट्रांसफ़र मनी टू योर डॉटर डे. आज जितने भी शहजादी जो है आपके, जितने भी लोग इनके घर पर शहजादी है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची, आज उसको आप मनी ट्रांसफ़र करें. पॉकेट मनी आज बढ़ाई जाए. तो क्योंकि इरफान भाई ने मैसेज किया है तो भाई बनता है आज. तो आज फातिमा को स्पेशल आप जो है बढ़ा के देंगे आज पॉकेट मनी. डन हो गया आज यूसुफ भाई. आज है फिजिशियन असिस्टेंट डे. हमारे यहाँ तो भाई वो कहा जाता है कंपाउंडर सर सलाम अलैकुम, मेरा नंबर कब आएगा. तो फिजिशियन असिस्टेंट अंग्रेज़ी में हो गया तो मेरे लिए तो एक बराबर ही है बात. उन सबको मेरा बहुत सारा सलाम, बहुत सारा प्यार. ऑब्वियसली हमें बाद में पता लगा कितनी मेहनत वाला काम है ये. तो जितने भी फिजिशियंस के असिस्टेंट्स हैं आपको सर सलूट है. बहुत बहुत महंगा काम है, बहुत बढ़िया काम है. और मैंने देखा है भाई यहाँ पे करते हुए, अब पता लगता है कि हमने जल्दी जज कर लिया था आपको. बहुत मुश्किल है आपका काम. एंड इसके बाद आज है और कौन सा दिन है, और कोई इतना खास नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है डिस्कशन करने वाला. बट कुछ मैसेजेस हैं वो पढ़ देता हूँ मैं. एक मैसेज आया है वो शायद पास्ता में बनता है. अरे नहीं यूसुफ भाई, नूडल भी. अरे यूसुफ भाई क्या क्या कैसे कहूँगा भाई अब मैं. वो कहते हैं उसकी ईदी अभी तक नहीं मिली. ओहो देखो यूसुफ भाई, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है भाई. काश मैं कुछ कर सकता उसके बारे में. आई रियली कांट हेल्प इट. एक मैसेज है भाई, थोड़ा क्या लूडोज रेसिपी दे दो. कौन सी रेसिपी दे दो. और एक मैसेज है, वाइफ का कॉल आए बिना वक्त तो जान भी निकल जाती है. पंजाबी हरियाणवी तो अपनी जगह है. आज प्रिंस भाई अलग मूड में चल रहे हैं, मैं आपको बताऊं. आज चौथे गियर में चल रहे हैं ये.

आज पहला दूसरा सीधा चौथा गियर वाला उन्होंने गाड़ी वो फंस के निकलती है ना गाड़ी वैसा वाला प्रिंस भाई आज मुझे लगता नहीं काम वाम के मूड में है आप एक मैसेज है भाई सब शराफत दिखानी है तो कौन सी लैंग्वेज निकालते हैं भाई जब शराफत दिखानी है तो कौन सी लैंग्वेज निकालते हैं भाई फिर बहुत तहजीब से मैं हिंदी उर्दू में शिफ्ट कर जाता हूँ जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ वेरी नाइसली वेरी पोलाइटली पर जब मैं थोड़ा सा क्या है ना अगर आप मुझे काला कुर्ता पहना देंगे और फिर वो जाटो वाली गाड़ी में बिठा देंगे फिर पक्का हरियाणवी निकलेगी भाई अकॉर्डिंगली शिफ्ट करता हूँ भाई मैं अकॉर्डिंगली अच्छा पैगाम कुछ नहीं है भाई सरोवर भाई के लिए बस टेल हिम के आज जो हैं वो हमारे बिग बॉस के शो में शामिल किए गए कि कितने हफ्ते सर्वाइव कर सकते हैं सरोवर भाई ये आप लोगों को छोड़ता हूँ मैं नूडल्स की रेसिपी बताओ भाई रेसिपी मुझे नहीं पता मेरे घर पे बनती है मैं आपको बता सकता हूँ कैसे थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है तो वो मैं आपको बता दूंगा अभी 8:43 बाय द क्लॉक मैं जी दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे एंड जाना आपने नहीं बेस्ट जगह पर है आपको तो पता ही है एक सेकेंड एक काम करते हैं आपको ना थोड़ा सा जगा देते हैं रुको अभी मुझे पता है कि ये टाइम ऐसा होता है ना कि लोग ऐसे वाइब की तलाश में होते हैं कि थोड़ी आंखें वाँखें खुल जाए तो मैं आज आपको आई विल गिव यू अ रीज़न कि आप वॉल्यूम बढ़ाएं अपनी मीनवाइल हम व्हाट्सएप पे तो बातें कर ही रहे हैं यहीं से ये रहा कबीर जी का जादू वॉल्यूम बढ़ा दी जाए 8:44

आदिम असलम के साथ जो जो साथ में लाभ लगा चुके हैं, मजा आया। वैसे भी गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा के लाभ लगाने में कोई नुकसान नहीं है, कौन सुन रहा है, क्या दिक्कत है। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, और मैं जाने से पहले आपको कुछ रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि एक भाई ने मुझे याद दिलाया कि भाई मूवी के रिकमेंडेशन क्यों नहीं दे रहे, तो अच्छा सवाल है, इसी बात पर बताता हूँ मैं। ये आमिर भाई थैंक यू सो मच सबसे पहले मुझसे पूछने के लिए, मुझे अच्छा लगा कि आप यू केयर अबाउट इट। तो एक मूवी है जो मैंने रिसेंटली भी दिखाई है बहुत लोगों को, मूवी का नाम था द विजिट। अगर आपने मूवी नहीं देखी है एंड आप उनमें से हैं जो शॉक वैल्यू के लिए मूवी देखना चाहते हैं कि एंडिंग में, और रे भाई क्या एंडिंग थी, तो अगर ऐसी शॉक वैल्यू रखते हैं तो एक मूवी है द विजिट। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ी ज़्यादा पहले की नहीं है मगर मिल जाएगी इजीली अगर आप ढूंढेंगे तो। विजिट ऐसी कहानी है कि शुरुआत में आपको लगेगा कि आप जो सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है, लेकिन फिर मूवी ऐसी करवट लेगी और ऐसी एंडिंग की तरफ ले जाएगी कि आप कहेंगे भाई आज तो तोते ही उड़ गए। तो ऐसी ट्विस्ट वाली अगर मूवी आप देखना चाहते हैं तो द विजिट देखिए, बहुत कमाल की है। और अगर आप एक हॉरर फैन हैं तो मैं आपको एक मूवी बताता हूँ जो कि रेड की गई थी एक ज़माने में, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज, और इसका नाम है द चेंजलिंग। चेंज जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है, फिर LING। ये बहुत जिस वक्त रिलीज हुई थी उस वक्त ये मानी जाती थी कि भाई इससे बढ़िया स्टोरी तो नहीं है कोई, बहुत बढ़िया है, सो ट्राई दिस वन एज वेल। और अगर आप थोड़ी स्लैशर हैक वाली मूवी देखते हैं जहाँ पर ऐसा लगे कि भाई कोई बदला लेने निकला, ओए होए होए, ऐसी कोई मूवी देखनी है तो एक डीप रेड करके मूवी है, इफ़ यू हैव सीन इट, बढ़िया। नहीं देखी तो उन लोगों के लिए जिन्होंने डीप रेड नहीं देखी, सो द विजिट, डीप रेड और चेंजलिंग, ये तीनों बहुत बढ़िया हैं। अलग अलग कैटेगरीज की मूवी, अलग अलग जॉनरस हैं, बट इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई एनी ऑफ देम, ट्राई करना जरूर बताना। और इरफान कासमी साहब कह रहे थे कि आपके बिग बॉस में कौन सा गेम खिलाया जाएगा। कह रहे भाई FM 107 के द्वारा बिग बॉस की काफ़ी प्रमोशन हो चुका है, अभी सलमान खान एंड ब्रदर्स मेल कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर आपके बिग बॉस में नॉमिनेशन पक्का भिजवा दो भाई, कोई टेंशन नहीं है आपका भाई, सीधा ट्रॉफी लेके निकलेगा भाई बाहर, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। एंड ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, पता नहीं लगता टाइम का, 8:50 ऑलमोस्ट 51 ऑन द क्लॉक, 9 बजे सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, FM 107 Qatar। इंशाल्लाह होगी आपसे कल मुलाकात, फेवरे मिलते हैं सुबह 6 बजे, और अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद ज़रूरी हैं। मां सलाम तेरी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामिन, प्रोग्राम आज की दुआ में हम सूरत यूनुस में मजकूर एक दुआ आपके साथ शेयर करेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में फ़िरऔन के जुल्म के वक्त मांगी थी। मतने दुआ यूं है, रब्बना

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: दोस्तों, मैत्राज ऐप के जरिए वर्क वीजा आसानी और तेजी से जारी किया जा सकता है, जिसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत भी नहीं होती। इस खदमत से फायदा उठाने के लिए सबसे पहले मैत्राज ऐप की होम स्क्रीन पर जाकर वीजा का इंतखाब करें, फिर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हुए वर्क वीजा का ऑप्शन चुनें। वर्क वीजा के सफहे पर मुतालिक एप्लीकेशन नंबर सिलेक्ट करने के बाद इशू वीजा पर क्लिक करें। इसके बाद एप्लीकेंट की कौमियत या नेशनैलिटी का इंतखाब करें और उसके पासपोर्ट की वाजे कॉपी अपलोड करें। फिर एक साफ और वाजे पर्सनल फोटोग्राफ अपलोड करें। तमाम मालूमात अपलोड करने के बाद जाती डेटा का एहतियात से जायजा लें और यकीन कर लें कि तमाम तफसीलात दुरुस्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। दरख्वास्त जमा करते ही अमल मुकम्मल हो जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए मुतालिका अथॉरिटी को भेज दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि ये डिजिटल सर्विस वीजा के इजरा के अमल को मजीद आसान, तेज और मौसर बनाती है और मुस्तफीद अफराद को घर या दफ्तर से ही अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करने की सहूलत फराहम करती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज, ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
6: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर,
7: यू मैटर
6: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। Tune into FM 107, Dil Se Desi.
7: Dil Se Desi.
8: Qatar ka pehla Desi radio station, FM 107, Dil Se Desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों फार्मूला 1 की दुनिया में कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जिनका करियर शायद बहुत छोटा

सीरीज में अपनी स्पीड और ड्राइविंग एबिलिटी का सबूत दिया। फार्मूला रेनो और फार्मूला 3 में उनकी परफॉर्मेंसेस ने मोटर स्पोर्ट के एक्सपर्ट्स की तवज्जो हासिल की। बियांची की तरक्की का एक अहम मोड़ 2009 में आया जब वो फरारी ड्राइवर एकेडमी के पहले मेंबर बने। फरारी ने उनमें फार्मूला 1 का पोटेंशियल देखा था और इसके बाद उन्होंने GP2 सीरीज में भी रेस की और फार्मूला 1 तक पहुंचने का रास्ता बनाया। सन 2013 में बियांची ने मारुसिया के साथ फार्मूला 1 डेब्यू किया। टीम ग्रिड पर सबसे कॉम्पिटिटिव टीम्स में शामिल नहीं थी, लेकिन बियांची ने अपनी ड्राइविंग से सबको मुतासिर किया। उनका सबसे यादगार फार्मूला 1 रिजल्ट सन 2014 मोनाको ग्रैंड प्री में आया। मोंटे कार्लो की तंग और मुश्किल स्ट्रीट्स पर बियांची ने एक जबरदस्त रेस ड्राइव करते हुए 9th पोजीशन हासिल की। इस नतीजे के साथ उन्होंने ना सिर्फ अपने करियर के पहले फार्मूला 1 पॉइंट्स हासिल किए बल्कि मारुसिया के लिए भी टीम हिस्ट्री के पहले चैंपियनशिप पॉइंट स्कोर किए। यह रिजल्ट इसलिए भी खास था क्योंकि मोनाको ग्रैंड प्री वो रेस थी जिसे बियांची बचपन से देखते आए थे। उन्होंने बताया था कि जब वो तकरीबन 5 साल के थे तब उन्होंने पहली मर्तबा मोनाको ग्रैंड प्री को ट्रैक साइड से देखा था। उनके बचपन के हीरो माइकल शुमाकर थे। फरारी के साथ उनका कनेक्शन भी मजबूत होता जाता रहा। 2014 में बियांची को फरारी फॉर्मूला 1 का टेस्ट करने का मौका मिला। सिल्वरस्टोन टेस्ट में उन्होंने फरारी के लिए ड्राइविंग की और उनका लॉन्ग टर्म टारगेट स्कुडेरिया फरारी की परमानेंट रेस सीट हासिल करना था, लेकिन फिर अक्टूबर 2014 में सुजुका यानी जापान के शहर सुजुका में वो हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी और फॉर्मूला 1 की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जापानीज ग्रैंड प्री के दौरान तेज बारिश हो रही थी। ट्रैक पर रिकवरी व्हीकल मौजूद था जो एड्रियन सुतील की डैमेज सोबर को हटा रहा था। बियांची की मारुसिया वेट कंडीशंस में कंट्रोल से बाहर हुई और रिकवरी व्हीकल से टकरा गई। उन्हें सीवियर हेड इंजरी हो गई और सर्जरी के बाद वो इंटेंसिव केयर में रहे। बियांची कई महीने तक इस चोट के बाद ट्रीटमेंट में रहे। नवंबर 2014 में उन्हें जापान से फ्रांस ट्रांसफर किया गया। वो आर्टिफिशियल कोमा से बाहर आ गए थे लेकिन उनकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्रिटिकल थी। 17 जुलाई 2015 को सिर्फ 25 साल की उम्र में जूल्स बियांची इस दुनिया को छोड़ गए। फॉर्मूला 1 ने एक ऐसे ड्राइवर को खो दिया जिसे फरारी और मोटरस्पोर्ट कम्युनिटी के एक बहुत टैलेंटेड फ्यूचर स्टार के तौर पर देखती थी। जूल्स बियांची का फॉर्मूला 1 करियर सिर्फ 2 सीजन तक रहा दोस्तों, लेकिन मोनाको में उनका 9th प्लेस फिनिश और मारुसिया के लिए पहले पॉइंट्स उनकी लेगेसी का अहम हिस्सा बन गए। दोस्तों, बियांची की कहानी हमें याद दिलाती है कि मोटरस्पोर्ट सिर्फ स्पीड और ट्रॉफीज का नाम नहीं, इसमें करेज, ख्वाब और सैक्रिफाइस भी शामिल है। जूल्स बियांची एक ऐसा नाम जिसका फॉर्मूला 1 सफर छोटा था लेकिन जिसकी याद मोटरस्पोर्ट की दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगी। अगले हफ्ते एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
1: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM, एट 3 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: another tech update. और आज जो मैं वेबसाइट बताऊंगा बड़ी भारी भारी काम करने वाली वेबसाइट्स हैं, ये बिल्कुल हल्की मत लीजिएगा. आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं, इस अपडेट से जुड़े हैं पहली मर्तबा या 40वीं मर्तबा, वो नहीं बता मुझे, मगर आज की वेबसाइट नोट जरूर कीजिएगा. सो आप तैयार हैं अपने फोन के साथ या फिर कोई नोट करने वाला है आपके साथ है, रेडी है? मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ. चलो 5 दे दिए, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स बिगिन. तो पहली जो वेबसाइट है जो बेहद काम की है और इससे आप ना जाने कितने काम कर सकते हैं, इसका नाम है ottermind.ai, OTTERMIND. क्या है वेबसाइट का नाम? OTTERMIND. डी लास्ट में टी ना सुनाई दे, इसलिए जस्ट क्लियरिफाइंग. तो जब अब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑटर माइंड एक ऐसा एआई है, इट हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन ब्रो. मतलब आप इस पे डॉक्यूमेंट को एनालाइज कीजिए, डॉक्यूमेंट में से कुछ चीज निकालिए, पीडीएफ फाइल को पूरा का पूरा समराइज कीजिए, फोटोज में से कुछ ढूंढना है ढूंढिए, लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स लाइक इस एआई का माइंड मुझे लगता है कि दो तीन मिनट 10-12 एआई को मिला के एक माइंड बना दिया गया है. बहुत बहुत कमाल की वेबसाइट है, बहुत कमाल का एआई है. आई डोंट नो इफ यू आर यूजिंग इट, पर मुझे लगता है कि आप एक बार यूज करना शुरू करेंगे तो यू माइट एज वेल लीन टुवर्ड्स इट मोर, आपको और इसकी तरफ रुझान हो जाएगा. सो ottermind.ai, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ज्यादा होता है तो ट्राई दिस वन. ओके, नाउ लेट्स हैव सम फन. अपडेट. अगली वेबसाइट का नाम है photor.com, FOTOR.com, FOTOR.com. photor.com क्या करता ना, ये मान लीजिए कोई आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है या मान लीजिए कोई विकिपीडिया है और आप उसे एक एंगेजमेंट तरीके से दिखाना चाहते हैं किसी को. कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी नजर में बोरिंग है, यार मजा नहीं आ रहा, प्रेजेंटेशन तो बना दी, आप क्या पढ़ू मैं, ओके लेट्स मूव टू द 5th slide. ये आजकल बोरिंग हो गया है, नोबडी वांट्स टू डू दिस. अगर आप क्लाइंट को डबल ट्रिपल इंप्रेस करना चाहते हैं तो आपकी जो बनी बनाई प्रेजेंटेशन है उसको photor.com पे जाके अपलोड कीजिए और फिर आप कमाल देखिए, आपकी प्रेजेंटेशन का एक कमाल का वीडियो तैयार होकर आपके सामने आ जाए. अमेजिंग वीडियो बनाएगा और उस वीडियो को सिर्फ बनाएगा नहीं, बाकियों की तरह इस एआई की खास बात यह है कि ये उसका एडिटेड वर्जन आपके सामने रख देगा, पूरी टाइमलाइन दे देगा. तो आपको कुछ एडिट करना है, ऑमिट करना है, हटाना है, बीच में से विद इन द होल टाइमलाइन आप एडिट करके हटा सकते हैं. क्या कमाल की चीज है यार, FOTOR, मेक थिंग्स अ लिटिल एंगेजिंग, यू नो, इमर्सिव, इससे आप कर सकते हैं. ओके, नाउ लास्ट वन. ये वाली वेबसाइट बहुत लोग यूज करने वाले हैं क्योंकि यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन. इसका नाम है pixverse.ai, PIXVERSE, PIXVERSE, pixverse.ai. आप अपनी फोटो के साथ इसमें जाने क्या क्या नहीं बना सकते, सारी ट्रेंडिंग चीजें आप इससे तैयार कर सकते हैं. एंड माय गॉड, किसी को अगर आपको ऑडियो विजुअल गिफ्ट देना है ना, इससे बढ़िया कुछ नहीं है भाई. बहुत कमाल का, बहुत बहुत कमाल का. एंड यू कैन प्ले विद इमेजेस, आप ट्राई करके देखिए, यू विल एब्सोल्युटली लव इट. मुझे बहुत पसंद आया, मतलब इट्स एक्चुअली फन और ट्रेंडी चीजें हैं इस पे. ओके, तो मैं अब जरा एक चीज बता दूं आपको, खबर की तरफ बढ़ेंगे लेकिन एक टिप लेते जाइए, वही खबर भी है. तो लोग कहते हैं कि भाई इजेक्ट करना क्यों जरूरी, जब आप एक यूएसबी ड्राइव लगाते हैं अपने सिस्टम में तो लोग कहते हैं इजेक्ट क्यों करूं मैं तो ऐसी खींच लेता हूं, पेन ड्राइव आज तक खराब नहीं हुई. तो भाई साहब, सिस्टम आपका रिएक्ट पता किस तरीके से करता है, जब आप पेन ड्राइव बिना इजेक्ट किए निकाल लेते हैं या हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं, आपका कंप्यूटर उस टाइम पे बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, वो मान के चल रहा होता है कि अभी भी पेन ड्राइव कनेक्टेड है और वो बहुत सारी चीजें कर रहा होता है बैकग्राउंड में, काफी प्रोसेसिंग चल रही होती है. तो जब आप इजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद निकालते हैं तो आपके कंप्यूटर को आप एक मैसेज देते हैं कि भाई मैंने यूएसबी निकाल ली है, आप अपना काम जल्दी निपटा लें. तो उस केस में जो पीसी लैपटॉप व्हाटएवर इट इज, वो जल्दी काम आपका खत्म करता है, आपका डेटा करप्ट होने से बचता है. नहीं हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शानदार, लेकिन होने के चांसेस आप बढ़ाएंगे अगर आप बिना इजेक्ट के करेंगे. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. मिलते हैं अगली अपडेट में, एंड स्टे ट्यून्ड.
1: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है.

0: क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन, आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही। आज ही सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107। FM 107। दिल से देसी।
0: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज मैं आपसे मुलाकात करता हूं और बताता हूं कि कैसे आप नए जमाने के नए फ्रॉड और स्कैम से बच सकते हैं। आज जिस स्कैम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है द फेक इन्फ्लुएंसर इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर स्कैम। क्या है ये स्कैम, कैसे काम करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते यूज के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के जो तरीके हैं वो भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गए। इस नए तरीके के फ्रॉड में स्कैमर्स बहुत ही हाई क्वालिटी और असली दिखने वाली फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं। ये प्रोफाइल्स ऐसी दिखाई जाती हैं जैसे कि वो किसी बहुत ही मशहूर लोकल इन्फ्लुएंसर की हो। मिसाल के तौर पे आपके सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा शख्स आएगा और आप उसको जानते होंगे, या फिर उसके चेहरे का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड में किसी वॉइस का इस्तेमाल कर लिया हो या AI क्लोन बना लिया हो, तो ऐसे में आपके प्रोफाइल पे ये आते हैं, आपकी फीड पे ये आते हैं। और फिर जब आप इनके प्रोफाइल को चेक भी करते हैं, इनके पास हजारों के नंबर्स में एक्टिव फॉलोवर्स होते हैं। इन फेक अकाउंट्स का यूज करके फ्रॉडस्टर्स एक्चुअली लोकल एरिया के छोटे और बड़े अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर्स करने वाले बिजनेसमैन को टारगेट करते हैं। वो इन बिजनेसेस ओनर्स को कॉन्टेक्ट करते हैं और उन्हें एक अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं। स्कैमर्स उनसे कहते हैं कि अगर वो उन्हें कुछ पैसे देंगे तो वो उनकी टेलीविजन रिपेयर, एयर कंडीशनर रिपेयर या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को अपने हजारों फॉलोअर्स के सामने प्रमोट करेंगे, जिससे उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। छोटे बिजनेसेस ओनर्स जो हैं वो अपना काम बढ़ाने और ज्यादा कस्टमर्स पाने के लालच में इनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन इस स्कीम का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब बिजनेस ओनर उन्हें अपफ्रंट प्रमोशनल फी यानी कि एडवांस पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही स्कैमर्स के पास पैसा पहुंचता है वो इन्फ्लुएंसर अकाउंट या तो रातों रात डिलीट कर देता है या फिर वो बिजनेस ओनर के प्रोफाइल को हर जगह से ब्लॉक कर देता है, जिससे उनका पैसा पूरी तरह डूब जाता है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन है, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपसे एडवांस पेमेंट के लिए कहा जाता है बगैर आपसे मुलाकात किए। और कई बार जब आप प्रोफाइल चेक करते हैं तो प्रोफाइल चेक करते हुए जब आप उनके फॉलोवर्स को देखते हैं, उनके फ्रेंड्स को देखते हैं, उसमें अच्छा खासा नंबर होता है। लेकिन यहां पर है असली बात, आमतौर पे लोग अपने प्रोफाइल पे बॉट फॉलोवर खरीद लेते हैं, यानी कि बॉट जो भी रोबोट जैसे होता है वैसे ही बॉट फॉलोवर्स होते हैं जो किसी भी प्रोफाइल को फॉलो करते हैं। और ऐसे लाखों बॉट प्रोफाइल को फॉलो करते हैं, उसमें हजारों लाखों नंबर दिखते हैं और आप उन पर भरोसा कर लेते हैं। कई बार लाइक और कॉमेंट भी फेक होते हैं, उनको भी खरीदा जा सकता है। थोड़े पैसे खर्च कर या आपके भी फॉलोवर लेकिन एज अ बॉट बढ़ जाते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है इस पर अगर नजर डालें तो सबसे पहला और जरूरी कदम यह है कि किसी भी इन्फ्लुएंसर को कभी भी पेमेंट करने से पहले उन्हें बहुत ही तरीके से वेरीफाई करें। बिजनेस ओनर्स को इंटरनेट पर अवेलेबल इंडिपेंडेंट एनालिटिक्स टूल का यूज करना चाहिए। इन टूल्स की मदद से वो उस इन्फ्लुएंसर के रियल एंगेजमेंट रेट्स को इजिली चेक कर सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनके फॉलोवर्स असली हैं या फेक हैं। इसके साथ ही उन्हें उनके फॉलोवर काउंट की हिस्ट्री को भी एनालाइज करना चाहिए। अगर फॉलोवर काउंट्स में सडन जंप्स आ रहे हैं तो ये साफ इशारा है कि वो फॉलोवर्स रियल नहीं है बल्कि पेड बॉट्स हैं। इसके अलावा कभी भी सिर्फ फोन पर या चैट पर डील फिक्स ना करें, हमेशा एक फॉर्मल और लीगली साइन कॉन्ट्रैक्ट पर इंसिस्ट करें जिसमें दोनों तरफ से सारी डिलीवरेबल्स और टर्म्स साफ साफ आउटलाइन की गई हो। सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी डायरेक्ट वायर ट्रांसफर, बैंक अकाउंट ट्रांसफर या कैश में एडवांस पेमेंट ना करें। हमेशा ऐसे सिक्योर पेमेंट प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज करें जिसमें बायर प्रोटेक्शन फीचर अवेलेबल हो, ताकि अगर कोई फ्रॉड हो भी तो आप अपना पैसा क्लेम करके वापस पा सकें। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का फ्रॉड अवेयरनेस का प्रोग्राम, जहां पर आपको उम्मीदन इसका सॉल्यूशन भी मिल गया है और किस तरीके से नए लोग नए जमाने में आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
2: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है,
3: नजर यूं झुकाना मेरे लिए है बस, मेरे लिए है।
2: तो कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमीता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।
2: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं वेल्थ मैनेजमेंट पे। पैसा

ज्यादा पैसे कमाना है लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है उसे सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है सवाल ये है कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है और क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है क्या हर शख्स के लिए होता है तो चलिए पहले मैं आपको समझाती हूँ कि वेल्थ मैनेजमेंट है क्या बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसों को प्लानिंग के साथ मैनेज करना यानी कितना पैसा कमाया कितना पैसा सेव किया कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना पैसा फ्यूचर के लिए सिक्योर रखना है अगर एक इनकम वेल्थ मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा देखिए सिर्फ इनकम ही लोग समझते हैं कि बड़ी जरूरी है बहुत से लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार रहते हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज इनकम के बावजूद भी फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं फर्क सिर्फ एक चीज का है वो है वेल्थ मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट अगर हर महीने जितना पैसा आए उतना खर्च हो जाए तो फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव नहीं होता इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट का पहला कदम है बजटिंग अब बजटिंग क्यों जरूरी है देखिए हर महीने अपनी इनकम और एक्सपेंसेस लिखना एक बड़ी अच्छी हैबिट है ये आपको बताती है कि पैसा कहाँ जा रहा है देखिए इमरजेंसी फंड एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह होता है जो मुश्किल वक्त में मदद करता है वहीं पर एक और सवाल है कि वेल्थ मैनेजमेंट और फ्यूचर गोल्स इसमें कैसे तालमेल बैठाया जाए हर इंसान की कुछ ड्रीम्स होते हैं घर खरीदना है अपना

सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं इसीलिए फाइनेंशियल सक्सेस का ताल्लुक सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि हैबिट्स और माइंडसेट से है अब गुड वेल्थ मैनेजमेंट के फायदे क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ सबसे बड़ा फायदा है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है फ्यूचर सिक्योर महसूस होता है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को आप आसानी से हैंडल कर पाते हैं कई लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं फैमिली के लिए स्टेबिलिटी पैदा होती है और अगर वेल्थ मैनेजमेंट ना हो तो हर महीने पैसों की टेंशन हो सकती है डेट बढ़ सकता है इमरजेंसी में मुश्किल पैदा हो सकती है और फ्यूचर प्लानिंग कमज़ोर हो सकती है इसीलिए पैसे कमाना अहम है लेकिन उसे समझदारी से मैनेज करना उससे भी ज़्यादा अहम कितना इम्पोर्टेंट है तो बस आज हमने और आपने समझा कि वेल्थ मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है कितना आ रहा है कहाँ जा रहा है इसका गुड बैलेंस और इसके बीच गुड बैलेंस और इसका गुड चेक दौलत सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आप कितना कमाते हैं असल दौलत ये है कि आप जो कमाते हैं उसे कितना समझदारी से मैनेज करते हैं तो वेल्थ मैनेजमेंट हमें पैसों का गुलाम नहीं बल्कि उसका बेहतर मैनेजर बनाता है तो क्या आप एक बेहतर मैनेजर हैं अपने वेल्थ के बताइएगा मुझे जरूर 666-222-107 पर फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुन 3 FM 107

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर.
1: FM 107, time check.

0: समझ भी नहीं आ रहा अभी मैंने मतलब ये महसूस करने की कोशिश करी हूं हाँ यार अंगूठा तो चल रहा है दोनों अंगूठे चल रहे हैं
1: दोनों मतलब मैं कह रही थी मेरा सिर्फ एक राइट हैंड का अंगूठा सिक्स पैक बने में इन्होंने अपने दोनों अंगूठे के सिक्स पैक बना लिए
0: दोनों दोनों चल रहे हैं
1: ये सिमेट्रिकल होने का सही फायदा उठा रही है अच्छा भाई नंबर नंबर नंबर नंबर हमारा नंबर
0: है कॉल करने के लिए 4434377 और जिस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं यही अंगूठों का इस्तेमाल करते हुए वो नंबर क्या है
1: वो है मैसेज के लिए 666-22107 और मैं आज मैं शो के शुरू में ही बता दूं खबरदार जो 10:30 पे किसी ने कॉल की है या खबरदार जो कोई ऑन एयर आया है हमारे साथ 10:30 पर
0: बिल्कुल गाना चला
1: बहुत डांट पिटेगी बहुत मार पिटेगी हम मारते 10 हैं गिनते 1 हैं
0: हाँ नहीं उसको तो नहीं पड़ेगी लेकिन हमें हमारे इम्कान बहुत है
1: देखें हमें पिटती 10 है और गिनते 1 है तो भाई हमने जाना होता है 10:30 में ब्रेक पे तो समझ लो बात को अपनी बातें अच्छी रखो अच्छी बातें
0: और जल्दी कॉल करें मतलब लेट कॉल ना करें अभी कॉल करें अभी कॉल करें मौके से फायदा उठाएं अभी कॉल करें ये पता है क्या अब तो खैर फिर भी कुछ सुधर गए हैं लोग वरना पहले होता ये था कि 10:20 पे मेरे पास पहली कॉल आती थी और उसके बाद फिर लोग बोलते थे कि ये क्या हो रहा है अभी हमने कॉल करना शुरू की और शो खत्म हो गया
1: हाँ ये भी मसला होता है अच्छा कॉल तो करेंगे ये तो बता दें आपको आज का मुद्दा क्या है भाई देखिए मुद्दा ये है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना देखो अपनी पर्सनालिटी को समझना और अपनी वैल्यूज को दूसरों की अप्रूवल से अलग रखना इन शॉर्ट हम बात करेंगे आज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग कंफर्टेबल विद योरसेल्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे चल रहे हैं कि वो कहते हैं भाई हमने ये बात सोच ली या हमने ये बात कर ली हमने ये बात समझ ली तो भाई आई डोंट केयर दूसरों का अप्रूवल की जरूरत नहीं है
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम खैरियत
1: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कौन है हमारे साथ
2: आसिफ अंसारी
1: आसिफ भाई आप माशाल्लाह
0: हो गया है आपकी आवाज में इतनी बेस
2: नहीं माशाल्लाह मुझे
1: जुकाम हुआ है
2: वायरल हो गया है हां जुकाम कल से फीवर है
1: अच्छा आसिफ भाई ये कोई आपने क्या कहते हैं वैक्सीनेशन वगैरह नहीं लगवाई
2: कब अभी
1: हाँ जी असल में पता है क्या ये जो ये मैं हमेशा याद रखती हूँ और जितने लोग सुन रहे हैं ना वो भी ये बात सुन लें कि ये जो महीना होता है ना सितंबर अक्टूबर नवंबर इसमें हेल्थ सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन लगाई जाती है और वो बोलते यही हैं कि ये सीजनल वैक्सीनेशन है हाँ ये और बात है मैंने जाके डॉक्टर से पूछा था मैंने कहा इसके बावजूद भी तो खांसी जुकाम हो जाता है वो कहती हैं कि वायरल के ना 50,000 से ऊपर वेरिएंट होते हैं तो ये आपको मोस्टली से बचा लेता है क्योंकि एक वायरल लगता है दूसरा उतरता है हमारा यही हशर चल रहा होता है
0: यस जी
1: तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे आप बताएं कि आपको जो है क्या लगता है कि इंसान को जैसा हूँ वैसा हूँ से कंफर्टेबल रहना चाहिए या लोगों की अप्रूवल का वेट करना चाहिए कि नहीं भाई देखो ऐसे नहीं इसको कान को ऐसे नहीं पकड़ो ऐसे तोड़ो मरोड़ो और लेफ्ट से नहीं राइट साइड से पकड़ो
2: नहीं मैं तो यही कि जैसा हूँ वही ठीक है लेकिन अपने अंदर चेंजेस लाना चाहिए
1: पॉजिटिव
2: के हिसाब से
1: पॉजिटिव
2: पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर लाना चाहिए
1: उसे हम सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं सही
2: सेल्फ जो है अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए लेकिन किसी कोई अगर बोलता है कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे हो जाओ तो वो चीज नहीं
1: सही
2: वो नहीं कर सकता मैं किसी की मर्जी का मालिक नहीं हूँ
1: सही अक्सर मतलब है
2: सॉरी किसी की मर्जी का जो है
1: मोहताज नहीं हूँ किसी की मर्जी का मालिक नहीं अच्छा अक्सर औकात ऐसा होता है ना कि बहुत सारे हमारा अक्सर हमारे कल्चर में ये एक चीज़ है कि लोग जो है ना अपनी खुशी को और अपने कॉन्फिडेंस को ना दूसरों के ओपिनियन से जोड़ लेते हैं ख़ासतौर पर जो आप कह लें कि जो करीबी रिश्ते होते हैं ना ख़ानदान वाले रिलेटिव्स ये वो इनसे बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई फ़लाना जो है ना वो ये ना सोच ले फ़लाना ये ना कर ले
2: एक चीज मैं बताऊं जैसे अभी कुछ दिन पहले एक टॉपिक चल रहा था कौन क्या कहेगा ठीक है तो जो कह रहा है उसको कहने दो हमें अपने हिसाब से अपना अच्छा बुरा मुझे खुद मालूम है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और अपने अंदर पॉजिटिव जो है चेंजेस लाते रहना चाहिए वो एक अलग बात है लेकिन किसी के हिसाब से वो नहीं हो सकता है ठीक है कोई मुझे बोलता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे चलो सजेशन अच्छी चीज है सजेशन लेना और देना मशवरा करना एक अच्छी चीज है लेकिन करना अपने कल को कोई भी बंदा ये नहीं बोल सके मैंने ऐसा बोला था तो इसको ये

0: इस मकाम पे पहुंच गया और मैंने इसके लिए मना करा था, देखा इसने जबरदस्ती करा था।
1: अच्छा,
0: लॉस और प्रॉफिट दोनों क्रेडिट मुझे चाहिए, किसी तीसरे को नहीं दे सकता हूँ मैं।
1: आई लाइक दिस, मुझे ये चीज अच्छी लगती। मैं कहती हूँ अपने डिसीजन खुद लो, और फिर अगर आपको घाटा भी होगा ना, तो वो आपके दिल के अंदर एक बात होती है कि आप कहते हो ये डिसीजन मैंने ही तो लिया था, वो शायद दुख कम हो जाता है थोड़ा सा।
0: देखिए एक चीज बता, अगर नुकसान होता है या प्रॉफिट होता है तो एक अच्छी चीज ये है, सीखने को मिलता है।
1: सही सही
0: है, नुकसान से कभी जो है, लेकिन डिसीजन मेरा अपना है, कल को कोई ये ना बोल सके कि अब मैंने इसको सजेशन दिए। तरक्की के ऊपर जो है सर हर आदमी खड़ा हो जाता है साथ में, कि भाई मैंने
1: किया
0: ये चीज बोली थी, मैंने इसको सजेशन दिया था तो ये यहाँ पे पहुंचा। और जब लॉस होता है तो सारे बंदे जो है हाथ खड़े कर लेते हैं,
1: सब दरख्तों भी छुप जाते हैं।
0: सब छुप जाते हैं। बेहतर मेरी समझ से यही है कि जो है अपने खुद के ही डिसीजन लेने चाहिए और अपने आप को अपने हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए, ना ही किसी के हिसाब से।
1: सही सही सही सही, चले जी, ये तो अच्छी बात हो गई, शुक्र है अल्लाह ताला आपको सेहत दे। पहली बात तो ये कि आपको खांसी जुकाम से दूर रखे, जरा यखनी शखनी पिए।
0: वो सारे सब कुछ कर रहा हूँ,
1: अपने वक्त से जाएगा,
2: अपने वक्त से जाएगा, यही होता है। और बल्कि वो आपके ना आफ्टर इफेक्ट्स चलते रहते हैं, मेरे अभी तक चल रहा है,
1: एक एक दो दो महीना चलता
0: है। इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे सारी चीजें एकदम खत्म होती है।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस वो थोड़ा सा वो थोड़ा हड्डियों में ना थोड़ी जान रहती है, अगर आप थोड़ा बहुत अच्छा अपना खाना पीना रखो ना।
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: खाना पीना तो अच्छा ही होता है, लेकिन मैं जो हूँ एक्चुअल मांस मच्छी नॉनवेज तो बहुत कम ही खाता थी।
1: कोई बात नहीं, आप सब्जियों का सूप पिए, कॉर्न सूप पिए आप,
0: कॉर्न सूप।
1: चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। राइट, तो हमारे साथ आसिफ साहब, बजाए मतलब इसके बावजूद कि वो बीमार थे,
1: कॉल की उन्होंने कॉल की। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, आसिफ भाई ने एक चीज बड़ी अच्छी बोली कि चाहे दुख होता है, चाहे खुशी होती है, चाहे प्रॉफिट होता है, चाहे लॉस होता है, जब आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो और उसके ऊपर अड़े रहते हो ना, और वो आपका एक अपना कंफर्ट जोन होता है अपने साथ, आपकी अपनी समझ, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है अपने साथ कि हाँ जो हो रहा है ना वो मेरा फैसला था ना, तो मैंने ऐसा फैसला लिया, तो वो मैं उसका जो मुझे मिलेगा इन रिवर्ट वो मैं उसका हकदार हूँ।
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। और बल्कि ये ना फैसला हमेशा एक तो सोच समझ के आपको मशवरा देना है, अगर आपको लगता है कि वाकई मतलब कोई बहुत ही अच्छा मशवरा देने वाला है, आपसे ज़्यादा आपके लिए सोच सकता है।
1: मामिश, आपको लगता है हम दूसरों के मशवरे सुनते हैं?
2: यार मैं तो इतना नहीं सुनती,
1: मैं नहीं सुनती।
2: हाँ, मैं भी इसीलिए प्रॉब्लम है ये, मैं भी इसीलिए कह रही हूँ कि मैं ले लेती हूँ मशवरे, लेकिन फिर मैं दिमाग अपना ही इस्तेमाल करती हूँ।
1: मैं सुनती ज़रूर हूँ दूसरों की, लेकिन मैं करती
2: ये
1: मैं दिमाग में तो आता हूँ लेकिन दिल में नहीं।
2: पूछ लेती हूँ काफ़ी लोगों से, और उसके बाद फिर जो दिमाग कहता है कि हाँ ऐसे तो ऐसे कर लोगे।
1: सही,
2: लेकिन हाँ ये मेरा मानना है कि आप कोई भी फैसला करने वाले हो उसको हर तरह से छान पटक के देख लो अच्छी तरीके से, क्योंकि फिर बाद में आपको ये महसूस ना हो कि ये जो होता है ना, बस हम दफा कहते हैं यार काश पहले मैंने ना किया होता, सोच लेता, ये मैंने क्या कर दिया, तो जो करना है ना फिर ये सोच के करना है कि बस अब ये जो कर रहा हूँ मैं, मुझे सही लग रहा है फिल वक्त, और मैं अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करते हुए ये कदम उठा रहा हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा, नो पछतावा। ये जरूरी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
2: जी क्या हाल है शहजादा सलीम?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये टॉपिक पे एक ही बात फाइनल है ना, फाइनली आती है, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी।
2: अच्छा,
1: सुनो सबकी करो, ये अपनी वाली पार्टी के, सुनो सबकी करो अपनी।
3: सुनने में कोई ये मतलब पैसे भी नहीं खर्च होते हैं ना कुछ नहीं, लेकिन एक बेचारे जो अपने एक उम्मीद लेकर आता है ना कि यार मैंने ये बताया ये थोड़ा इससे जरा सुन लेता, तो उसका भी मतलब रह जाता है कि यार चलो भाई ने मेरी इतनी सुना तो सही, लेकिन बात तो आपका अपना दिमाग है, आपकी अपनी पर्सनालिटी है, आपको अपने को खुद से आपको अंदाजा है कि क्या सही क्या गलत है, तो इतना बेहतरीन खूबसूरत अल्लाह ने दिमाग दिया है, तो मैं तो समझता हूँ सुन लो सबकी, सबकी उनकी ले लो, लेकिन करो अपने उनकी जो दिल कहता है, और और दूसरा जिसका भी है जिसमें आपको शुभ शक नजर आए ना तो वो चीज है ना आपको रुझाना मत बढ़ो ना, जहाँ आपको शक लगे कि भाई नहीं यार ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा है ना, तो वहाँ फिर है ना जाओ ना फिर सही है ना। तो मेरा तो कहना यही है कि भाई सुनो सबकी लेकिन करो अपने दिल की, जो दिल में भले उसमें नुकसान हो या नफा
1: जो दिल कहे वही करते जाना। ये मस्त मलंग आदमी है, मस्त मौला।
3: हाँ मस्त मौला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि हर इंसान अपनी खुद अपनी मर्जी का खुद मुख्तार अपना मालिक है, अपना खुद मालिक है ना
1: अपने साथ। अच्छा ये एक बड़ी हकीकत सी बात है कि जब आप अपने डिसीजंस पे कायम रहते हो ना तो आप अपने साथ कंफर्टेबल रहते हो। आपको वो एक कुछ लोगों को ना बड़ी डाउटफुल पर्सनालिटी होती है, करूं नहीं करूं करूं नहीं करूं, और वो फटाफट दूसरों की बातों में उनको बोतल में उतारना इतना ईजी होता है ना क्योंकि दे आर नॉट कम्फर्टेबल विद देयर सेल्फ। उनको पता ही नहीं कि वो खुद क्या है और वो खुद क्या चाहते हैं। इतने मुझे जहर लगते ना ऐसे लोग।
3: अच्छा कुछ चीजें ना है इसमें पॉइंट्स वाली, किस तरह मालूम है जैसे कोई तरीके का आप ना एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, आपने कभी उस चीज में हाथ ही नहीं डाला, कभी उस पे देखा ही नहीं, लेकिन यार फिर वो देख लेते यार ये इसमें माहिर था ये बंदा, थोड़ा यार जरा सलाह तो ले लो, देखो इसका क्या इधर ख्याल है, इसकी क्या सोच है उसके बारे में ना। तो अगर उसमें अगर आपको कुछ ऐसा लगे क्या पॉजिटिविटी है और कुछ मतलब कंफर्टेबल कुछ नजर आ रहा है, कुछ फायदे वाली चीज नजर आ रही है तो बेशक बढ़ सकते हैं, लेकिन आप अगर जिस चीज में खुद माहिर हो, जिसमें आपका खुद का अपना एक कॉन्फिडेंस और आपका खुद का अपना एक डिसीजन है ना यार मैं तो बेहतर से बेहतर और इससे अच्छा भी कर सकता हूँ, तो मैं तो अलोन बेहतर है।
2: अलोन ही बेहतर है।
1: अकेले आए थे अकेले जाएंगे, क्या ही लेकर आए थे क्या ही लेकर जाएंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल जी
2: चले जी। ओके शाह सलीम थैंक यू जी, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। रीड तो हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: हां जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल चाल है आपके अब्दुल रूफ साहब?
4: अल्हम्दुलिल्लाह बस चले जी, बस ये होना तो यही चाहिए कि जो मैं जैसे मैं हूँ वैसा ही हूँ, लेकिन अगर आपकी जिंदगी आपका लाइफ स्टाइल आपका बिहेवियर जिस तरीके से गुजर रहा है तो कोई उसे अगर वॉच कर रहा है या उसे नोट कर रहा है तो आपकी अच्छी पॉजिटिव निशानदेही करता है तो मुझ में तब्दीली लानी चाहिए। अगर मेरे बर्ताव से या मेरी जात से कोई नुकसान पहुंच रहा है या मैं उसे समझ रहा हूँ कि मैं तो ठीक था, मेरा तो यही स्टाइल है, मैं तो इसी तरह लोगों से डील करता हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें या कुछ निशानदेही आपके ऊपर हो कि भाई ये वहां पर आप गलत थे, तो एक्सेप्ट करके अपने इस बिहेवियर में चेंज लानी बेहतर है।
2: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन होता क्या अब्दुल रूफ साहब मैंने देखा
4: हमेशा
2: है कि
4: कोई अकले कुल नहीं होता,
2: नहीं होता
4: बिल्कुल फैक्ट सकते हैं
2: बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने ये नोट की है बात कि आपकी निशानदेही वो जो कहते हैं ना कि आपके अगर आपके मुंह पे कोई आपकी बता रहा है आपकी गलती की निशानदेही कर रहा है तो आपका दोस्त होता है, नहीं यूजली दोस्त होते हैं, लेकिन आजकल लोगों में वही वाली बात है ये लोग बुरा मान जाते हैं ना, तो लोगों के अंदर भी इतनी हिम्मत रही नहीं है कि किसी को मुंह पे बताया, बल्कि मैंने देखा है ज्यादातर मतलब आप देखो
1: एग्जैक्टली
2: और ये भी है ना कि अगर आप देखो कि किसी को अगर समझाने की किसी को बताने की कोशिश भी की जा रही होगी ना या तो आपसे वो रुतबे में किसी चीज में बहुत ही कम होगा तो आप उसको बोल लोगे, यूजली मतलब आप अपने बराबर के स्टेटस पे या फिर अपने से ऊपर अगर कोई गलती है तो आप बोलोगे नहीं बल्कि उल्टी आप चमचागिरी करते रहोगे।
4: बस वो के तरीकेकार होता है, आप किसी को अगर समझाना है तो उसे अकेले में समझाएं अगर किसी
2: लेकिन कहाँ कोई हिम्मत करता है आपको है। आपको मिला है कोई ऐसा बंदा जो अपने स्टेटस के बंदे को या अपने से ऊपर वाले बंदे को उसकी गलती की निशानदेही कराए?
4: आपसे जो सुपीरियर है या आपसे जो ज्यादा पोजीशन में उसे तो कहना जरा मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी जात में अगर कुछ कैसे भी आप गुजार रहे जिंदगी लेकिन अगर हो सकता है आपको कोई चीज किसी ने हमारी महसूस की हो, कोई पॉजिटिव बंदा हो, आपका हमदर्द हो तो उसकी बात हमें सुन के अपने अंदर तब्दील लाने चाहिए। और दूसरा जो मेरी नजर में जो मेरे माइंड में आता है कि आपका जो कल गुजरा है उस पे पशेमानी ना हो, जो आज गुजर रहा है उस पे इत्मीनान हो और कल आने वाली की फिक्र हो तो आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी।
1: अच्छा मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आपको लगता है कि आजकल के दौर में, समावेश कह रही थी ना, आजकल के दौर में आपको लगता है कि अपने साथ कंफर्टेबल रहना मुश्किल बन गया है या आसान है या नॉर्मल है?

0: रहना है, खुशी खुशी रहना है, तो दे शुड बी मोर एंगेज्ड विद देमसेल्व्स. दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट सो मच ऑन अदर्स. ऑफकोर्स जो मतलब जो लाइफ के जो डिफरेंट पहलूज हैं उसमें तो डिपेंडेंसी आता ही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर खुद में खुश रहें, खुद में इन्वॉल्व रहें और
1: अपने आप को समझना बड़ा
0: साथ में, साथ में ये सारी चीजें रहे, तो ये सारी चीजें एक्चुअली बिकम्स अ वेरी गुड क्या बताए मतलब यूजफुल रिसोर्स व्हेन यू आर अलोन इन योर लाइफ. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि काफी अर्ली इन एज, फॉर एग्जांपल मतलब बाय द मिडिल ऑफ 40s आई थिंक पीपल शुड चेंज देयर वे ऑफ लुकिंग एट देमसेल्फ.
1: एग्जैक्टली,
0: खुद से कैसे खुश रह सकें.
1: एग्जैक्टली, अग्री विद यू, टोटली अग्री विद यू. और ये बहुत वैलिड पॉइंट है शरण जी, थैंक यू सो मच. ये आपने हमें जो है इतना, और एंड आई डू अग्री विद दिस पॉइंट कि अपनी कोई ना कोई आपकी हॉबी या कोई अपना एक कंफर्ट जोन, एक हैप्पी प्लेस होनी चाहिए.
2: एग्जैक्टली. आपने सुदेश नाम बताया ना, सुदेश जी, सुदिस्तो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके.
0: बहुत अच्छा लगा आप लोगों का, आज भी सुन रहा था तो हाउ यू यू नो बच्चों के साथ बात करना, डिफरेंट जनरेशन के साथ बात करना, तो उनमें कैसे उलझ जाते हैं हम लोग एवरीडे लाइफ में. दीज थिंग्स एक मायने रखता है. तो बट एक चीज बता दूं आप लोगों को, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस फील्ड ओनली, फ्रॉम द फील्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर.
1: ओके.
0: तो इसलिए एक चीज है कि हर एक इंसान का अपना एक ईगो रहता है.
1: हाँ जी.
0: और वो ईगो
1: बच्चों के अंदर भी
0: बुरा या अच्छा नहीं होता है, कोई बुरा या अच्छा नहीं होता है. ईगोस तो अलग अलग होते हैं, एक चाइल्ड ईगो होता है, एडल्ट ईगो होता है और पेरेंटल ईगो होता है. लेकिन उन सबको अगर हम थोड़े से समझ जाएं, जो अभी आप मैंने सुना सफा जी कह रहे थे कि यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट, यू सीक टू अंडरस्टैंड एंड देन यू विल बी अंडरस्टूड बेटर. तो वो जो ईगोज होते हैं उसमें देखा जाए तो द ट्रांजैक्शंस वी डू एवरी डे इन आवर एवरी डे लाइफ विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, लेट इट बी आवर चिल्ड्रन टू लेट इट बी आवर सीनियर्स, दोज ट्रांजैक्शंस जो हम करते हैं उसमें पहली चीज होती है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन, वेयर इज शी और ही कमिंग फ्रॉम, मतलब उनका स्टोरी क्या है, व्हाई इज दैट पर्सन स्पीकिंग लाइक दिस,
1: सही,
0: तो ऐसा बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट होता है समझना. उसके बाद अपनी जो राय है, अपना जो थॉट है वो सामने रखें.
2: बिल्कुल सही हो गया. चले नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया. ओके जी, थैंक्स अ लॉट. आप जरूर कॉल करते रहिएगा, हम वेट करेंगे आपकी कॉल का. थैंक यू जी, थैंक यू,
0: थैंक यू,
2: बाय बाय, अल्लाह हाफिज,
0: बाय बाय, गुड डे,
2: गुड डे, बाय बाय. रीच, हम एक मिनट लेट हो गए लेकिन हम ब्रेक पे जा रहे हैं.
1: एक पल, एक पल, एक पल.

0: जी वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 107 पर यू मैटर विद सफा एंड
1: महवश। और हमारे साथ अभी जो कॉलर थे बहुत ही अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हम उसको उस वक्त कॉल काटना पड़ी। अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे माजरत, लेकिन हम चाहेंगे अब हमें दोबारा जरूर कॉल करें क्योंकि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। खैर जी, टॉपिक एक दफा फिर से रिपीट कर देते हैं और जब तक टॉपिक रिपीट होता है मैसेजेस भी पढ़ देंगे।
0: टॉपिक ये चल रहा है भाई, देखिए टॉपिक बड़ा सिंपल सा है कि इंसान को ना अपने साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। और ये जो सुदिशो भाई ने बात की ना कि खास तौर पे आई रियली एडमायर

0: कल की बात है, मेरी बेटी को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो बजाय इसके कि मैं चुड़ करूं कि भाई तुम इतनी 100-100 रियाल की एक महंगी बुक उठा रही हो, तुम इससे ज्यादा सस्ती तुम ऑनलाइन कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, 50,000 जुगाड़ होते हैं तुम वो कर लो, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, वो जो एक शौक है ना आप उसको रखो लाइफ टाइम।
1: अच्छा मेरा भी ऐसा था, पहले मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा कुछ स्टैमिना उस तरह का नहीं रहता बंदे का, फिर वो किताब का ही होता है कि आप लेके बैठो तो फिर आपने मतलब आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए।
0: मुझे बड़ा मजा आता है
1: पढ़ती थी मैं, बहुत पढ़ती थी, लेकिन अब वो अनफॉर्चुनेटली इतनी नहीं रह सकी आदत।
0: लेकिन मैं कहती हूँ माविश होना चाहिए, जिस इंसान के पास
1: होना चाहिए ना, अभी भी छुट्टियां होती है ना, हर छुट्टियों पे मैं लाजमी पढ़ती हूँ, और बाज़ोकत पढ़ी हुई चीजें पढ़ती हूँ।
0: मैंने ये देखा है कि जिन लोगों के पास नहीं होता ना, उनकी लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है।
1: मैं यही आना चाह रही हूँ, आप मुझे अगर आने
0: दें
1: तो वो बात क्या है कि ये जो होता है ना पाकिस्तानी ड्रामा, मैं नहीं देखती थी। मतलब मेरा अगर आप पूरा यूनिवर्सिटी टाइम देखो, स्कूल लाइफ देखो, सब कुछ, तो मैंने बड़ा कम टीवी देखा है। मैं टीवी देखने वाली नहीं थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि दीगर इतने काम होते थे, पढ़ाई किताबों वाली थी, किताबें पढ़ती थी सब कुछ। लेकिन फिर आप जब यहाँ पे आके अकेले रह रहे होते हो और फिर डील कर रहे होते हो बहुत सारी चीज़ों से, जैसे मेरा इसी दौरान अम्मी का इंतकाल हुआ, पापा का इंतकाल हुआ, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, मतलब ये जो मेरा एक शौक सा बन गया, जो लोगों को लगता है ना कि भाई सैन ड्रामा, भाई कोई भी ड्रामा है महावश तो पूछ लो, ये तो देखती होंगी, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि मुझे एक वो स्केप चाहिए था,
0: चोर दरवाज़ा,
1: हाँ, जहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी से हटकर कोई और कहानियाँ देखूँ, दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो उससे कैसे डील कर रहे हैं। तो मैंने जब उस वक्त से ड्रामे देखना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे अब क्या होता है, आप ज़्यादा मिलने जुलने वाले नहीं हैं, आपके पास ज़्यादा लोग नहीं हैं, आप घर पे बंद हो, तो रोज़ आना ना एक नई कहानी, आप अगर कोई अच्छा चल रहा है सीरियल तो ये होता है कि आप वो देखते हो और आपको उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उनके उनसे आप रिलेट करने लगते हो। तो मैंने ये इसलिए करना शुरू किया था क्योंकि अब वो मूवीज वगैरह का तो इतना सीन रहा नहीं है यार, मतलब वो चीजें कभी आएंगी, कुछ होगा, लेकिन एक पाकिस्तानी ड्रामे का होता है रोज एक एपिसोड आपने एक घंटे की देख ली, आपका काफी हद तक मुझे लगता है कि स्ट्रेस रिलीवर है वो। तो ये चीज वाकई आपके पास, आपका कोई भी शौक है किसी भी तरह का, जैसे हम स्कॉलर्स की बात करें, वो भी हम करते हैं, लेकिन आप पूरे दिन नहीं सुन सकते, आपको कोई ना कोई एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो आप वाकई अपनी कोई ना कोई एक ऐसी हैबिट रखो, चाहे अगर आप किताब का आपके पास वक्त है, जैसे कि सफा कह रही है, आप किताब पढ़ो, आपके पास कोई और चीज़ है जो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि वो भी आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए।
0: होना चाहिए भाई, होना चाहिए। और मुझे ना वो, अरे भाई शोएब भाई कहाँ चले गए,
1: बहुत सारे लोग कह रहे हैं शोएब भाई नहीं आ रहे बहुत दिनों से,
0: शोएब भाई की मुझे याद आ रहा है फिशिंग, फिशिंग नहीं छोड़ सकता। अरे भाई होना चाहिए इंसान,
1: शोएब भाई और एक मैं सॉरी नाम मिस कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छी बात करते हैं, कुछ हैदराबाद के आई थिंक, वो जो कच्ची बिरयानी बना रहे थे, कच्चे गोश्त की बिरयानी, मुझे नाम नहीं मिस करी मैं, अब्दुल समद,
0: अब्दुल समद भाई,
1: हाँ वो काफी दिनों से गायब है भाई, कहाँ है अब्दुल समद, आप कॉल है हमारे पास है और साथ ही, अच्छा मैं मैसेजेस एक दो पढ़ दूं फिर कॉल ले लेती हूँ। मुबीन बुखारी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मुझे तुम्हें हम सबको कहते हैं गुड मॉर्निंग भी इन्होंने कहा था। इसके अलावा जो है ना मोहम्मद यूसुफ खान ने हमें वेलकम कहा, खैरियत पूछी, और इसके साथ का मैं सोचता हूं कि जैसा हूं वैसे ही रहूं और रहता हूं, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी पर्सनैलिटी में कोई भी कुछ आए, बदलाव आए, जो है वो है, लेकिन मेरी वाइफ कहती रहती है चेंजेस लाने को, कुछ हद तक करता रहता हूं उनकी खुशी के लिए और हद तक मैं अवॉइड भी करता हूं, और लेकिन आई प्रेफर नॉट चेंज माई सेल्फ इन माई पर्सनैलिटी, जैसा हूँ खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह,
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: जबरदस्त जबरदस्त भाई,
0: जब तक आप दूसरे गले में हड्डी नहीं बन रहे तब तक तो सही है,
1: सही है। अस्सलाम वालेकुम मावश, मैं सफा जी, और एक तो ट्यूजडे भूल जाती है और दूसरे अपने अकाउंट पर पोस्ट, जब तक ICU नहीं पहुँचता तब तक कुछ नहीं होता, मतलब ICU
0: नहीं समझ रही आप,
1: नहीं
0: मतलब ये कि मेरा अकाउंट लिटरली मैंने कहीं लास्ट पोस्ट डाला होगा साल के शुरू में,
1: तो मेरा भी यही सीन बहन,
0: वो बस वो यही कह रहे हैं, जब तक आखिरी सांसें ना ले रहा अकाउंट वाले भेजना ना शुरू कर दें आपको क्लेम।
1: ये भाई आपने किसको कहा था, सफा को कहा था या मुझे कहा था, क्योंकि हम दोनों रिलेट कर सकते हैं इस बात से, और अब तक खुद से खुश और पर्सनालिटी से मुतमईन होते हैं तब भी दूसरों को खुश करना और मुतमईन करना छोड़ दें, बाउंड्री लाइन जो है ना खींचना जरूरी है। ये भाई हैं कौन, इनका नाम पढ़ देते हैं, रियाज अहमद कह रहे हैं। अच्छा भाई अपना तो मेरा पता है, मैं पहले की 2012 जब मैं फारिग थी ना, बहुत ही यहाँ पे नई नई आई हुई, मतलब 11 में हम लोग आए थे, तो जब मैं फारिग थी मैं उस जमाने की पोस्ट देती हूँ, पता भी नहीं था कुछ चीज़ों के इतने मतलब बेकार मतलब थे, मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से क्या लिखा हुआ होता है क्या होता है, मुझे लोग मतलब बोल पूछते थे तो मैं कहती थी मुझे पता नहीं है, मुझे जानना है क्या है, फिर मैं अब मैं सोचती हूँ मुझे तो शर्म आ रही होती है कि मैं इतना पोस्ट करती थी ना, रीपोस्ट करती थी हर वक्त चीज़ों को, इतनी मैं फारिग चल रही थी, लेकिन अब ये हालात हैं भाई, मैच्योर हो गई हूँ मैं, अब नहीं करती। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातहू, सब अपने अपने एतराफात
1: ऐसी ऐसी पोस्टें, मतलब अगर वो आ जाए ना मैं

0: फैमिली में आ जाए कि 2012 में ये पोस्ट किया था, 13 में ये पोस्ट किया था, मैं भाई मैं कहती कोई लाओ कुछ लाओ, मैं छुपाऊं अपने आप को.
1: आज क्या मौजू चल रहा है? अभी मैं देख रहा था, आप हैबिट से बात कर रही थी.
2: अपने साथ कंफर्टेबल होना, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग कंफर्टेबल विद योरसेल्फ. अपने साथ कंफर्टेबल होना, अपनी आदतें, अपने रूल्स, अपने
0: कंफर्ट जोन,
2: माय वे और हाईवे.
1: हाँ, लेकिन कोई भी आप अपने कंफर्टेबल रहने के लिए दूसरों का अनकंफर्टेबल ना करें. लेकिन जो आपकी बात मुझे मजे की लग रही थी ना, हैबिट्स की, जिसमें बुक्स हैं या एक्सरसाइज या ड्रामा, बिल्कुल मुझे पसंद है. और फैमिली में ऐसे ड्रामे, हमने सिर्फ याद है, हमने जो सब पूरी फैमिली अर्तुगरल देखती थी.
2: अरे भाई, हमारे घर में क्रेज था भाई, क्रेज था. मैं एक वाहिद हूँ जिसने कभी अर्तुगरल का कोई एक भी सीजन नहीं देखा है, एक भी एपिसोड नहीं देखा.
0: सीरियसली यार, आप चली जाएं, आप हमारी दुनिया की नहीं. आप जाएं, आपका आपकी जो असल जगह बनती है वो 16वीं सदी है.
1: तो उनमें उनकी स्ट्रेटजी, उनका लिविंग स्टाइल, उनका आपस में, यानी हमें बहुत सीखने को मिला. और लोगों को सरवाइव करने के लिए यकीनन औरतें और बच्चे भी, उनकी कमजोरी नहीं थी, उनकी पावर बनती थी. ये मैं बड़ा था कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. और जहाँ जरूरत पड़ती थी वो भी तलवार निकाल लेती थी.
0: बिल्कुल ऐसे
1: की हैबिट्स, या बिल्कुल कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग, मैं कोशिश करता हूँ, अब बच्चे बड़े हो गए हैं या पता नहीं मिसेज सुस्त हो गई हैं, बाहर जाना चलना उनको इतना पसंद नहीं. हाँ, ड्रामा पसंद करती हैं, बस सोफे पे बैठ के बहुत कुछ कर लेने चाहिए.
2: घर के इतने 36 काम होते हैं, लेडीज वैसे ही थक जाती हैं बेचारी. वो देखने में किसी को कुछ नहीं लग रहा होता, ये और बात है.
1: ऑफ करो सफा, तुम ना बजा फेवर कर रही हो. जितनी मशीनें, जितनी सहूलतें और छोटा सा घर,
2: तो आप क्या करें, चक्की में आटे पीसे वो बैठ कर इस उम्र में भी.
1: यार वो भी जो थी ना, मुझे मेरी नानी ने एक दफा किस्सा सुनाया मुख्तसर, कहती है वहाँ गांव में एक चोर आया. इवन कहते हैं कि वो औरत प्रेग्नेंट थी, उसने चोर का हाथ पकड़ लिया, वो चीखता चिल्लाता रहा, हाथ नहीं छुड़ा सका.
2: ओए भाई,
1: इतनी उसके हाथ में ताकत थी. और लोग काम करते थे, ये हमने बहाना बना लिया. एक्सरसाइज क्या करते हैं आप? आप क्या करते हैं? आप हिलते जुलते हैं
2: ना, आप मुझे मेरे इन लॉज की याद दिला रहे हैं ऐसी बातें करके.
1: तो इसका मतलब आप एक्सरसाइज में भी अपनी बॉडी को एक क्रिएटिव वो कमांड देते हैं, तो वो आपको फिर स्ट्रेंथ देती है. तो आजकल ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े डालो, टू करती है जी, सब कुछ हो गया, बस बाहर निकालो. और हम लोग मशीन,
2: और उसके साथ जो वो 36 काम कर रही होती हैं, वो
1: यार 36 में से जरा 6 काम बता देना, 30 में खुद कर लूंगा बाद में.
2: देखें, झाड़ू वो लगा रही होती हैं, पोछा वो लगा रही होती हैं, वैक्यूम वो लगा रही होती हैं, बच्चों के लिए खाने वो बना रही होती हैं, आपके लिए खाने वो बना रही होती हैं, घर की सफाई वो कर रही होती हैं.
1: यार खाना वो अपने लिए बना ले, मैं उसी में से खा लूंगा.
2: ये देखें अपना, ये
0: बाकी खा लूंगा, बाकी कर लूंगा.
1: मैं
0: देख रही थी किसी का ना, किसी ऐसी किसी लड़के ने बनाई हुई थी कि हाँ तुम लोग कहती हो ना कि मतलब खुद हम खाना बना लें, खुद ये कर लें, खुद वो कर लें, तो खुद कमाओ, खुद ये करो, पता नहीं कौन कौन सी उसने लिस्ट गिनवा दी. तो नीचे खवातीन ने लिखा हुआ था कि हम ये सारे काम कर लेंगे जो आपने बताए और करते हैं, आप एक खाना खुद बना लें.
2: मेरी कल परसों यही तो डिबेट हुई है अपनी मियां के साथ. मैंने कहा बस एक खाना, मुझे कहते हैं बस तुम अपना किचन संभाल लो. मुझे ना वो जो वर्ड है ना, बस बस किचन, मैंने कहा इस किचन में ना पूरी पूरी दुनिया समाती है.
1: क्या मैं 10 साल अकेला रहा हूँ, जिसमें 2-3 साल ना हम लोग वीकेंड में कपड़े खुद हाथ से धोते थे. जुमेरात एक छुट्टी जुम्मे की, जुमेरात की रात को हमने भिगो देने और सुबह ना हमने धो लेने. तो आप मैनेज कर लें, कुछ कर लें. मैं ये नहीं कहता कि उनको करना चाहिए, फैमिली में सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इन कामों को ना इतना बढ़ावा दे दे कि काम है कितनी सहूलत.
2: अच्छा ठीक है, ठीक है, हम एक काम करते हैं ना, आप बात कर रहे हैं 1-2 दिन की, ये आप बात करें 1-2 साल की. ठीक है, आपने कितने साल गुजारा था, आपने कितने साल कहा?
1: Almost 10 years.
2: अच्छा मुझे एक ईमान से बात बताइएगा, थकावट होती थी आपको कि नहीं होती थी?
0: अच्छा नहीं, देखिए एक और फैक्टर भी है ना, उस वक्त आपकी एज क्या थी?
1: आई एम लेस देन 30. मैं 21-22 में गया हूँ बाहर,
2: तो माशाल्लाह होती है.
0: हाँ, तो फिर वही, अब आपकी वाइफ की तो इस वक्त एज होगी ना, और एज बढ़ रही है, जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, और अपना अकेले का काम करते थे, वो सबका काम कर रही हैं.
1: मशीनें भी हैं, सब कुछ
2: मशीनें भी, मशीनें मशीनों के लिए भी इंसान चाहिए उनको ऑपरेट करने के लिए.
0: अब मिसेस जुल्कर्णी अगर सुन रही होंगी ना, तो कहेंगी भाई सही है, मतलब मेरा मुकदमा लड़

0: Pienoinen.
1: मैं ऑफिस में हूँ शुक्र है आज क्या बैठा हूँ
0: कोई रिकॉर्डिंग भेजो भाई कोई रिकॉर्डिंग भेजो
1: बाकी नहीं सहूलतें ये सब चीजें हैं हम भी हत्तुल मकदूर कोशिश करते हैं एक फन है कि आपने सब्जी बनानी है तो आप भी साथ में काट पीट लें इन चीजों में मैं खुद बहुत तेज था और मेरे बच्चों को ना जरा सी छुरी पकड़ लेना सिर्फ मेरे हमें से भी काट सकते हैं
2: और कभी कभी तो वो भी नहीं काटा था उसके लिए भी अलग कटर होता है
1: हाँ तो उनको समझ ही नहीं आती तो कहने का मकसद आप जितना ट्रेन करें अल्लाह ने हमारी मशीन कभी आप देखें आज तक कोई कंप्यूटर भी ऐसा नहीं है एक्सीलेंट और जितनी हम लोगों ने साइंस में तरक्की की है मुख्तलिफ जहतों में कोई और आपको चीज नजर आती है इसके मुकाबले में नहीं
2: हाँ जी
1: तो हम लोग जो हैं अल्लाह की ये इनक्रेडिबल है अल्लाह इसी तरह फख्र नहीं हम पे कर रहे तो बाकी हमारी जो खवातीन बहुत काम करती हैं इसमें कोई शक नहीं है मैं तो वो बात इस तरह कर रहा था उस वक्त आपने स्ट्रेंथ और टाइम की बात की या सिचुएशन आप
0: नहीं हम भी आपसे मतलब जरा तफरी ही कर रहे थे और कुछ
2: मसला ये भी है ना मैं भी इस बात के बारे में बोलती हूँ कि हम लोग जो ना डब्बे की पैदाइश है हम लोगों का खाना पीना जो है ना वो आकर हमें अंदर से हमारी हड्डियां वक्त से पहले गल गई मैं माशाल्लाह अल्लाह ताला सबके माँ बाप को अच्छी सेहत वाली जिंदगी दे मैं अपने अम्मा अब्बा को देखती हूँ मैंने कहा आप यकीन करें मुझे नहीं लगता मैं मुश्किल से 60 तक भी पहुंचूंगी इट इज अ फैक्ट आजकल एवरेज लाइफ 60 तक की हो गई है देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट ना वो आपका खाना पीना इट्स नॉट कि आप जंक फूड खाते हो मैं नहीं खाती मैं खा नहीं सकती मैं ऑयली फूड खाऊंगी मुझे जो है ना पेट खराब हो जाएगा और वॉमिटिंग लग जाएगी लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑर्गेनिक भी आ रहा है वो भी ऑर्गेनिक नहीं है म्यूटेटेड फूड है वो भी तो उसके हिसाब से भी इंसान की जान नहीं रहती
1: तूने निचोड़ निकाल साल में हमें खुद भी जो पता चले ना हम क्या खा रहे हैं सही बात है वो रिवर्स नहीं हो सकता बिल्कुल ये मैं कहता हूँ उनको मैं
0: अब अपने बच्चों को बख्श दें
2: ये और बात है कि ये एक अलग बात है कि वी ऑलवेज वांट टू सी आवर किड्स एट द टॉप ऑफ I don't know where, लेकिन we want to see them at their best. और हमें पता है कि कितना potential है।
0: अच्छा फिर दूसरी चीज़, लेकिन उसमें ना सुल्तान साहब एक और भी आ जाती है, जो कि कल हम लोग भी घर पे बात कर रहे थे कि बच्चों को जो ना मतलब अगर आप देखें हमारी मैं अपनी बात करूँ तो मैं जैसे कहती हूँ भाई मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद फेस करना पड़ी हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो वो खुद ही हम जा रहे हैं लेकर आ रहे हैं फॉर्म लेकर आ रहे हैं फिल करके खुद ही सारे काम कर रहे हैं ना तो वो वाली चीज़ें हम चूंकि खुद खड़े होते हैं हर जगह बच्चों के सामने या फिर काम करने की आप काटने की सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम मवाके भी तो उस तरह से प्रोवाइड नहीं करें ना अपने बच्चों को अगर हम करें तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी कर लेंगे या हम जिसकी भी बात कर रहे हैं हमें थोड़ा सा खुद पीछे होना पड़ेगा बहुत सारी खवातीन ये शिकवा कर रही होती हैं हमारे घर पे हमारे साथ कोई हेल्प नहीं करता तो आप भी तो कभी पीछे हटे ना मतलब करने तो दें दूसरे को तो फिर वो फिर आप शिकायत आपकी बनेगी कि यार आप खुद ही अगर हर चीज में लगे रहते हो कोई भी बच्चा आया उसने कहा कि मैं ये करना चाहती हूँ तो आपको फिक्र हो जाती है कि नहीं फैल जाएगा तो मैं खुद ही कर लूँ तो फिर इसमें कसूर आपका भी है सिर्फ उसका नहीं है
1: 100% आप ठीक कह रही हैं एक तो माम की मामता ने बड़ा तंग किया हुआ है और इसकी यार अच्छी मिसाल है कि अभी जो मेरा बड़ा बेटा है वो चीज़ें हैंडल कर रहा है मेरी मिसिस घर में भी ये करूँगी वो कुछ करने ही नहीं देता उसने अपनी पैकिंग जाना और माशाल्लाह वो जर्मनी पहुंच गया आगे भी मामला जो देख रहे हैं ना तो ये कैसे वो कहते हैं मामा आप छोड़ दें मैं खुद कर लूंगा
0: गुड वेरी नाइस
1: तो वो इतने यानी उसने इशू जितने बताए कि मैंने सोल्व कर लिए तो ये सोच के तो मैंने कहा यार बच्चों को आप स्पेस दें खुद कर
2: अच्छा ये भी बड़ी एक खूबसूरत बात है कि माशाल्लाह से आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं ना दे आर कंफर्टेबल विद देयर सेल्फ दे नो व्हाट दे वांट एंड दे नो हाउ टू इफ दे आर नॉट अगर वो लाइन से आउट हो रहे हैं ना तो उनको अपने आप को पकड़ना भी आता है
0: बिल्कुल और मतलब वही बात है स्पेस देने की बात है ना अभी तक देखिए आपके बच्चे आपके साथ थे तो आप सारे काम कर रहे थे लेकिन अब वो जहां इंडिपेंडेंट हुए हैं तो वो सब कुछ करके दिखा रहे हैं तो यही फर्क होता है
1: तो वो मिसेज का मसला है कहती फिर पूरा दिन बोर होती हूँ मैं क्या करूँ
2: मेरी अम्मा वाला डायलॉग हो गया क्या करूँ मैं क्या मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ मैं जिन जकूटा याद आ जाता है मुझे अरे आप कुछ नहीं करें आप बैठे टीवी देखें जिम जाएं कुछ और कर लें नहीं कोई काम करना है घर का
1: टीवी ना देखें प्लीज जिम जाए
0: बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी जुल्कड़न से आप हमारे साथ थे और आज भी ना फायका ने मैसेज किया हुआ और कल भी उनका रह गया था ओ हो कॉल करने का कह रही है अब मैं क्या करूँ देखो यार मतलब ये गलत हो गया ये मैसेज देख लेना चाहिए था
2: 3 मिनट है
0: हाँ तो मैं ऐसा करती हूँ कॉल मिला ही लेती हूँ
2: कॉल मिला लें
0: क्या हुआ मिलाई और कट गए
2: जज्बात बदल गए हालात बदल गए जो भाई आज हम बात कर रहे हैं अपने साथ कंफर्टेबल होने की अच्छा मजे की बात ये कि कुछ लोग ना इतने 40, 50, 60 तक भी पहुंच जाते हैं फिर भी वो अपने

0: कंफर्टेबल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था उनकी पर्सनालिटी है क्या. और वो उनकी वजह से ना दूसरे लोग भी बड़े डिस्टर्ब.
1: कॉल आ गई, फटाफट हम एक दो मिनट की बात करते हैं. हेलो फाइका.
0: अस्सलाम वालेकुम.
2: जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाइका क्वीन है, कैसी हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. और माजरत कि आपको जरा देर से कॉल की, हमने कहा चलें सलाम दुआ तो कर ही देते हैं.
2: जी जी जी, मैं काफी देर इंतजार करती थी, फिर मैं मॉल तो अब मुझे पता नहीं वही टॉपिक चल रहा है अभी तक.
0: टॉपिक यही चल रहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग कंफर्टेबल विद योरसेल्फ.
2: हाँ ठीक है, तो मैं इसमें अपना एक वाक्य शेयर करना चाहूंगी अगर आपके पास टाइम होगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
2: हाँ जी, तो मेरा नाम बेसिकली फाइका है, तो उसके आगे मेरा क्वीन किस तरह डला वो मैं आपको बताना चाहूंगी.
0: सही.
2: कि यहाँ पर फीफा के टाइम पर गेम्स हो रही थी, तो वहाँ पर एक गेम करने के लिए उन्होंने अचानक मेरे से कोई नाम पूछा, मेरे दिमाग में कुछ ना आया, मैंने क्वीन कह दिया.
0: सही.
2: अच्छा, उसके बाद एकदम से उन्होंने मुझे देखा भी सही कि है ये क्वीन है, मैंने कहा यस इट्स फाइन नेम. तो उसके बाद से करते करते करते मैंने हर जगह अपना नाम क्वीन कहना शुरू कर दिया, और अब मेरी फीलिंग भी ऐसी है क्वीन वाली, और जहाँ जाती हूँ मुझे कहती है क्वीन आ रही है.
0: ये होता है, ये होता है, द वे यू कैरी योरसेल्फ, अदर एनर्जीज जो होती है ना, वाइब्स मिलती है आपको. फिर वो आई एग्री विद दैट,
2: ज्यादा मिलती है. और मुझे हर जगह ये कहा जाता है कि ऐसा नाम हमने क्यों नहीं रखा, और अब तो तुमने रख लिया. इवन इस नाम से पेजेस भी आपको मिलेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और ये सब वो मेरे नाम को लेकर हर जगह चला जा रहा है, क्वीन वाले दिए जाते हैं.
1: यार ये बिहेवियर ना आपका बिल्कुल क्वीन वाला ही है.
0: ये चल रहा है, ये इसे कहते हैं वायरल होना,
1: ये एटीट्यूड
2: वायरल होना. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू फाइका.
2: ओके जी,
1: थैंक्स अ लॉट. बिल्कुल बिल्कुल, लंबी बात करेंगे. अच्छा जी, तो फाइका हमारे साथ थी, फाइका क्वीन. अच्छा मैं सोच भी रही थी इन्होंने क्यों लगाया वह नाम के साथ, तो चलो उन्होंने बता दिया.
0: शी इज कंफर्टेबल विद इट एंड शी लाइक द वाइब एंड वी लाइक इट.
1: चलो जी, तो फिर इसी के साथ हमारा हो गया जाने का वक्त, और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, और कल होगा वेंसडे.
0: और वेंसडे होगा तो भाई वेनसडे, वेनसडे.
1: जी जी, कल है,
0: कल है, एक कल और दिन है. बस कल को काउंट नहीं करते, परसों काउंट कर लेते, मतलब एक और दिन बस.
1: नहीं फिर रह जाएगा, गुम जाएगा. मैं नहीं चाहती कि कोई दिन गुमे. अब जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ ना, मतलब हम दोनों मिलके शो कर रहे हैं, मैं तुम्हें दिन पे दिन याद करवाऊंगी.
0: मावेश चलो पेटी बांधो, चलने का टाइम हो गया.
1: चले रही, आपसे मुलाकात.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी के नाम प्रोग्राम कुरान के मोती में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हूँ। मैं तलहा अशरफुज़्ज़मान। रोजाना की तरह आज भी हम कुरानी मोती पर गुफ्तगू करेंगे। ये वो कुरानी मोती हैं जो हमारे जिंदगी को बदल सकते हैं। तो जिंदगी को बदलना, सवाल ये कि कुरान के कलाम में ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो इंसान को अंदर से बदलने की सलाहियत रखती हैं। क्यों एक शख्स कुरान के साथ हकीकी तौर पर जुड़ता है तो उसकी निगाह भी बदल जाती है, या निगाह बदलनी चाहिए, सिर्फ मालूमात नहीं, हाँ तसव्वुर बदल जाता है, दुनिया को पहले जैसा नहीं देखता, मौत का मफहूम बदल जाता है, कामयाबी का मफहूम, खैर और शर का मेयार बदल जाता है, वो अपने आप को भी एक नई नज़र से देखने लगता है। आज हम कुरान की उन्हीं खसूसियात में से बाज़ खसूसियात को समझने की कोशिश करेंगे। पहली खसूसियत शायद ये इंसान की पूरी फिक्र जिंदगी की बुनियाद से मुतालिक है कि कुरान जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का जवाब देता है। सभी कराम, आपने कभी गौर किया है कि इंसान दुनिया के किसी भी खित्ते में पैदा हो, मशरिक में या मगरिब में, शुमाल में या जनूब में, कुछ सवाल है

0: ऐसे हैं जिनसे वो मुकम्मल तौर पर फरार नहीं कर सकता। वो सवालात ये हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, जिंदगी का मकसद क्या है, मौत के बाद क्या होगा, क्या मेरे अमाल का कोई हिसाब है, खैर क्या है और शर क्या है, दुनिया में दुख और आजमाइश क्यों है, क्या कोई खालिक है, क्या इंसान आजाद है, ये सब कुछ पहले से तय है। ये इंसान होने के सवाल हैं। एक वक्त आता है जब कब्रिस्तान में किसी अपने को दफन करके इंसान ये सवाल करता है। एक वक्त आता है जब जुल्म देखकर पूछता है। एक वक्त आता है जब अपने कामयाबी के उरूज पर भी अंदर से ये सवाल उठता है, इस सब के बाद क्या। और कुरान की एक अजीम खुसूसियत ये है, वो इंसान को इन सवालात के सामने अकेला नहीं छोड़ता। हाँ जी, वो जवाबात में भी उसका साथ देता है। सबसे पहला सवाल है, मैं इस जमीन पर आया क्यों हूँ? कुरान जवाब देता है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور।
0: वो ज़ात जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाएं कि तुम में अमल के एतबार से कौन बेहतर है। गोया कुरान ये बता रहा है कि आप जिंदगी में बेमाना पैदा नहीं हुए। आप महज खाने कमाने खानदान बनाने बुढ़ापे तक पहुंचने और फिर मर जाने के लिए नहीं आए। आपकी जिंदगी एक इम्तिहान है और इम्तिहान का सवाल है, अय्युकुम अहसनु अमला, किसका अमल बेहतर है। ये जवाब इंसान की पूरी जिंदगी का जाविया बदल देता है, क्योंकि अब खुशहाली भी इम्तिहान है, तंगी भी, सलाहियत भी, कमजोरी भी, मौके भी, महरूमी भी। फिर इंसान सिर्फ ये नहीं पूछता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो ये भी पूछता है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इसमें अल्लाह मुझसे किस तर्ज अमल का मुतालबा करता है। फिर एक और सवाल है, ये दुनिया आखिर है क्या, क्या यही सब कुछ है? कुरान जवाब देता है,
1: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة।
0: और दूसरी जगह दुनिया के धोखे से खबरदार करता है, यानी दुनिया हकीकत तो है मगर आखिरी हकीकत नहीं। इसमें जीना है मगर उसे मंजिल नहीं समझना। इसमें घर बनाना है मगर ये भूलना नहीं कि मुस्तकिल घर कहीं और है। इसमें कमाना है मगर इतना नहीं कि कमाने में खुद को खो दें। कुरान दुनिया को उसकी सही जगह पर रखता है। और शायद हमारी बहुत सी बेचैनियों की वजह यही है कि हमने किसी आरजी चीज से मुस्तकिल सुकून मांग लिया है। हमें परमानेंट सुकून हमने इस दुनिया से मांग लिया है। फिर इंसान पूछता है, क्या मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी? कुरान सवाल करता है,
1: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ।
0: क्या तुमने समझ रखा था कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है, तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? नहीं नहीं, मौत तो एक दरवाजा है, उसके बाद आखिरत है, हिसाब है, जज़ा है, जन्नत है, जहन्नम है। और ये जवाब सिर्फ एक थियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं रहता, यानी ये आपके गम के मफहूम को बदल देता है। आप किसी अपने को कब्र में उतारते हैं, रोते हैं, जुदाई अपनी जगह हकीकी है, मगर मोमिन के तस्वुर में कब्र का मतलब ये नहीं कि कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। उसे मालूम है कि इंसानी सफर मौत पर ख़त्म नहीं होता। यही वजह है कि आखिरत का अकीदा सिर्फ मरने के बाद की खबर नहीं, कि जिंदा इंसान के गम को भी एक नया माना देता है। समय कराम, दुनिया में मुख्तलिफ तहजीबों और मजाहब ने मौत के बाद के वजूद के बारे में मुख्तलिफ तसव्वुरात पेश किए हैं, जिनमें तनासुख अरवाह जैसे नजरियात भी शामिल हैं। यहाँ असल काबिल गौर बात यह है कि मौत के बाद क्या होगा। इंसान तो अपने महबूब को खोना नहीं चाहता, दिल कहता है कि क्या मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। कुरान यहाँ एक वाज़ह आपको आखिरत के हवाले से तसव्वुर देता है कि मौत ये आखिरी मरहला नहीं और इंसान अपने रब के हुजूर लौटने वाला है। मोमिन के लिए जवाब एक अजीम नेमत है, जिस जवाब को हम बचपन से सुनते आए हैं, कभी उसकी कदर इसलिए कम महसूस होती है कि हमें वो हमेशा से मिला हुआ है। अच्छा, फिर एक और मुश्किल सवाल ये है कि अगर अल्लाह है तो दुनिया में दुख क्यों है? बच्चों को तकलीफ क्यों पहुँचती है? बीमारी क्यों है? मौत क्यों है? जुल्म क्यों है? इंसान दूसरे इंसान पर ज्यादती क्यों करता है? ये सवाल हर दौर में इंसान को परेशान करता आया है। कुरान ये नहीं कहता कि ईमान लाने के बाद दुनिया से दर्द खत्म हो जाएगा, सही है ना? कुरान तो कहता है, वलनब्लुअन्नकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, अब तुम्हें खैर और शर

0: तो ये सब इंसान की तोहीन नहीं, ये इंसान की डायग्नोसिस है, और डायग्नोसिस का मकसद मरीज की तजलील नहीं, इलाज है। कुरान ये नहीं कहता कि इंसान में खैर की कोई सलाहियत ही नहीं, हरगिज़ बात ऐसी नहीं है। कुरान इंसान की इज्जत भी बयान करता है, वलकद करमना बनी आदम, उसकी बेहतरीन साख्त की तरफ भी इशारा करता है, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तक्वीम, लेकिन उसी सूरह में फौरन तंबीह भी आती है, ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات, यानी इंसान के अंदर बुलंदी की सलाहियत भी है और पस्ती का इम्कान भी। इंसान फरिश्ता पैदा नहीं हुआ, उसे अपने नफ्स की तरबियत करके ऊपर लुटना है, यही है कुरान तसव्वुर का बहुत ही मुतवाजन बयान। न इंसान को इनहेरेंटली होपलेस करार देना, न उसे ऐसा कामिल वजूद समझना जिसकी हर ख्वाहिश खुद ब खुद हक बन जाए, बल्कि कहता है कि तुम्हारे अंदर ख्वाहिश है उसे तरबियत चाहिए, तुम्हारे अंदर शुह बुखल है उसे सखावत से महज़ब करो, तुम्हारे अंदर जहल का इम्कान है उसे इल्म चाहिए। तुम जालिम हो सकते हो, लेकिन अदल और तकवा को अगर सही से अपनाओगे तो ये जुल्म से तुम बच सकोगे। तुम कमज़ोर हो, इसलिए तुम्हें अपने रब की ज़रूरत है। तो यहाँ सामने कराम कुरान का तस्वुर बिल्कुल वाज़ह है कि इंसान को सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, अपने आप को डिसिप्लिन भी करना है। हर ख्वाहिश पूरी करना आज़ादी नहीं, हर चाहत आपकी हकीकी मसलहत में नहीं होती, क्योंकि अगर नफ्स में शुह मौजूद है, बुखल मौजूद है, तो उसे हर मरतबा अपनी फितरत कहकर आज़ाद छोड़ना इंसान को बेहतर नहीं बनाएगा, बल्कि बड़े बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं। मसलन नफ्स कहता है कि मुझे ज़्यादा चाहिए, जबकि कुरान ईसार और कुर्बानी की तालीम देता है। नफ्स कहता है कि सब मेरे लिए है, वही कहती है कि दूसरे का हक भी पहचानो। नफ्स कहता है कि मेरी ख्वाहिश ही मेरा मैयार है। कुरान कहता है ख्वाहिश को भी एक मीज़ान के सामने खड़ा होना होगा, और यही कुरान की तब्दीली की कुव्वत है। वो सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि क्या करो, वो पहले ये दुरुस्त करता है कि आप अपने आप को समझते क्या हैं, क्योंकि अगर इंसान की तारीफ बदल जाए तो ख्वाहिश की तारीफ बदलती, आज़ादी की तारीफ, कामयाबी की तारीफ, गुनाह को देखने का अंदाज बदल जाता है, और इस तरह इबादत भी महज कोई इसको रिस्ट्रिक्शन के तौर पर नहीं लेता, बल्कि इंसान की तहजीब बन जाती है इबादत भी। तो ज़रा इन दोनों खसूसियात को एक साथ देखिए कि पहले कुरान ने आपके बाहर की कायनात का नक्शा दुरुस्त किया, फिर कुरान आपके अंदर आया और कहा कि अब ये भी जानो कि तुम खुद कौन हो। गोया कुरान पहले इंसान को मंजिल बताता है, फिर उसे मुसाफिर से मिलवाता है, और शायद हकीकी तब्दीली यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जिस शख्स को अपनी मंजिल भी मालूम हो और अपनी कमज़ोरियाँ भी, वो सफ़र के लिए ज़्यादा तैयार होता है। और इसी कुरानी सफ़र में बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
0: वेलकम बैक सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम कुरान के मोती में। आज हम कुरान की खसूसियात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, और ब्रेक से पहले हम बता रहे थे कि कुरान हमारी उन चीज़ों की तारीफ भी दुरुस्त करता है जिन्हें हम रोज़ देखते महसूस करते हैं और जिनके बारे में फ़ैसला करते हैं। और ये वाकई बहुत अहम है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन ही गलत हो जाए तो उसके साथ हमारा पूरा ताल्लुक गलत हो सकता है। मसलन अगर दुनिया की तारीफ गलत है तो दुनिया के लिए हमारी दौड़ भी गलत होगी। अगर नफ्स को समझने में गलती है तो अपनी ख्वाहिशात के साथ मामला भी गलत होगा। अगर सआदत की तारीफ गलत है, हैप्पीनेस की तारीफ गलत है, तो हम खुशी पूरी ज़िंदगी ऐसी जगह तलाश करते रहेंगे जहाँ वो है ही नहीं। इसलिए कुरान पहले मफाहीम डेफिनेशंस दुरुस्त करता है, और फिर इन्हीं दुरुस्त मफाहीम के ज़रिए ज़िंदगी दुरुस्त करता है। ज़रा सोचिए ना कि अगर ज़िंदगी को सिर्फ मादी निकाह से देखा जाए तो दुनिया ही सब कुछ बन जाती है। यही ज़िंदगी, कामयाबी, नुकसान, दौलत, मकाम, इन्जॉयमेंट। और चूंकि इस तसव्वुर में आखिरत मरकजी हकीकत नहीं, इसलिए इंसान अपनी पूरी कुव्वत इस मुख्तसर जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने में लगा सकता है। एक जगह में अल्लाह सुबहान व तआला मिसाल के साथ ये बयान फरमाते हैं

0: हो सकती है मगर मुस्तकिल नहीं, कीमती हो सकती है मगर आखिरी कीमत नहीं, इसमें कामयाबी है मगर आखिरी कामयाबी नहीं। अब कुरान दुनिया की हकीकत वाजे करते हुए ये भी नहीं कहता है कि दुनिया छोड़ दो, कुरान हमें ये दुआ भी सिखाता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी, और हमें नार यानी आग के अजाब से बचा। कारून के वाक़े में नसीहत के तौर पर आता है, वला तंस नसीबक मिन दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा मत भूलो। दरअसल कुरान इसी दुनिया को उसकी सही जगह पर रखने आया है। सबर के इसी तरह कुरान एक और अहम चीज की तारीफ करता है और वो है नफ्स। नफ्स क्या है, यानी यहाँ सवाल मेरे अंदर मौजूद उस नफ्स का है जिसके साथ मेरी पूरी जिंदगी की कश्मकश चलती है। कुरान हमें नफ्स की मुख्तलिफ कैफियात दिखाता है। एक मकाम पर इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी, नफ्स बुराई की तरफ बहुत उभारने वाला है मगर जिस पर मेरा रब रहम फरमाए, यानी मेरे अंदर एक ऐसी कशिश हो सकती है जो मुझे गलती की तरफ खींचे। फिर कुरान कहता है वला उक़सिमु बिन्नफ्स लवामा, कसम है मलामत करने वाले नफ्स की। अब इंसान जब गलती करे तो साथ साथ दिल दिल में उसे ये सवाल आने लगते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, कल नफ्स गुनाह की तरफ खींच रहा था, आज वही अंदरूनी शोर इंसान को मलामत कर रहा है। और फिर एक बुलंद कैफियत है या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिअ इला रब्बिकि राधियतन मर्दिया, इत्मीनान पाने वाले नफ्स अपने रब की तरफ लौट चल इस हाल में कि तू उससे राजी वो तुझसे राजी। गोया नफ्स कोई जामिद शय नहीं, यानी मुनजमिद और खुश्क ऐसी कोई चीज नहीं। नफ्स एक सफर में है, कभी ख्वाहिश उसे नीचे खींचती है, कभी जमीर उसे झंझोड़ता है, और तरबियत तज़किया और रहमत इलाही के साथ इत्मीनान की तरफ बढ़ता जाता है। इसीलिए कुरान इंसान को एक नहायत जामे उसूल देता है, قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها, कामयाब वो शख्स है जिसने अपने नफ्स को पाक किया और नामुराद वो शख्स है जिसने उसे आलूदा कर दिया है। यहाँ पूरी नफ्सियाती तरबियत का एक बुनियादी नक्शा सामने आ जाता है कि आपका नफ्स जो कुछ चाहता है हर चाहत की इताअत जरूरी नहीं, और नफ्स के अंदर किसी गलती ख्वाहिश का पैदा हो जाना भी ये माना नहीं रखता कि आप खत्म हो गए। तो सवाल ये बनता है कि आप अपने नफ्स के साथ क्या कर रहे हैं, उसकी तरबियत की फिक्र कर रहे हैं या उसकी हर ख्वाहिश को अपनी शनाख्त बना रहे हैं।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
2: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीने किराम, जब हम नेकी का लफ्ज सुनते हैं तो जहन में अमूमन बड़े बड़े काम आते हैं, किसी जरूरतमंद की माली मदद, किसी मुश्किल में फंसे शख्स का मसला हल करना, कोई बड़ा सदका, और कभी इंसान सोचता है मेरे पास इतना माल नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं किसी के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, तो शायद मेरे पास करने को कुछ नहीं। अब आइए सुन्नत रसूल की रहनुमाई की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी का दायरा इतना वसी किया है कि कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे पास खैर करने के लिए कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तहकिरन मिन अल मारूफ शैअन वलो अन तल्का अखाक बिवजह तलिक। किसी भी नेकी को हरगिज मामूली न समझो, खा इतनी ही हो कि तुम अपने भाई से खंदा पेशानी के साथ मिलो। समय कराम, जरा इस हदीस के अंदाज पर गौर कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि सिर्फ बड़ी नेकी को अहम समझो, बल्कि फरमाया किसी भी नेकी को मामूली न समझो। कभी जिस अमल को हम छोटा समझते हैं वो किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। आपने किसी परेशान शख्स से पूछ लिया आप खैरियत से हैं, आपने किसी नए साथी को खुश आमदीद कह दिया, आपने किसी थके हुए शख्स को पानी पेश कर दिया, बज़ाहिर बहुत छोटी बातें हैं, मगर मुमकिन है कि सामने वाले को उस लम्हे उसी छोटी नेकी की जरूरत हो। मजीद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी की एक बहुत आसान मिसाल दी है, वलो अंतल्का अखाका बिवजहिन तलिकिन, यानी खा तुम अपने भाई से कुशादा, खुशगुवार और खंदा पेशानी वाले चेहरे के साथ ही मिलो। वजहिन तलिकिन, ऐसा चेहरा जिसमें सख्ती ना हो, ऐसा चेहरा जो सामने वाले को ये एहसास न दिलाए कि तुम क्यों आ गए, बल्कि ऐसा चेहरा जो खामोशी से कहे आपका आना अच्छा लगा। सामने किराम, इस सुन्नत का सबसे अहम मैदान हमारा घर है। दिलचस्प बात तो ये है कि हम बाहर निकलते हैं तो लोगों को मुस्करा कर मिलते हैं, लेकिन जो ही घर में दाखिल होते हैं चेहरा बदल जाता है। सवाल ये है कि क्या हमारे घर वाले हमारे अच्छे चेहरे के सबसे ज्यादा हकदार नहीं? खासतौर पर बच्चों के लिए वालिदैन की चेहरे की अहमियत काफी ज्यादा है। बच्चा स्कूल से वापस आया, आपको देखकर खुश हुआ, कुछ सुनाना चाहता है, लेकिन अगर हर बार आप जवाब में कहे कि बाद में, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा शायद बताना कम कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रूह परवर सुन्नत की पैरवी करते हुए हमें चाहिए कि हम मुस्कुराएं, बच्चों के लिए वक्त निकालें। शायद आपके लिए 2 मिनट हों, उसके लिए ये एहसास हो सकता है कि मेरी बात अहम है। जबकि खुश मिजाजी का मतलब ये भी नहीं कि हर मकाम पर हंसा जाए। किसी के गम के वक्त बेमौका खुश मिजाजी मुनासिब नहीं। कोई अपनी तकलीफ बयान कर रहा हो और हम मजाक उड़ा रहे हैं, ये तलाकतुल वजह नहीं। वहां सुन्नत अखलाक का तकाजा ये हो सकता है कि चेहरे पर हमदर्दी हो, इंसान की कैफियत को समझा जाए। तो चलिए सामिन किराम, आज से हम इस सुन्नत पर अमल करना शुरू करते हैं।

0: जिन लोगों से मिलेंगे उन्हें शोरी तौर पर खंदा पेशानी से मिले, सलाम कीजिए, खास तौर पर उन लोगों के साथ जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, नेकी की कदर उसके हजम से नहीं, कभी उस असर से होती है जो वो किसी दिल पर छोड़ जाती है। अल्लाह ताला हमारे चेहरों को बशाशत, हमारी जबानों को अच्छे अल्फाज और हमारे रवैयों को हुस्न अखलाक से आरास्ता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपरवर सुन्नत के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी,
2: जेन सी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM, एट 3 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
4: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
5: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. Your health matters.
1: Assalamu alaikum listeners. Aapki sehat behad ahem hai. Aaj hum baat karenge ek aise mauzu ki jiska taluq hum sab ki rozmarra zindagi se hai. Aur wo hai hamara nizam-e-nizam yani digestion. हम खाना खाते हैं लेकिन अक्सर ये नहीं सोचते कि हमारे जिस्म के अंदर ये खाना किस तरह डाइजेस्ट होता है और हमारी सेहत पर इसका क्या असर होता है कभी पेट फूलना कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना कभी एसिडिटी होना कभी बदहजमी ये मसाइल बहुत आम हैं लेकिन सवाल ये है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सेहतमंद रखने के लिए क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं सबसे पहली बात तो ये है कि खाना हम किस तरह से खाते हैं क्या कभी आपने नोट किया कि खाना जो है आप क्या बहुत ज्यादा तेजी से खाते हैं बहुत तेजी से खाने की बजाय आहिस्ता खाने और अच्छी तरह से चबाने की कोशिश कीजिए खाने के वक्त मोबाइल या टीवी से तवज्जो हटाकर अपने खाने पर तवज्जो देना भी मददगार साबित हो सकता है अपने जिस्म के सिग्नल्स को समझिए कि कब आपको भूख है और कब आपका पेट भर चुका है दूसरी अहम बात यह है कि फाइबर को अपनी गिजा का हिस्सा बना लीजिए उसमें सब्जियां, फल दालें बीन्स और होल ग्रेन जैसी फूड्स फाइबर फ्राहम करती हैं फाइबर डाइजेशन और बाउल मूवमेंट के लिए बेहद अहम है लेकिन अगर आपकी गिजा में फाइबर बहुत कम है तो इसे अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ाने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता आप इजाफा कीजिए और मुनासिब जो लिक्विड है मुनासिब जो फ्लूड्स हैं जो पानी है वो लीजिए अब इसी तरह से पानी और जो कॉन्स्टिपेशन है एक बहुत ही आम मसला है जो कम फिजिकल एक्टिविटी है कम फाइबर है और बाज़ुकात मुनासिब फ्लूड ना लेना कब्ज़ में अहम किरदार अदा कर सकता है अपनी रूटीन में पानी फाइबर जिस्मानी सरगर्मी यानी एक्टिविटी कोई एक्सरसाइज और वॉक उसको आप शामिल कीजिए अगर कॉन्स्टिपेशन मुसलसल रहती है और बहुत ज़्यादा आप मुश्किल में हैं या ब्लड भी आता है तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए बाज़ अफराद को खाने के बाद सीने में जलन या मुंह में खट्टा जायका महसूस होता है ये बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाने से बाज़ मखसूस जो खाने हैं उनकी वजह से हो सकता है या खाने के फौरन बाद लेट जाना और बाज़ लाइफ स्टाइल फैक्टर्स कुछ अफराद में ज़्यादा अलामतें जाहिर करते हैं इसलिए अगर आपको बार बार एसिडिटी होती है और अपने खाने और अलामत का ताल्लुक आप ऑब्जर्व कीजिए लेकिन बार बार होने वाली या शदीद अलामत को सिर्फ गैस समझकर इग्नोर ना कीजिए आजकल गट हेल्थ और प्रोबायोटिक्स के बारे में बहुत बात हो रही है बहुत डिबेट

0: क्रिएट हो रही है। कुछ फर्मेंटेड फूड्स में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, लेकिन हर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का हल प्रोबायोटिक सप्लीमेंट नहीं होता। अगर आपको मुसलसल डाइजेस्टिव सिम्टम्स हैं तो असल वजह जानना बेहद अहम है। एक और बहुत ही अहम बात कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सिर्फ खाने पर नहीं, अपनी पूरी लाइफस्टाइल पर तवज्जो दीजिए। मुनासिब फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और बैलेंस्ड डाइट सब मजमूई सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर मुसलसल या शदीद एब्डोमिनल पेन हो, बार बार वोमिटिंग हो, पाखाने में ब्लड आए, वजन बिला वजह कम हो रहा हो, निकलने में मुश्किल हो, या फिर ये कि बाउल हैबिट्स में मुसलसल और गैर मामूली तब्दीली हो, तो मेडिकल एडवाइस लेना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ये बहुत अहम है। लिसनर्स, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी रोज़मर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता खाइए, मुतवाजन ग़िज़ा लीजिए, फाइबर को अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिए, मुनासिब फ्लूड लीजिए और अपने जिस्म के सिग्नल्स को इग्नोर ना कीजिए। याद रखिए, डाइजेशन और अच्छी सेहत ही हमारी अच्छी सेहत का हिस्सा है, और यही है योर हेल्थ मैटर्स।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: दोस्तों, स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के दौरान हिफाजती कवानीन पर अमल जरूरी है। वजारत दाखला ने स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के शौकीन अफराद को हिदायत दी है कि हिफाजती कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाए, ताकि पानी के नीचे होने वाले हादसात से बचाव मुमकिन हो और गोताखोरी या वाटर डाइविंग को महफूज बनाया जा सके। याद रखें कि डाइविंग शुरू करने से पहले ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, जो किसी ऑफिशियल इदारे से हासिल की जाए। इसके साथ साथ समंदर और मौसमी सूरत हाल भी चेक करना चाहिए, ताकि नामुनासिब हालत में डाइविंग को अवॉइड किया जा सके। वजारत दाखला ने वाजे तौर पर कहा है कि जब आप अकेले हों तो डाइविंग मत कीजिए, और खाने के फौरन बाद या ऐसी दवा लेने के बाद डाइविंग मत कीजिए जो तवज्जो या होश पर असर डाल सकती हो। ये भी याद रखिए कि समुद्री मखलूक को छूना या नुकसान पहुंचाना मना है, जबकि समुद्री माहौल की हिफाजत भी हर डाइवर की जिम्मेदारी है। डाइविंग से पहले तमाम इक्विपमेंट की जांच कर लेना लाजमी है, ताकि ये यकीन हो जाए कि वो ठीक हालत में है। डाइवर को चाहिए कि डाइविंग लोकेशन और वापसी के वक्त के बारे में घर वालों या दोस्तों को पहले से इत्तला दें और पानी की सतह पर डाइविंग फ्लैग के साथ नुमाया ब्योए लगाएं, ताकि वहां पे जो कश्तियां या दूसरे लोग हैं उनको आपकी मौजूदगी का अंदाजा हो सके। डाइविंग के दौरान पानी की गहराई, प्रेशर और एयर कंजम्पशन पर लगातार नजर रखनी चाहिए, जबकि ममनू इलाकों और मुल्क की समंदरी हदूद से दूर रहना जरूरी है, और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन 999 पर राब्ता कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहती है कि हिफाजती कवानीन पर अमल करें, महफूज रहें और समंदर का लुत्फ जिम्मेदारी के साथ उठाएं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज, ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
0: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर, आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: FM 107, दिल से देसी।
6: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
7: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। और आज जो मैं वेबसाइट बताऊंगा, बड़ी भारी भारी काम करने वाली वेबसाइट्स हैं, ये बिल्कुल हल्की मत लीजिएगा। आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं, इस अपडेट से जुड़े हैं पहली मर्तबा या 40वीं मर्तबा, वो नहीं बता मुझे, मगर आज की वेबसाइट नोट जरूर कीजिएगा। सो आप तैयार हैं अपने फोन के साथ या फिर कोई नोट करने वाला है आपके साथ, है रेडी है? मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ, चलो 5 दे दिए।

0: दो एक लेट्स बिगिन अपडेट। तो पहले जो वेबसाइट है जो बेहद काम की है और इससे आप ना जाने कितने काम कर सकते हैं, इसका नाम है ottermind.ai OTTERMIND। क्या है वेबसाइट का नाम? OTTERMIND डी लास्ट में टी ना सुनाई दे इसलिए जस्ट क्लियरिफाइंग। तो जब अब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑटर माइंड एक ऐसा एआई है, इट हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन ब्रो। मतलब आप इस पे डॉक्यूमेंट को एनालाइज कीजिए, डॉक्यूमेंट में से कुछ चीज निकालिए, पीडीएफ फाइल को पूरा का पूरा समराइज कीजिए, फोटोज में से कुछ ढूंढना है ढूंढिए, अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स लाइक इस एआई का माइंड मुझे लगता है कि दो तीन मिनट 10-12 एआई को मिला के एक माइंड बना दिया गया है। बहुत बहुत कमाल की वेबसाइट है, बहुत कमाल का एआई है। आई डोंट नो इफ यू आर यूजिंग इट, पर मुझे लगता है कि आप एक बार यूज करना शुरू करेंगे तो यू माइट एज वेल लीन टुवर्ड्स इट मोर, आपको और इसकी तरफ रुझान हो जाएगा। सो ottermind.ai अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ज्यादा होता है तो ट्राई दिस वन। ओके, नाउ लेट्स हैव सम फन। अपडेट। अगली वेबसाइट का नाम है photor.com photor.com photor.com। photor.com क्या करता ना, ये मान लीजिए कोई आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है या मान लीजिए कोई विकिपीडिया है और आप उसे एक एंगेजमेंट तरीके से दिखाना चाहते हैं किसी को। कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी नजर में बोरिंग है, यार मजा नहीं आ रहा, प्रेजेंटेशन तो बना दी, अब क्या पढ़ू मैं? ओके लेट्स मूव टू द फिफ्थ स्लाइड। ये आजकल बोरिंग हो गया है, नोबडी वांट्स टू डू दिस। अगर आप क्लाइंट को डबल ट्रिपल इंप्रेस करना चाहते हैं तो आपकी जो बनी बनाई प्रेजेंटेशन है उसको photor.com पे जाके अपलोड कीजिए और फिर आप कमाल देखिए, आपकी प्रेजेंटेशन का एक कमाल का वीडियो तैयार होके आपके सामने आ जाएगा। अमेजिंग वीडियो बनाएगा और उस वीडियो को सिर्फ बनाएगा नहीं, बाकियों की तरह इस एआई की खास बात यह कि ये उसका एडिटेड वर्जन आपके सामने रख देगा, पूरी टाइमलाइन दे देगा। तो आपको कुछ एडिट करना है, ऑमिट करना है, हटाना है, बीच में से विद इन द होल टाइमलाइन आप एडिट करके हटा सकते हैं। क्या कमाल की चीज है यार, FOTOR, मेक थिंग्स अ लिटिल एंगेजिंग, यू नो इमर्सिव, इससे आप कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट वन। ये वाली वेबसाइट बहुत लोग यूज करने वाले हैं क्योंकि यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। इसका नाम है pixverse.ai pixverse pixverse.ai। आप अपनी फोटो के साथ इसमें जाने क्या क्या नहीं बना सकते, सारी ट्रेंडिंग चीजें आप इससे तैयार कर सकते हैं। एंड माय गॉड, किसी को अगर आपको ऑडियो विजुअल गिफ्ट देना ना, इससे बढ़िया कुछ नहीं है भाई। बहुत कमाल का, बहुत बहुत कमाल का। एंड यू कैन प्ले विद इमेजेस, आप ट्राई करके देखिए, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। मुझे बहुत पसंद आया, मतलब इट्स एक्चुअली फन और ट्रेंडी चीजें हैं इसमें। ओके तो मैं अब जरा एक चीज बता दूं आपको, खबर की तरफ बढ़ेंगे लेकिन एक टिप लेते जाइए, वही खबर भी है। तो लोग कहते हैं कि भाई इजेक्ट करना क्यों जरूरी, जब आप एक यूएसबी ड्राइव लगाते हैं अपने सिस्टम में तो लोग कहते हैं इजेक्ट क्यों करूं मैं तो ऐसी खींच लेता हूं, पेन ड्राइव आज तक खराब नहीं हुई। तो भाई साहब, सिस्टम आपका रिएक्ट पता किस तरीके से करता है, जब आप पेन ड्राइव बिना इजेक्ट किए निकाल लेते हैं या हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं, आपका कंप्यूटर उस टाइम पे बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, वो मान के चल रहा होता है कि अभी भी पेन ड्राइव कनेक्टेड है और वो बहुत सारी चीजें कर रहा होता है बैकग्राउंड में, काफी प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो जब आप इजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद निकालते हैं तो आपके कंप्यूटर को आप एक मैसेज देते हैं कि भाई मैंने यूएसबी निकाल ली है, आप अपना काम जल्दी निपटा लें। तो उस केस में जो पीसी लैपटॉप व्हाटएवर इट इज, वो जल्दी काम आपका खत्म करता है, आपका डेटा करप्ट होने से बचता है। नहीं हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शानदार, लेकिन होने के चांसेस आप बढ़ाएंगे अगर आप बिना इजेक्ट के करेंगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। मिलते हैं अगली अपडेट में एंड स्टे ट्यून्ड।
1: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज मैं आपसे मुलाकात करता हूं और बताता हूं कि कैसे आप नए जमाने के नए फ्रॉड और स्कैम से बच सकते हैं। आज जिस स्कैम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है द फेक इन्फ्लुएंसर इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर स्कैम। क्या है ये स्कैम, कैसे काम करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते यूज के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के जो तरीके हैं वो भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। इस नए तरीके के फ्रॉड में स्कैमर्स बहुत ही हाई क्वालिटी और असली दिखने वाली फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं। ये प्रोफाइल्स ऐसी दिखाई जाती हैं जैसे कि वो किसी बहुत ही मशहूर लोकल इन्फ्लुएंसर की हो। मिसाल के तौर पे आपके सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा शख्स आएगा और आप उसको जानते होंगे, या फिर उसके चेहरे का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड में किसी वॉइस का इस्तेमाल कर लिया हो या AI क्लोन बना लिया हो, तो ऐसे में आपके प्रोफाइल पे ये आते हैं, आपकी फीड पे ये आते हैं। और फिर जब आप इनके प्रोफाइल को चेक भी करते हैं, इनके पास हजारों के नंबर्स में एक्टिव फॉलोअर्स होते हैं। इन फेक अकाउंट्स का यूज करके फ्रॉडस्टर्स एक्चुअली लोकल एरिया के छोटे और बड़े अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर्स करने वाले बिजनेसमैन को टारगेट करते हैं। वो इन बिजनेसेस ओनर्स को कॉन्टेक्ट करते हैं और उन्हें एक अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं। स्कैमर्स उनसे कहते हैं कि अगर वो उन्हें कुछ पैसे देंगे तो वो उनकी टेलीविजन रिपेयर, एयर कंडीशनर रिपेयर या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को अपने हजारों फॉलोअर्स के सामने प्रमोट करेंगे, जिससे उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। छोटे बिजनेसेस ओनर्स जो हैं वो अपना काम बढ़ाने और ज्यादा कस्टमर्स पाने के लालच में इनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन इस स्कीम का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब बिजनेस ओनर उन्हें अपफ्रंट प्रमोशनल फी यानी कि एडवांस पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही स्कैमर्स के पास पैसा पहुंचता है वो इन्फ्लुएंसर अकाउंट या तो रातों रात डिलीट कर देता है या फिर वो बिजनेस ओनर के प्रोफाइल को हर जगह से ब्लॉक कर देता है, जिससे उनका पैसा पूरी तरह डूब जाता है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन है, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपसे एडवांस पेमेंट के लिए कहा जाता है बगैर आपसे मुलाकात किए। और कई बार जब आप प्रोफाइल चेक करते हैं तो प्रोफाइल चेक करते हुए जब आप उनके फॉलोअर्स को देखते हैं, उनके फ्रेंड्स को देखते हैं, उसमें अच्छा खासा नंबर

0: भी इन्फ्लुएंसर को कभी भी पेमेंट करने से पहले उन्हें बहुत ही तरीके से वेरीफाई करें। बिजनेस ओनर्स को इंटरनेट पर अवेलेबल इंडिपेंडेंट एनालिटिक्स टूल का यूज करना चाहिए। इन टूल्स की मदद से वो उस इन्फ्लुएंसर के रियल एंगेजमेंट रेट्स को इजीली चेक कर सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनके फॉलोवर्स असली हैं या फेक हैं। इसके साथ ही उन्हें उनके फॉलोवर काउंट की हिस्ट्री को भी एनालाइज करना चाहिए। अगर फॉलोवर काउंट्स में सडन जंप्स आ रहे हैं तो ये साफ इशारा है कि वो फॉलोवर्स रियल नहीं है बल्कि पेड बॉट्स हैं। इसके अलावा कभी भी सिर्फ फोन पर या चैट पर डील फिक्स ना करें, हमेशा एक फॉर्मल और लीगली साइन कॉन्ट्रैक्ट पर इंसिस्ट करें जिसमें दोनों तरफ से सारी डिलीवरेबल्स और टर्म्स साफ साफ आउटलाइन की गई हो। सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी डायरेक्ट वायर ट्रांसफर, बैंक अकाउंट ट्रांसफर या कैश में एडवांस पेमेंट ना करें। हमेशा ऐसे सिक्योर पेमेंट प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज करें जिसमें बायर प्रोटेक्शन फीचर अवेलेबल हो, ताकि अगर कोई फ्रॉड हो भी तो आप अपना पैसा क्लेम करके वापस पा सकें। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का फ्रॉड अवेयरनेस का प्रोग्राम, जहां पर आपको उम्मीदन इसका सॉल्यूशन भी मिल गया है और किस तरीके से नए लोग नए जमाने में आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते हैं FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
1: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों, फार्मूला 1 की दुनिया में कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जिनका करियर शायद बहुत छोटा हो, लेकिन उनकी कहानी मोटर स्पोर्ट की तारीख में हमेशा जिंदा रहती है। आज हम बात करेंगे फ्रांस के एक ऐसे ही टैलेंटेड ड्राइवर जूल्स बियांची की, जिनका नाम फार्मूला 1 में टैलेंट, हिम्मत और एक अधूरी रह जाने वाली कहानी के तौर पर याद किया जाता है। फ्रांस के नीस शहर में बियांची की पैदाइश 3 अगस्त 1989 को होता है और उनका मोटर स्पोर्ट्स से रिश्ता बहुत कम उम्र में शुरू हो गया था। बियांची ने सिर्फ 3 साल की उम्र में कार्टिंग शुरू की थी। धीरे धीरे उन्होंने जूनियर कैटेगरीज में अपनी स्पीड और ड्राइविंग एबिलिटी का सबूत दिया। फार्मूला रेनो और फार्मूला 3 में उनकी परफॉर्मेंसेस ने मोटर स्पोर्ट के एक्सपर्ट्स की तवज्जो हासिल की। बियांची की तरक्की का एक अहम मोड़ 2009 में आया जब वो फरारी ड्राइवर अकेडमी के पहले मेंबर बने। फरारी ने उनमें फार्मूला 1 का पोटेंशियल देखा था और इसके बाद उन्होंने GP2 सीरीज में भी रेस की और फार्मूला 1 तक पहुंचने का रास्ता बनाया। सन 2013 में बियांची ने मारुसिया के साथ फार्मूला 1 डेब्यू किया। टीम ग्रिड पर सबसे कॉम्पिटिटिव टीम्स में शामिल नहीं थी, लेकिन बियांची ने अपनी ड्राइविंग से सबको मुतासिर किया। उनका सबसे यादगार फार्मूला 1 रिजल्ट सन 2014 मोनाको ग्रैंड प्री में आया। मोंटे कार्लो की तंग और मुश्किल स्ट्रीट्स पर बियांची ने एक जबरदस्त रेस ड्राइव करते हुए 9th पोजीशन हासिल की। इस नतीजे के साथ उन्होंने ना सिर्फ अपने करियर के पहले फार्मूला 1 पॉइंट्स हासिल किए, बल्कि मारुसिया के लिए भी टीम हिस्ट्री के पहले चैंपियनशिप पॉइंट स्कोर किए। यह रिजल्ट इसलिए भी खास था क्योंकि मोनाको ग्रैंड प्री वो रेस थी जिसे बियांची बचपन से देखते आए थे। उन्होंने बताया था कि जब वो तकरीबन 5 साल के थे तब उन्होंने पहली मर्तबा मोनाको ग्रैंड प्री को ट्रैक साइड से देखा था। उनके बचपन के हीरो माइकल शुमाकर थे। फरारी के साथ उनका कनेक्शन भी मजबूत होता जाता रहा। 2014 में बियांची को फरारी फार्मूला 1 का टेस्ट करने का मौका मिला। सिल्वरस्टोन टेस्ट में उन्होंने फरारी के लिए ड्राइविंग की और उनका लॉन्ग टर्म टारगेट स्कुडेरिया फरारी की परमानेंट रेस सीट हासिल करना था, लेकिन फिर अक्टूबर 2014 में सुजुका यानी जापान के शहर सुजुका में वो हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी और फार्मूला 1 की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जापानीज ग्रैंड प्री के दौरान तेज बारिश हो रही थी। ट्रैक पर रिकवरी व्हीकल मौजूद था जो एड्रियन सुतील की डैमेज सोबर को हटा रहा था। बियांची की मारुसिया वेट कंडीशंस में कंट्रोल से बाहर हुई और रिकवरी व्हीकल से टकरा गई। उन्हें सीवियर हेड इंजरी हो गई और सर्जरी के बाद वो इंटेंसिव केयर में रहे। बियांची कई महीने तक इस चोट के बाद ट्रीटमेंट में रहे। नवंबर 2014 में उन्हें जापान से फ्रांस ट्रांसफर किया गया। वो आर्टिफिशियल कोमा से बाहर आ गए थे, लेकिन उनकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्रिटिकल थी। 17 जुलाई 2015 को

दुनिया को छोड़ गए। फॉर्मूला 1 ने एक ऐसे ड्राइवर को खो दिया जिसे फरारी और मोटरस्पोर्ट कम्युनिटी के एक बहुत टैलेंटेड फ्यूचर स्टार के तौर पर देखती थी। जूल्स बियांची का फॉर्मूला 1 करियर सिर्फ दो सीजन तक रहा दोस्तों, लेकिन मोनाको में उनका 9th प्लेस फिनिश और मरूसिया के लिए पहले पॉइंट्स उनकी लेगेसी का अहम हिस्सा बन गए। दोस्तों बियांची की कहानी हमें याद दिलाती है कि मोटरस्पोर्ट सिर्फ स्पीड और ट्रॉफीज का नाम नहीं, इसमें करेज, ख्वाब और सैक्रिफाइस भी शामिल है। जूल्स बियांची एक ऐसा नाम जिसका फॉर्मूला 1 सफर छोटा था लेकिन जिसकी याद मोटरस्पोर्ट की दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगी। अगले हफ्ते एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: हेलो,
3: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत

और विरसे की। यहाँ हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। आज हम बात करेंगे कतर की उन मिठाइयों की जो छोटी सी खुशी, मेहमान नवाजी और खास मौकों को और भी यादगार बना देती हैं। कतरी मिठाइयाँ सिर्फ चीनी और जायके का नाम नहीं, इनमें खजूर, साफरान, इलायची, शहद, गुलाब के पानी और आटे जैसे सादा अज्जा शामिल होते हैं। ये चीजें कतर के माहौल, पुराने तिजारती रवाबित और घरेलू पकवान की रिवायत की अक्स हैं। कतर के रिवायती डेजर्ट्स में लुकिमात को बहुत खास मकाम हासिल है। नाम का मतलब ही छोटे छोटे लुकमे, ये मैदे के नरम बैटर से बनाए जाने वाले गोल पकौड़ियों की तरह होते हैं। इन्हें तेल में तलकर सुनहरी रंग दिया जाता है और फिर खजूर के शीरे, चीनी के शरबत या फिर शहद से मीठा किया जाता है। बाहर से हल्के से खस्ता और अंदर से नरम लुकिमात गरम चाय या अरबी कहवे के साथ बहुत पसंद किए जाते हैं। लुकिमात की कामयाबी का राज इसके तवाज़ुन में है। अगर तेल ज्यादा गर्म हो तो बाहर का रंग जल्दी बदल सकता है और अंदर का हिस्सा मुकम्मल नहीं पकता। अगर तेल कम गर्म हो तो लुकिमात ज्यादा चर्बी जज्ब कर सकती हैं। इसीलिए ये छोटी सी मिठाई बनाने में भी तजुर्बे और तवज्जो की जरूरत होती है। रमजान में लुकिमात की खुशबू अक्सर शाम के वक्त गलियों और घरों तक पहुंचती है। रोजा खोलने के बाद घर वाले और मेहमान इसे चाय के साथ खाते हैं। फैमिली गैदरिंग्स में इसे पेश करना मेहमान की तवज्जो और इज्जत का एक खूबसूरत तरीका समझा जाता है। एक और पुराना डेजर्ट है खपीसा। ये आमतौर पे भुने हुए आटे, खजूर, मक्खन या घी और खुशबूदार मसालों से तैयार किया जाता है। इसके बुनियादी जो अज्जा हैं वो सादे हैं, लेकिन खजूर और मसालों की वजह से इसमें गहरा जायका पैदा होता है। खबीसा पुराने सफर, घरेलू जखीरे और मकामी वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने की रवायत को जाहिर करता है। कतरी मिठाइयों में खजूर का किरदार बहुत अहम। सहरा और गल्फ की जिंदगी में खजूर गजाइत, सहूलत और मेहमान नवाजी की अलामत रही है। खजूर को सीधा पेश किया जा सकता है या फिर इसे हलवे, केक, मिठाई या फिर भरे हुए खजूरों की सूरत में दिया जा सकता है। खजूर का मीठा जायका कहवे के हल्के कड़वेपन के साथ एक दिलकश तवाजुन पैदा करता है। ज़ाफ़रान, इलायची और गुलाब का पानी भी कतरी मिठाइयों में खुशबू और शनाख्त पैदा करते हैं। ज़ाफ़रान के सुनहरे रंग से मिठाइयाँ दिलकश नजर आती हैं, जबकि इलायची गर्म और कहवे से मिलती जुलती खुशबू देती है। गुलाब का पानी मिठास में एक नरम और ताजगी का एहसास शामिल कर देता है। रिवायती मिठाइयाँ अक्सर छोटे बर्तन या प्लेट में पेश की जाती हैं। मकसद ये होता है कि मेहमान आसानी से ले सके और मेजबान बार बार पेश कर सके। कतर की मेहमान नवाजी में बार बार पूछना कि मेहमान को कुछ और तो नहीं चाहिए, मोहब्बत और एहतराम का जरिया है। आज के जमाने में इन मिठाइयों की शक्लें बदल रही हैं। कैफे और रेस्टोरेंट्स लुकिमात को मुख्तलिफ फ्लेवर जैसे पिस्ते, चॉकलेट और दीगर जदीद टॉपिंग्स के साथ पेश करते हैं। फिर भी रिवायती शीरे, खजूर का जायका और गरम गरम लुकिमात अपनी असल पहचान कायम रखती हैं। कुछ मिठाइयाँ रोजमर्रा चाय के साथ बनाई जाती हैं, जबकि कुछ ईद, शादी, मेहमान जब आए हुए हों, खानदानी मुलाकात के लिए खास तौर पर तैयार होती हैं। इससे मालूम होता है कि यहाँ पे मीठा सिर्फ खाने के आखिर का नहीं बल्कि जश्न का भी एक हिस्सा है। रिवायती मिठाइयाँ हमें ये बताती हैं कि किसी कल्चर को समझने के लिए उसका दस्तरखान देखना जरूरी है। हर अज्जा के पीछे एक जुग्राफियाई और तारीखी कहानी होती है। खजूर जमीन और सहरा की कहानी सुनाता है। ज़ाफ़रान और मसाले पुरानी तिजारत का पता देते हैं और लुकिमात जैसी मिठाइयाँ घर की गर्मी और मेहमान की इज्जत को नुमाया करती हैं। तो अगली बार
जब आप कतर में कोई रिवायती मिठाई चखें तो उसे सिर्फ एक मीठी चीज ना समझें। इसमें घर के चूल्हे की गर्मी, बुजुर्गों की रेसिपीज और मेहमान के लिए दिल से पेश की गई मिठास छुपी होती है। आज के कल्चर मोमेंट का खुलासा ये है कि कतरी मिठाइयाँ जायके के साथ साथ यादों, मवाकों और रिश्तों की भी हिफाजत करती हैं। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाया दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोग कैसे हैं और उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक हैं और स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहे हों एंड दिस इज़ अ स्पोर्ट्स राउंड अप प्रोग्राम आज मंगल का दिन है एंड आज एक से डेढ़ बजे तक ये शो हमारा होता रहा है एंड इसी में सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है क्रिकेट फुटबॉल ओलंपिक स्पोर्ट्स टीम कतर के बारे में बहुत सारे अपडेट्स हैं वो भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आज बहुत सारे इवेंट्स हैं दोस्तों थोड़ा सा मैं एनालाइज कर रहा था थोड़ा सा यू नो इस प्रोग्राम के लिए जितने भी मैचेस अपडेटेड मैचेस हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा लास्ट मिनट चेकअप कर रहा था कि काफ़ी कुछ होने जा रहा है एंड मौसम भी तो बदल रहा है धीरे धीरे एंड अक्टूबर का आज 6 अक्टूबर है और जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा दिन बड़ा छोटा होता जा रहा है एंड दिस इज़ व्हाट द स्पोर्ट्स विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग स्टूडियो का खड़ी पर 1:02 एंड 1:02 है और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और स्पोर्ट्स राउंड अप प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एक सवाल आप लोगों को पूछ रहा था दोस्तों और वो सवाल ये है कि सवाल क्रिकेट से पूछूं या फुटबॉल से मुझे थोड़ा सा चलिए फुटबॉल से पूछ रहे बहुत सारे क्रिकेट के सवाल हो चुके हैं आप आज फुटबॉल के बारे में थोड़ा सा पूछ रहे हैं आज एक फाइनल होने जा रहा है खलीज कप का फाइनल है और इस खलीज कप के फाइनल में दोनों टीमों के बारे में आपको बताएं कि कौन कौन से दोनों टीमें फाइनल पे हैं आप मुझे बता सकते हैं 6622107 पर खलीज कप आपको पता है कि गल्फ का फुटबॉल जिसको हम कहते हैं जे एंड जीसीसी की रीजन में वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट है और आज इसका फाइनल होने जा रहा है और इस फाइनल में दोनों टीमों के नाम आपको बताने सो आप वेट क्यों कर रहे हैं एंड अगर आप रेडियो सुन रहे हैं एंड एफएम 107 को सुन रहे हैं तो आप अपना फ़ोन उठाइए एंड 6622107 पर टेक्स्ट करिए एंड मुझे सुनते रहिए ऑन स्पोर्ट्स राउंड अप पे जैसे कि अपडेट्स के बारे में आप लोगों से मैंने जिक्र किया था कि अपडेट्स क्या है आप लोगों को बता दो दोस्तों देखिए एशियन गेम्स बिल्कुल इज ओवर 2 वीक्स का इवेंट था खत्म हो गया है अब नाउ लेट्स फोकस ऑन अब घरेलू कुछ इवेंट्स होने जा रहे हैं एंड घरेलू इवेंट्स के साथ साथ आने वाले जो इंटरनेशनल इवेंट्स है कतर में वो क्या क्या है लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से मैं एक कहना चाहूँगा कि बास्केटबॉल वर्ल्ड कप अगले साल हो रहा है यहाँ पे 2027 में वर्ल्ड चैंपियनशिप नॉट वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप इज़ वेरी बिग लेवल तो वर्ल्ड चैंपियनशिप फर्स्ट एवर बास्केटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप इन दिस रीजन इस अरब मुल्क की अगर बात करूँ तो इस पूरे रीजन में कभी हुआ ही नहीं है एंड फर्स्ट टाइम एवर ये होने जा रहा है जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का तो वैसे ही बास्केटबॉल का देखिए बास्केटबॉल बहुत पॉपुलर है दोस्तों यूरोप कहें अमेरिका कहें और इवन एशियन कुछ ममालिक है जहाँ पे बास्केटबॉल इज प्लेड लाइक क्रेजी जैसे फिलीपींस एंड चाइना जापान कोरिया इंडिया ये जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे बास्केटबॉल बहुत फेमस हैं और बहुत पॉपुलर है साथ ही साथ ऑब्वियसली अमेरिका है यू नो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और आपको ताजुब होगा सुनने में कि यूरोप में वो कंट्रीज़ जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि दे आर सो ब्रिलियंट स्लोवेनिया लटविया सर्बिया ये सब बहुत बहुत टॉप टीम्स हैं और आप लोग देखेंगे नेक्स्ट ईयर एंड उसके साथ साथ द टीम कतर भी विल बी देयर टू प्ले देयर फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप तो दोस्तों बास्केटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर है लेकिन इस बार इस सीजन का जो कतर बास्केटबॉल लीग है वो अनाउंस हो गया है एंड वो टूर्नामेंट जो है 10 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है यानी हफ्ते के रोज यहाँ का जो टॉप टीयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट है दैट इज द कतर बास्केटबॉल लीग और इसमें टोटल 9 टीम्स विल पार्टिसिपेट और ये जबरदस्त टूर्नामेंट है इसको आप लोग मिस मत करिएगा ज़्यादातर मैचेस क्या पूरे मैचेस जो हैं अलगराफा के गराफा स्पोर्ट्स क्लब जो हैं उसमें बास्केटबॉल फेडरेशन के इंडोर हॉल में मुनाकिद होता है एंड इस मैच को देखना आप लोगों के लिए एक तजुर्बा है कि बास्केटबॉल भी दैट स्पॉन्टेनियस और स्पिरिटेड और एनर्जी की बात करें तो बास्केटबॉल इज सुपर फास्ट स्पोर्ट आप लोग देख सकते हैं जा सकते हैं विजिट कर सकते हैं मौसम जैसे कि मैंने कहा बताया कि मौसम हैज़ इम्प्रूवड अ बिट तो इसी में आप शाम को जा सकते हैं वीकेंड मैचेस देखने के लिए अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है बस दरवाजे पर यह खटखटा रहा है कि वी आर मेकिंग एन एंट्री इनटू कतर फॉर द सेकंड टाइम, और 2026 का ये जो टूर्नामेंट है उसका स्केड्यूल जो है ऑलरेडी हैज बीन पब्लिश्ड, और ये टूर्नामेंट 19 नवंबर से अभी ऑलमोस्ट कह लीजिए कि 1.5 months के बाद वी विल हैव अ मेगा फुटबॉल इवेंट फॉर अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर के दोहा के आसपास एकेडमी के आसपास जितने भी जो मैदान है जो ग्राउंड्स है वहाँ पे होंगे, और इसको आप लोग तो मिस कर ही नहीं सकते। 48 टीम्स पार्टिसिपेटिंग, क्वालिटी अगर फुटबॉल की बात करूँ जो बेसिक लेवल की जो फुटबॉल है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन वी विल ऑल्सो सी हाउ द रीजन फुटबॉल यानी हमारे खत्ते के जितने भी टीमें हैं उस टीमों को आप उस लेवल पे देखिए जूनियर लेवल पे कहाँ तक इतने अच्छे हैं या बुरे हैं आप लोगों को पता चल जाएगा। 22 नवंबर को ग्रुप ए में मेज़बान कतर जो है दे आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट इजिप्ट। तो ये डेट और जो तारीख मैंने आप लोगों से शेयर किया कि कब से शुरू होने जा रहा है 19 नवंबर स्टार्टिंग एंड 22 नवंबर को कतर का पहला मैच होगा अगेंस्ट मिस्र यानी इजिप्ट के साथ। और एक और इवेंट है जिसके बारे में बता दूं कि जैसे कि यूएफए में चैंपियंस लीग है या एएफसी का चैंपियंस, वैसे गल्फ के लिए भी क्लब चैंपियंस लीग शुरू हो रहा है 13 अक्टूबर से और ये 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। बिकॉज इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन फॉर्मेट है, टोटल जितने भी क्लब्स हैं गल्फ में, गल्फ की बात कर रहा हूँ इस खत्ते की बात कर रहा हूँ, जितने भी क्लब हैं जो क्लब्स मौजूद हैं उनके दरमियान ये एक चैंपियंस लीग टूर्नामेंट है जो 13 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है दोस्तों। और आज जो मैचेस हैं उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को हिंट दे देता हूँ ये कि आज दो मैचेस हैं इनफैक्ट इन नेशंस का फुटबॉल में, और ये नेशंस का फुटबॉल यूएफए का है, यूरोप का है, और इसमें आज इंग्लैंड का सामना चेचिया से होगा, माफ़ कीजिएगा आज एक ही मैच है, इंग्लैंड का सामना चेचिया से होगा। कल रात एक मैच खेला गया जिसमें फ्रांस ने बेल्जियम को 1-4 से शिकस्त दी एंड दैट इज़ द नेशंस कप। और यहाँ पे बहुत सारे टीमों को हम देख रहे हैं उलट फेर काफ़ी देखने को मिला। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को हरा दिया था पिछले दिनों 7-0 यानी 7-0 से, एंड कई मैचेस हैं जो कि बड़े अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे रहे हैं। और बॉस्नियन हर्ज़ोगोविना का मैच देख लीजिए, दे रियली प्लेड वेल एंड बॉस्निया हर्ज़ोगोविना इज वन ऑफ द लेटेस्ट एंट्रेंट इनटू द यूरोपियन फुटबॉल लीग। तो दोस्तों दीज आर द अपडेट्स। और हाँ, आज एक मैच है इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, और ये 5 मैचों की ODI सीरीज का पहला मैच होने जा रहा है, तो इस मैच को भी आप लोग ट्यून इन कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड जो लोकल टाइम कतर के टाइम अगर बताऊं तो 4:30 के टाइम है, इसमें आप लोग देख सकते हैं जो भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं। दोस्तों सवाल मेरा ये है कि आज एक फाइनल होने जा रहा है, और ये फाइनल जो है इस खत्ते का फुटबॉल फाइनल का मेजर फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इस फाइनल में दोनों टीमों के

बारे में आपको बताने हैं, इन दोनों टीमों के नाम के बारे में बताने, हू आर द टू टीम्स प्लेइंग इन द टूर्नामेंट राइट नाउ। टूर्नामेंट का नाम अगर बता सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, और अगर नहीं भी बता सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ये फाइनल होने जा रहा है इस रीजन का, मैं आपको बता रहा हूँ, इस खत्ते का सबसे इंपॉर्टेंट फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये खेला जा, चलिए एक हिंट दे देता हूँ, ये खेला जा रहा है जद्दा में, और जद्दा में ये मैच है, और इस मैच में दोनों टीमों के बारे में आपको नाम बताने और साथ साथ आपके नाम भी उसमें आप जोड़ सकते हैं। और उसके बाद एक ब्रेक लेता हूँ अभी यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा तो आपसे ज़रूर पूछूँगा दोबारा ये पूछूँगा सवाल, और आप लोग अपना जवाब जितने भी हैं आप देंगे, आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करिए, कीप लिसनिंग टू एफ एम 107। और यहाँ पर मैं लूँगा इसलिए एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा और मिस नहीं करना चाहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड ऑन एफ एम 107, दिल से देसी।

0: Sports Roundup. Sports Roundup with our sports journalist Mohammad Amin. Sirf FM 107 par. Dil se desi.
1: वेलकम बैक दोस्तों. रियाद महरेज को जानते हैं क्या आप लोग? रियाद महरेज कौन है? रियाद महरेज, चलिए बाद में बताऊंगा. अच्छा, जो सवाल था मेरा ये कि आज एक अहम फुटबॉल फाइनल होने जा रहा है इस खत्ते के लिए और इस खत्ते में होने जा रहा है, और आपको उसे बताना है कि ये दोनों टीमों के बराबर, इन दोनों टीमों के दरमियान ये मुकाबला कहाँ पर है और किस टूर्नामेंट के लिए है, किस फाइनल में है, आपको अगर बता सकते हैं और दोनों टीमों के नाम भी अगर आप बता दें बहुत बहुत सही लगेगा. एंड एफएम 107 के जितने भी आप लोग लिसनर्स हैं स्पोर्ट्स को बहुत अहमियत देते हैं, एंड आई बिलीव सो आप लोग फॉलो भी करते हैं स्पोर्ट्स को. तो चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ अपडेट्स के साथ. दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना टी20 टीम का जो नया कप्तान है उनका नाम उन्होंने अनाउंस कर दिया है, साहिबजादा

Farhan is the new T20 cricket captain of Pakistan. And Sahibzada Farhan, ki performance in the Asian Games ko matnazar rakhte hue, they decided to put him. And Salman ko unhone keh diya, bhaiya aap baith sakte hain. Acha, Shadab Khan ke bare mein bhi sunne mein aa raha tha ki T20 ka kaptan wo bhi banenge, lekin aisa kuch hua nahi hai. And finally the PCB yani Pakistan Cricket Board ne ye faisla kiya hai ki Sahibzada Farhan ko mauka diya jaye. Aur T20 series jo jumme ke roz se shuru hone ja raha hai against Sri Lanka, ye teen matchon ki T20 series hai, aur yahan par ek challenge hai for Farhan, Sahibzada Farhan ke liye, ki whether he can really show up as a new captain of T20 cricket team of Pakistan. So best of luck and best of wishes to Pakistan team and Pakistan ke is naujawan kaptan ko. Aur bata to chalun ki 9 tarikh ko pehla game hai aur 11 aur 13 ko following two other games. So T20 series ye bahut important series hai for Pakistan, aur Pakistan abhi haal hi mein they played well in Asian Games, aur Asian Games mein khelne ke baad unko seedha ab Sri Lanka ka samna hai, aur Sri Lanka ke jaane ke baad they will face England in Pakistan. So ye bhi series important hai aur kafi kuch hai. Acha, India aur West Indies ke bare mein bata dun ki India West Indies ka aaj first match hai, aur ye T20 match bhi hai. Abhi haal hi mein ODI khatam ho gaya tha, jahan pe aap logon ne dekha hoga balti bhar bhar ke log run bana rahe the, I mean ballebaz log to nahi, ballebaz run bana rahe the. And that is quite fantastic to see ki kis tarah se ODI mein T20 ke style mein ye log bat kar rahe the, both West Indies and India. और आज T20 का मैच है, तो आज T20 में रन्स कितने बनने हैं, आई मीन ये दिस इज अ स्पेकुलेशन कि क्या होने जा रहा है, ये हमें नहीं पता. सो लेट्स वेट कि आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान ये फर्स्ट T20 मैच है, और उसमें किस तरह का धूम धड़क का और किस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिलेगा हमें पता चल जाएगा बहुत जल्दी. और जैसे कि मैंने एक बात और भी कहा, मैंने ये जो मेंशन किया था अबाउट द फैक्ट दैट यू नो इन यूरोप में बोस्निया और हर्जेगोविना के बारे में आप लोगों से जिक्र किया था जब मैं फुटबॉल के बारे में बात कर रहा था, कि बोस्निया और हर्जेगोविना एक ऑब्वियसली एक मुल्क तो है ही है, ये एक नई पहचान के साथ ही है, ये टीम नई पहचान के साथ वर्ल्ड कप में भी कई ऐसे परफॉर्मेंसेस तो हमें सबको मुतासिर किया था, लेकिन बोस्निया हर्जेगोविना ने भी जिस तरह से दे प्लेड, दे वन द हार्ट्स एंड रियली इट्स सो इम्प्रेसिव. और बोस्निया हर्जेगोविना नेशंस लीग में यानी यूएफा का जो नेशंस लीग टूर्नामेंट है उसमें दे आर रियली डूइंग वेल. एंड यस्टरडे यानी कल एक मैच हुआ था जिसमें पोलैंड को बोस्निया हर्जेगोविना ने 1-0 से मात दी. एंड बोस्निया हर्जेगोविना बस ऐसा है कि ये कोई पुरानी टीम नहीं है, इसे न्यू कंट्री भी है और न्यू टीम भी है. एंड लोग हमेशा हल्के से लेते थे कि यार ये बोस्नियन टीम या बोस्निया हर्जेगोविना टीम क्या है, लेकिन देखिए ज़रा वर्ल्ड कप में पहली मरतबा दे क्वालिफाइड, एंड साथ ही साथ अगर देखा जाए दे हैव टर्नड अप. अभी पूरे यूरोप के फुटबॉल के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं कि बोस्निया हर्जेगोविना हैज टर्नड अप इनटू अ मेजर फोर्स, अब बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ये बोस्निया हर्जेगोविना. फुटबॉल में ही हूं मैं, और फुटबॉल से एक और आप लोगों को अपडेट देना चाहूंगा कि हाल ही में आपने देखा होगा कि रोनाल्डो को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हमें देखने को और सुनने को मिला. सो दिस ये एक रीज़न ये रहा कि जो पोलैंड के नए कोच हैं बहुत ही सख्त हैं वो, एंड उन्होंने जिस तरह से रोनाल्डो को कहा कि भाई आप अपने बेंच पे बैठ जाइए, आप पूल मैच आप नहीं खेल पा रहे हैं बिकॉज वी डोंट वांट यू टू प्ले, कि आप इस मैच में खेल सकते हैं. और इसमें रोनाल्डो को बड़ा गुस्सा आया, एंड रोनाल्डो ने कह दिया कि ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ. तो उन्होंने कह दिया कि अच्छा चले जाइए, आप वापस ही जाइए, नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं, यू आर फ्री टू लीव, फ्री टू गो. सो फाइनली मुझे लग रहा है और सबको दिख भी रहा है कि मतलब आज की तारीख में अगर बात करूं तो रोनाल्डो शायद अब अपना जो आखिरी गेम था फॉर पुर्तगाल वो खेल चुके हैं. और रोनाल्डो को लेकर जो एक हवा, एक जो एक यू नो एक न्यूज़ कि यार रोनाल्डो इज़ अ मैजिक, रोनाल्डो ये है, रोनाल्डो वो है, अब वो ख़त्म है. बस बात यह है कि जब आपकी उम्र हो जाए आप छोड़ दो, जगह छोड़ दो, आप उसको खींचो नहीं, खींचते खींचते पता चलता है कि रस्सी जो है वो पतली हो जाए और आप गिर ना जाओ. और वैसे ही कुछ हुआ है, एंड ही वर्कड आउट ऑफ द पुर्तगाल नेशनल टीम कैंप जो लगा फॉर दी यूएफए नेशंस लीग,
और हेड कोच खोर्गे जीसस, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आपका ईगो सेटल करनी है तो आप बेंच पे बैठ जाइए, वहीं पे आप अपना ईगो को मसाज करते रहिए, बिकॉज इट्स अ न्यू जनरेशन एंड न्यू जनरेशन के लिए हम नए खिलाड़ियों को मौका देना पसंद करूंगा, ना कि आप कहेंगे कि मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो हूं और मैं खेलूंगा, प्लेइंग 11 में रहूंगा, ये तो हो नहीं सकता। और इसी वजह से रोनाल्डो साहब थोड़े नाराज़ हो गए हैं। अब मैं कहता हूं कि ये रोनाल्डो अगर स्टार प्लेयर हैं तो उनके इस ईगो को थोड़ा सा यू नो अपने बैग में रख के मैदान पे उतरनी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड यू नो कंट्रोवर्सीज अराउंड स्टार प्लेयर्स, कंट्रोवर्सीज अराउंड द लेजेंडरी प्लेयर्स, और बहुत से ऐसे सोशल मीडिया में पोस्ट मैंने देखा कि उसमें लोगों का ये कहना है, फैंस का भी ये कहना है कि भाई आप 41 के हो गए हो एंड इट्स ठीक है, आप फिट हो, आप जो भी हो आप सही हो, लेकिन आप इस तरह से यू कैन नॉट जस्ट फोर्स इन, यू कैन नॉट जस्ट पुट प्रेशर ऑन द नेशनल टीम के स्क्वाड के प्लेयरों को, खिलाड़ियों को। आप ये नहीं कह सकते मैं रोनाल्डो हूँ जी मुझे जगह दे दो, तो ऐसा होने नहीं दिया। और इसी वजह से मोर देन द रोनाल्डो कंट्रोवर्सी, पोर्चुगल के हेड कोच के बारे में लोग आजकल जान गए कि ये बंदा है कौन, खोर्गे जीसस जो है, ये नाम है आप सुनते रहेंगे आने वाले टाइम में भी, आने वाले वक्त में भी। और दिस इज़ द थिंग दैट इज़ हैपनिंग यू नो इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। कंट्रोवर्सीज भी हमें हमको बता दिए और इसमें रिजल्ट्स भी आप लोगों को बता रहा हूँ। सो कतर में जो मेजर इवेंट्स होने जा रहे हैं दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट मैच हो रहा है इस पूरे रीजन में, और जितने भी फुटबॉल लवर्स हैं वो उस मैच को देखेंगे ज़रूर, क्योंकि ये दोनों टीमें जो हैं ये खत्ते के बोथ ऑफ देम आर द टॉप टीम्स राइट नाउ। अच्छा, जो मेरा सवाल था ये कि आज जो मैच का फाइनल है, उस टूर्नामेंट का फाइनल है, किस दोनों टीमों के दरमियान है, मैं कुछ जो रिप्लाइज हैं, जो मैसेजेस हैं, वो मैं आप लोगों को अच्छा अमीन सयानी क्यों आप मुझे बोलते हैं, मुबीन साहब सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज का, एंड बहुत ही आप जो इस तरह से लिखते हैं उसमें बारीकी से अमीन साहनी लिखते हैं, एनीवे बहुत अच्छा लगता है। एनीवे मुमताज़ अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, वालेकुम अस्सलाम मुमताज़, अच्छा लगता है आपका इस मैसेज, एंड आपका मैसेज जो है वेरी मच कंसिस्टेंट है, रेगुलर है स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में। कभी अगर ऐसा मौका मिले कि इसमें कोई मेडल और सर्टिफिकेट के बारे में बात हो, हम अपने मैनेजमेंट से कह सकते हैं कि भाई वी कैन गिव इट टू द बेस्ट स्पोर्ट्स लिसनर्स, एंड आपका बहुत ही यू नो मुकम्मल तरीके से आप मैसेज को आप लिखते हैं, एंड यू टेक दैट एफर्ट टू टाइप इट आउट, एंड रियली आई अप्रिशिएट। और आज का फाइनल मैच जो आपने लिखा है, जी हाँ, सऊदी वर्सेस यूएई का, सऊदी अरब वर्सेस यूएई, मैं आपको बता रहा हूँ ये करेक्ट आंसर है, और आज का मैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैच बिकॉज इस खत्ते का सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है खलीज कप, और खलीज कप का ये मैच जो है ये इंपॉर्टेंट फाइनल है, एंड ये जद्दा में आज होने जा रहा है, सऊदी अरब प्लेइंग अगेंस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अल नीमा स्टेडियम। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़, आपने ये इसका नाम भी दे दिया, आपने स्टेडियम का नाम भी आपने दिया मुमताज़ अहमद, बहुत बहुत अच्छा लगा। आई फील मुमताज़ इज़ दी आई मेरे अकॉर्डिंगली मेरे ओपिनियन के मुताबिक कि इज़ द बेस्ट स्पोर्ट्स लिसनर्स राइट नाउ ऑन FM 107। दोस्तों बाकी लोग जितने भी सुन रहे हो आप भी थोड़ा सा आ जाइए, इस चैलेंज लीजिए एंड कम एंड यू नो आंसर टू माई क्वेरीज। एंड इसके बाद और किन्होंने दिया है, असद साहब कहते हैं गल्फ कप जद्दा में सऊदी एंड यूएई के दरमियान, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। और जासिम साहब कहते हैं KSA वर्सेस यूएई, यानी सऊदी अरब वर्सेस यूएई का मैच है, जासिम नाम आपका है, बहुत बहुत शुक्रिया जासिम साहब। गल्फ कप का फाइनल है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। मुबीन बगदादी साहब क्या लिख रहे हैं, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह वाई नो वन अप्रिशिएट माई SMS, वाई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा किस SMS के बारे में बात कर रहे हैं। आपके जितने भी मैसेज आते हैं मैं पढ़ता हूँ बाकायदा और आपकी तारीफ़ करता हूँ। तो स्पोर्ट्स चैलेंज इस किस बात का नहीं, मतलब बेस्ट स्पोर्ट्स लिसनर्स अगर कोई है तो मैं उस तरह से मैं कह रहा था कि कंपटीशन हो जाए विद FM 107 के जितने भी लिसनर्स जो कि स्पोर्ट्स पसंद करते हैं और स्पोर्ट्स की बारीकी से जो खुलासा करते हैं, बताते हैं कि आज इस फलाने मैच हैं और इस मैच में इतने रन बने हैं और स्टेडियम यहाँ पर है, मुझे अच्छा लगता है, यू नो यू प्रोवाइड मी विद एन एडिशनल इनपुट्स, और इस पे आप सब लोग यू नो इस तरह से आप लोग शिरकत करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आने वाले वक्त में भी जितने भी प्रोग्राम
प्रोग्राम से, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में आप इसी तरह जुड़ते रहेंगे ये उम्मीद के साथ। आज का स्पोर्ट्स राउंड प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, एंड जुमेरात यानी परसों को एक और प्रोग्राम है स्पोर्ट्स राउंड प्रोग्राम, और साथ ही साथ मैं सुबह स्पोर्ट्स का न्यूज़ भी, हमारा स्पोर्ट्स न्यूज़ होता है और

स्पोर्ट्स न्यूज में लेटेस्ट अपडेट्स देता हूँ मैं, तो वो भी आप लोग सुन लीजिएगा। 9 से 9:30 तक हमारा जितने भी न्यूज बुलेटिन है उसमें स्पोर्ट्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड, और स्पोर्ट्स राउंड अप प्रोग्राम तो हर मंगल को होता है 1 से 1:30 बजे तक, और उस साथ ही साथ इट्स अ गोल प्रोग्राम भी इज देयर ऑन संडेज एंड थर्सडेज। सो आप लोगों से मुलाकात होती है बहुत जल्द इंशाल्लाह। आप लोग खुश रहें, सेहतमंद रहें और स्पोर्ट्स को अपनाइए, एंड कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी।

जानवरों की हिफाजत को यकीनी बनाने और मुमकिना खतरात से बचने के लिए बंद जगहों पर लकड़ी को जलाने और कोयले को जलाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी और कोयले को जलाने से जहरीली गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से खारिज होती है, जो आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, और जो सफोकेशन और चोकिंग यानी दम घुटने या सांस लेने में परेशानी का सबब बनती है। FM 107 आपसे गुजारिश करता है कि आप अपना और अपनों की सेहत का खास ख्याल कीजिए।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाया, थमने ना पाया। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
2: जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वेलकम अहलन व सहलन स्टूडियो की घड़ी में, 1:31। भाई नादिया जी से आपकी बातचीत कराने से पहले मैंने सोचा कि मैं ही आप लोगों से ये बता दूं कि मुझे आज बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने नादिया जी से कहा कि भाई नादिया मैं आज जरा सा ब्रेक ले लेता हूं और थोड़ा सा नैप लेके तो आ जाऊंगा, कम से कम गाड़ी में 15 मिनट की मुझे इजाज़त दे दें। मगर साहब इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया और आखिरकार मुझे बिना नैप लिए सुबह फजर से अभी तक काम करना पड़ रहा है। ये बात खासतौर पर मैंने कहा कि पहले से बता दूं शो के, ताकि आप लोगों को भी एहसास हो और इस बात का पता चल जाए कि मैं कितना, देखिए मिस्कीन जिसकी कोई सुन नहीं रहा, जिससे कोई बात नहीं कर रहा। बहरहाल आइए अब चलते हैं नादिया जी के हुजूर, उनकी खैरियत जानते हैं और जानते हैं कि
3: क्योंकि पहले तो जितना कुछ भी आपने कहा, जरा अपनी जबान की कसम खाइए कि सच था। देखा अब जबान लड़खड़ा दी आपकी।
2: नहीं नहीं देखिए सच तो सारी
3: खा जाइए कसम।
2: नादिया जी कैसी हैं?
3: कैसी हैं
2: खैरियत से है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगी।
3: ज़बान ना निकलेगा झूठ, देखिए कितनी अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोग जो है वो खैरियत से होंगे। और आज है ट्यूसडे का दिन, कैसे ये वीक निकल गया झटपट पता नहीं चला। अब ये कह सकते हैं ट्यूसडे इज लाइक समथिंग, एहसास होने लगता है कि वेंसडे एंड देन देयर कम्स थर्सडे और फिर छुट्टी का एहसास। तो इतनी तेज जो है वो वक्त गुजर रहा है हम सब का कि हमें भी जो है वो ना वक्त को देखने समझने का मौका नहीं मिल रहा। खैर आजकल की जो हम सब की लाइफ है उसमें इतनी ज़्यादा बिजीनेस है, काम का प्रेशर है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, सोशल मीडिया है, स्ट्रेस है, कुछ लोगों की ज़िंदगी सर्वर भाई भी हैं, टेंशन है, उस बीच ब्रेक, जैसे कहा ना सर्वर ने, ब्रेक लेना बनता ही बनता है। और सबसे पावरफुल ब्रेक हो सकता है 20 मिनट्स का नैप। तो यहाँ तो सर्वर ने खैर शुरुआत ही झूठ से की, लेकिन हम चाहेंगे कि आप जो है वो सच से शुरुआत करें और बिल्कुल सच्ची सच्ची हमें बताएं कि क्या लंच के बाद आपको नैप लेना अच्छा लगता है, क्या आपको मौका मिल पाता है, क्या आप ले पाते हैं, कैसा हो पाता है कि नहीं।
2: बनता है मतलब मेरे कहने का ये है कि जो नैप है, रैप तो बनता ही बनता है। अभी आपको मालूम है कि मैंने ऐसी हरकत क्यों करी, क्योंकि मैं अभी अभी जो हमारे बहुत ही मोहतरम

0: इज्जत माब,
1: छोटा पॉकेट बड़ा धमाका कबीर साहब जो है, उन्हीं की सोबत में से उठ के आ रहा हूँ, तो उनका जो असर है मेरे ऊपर वो रहता है जब तक वो मेरे साथ रहते हैं। झूठ से मतलब नहीं है यहाँ पर, अच्छा, वो तो हम दोनों मिलके बोलते ही हैं।
0: अच्छा।
1: और एक दोस्त एक दूसरे से ज्यादा बोलते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन क्या बोल रहा है, किसकी कितनी बात सच्ची है।
0: बीच में जब सच आता है तो दोनों घबरा जाते हैं, अरे ये तो सच
1: कह रही है, क्या
0: आपका बोलवाई।
1: तो भाई आप ये बताइए कि आपकी नैब बनती है या नहीं बनती है, और क्या आप इस चीज से इतना ज्यादा कहना चाहिए। दो चार हैं जैसे नाजिया जी, सोने के मामले में तो कोई मसला ही नहीं, इन्होंने उन लोगों को, मेरा मतलब ये और उन लोगों को कहना चाह रहा था मैं, उन लोगों नहीं उन लोगों को भी पीछे छोड़ा हुआ है जो 10-10 घंटे सो रहे हैं, क्योंकि आप पूरे 12 घंटे की नींद पूरी करती हैं और बीच बीच में हर 1.5-2 घंटे में आपको एक 10 से 15 मिनट की नैप भी चाहिए होती है। तो तारीफ तो खैर नाजिया जी की है ही है
0: और आपकी भी है, आपने भी बैट को पीछे बीट कर रखा है, जिस तरह से आप उल्टे लटक के सोते हैं।
1: सोते तो नहीं है, नहीं आपने मिलाया मुझे सही, मैं ये तारीफ जो है मैं कबूल करता हूँ, क्योंकि रात में ही जागना होता है तो वो भी रात में।
0: मैं कह रही हूँ आपकी तो शख्सियत के इतने कमाल के
1: आदा, बहुत शुक्रिया। बस मालूम है आपको नादिया जी, कभी कभी गुरूर नहीं किया,
0: कभी गौर कर लीजिए।
1: तो भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए नंबर आपको पता ही है, 443-443-77 यानी 443-443-77 एंड व्हाट्सएप के लिए जो नंबर है 666-2210-766 2-2-107 और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम एनर्जी आर के पहले कॉलर।
0: हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हमारे साथ नसीम जी है, राइट?
1: ये पता चलेगा भी आगे, अब पूरी बात सुने जी, कौन है हमारे साथ?
0: हाँ नसीम जी,
2: वैसे मैं कुछ नहीं बोलूँ,
0: देखा ये तकिया कलाम है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
1: ये तकिया कलाम नसीम साहब का ही था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
0: और तो क्या आपका है, आप अपना बना लीजिए। अच्छा, चाहते तो हैं आप बना ले।
1: मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे ख्याल में कोई और भी बोला करता था, ये नसीम भाई थे, तो ये तो माशाल्लाह इतना बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं
0: माशाल्लाह, लगाइए
1: माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई कैसे है नसीम भाई, खैरियत से? तो नसीम भाई आज हम इस बारे में बात करना चाह रहे हैं कि क्या जो दोपहर में
0: लंच के बाद आप नैप लेते, सो पाते थोड़ी देर के लिए,
1: आप कैलूला भी करते हैं? कैलूला तो मैं बना सकता हूँ आपको, मैं आपको बना सकता हूँ लूला, मैं बना सकता हूँ,
0: आप कर ही सकते
1: हैं। तो मैं कैलूला मतलब आप थोड़ा सा जो पावर नैप है नसीम भाई, हाँ क्या बात है यार नसीम भाई, बहुत अच्छा जोड़ा यार, बहुत अच्छा जोड़ा, वाह वाह वाह, ये नहीं था मेरे जहन में। अच्छा है,
0: से कहते हैं
2: रास्ते में जब गाड़ी चलाते नींद आ जाती है, बस मैं खाली रहता हूँ तो गाड़ी लोग
1: एक्चुअली
2: करके,
0: ये तो बड़ा रिस्की है ना।
1: एक्चुअली इसीलिए हमने इस टॉपिक पे बात भी करना, क्योंकि ये बहुत आम हो गया है कि जब हम लोग नींद पूरी नहीं करते हैं तो रास्ते में गश आते रहते हैं जी।
2: तो कभी कभी अगर ऐसा होता है तो मेरे पास अगर ऑटो सेटअप नहीं रहता है तो मैं सीधा पार्किंग में लगाता हूँ, 10-15 मिनट के लिए मोबाइल बंद करता हूँ।
1: Nice. सबसे अच्छी बात यह है कि
0: मोबाइल बंद करना, डिस्ट्रैक्शन सारे जो है
1: और पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं बाकायदगी से, हाँ। और फिर उसके बाद अपनी नींद को जो है वो ले रहे हैं और फिर आगे क्योंकि काम करना ही है, तो ये बहुत अच्छी बात लगी नसीम भाई, बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा मैसेज भी दूसरों के लिए कि हमेशा इसको याद रखे।
0: और 10 मिनट भी 15 मिनट अगर आप सो जाते हैं तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
2: जब आपको बार बार नींद आ रही है गाड़ी पे, 10-15 मिनट
0: कंसंट्रेशन कम है, ऐसे में छोटी सी नैप जो है बहुत ही पावरफुल टॉनिक है। तो आपने बहुत अच्छा कहा, वेरी वेल सर,
1: इसको बिल्कुल इसी आदत को आप बरकरार रखें और सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमेशा नींद और पार्किंग का ख्याल रखें भाई, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़े नहीं हैं। हम लोग गाड़ी चलते चलते भी झोंके आ जाते हैं, तो जब ऐसा आपके साथ आपको फील हो रहा हो तो उसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप सिर्फ 5 मिनट की भी अगर नैप ले लेंगे तो फिर आपको आराम हो जाएगा। नादिया जी की तरह नहीं है, नैप के बहाने से गाड़ी रोकी, पता चला 3 दिन बाद उठी, संडे ही गायब हो गया लाइफ में से, तो ऐसा भी करने से फ़ायदा नहीं है। बहरहाल नसीम भाई तो कुछ आज है नींद के हवाले से, अच्छा कुछ सुनाने वाला,
0: सुला देने वाला।
2: लेकिन मेरे सामने मैं जा रहा हूँ तो एक गाड़ी है 120 के, इसमें 120 के स्पीड पे वो 70-80 में चला रहा है, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ।
1: इरशाद इरशाद
0: सरवर भाई, आप पे कुछ कहना चाहते
1: हैं? इरशाद इरशाद,
2: अगर तुझे इतने रफ्तार से जाना है तो स्टार्ट कर लेते ये अच्छा था। अगर तुझे इतने रफ्तार से जाना है तो स्टार्ट कर लेते ये अच्छा था। अगर अपने पीछे गाड़ियों की लाइन लगानी है
1: बैलगाड़ी
2: मंगा लेते
1: हैं
2: तो अच्छा।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। क्या अनु मलिक वाला शेर सुनाया आपने, बहुत ही बढ़िया, लग ही नहीं रहा कहीं से चोरी हुआ, बिल्कुल आपका ही लग रहा है, अपना कलाम लग रहा है नसीम भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई वक्त निकालने के लिए।

0: नौमान
1: सर वही ना
2: जी, नौमान
0: क्या बात है यार। नौमान भाई कैसे हैं, खैरियत से? बिल्कुल
2: अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे सब भाई?
0: अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह।
2: मैंने जो ये एफएम सुनना शुरू किया है वो कतर आने के बाद आप लोगों की वजह से सुनना शुरू किया है।
0: अरे एलन बस एलन यार,
1: और मोहब्बत भाई
0: शुक्रिया, नवाजिश करम। कहाँ से ताल्लुक है नौमान साहब?
2: मैं कराची से।
0: यार बात है यार, कराची में किधर थे नौमान भाई?
2: कराची आपका परसों आपका एक जो है वो सुना था कि आप गुलशन में बहुत रहे। मैं गुलशन 13D2 से हूँ।
1: अरे आपने गलत सुना नौमान जी, गुलशन में रहे नहीं है, गुलशन से धक्के खा के निकाले बहुत गए।
0: बातें क्यों खोल रही हैं?
2: के पास कोई निकाला नहीं जाता।
0: मेरा भाई कहता
1: है तो इन्होंने
0: नौमान भाई जैसा बड़ा यार, बहुत बढ़िया यार, और बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे साथ कनेक्ट भी हुए। तो नौमान भाई क्या कहते हैं, नैप के हवाले से क्या कहना है, जरूरी है आपके लिए दोपहर में दिन के किसी औकात में?
2: जरूरी है बिल्कुल। अक्सर मैं खुद जो है इस वक्त जो है वो डिलीवरी का काम करता हूँ।
0: ओके,
2: तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं बंदा, तो मैं खुद जो है वो पार्किंग में लाके गाड़ी जरूर रैंप लेता हूँ। अभी लास्ट टाइम कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था, तो मैं ऑफलाइन करें या ना करें, क्योंकि हम ऑफलाइन नहीं कर सकते, शिफ्ट होती है, अगर टाइम होता है तो शिफ्ट ऑफलाइन कर भी देते हैं।
0: ओके,
2: लेकिन नैप ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ की ड्राइविंग के जो है वो आपको पता है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो एक गाड़ी का नहीं होगा,
0: खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला हिफ्ज़ उमान में रखे। नहीं बहुत अच्छा मैसेज,
1: बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर आप फील कर रहे हैं कि आप नींद में हैं, थके हुए हैं, तो हमेशा बहुत अच्छा है कि आप साइड में गाड़ी लगाएं और 10-15 मिनट जो भी
0: पावर इतनी जनरेट हो जाती है उस नैंप के बाद, आप अपने आप को देखिए कितनी जबान चलने लगती है हर एक 15 मिनट के वक्फे बाद। आप जब
1: भाई इसीलिए तो मैं आपको सोने नहीं दे रही
0: हूं। नौमान भाई और क्या शेयर करना चाहते हैं, अभी कहाँ पे है नौमान साहब आप?
2: मैं अभी इस वक्त दफना में
0: हूँ। दफना में क्या हाल है, ट्रैफिक वगैरह ऑल सेट? ओके रिपोर्ट
2: ऑल सेट अल्हम्दुलिल्लाह,
0: माशाल्लाह।
2: और मैं जो है वो सब भाई बहुत अच्छी बिरयानी खुद बनाता हूँ।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या शेर बनाया भाई, क्या शेर बनाया, वाह वाह वाह,
1: कलम तोड़।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, अब इरशाद इस पे आपसे प्रैक्टिकली कहा जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही अच्छी बात और बड़े ही अच्छे आप।
2: जब मौका दें इंशाल्लाह मैं आपको बेहतरीन किस्म की बिरयानी।
0: मेरा भाई
1: सर भाई मैं कह रही हूँ कितनी कलेक्ट
0: मेरा भाई
1: हो गई है,
0: अल्लाह का शुक्र है 1.5-2 क्विंटल बिरयानी जो है जमा हो गई मेरे पास।
1: हम लोग भी दावत कर सकते हैं, वसूल कीजिए दावत।
0: नमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग तशरीफ लाते हैं और इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ उमान में रखे।
2: आप लोगों की वजह से ही मैंने ये इस टाइम के ऊपर जो आज तक लाइफ के अंदर एफएम नहीं सुना होगा
0: मेरा भाई,
2: आप लोगों की वजह से
0: यार मैं यकीन जानिए अब मैं बिरयानी जो है वाकई खाऊंगा। हाँ बिल्कुल
1: खाऊंगा।
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए अपना।
1: सर भाई हमारे साथ एक और कॉलर है।
0: कॉलर हैं, बिल्कुल हैं, और कॉलर तो हमारे दिल जान टुकड़े जिगर सभी कुछ हैं। हेलो सलाम अलैकुम। अहलन वसहलन,
1: कौन है हमारे साथ?
3: मोहम्मद अकरम।
1: ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहम्मद जी कैसे हैं आप, खैरियत से? अच्छा आज हम नैप के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या लंच के बाद आप नैप ले पाते हैं?
3: हाँ मैं 15-20 मिनट लाजिम नैप लेता हूँ मैं, ताकि वो एकदम फ्री फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आगे भी दूसरे जो काम रहते हैं वो करना ईजी हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं तो फिर गाड़ी चलाते वक्त या मैं ऑफिस से निकल के भी घर को जब गए जब तक है ना 45 मिनट्स का रास्ता, लंबा रास्ता, तो उसमें ना कई गाड़ी में देखता हूँ थोड़ा लेफ्ट राइट होते रहते हैं। अगर मुझे कभी भी ऐसा नैप का दिखता है कि मैं थोड़ी नींद आ रही है, मैं गाड़ी साइड में है ना कहीं भी ब्रिज के नीचे शेड के नीचे गाड़ी पार्क करके ना थोड़ा सेफ होके थोड़ा नैप ले लेता हूँ, क्योंकि सेफ्टी रीजन से।
1: बहुत अच्छा कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी और सबकी सेफ्टी है। अच्छा आपके ऑफिस में कोई, आप सॉरी मैं आपको ये बात जो है बीच में काट रही हूँ, आपके ऑफिस में कोई नैप रूम है क्या? आपको लगता होना चाहिए?
3: नहीं
0: है हमारे, हमने तो बना रखा है, नादिया ने खुद अपने छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, कहती है ये मेरी सोने की जो जगह है। वैसे तो सोना इनके पास वाकई, जो अगर मैं सोने की बात करूं, गोल्ड की बात करूं, वो भी बहुत है माशाल्लाह, और इधर सोने में वैसे भी।
3: लंच लेने के बाद अगर आप नैप करेंगे ना तो आपका वेट गेन होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं।
0: अच्छा
3: कम से कम आप लंच लेके कम से कम है ना 15-20 मिनट है ना वॉक कर लीजिए, अगर बाहर नहीं घर के अंदर है ना 15-20 मिनट वॉक कर लीजिए, उसके बाद लेटेंगे तो बेटर होगा।
0: घर के अंदर 15-20 मिनट वॉक कर लें।
1: माशाल्लाह क्या कॉलर जुड़े।
3: अगर आप लंच लेके आप है ना सीधे सोने जाएंगे 100% आपका वेट गेन होने वाला है।

0: इनका भाई
1: और ज्यादातर है ना पेट, ज्यादातर पेट का एरिया है ना एकदम है ना आ जाएगा.
2: अच्छा पेट का एरिया जो है वो बढ़ जाएगा. अच्छा
1: लेकिन आ जाता है.
2: हाँ हाँ मतलब घर और पेट को क्या खून मिलाया इन्होंने और कह रहे हैं घर के अंदर 15 मिनट चल लिया करें.
0: सरवर भाई आप पेट के अंदर घूम लिया करें.
2: अच्छा घर का सामान पहले तो बाहर निकालें. सबसे बड़ा मसला ये है कि चलें कैसे फिर, घर में चलने की जगह ही नहीं है.
0: सरवर भाई आप पेट के इर्द गिर्द घूम लिया करें, 10 मिनट चक्कर लगा लिए.
2: कोशिश करा करें कि उसके आगे खुद ही जैसे
0: दो राउंड तीन राउंड लगा लिया
2: समझ के
0: अच्छे खासे किलोमीटर हो जाएंगे.
2: अग्रम भाई बहुत ही अच्छी बात कही आपने,
0: बहुत ही अच्छी.
2: और जिनके जिनके पेट जो है माशाल्लाह उनके हवाले से भी आपने अच्छी बात कही. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ.
0: बहुत ही जबरदस्त, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया.
1: अल्लाह हाफिज.
0: सरवर भाई अब आपकी राज खुल गया.
2: मुझे
0: तो,
2: में
0: तो आपने पता नहीं कितने दिन सो के मैं चौथे पांचवे दिन उठती हूँ बला बला बला जो भी जो भी
2: बिल्कुल इसके
0: लेकिन माशाल्लाह आपका देखिए कैसा खुला अल्लाह ताला कैसे खुलवाते हैं
2: कहानी इसके बिल्कुल
0: दोस्तों. इधर ही बिरयानी खाते हटो हटो हटो हटो हटो धाम से लेट गए
2: आए मुंह पे चावल चिपके में अभी साफ भी नहीं करे
0: नहीं सो
2: क्या बात है भाई. जबकि कहानी इसके बिल्कुल बरक्स है और जो नींद नहीं लेता वो बेचारा ज्यादा खुशी से फूले नहीं समाता.
0: भाई कभी जिंदगी में 10 सेकंड के लिए सच बोलो क्या मैं सच कॉलर है.
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह. ये खैरियत भाई.
0: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से हैं. कौन है हमारे साथ.
3: आसिफ अंसारी.
0: आसिफ की आपकी आवाज हमें चेंज लग रही है ना. क्या ये कोई और आसिफ अंसारी
2: ये उधार लिए किसी से आवाज बदली है या
3: नहीं नहीं उधार उधार.
2: अच्छा आसिफ भाई ही बदले में दूसरे आसिफ अंसारी
0: कोई और अंसारी.
2: आसिफ अंसारी पहली बार बात हो रही है आसिफ भाई आपसे.
3: अरे नहीं मैं मेरी बात होती रहती है. आसिफ अंसारी बात कर रहा हूँ लेकिन
2: वही वाला
3: नज़ला हो गया उसकी वजह से.
2: कितनी तोहमतें और इल्ज़ाम लगा दी आपने नाज़िया इतनी देर में. हमारे आसिफ भाई हमारे साथ हैं यार. आप
0: आसिफ भाई हैं हमारे.
2: वैसे आसिफ भाई बहुत अच्छी आवाज लग रही है यार. ये तो मतलब
0: कैरी फॉरवर्ड करें.
2: तो क्या कहते हैं आसिफ भाई दोपहर में या किसी भी वक्त मतलब जो वर्किंग टाइम है या लंच टाइम है उसमें आराम करना पसंद है.
0: लंच के बाद
2: या पहले
0: लंच पहले भी सोते हैं सर भाई. अब
3: पूरा का टाइम मतलब 5-10 मिनट के बाद आराम से थोड़े 10-15 मिनट आधे घंटे की नींद ले लेनी चाहिए.
2: यार कमाल है यार सबकी 100% अटेंडेंस चल रही है इस बात पे और अच्छा, यहाँ खाने के बाद नींद ही उड़ जाती है मेरी.
0: आपकी पावर नैप जो है वो कितनी देर की होती है.
2: खुदा के वास्ते कम बताइएगा वरना ये कंपटीशन में लग जाएंगी और जाया होगा मामला काम में हर जाना होगा मेरे.
0: आप सच बोलिएगा आप इनके झूठ पे मत जाइए. आप सच बोलिए सच्चे आदमी आप.
3: क्या बताऊँ मैं कितना टाइम.
0: अरे मतलब 10 मिनट 20 मिनट.
2: अच्छा काम करिए आप ले लीजिए आप पावर नैप ले लीजिए थोड़ी देर में हम कॉल कर करके देखते रहेंगे जितनी देर बाद कॉल उठ जाएगी पता चल जाएगा आसिफ भाई इतनी देर सोए.
3: 10 से 15 मिनट.
2: चलिए साहब अच्छी बात है अल्लाह ताला खुश रखे आपको और ये अच्छी बात है.
0: अल्लाह ताला आपका गला भी बेहतर करे. हालांकि आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है लेकिन फिर भी बेहतर हुआ आपका गला.
2: ठीक है साहब बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू जी अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज. ऑलराइट नाउ वी आर कनेक्टेड आवी.
2: ठीक है
0: ओके हमारे साथ एक और कॉलर. हेलो
4: सलाम वालेकुम.
2: सलाम रहमतुल्लाह जी कौन है हमारे साथ.
4: सरवर नाज़िया ये जुल्म न करो गैरों पे करम हमरे पे सितम काहे कर रहे भैया 40 बार लगाया है कॉल वहाँ.
2: अरे रईस भाई है क्या. रईस भाई किधर थे यार. हम ढूंढ ढूंढ कर परेशान है. हमारा रईस भाई किधर गया.
4: यार असल
0: अरे ये झूठ बोल रहे हैं आपको कभी भी नहीं ढूंढा इन्होंने.
4: बड़े दिनों के बाद असल में हम थोड़ा रेस्ट में थे थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा
0: पहलुल्ला यही कर रहे थे.
4: तो हम थोड़ा सा वेटिंग में थे रेस्ट में. तो आज हमने गाड़ी को मतलब ये किया तो मैं बोला चलो यार आज लगा ही लेते हैं.
2: ये बहुत करते हैं रईस भाई हर बात में हमने ये किया क्या बात.
4: आज उल्टा आज आपको लगता है कि मतलब पड़ने वाला था फोन उठने वाला नहीं था. मैं बोला आज लग रहा है मैं गले पड़ जाऊंगा चाहे जैसा सुनू या ना सुनू ज्यादा लेकिन कॉल लगाती रहूंगा.
2: अरे मेरा भाई वेलकम.
0: और आपने मैसेज कर दिया कीजिए रईस जी इन केस आपकी कॉल नहीं मिल रही है तो हम कोशिश करेंगे आपको कॉल लेंगे.
4: नहीं मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं. आप लोगों का टाइम ही कम होता है ना इसके लिए बस टाइम सुनते रहते हैं और भाइयों को सुनते रहते हैं मजा लेते रहते हैं बस हाँ हमारे सर्वर भाई हैं तो इनको सुन के मजा
0: रहता है भाई। इनको सुन के बिल्कुल मजा नहीं है,
2: मेरा नाम भी नहीं ले पा रहे, हंसे जा रहे हैं। अल्लाह ताला
4: भाई, हमारे सर्वर भाई को, अरे भाई नहीं,
2: क्या कहा, गड़बड़ भाई को,
0: गड़बड़ भाई
2: गड़बड़ कहा रही भाई आपने, मैं नहीं खेला भाई,
0: आपने सही नाम इनका रखा है गड़बड़ भाई,
2: मैं नहीं खेला भैया,
0: चलो नाम बदल दो, गड़बड़ भाई
4: नहीं, ये जो घरों में चलने से बेहतर आप उल्टे लटक के सोते हो, नाजिया ने कहा सब गाधों की तरह, ये सबसे ज्यादा मुसीबत हो जाएगा,
2: आपने इमेजिन कर लिया लग रहा
0: भाई उल्टे अच्छा, लट के।
2: अब पर तो है नहीं, तो अब वो मैच करने के लिए फिर कुछ झालरें वालरें पर्दे वर्दे लेने पड़ते हैं, तो किसी तरीके से कैसा दिखूं आगे ड्रैकुला के लिए मुझे जो ऑफर आया है, जो अपकमिंग मूवी है, रईस भाई
0: तैयारी शुरू है आपकी रात से,
2: खून में अच्छा पी लेता हूँ, नाजिया बताती हैं, जैसा कि नाजिया का कहना है ये। तो रईस भाई क्या हो रहा है, मतलब हो रहा है बीच में रेस्ट, अब ऐसे तो आप रेस्ट लेके ही आ रहे हैं, इतना लंबा रेस्ट 3-4 दिन का,
4: अब वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है, हम तो भैया जैसे थोड़ा टाइम मिला तो सोने वाला, ये जो आपने बताया ना ये बहुत मुफीद है, और
2: ये हाँ ये बहुत मुफीद है, ये जो है यही बहुत मुफीद है रईस भाई,
4: जैसे ड्राइविंग का मतलब डिपेंड करता है, अगर बंदे जबरदस्ती करते हैं ना, जबरदस्ती करने पे वो मसला बनता है, तो मैं खुद भी
2: जबरदस्ती कर रहा हूँ कोई सुलाने पे, आपको क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं,
0: नहीं नींद आ रही है फिर भी चला रहे हैं, हाँ, ये कह रहे हैं
4: जबरदस्ती आप अपने नफ्स से करके तो ये धोखा होता है, कभी कभार हमने ऐसे मतलब, क्योंकि हमको तकरीबन 15-20 साल हो गए गल्फ कंट्री में,
0: हाँ।
4: तो मैं 17 साल तो यहाँ पे हो गए तकरीबन कतर में, तो मुझे तो मैं पार्किंग थोड़ा सा लगा के 15 मिनट का अलार्म लगा लेता हूँ, और अपने सीने के पास रख के बोलता हूँ चल चाहे थोड़ी देर रेस्ट करके ही, तो आदमी का माइंड थोड़ी देर के लिए उसको फौरन फ्रेश हो जाता है, और फिर
0: अच्छा मतलब रईस जी एक सवाल है मेरा आपसे, प्लीज सॉरी मैं आपको बीच में रोक के सवाल पूछ रही हूँ, जैसे 10 मिनट के लिए सोना है, अब आपने अलार्म लगा लिया तो आपको ये बेचैनी नहीं रहती कि अब मेरे 10 मिनट तो जा रहे हैं, अभी तक मुझे नींद नहीं आई, अभी मुझे नींद नहीं आई, अपन निकल गया टाइम,
4: नहीं
2: मेरे साथ बहुत होता है,
0: मेरे साथ भी होता है,
2: क्या आप सो के क्या करेंगे, ले यार 15 मिनट तो सोने की सोच ही रहे थे,
0: वो निकल गया
2: हैं, कौन आया, अरे अल्लाह रहम करे, उन्होंने लाभ अच्छा लिया बीच में, मेरा ख्याल में आपसे कुछ कह गए बातों में,
4: नहीं मैं मेरा कहने का मतलब था कि असल में नाजिया जो आपने कहा ना कि 15-20 मिनट वो क्या रहता है, उस पे आदमी का ये रहता है कि नहीं अलार्म बजेगा,
2: ये रहता है आदमी का उसमें कि ये जो है बजेगा नहीं,
4: कि अलार्म बजना ही बजना है, तो मैं उसके ऊपर अपने थॉट को क्यों मतलब ये करके, अगर अलार्म नहीं लगाए रहते ना तो आदमी को बेचैनी रहता है तकरीबन,
0: ये बात भी है कि सोते ना रह जाए
4: ज्यादा ना, सो और जब अलार्म 10 मिनट या 15 मिनट के लिए लगा लिए ना तो वो क्या है ना कि वो माइंड उससे एकदम सेटअप
0: हो जाता है, नहीं
4: वो बजना ही है, बजना है वो, रिलैक्स मतलब हाँ वो अपने टाइमिंग पे बजेगा, तब तक हम अपने नींद को रिलैक्स करके सो, अगर मैं अलार्म नहीं लगाऊंगा ना तो माइंड हमें यार ऐसा ना हो डिले हो जाए लेट हो जाए यार, अभी मुझे हमेशा घूम घूम के टाइम देखना पड़ता है, ये
0: रिलैक्स नहीं हो
4: पाता,
0: नहीं बिल्कुल सही है, अलार्म तो लगाना ही चाहिए, उससे आपको पता रहता है 10 minutes, 15 minutes, 30, 20 कितने मिनट्स
4: हुए हैं, हम लोग का सामने काम का मतलब कुछ ऐसा कभी कभी सिचुएशन रहता है कि इतने काम इतने ट्रिप इतने वहाँ से आपको मतलब ये करने ही करना है, बड़ी गाड़ी चलाते हैं हम लोग, तो ये अपने हिसाब से मतलब सेटअप बना के रखते हैं कि नहीं यार चलो अब भाई आदमी का अगर नींद आ रहा है और जहन ये हो के और कुछ खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बात हो जाए तो मसला बन जाएगा, इससे अच्छा कि हम अगर अपने आप को थोड़ी देर के लिए रेस्ट मोड में डाल के 15 मिनट के लिए रेस्ट मोड में डाल के और अपने आप समझ लो कि दिमाग फ्रेश हो जाता है, फिर आप काम करो अच्छे से, कोई मसला ही नहीं बनता है, तो ये सब चीजें हालांकि मतलब इस चीज में बिल्कुल कोताही नहीं करना चाहिए, अगर आदमी को नींद आ रहा है कोई चीज कह रहा है तो उसे या तो अगर उसे बहुत तो गाड़ी से नीचे उतरो, कम से कम आप 10-20 कदम गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा के थोड़ा सा चल ले तो वो भी
0: आपके लिए, आपने लंच किया गाड़ी के चार चक्कर लगा लिए, नहीं पेट के आपके
2: मुझे लग रहा है कि ये चलती गाड़ी के चला लगा रहे हैं ये, इसलिए ज्यादा थक रहे हैं चलिए साहब बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया रईस भाई, और बहुत अच्छा किया कि आज आपने वक्त निकाला।
0: बहुत अच्छा लगा आज
2: आपसे बात लेने के बाद। आज आप माशाल्लाह वैसे ही
0: चेहरे पे नजर आ रहे हैं। आना है भाई, ऐसा नहीं आप बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाते हम लोग के साथ,
2: वक्त निकाला करें।
4: असल में हम थोड़े से मतलब वो एक छोटी एक सर्जरी की जरूरत थी, तो
2: अल्लाह ताला से एहतियात करे भाई।
4: अल्लाह ने बहुत आसानी से माशाल्लाह
2: अल्लाह ताला आपको शिफा कामिल सेहत कामिल अता फरमाए, यही मेरी दुआई है। जब एक बार तबीयत अच्छी हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं मिलने आऊंगा इंशाल्लाह। खाने वगैरह का एहतमाम करिएगा,
4: है ना? बिल्कुल बिरयानी
0: दूसरी अल्लाह ना करे
2: यार, एक तो पब्लिक बिरयानी में ही टरकाई दे रही है, समझ में नहीं आ रहा। इसके अलावा कोई कुछ खिलाना ही नहीं चाह रहा मुझे।
0: भाई लोग आपको बिरयानी तो खिला रहे, मैं तो खिचड़ी की सोचे हुए बैठी हूँ।
4: नहीं नहीं नहीं, मैं बार भी खिला दूंगा मेरे भाई।
0: अच्छा अरे भाई मत खिलाइए,
2: चलिए नहीं इंशाल्लाह कहिए, इंशाल्लाह कहिए,
0: इतनी तकलीफ क्यों उठाई।
2: चलिए साहब रईस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हल्के से
0: सर्जरी हुई है
2: इंशाल्लाह, बहुत हल्के से कह रहे हैं मुंह ऐसे करके मोबाइल से इंशाल्लाह।
4: बुलाए नहीं रहे हो भैया, बुलाए नहीं रहे हो, कानपुरिया भाषा में बतियाना पड़ेगा।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला वो दिन भी आएगा रईस भाई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहतियाब रखे,
0: बस इस जिंदगी में दिखा दे अल्लाह पर वो दिन।
4: नाजिया के ऊपर कर्ज है, बुलाए नहीं रही है हमको।
0: अरे हमको तो बनाने तक नहीं आती बिरयानी, सरवर भाई बहुत अच्छा बना लेते हैं।
4: फिर नहीं, हमारा कुछ कर्ज है रेडियो एफएम 107 पर, तो वो हमारा जब आएगा कर्ज तो उस टाइम एक ही बार पार्टी दे देंगे।
0: चलिए इंशाल्लाह, समझ गए बिल्कुल इंशाल्लाह।
2: ओके रईस भाई, ओके ओके ओके, वो है मियां,
0: अल्लाह
2: ये था रईस मियां। आज वो अच्छा मुझे ऐसी अपनी आदत लगा गया है।
0: एक हमारे साथ और कॉलर।
2: ये हेलो,
5: अस्सलाम
2: वालेकुम, कैसे हैं?
5: अल्हम्दुलिल्लाह भाई बढ़िया हैं, आप बताइए खैरियत से हैं?
2: अरे अरे अरे अरे अरे अरे अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके साथ जासिम भाई जुड़ जाएं तो वो खैरियत कहाँ जा सकती है। नाजिया बाजी आपका इंतजार कर रही थी कि कॉल कब आएगी।
0: जब जासिम भाई जुड़ जाए माशाल्लाह, खैरियत कैसे हो सकती है माशाल्लाह।
5: नाजिया बाजी जो है ना, एक बार बताओ सरवर भाई, तुम जो है ना अपने लिसनर्स को जो है ना कभी जान पार्टी है देना शुरू कर दो भाई, तुम
2: है ना
0: पार्टी पे बुलाना शुरू कर दीजिए, आप पार्टी बना लीजिए।
5: क्योंकि जो भी आएंगे ना सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ही बिल फाड़ते हैं सर पाके,
2: है ना?
5: हाँ जी।
0: नहीं वो ये कह रहे हैं कि आपको ही इतने लोग बिरयानी की दावत दे रहे हैं, आप भी दे दीजिए,
2: है ना?
0: हाँ जी।
2: तो जासिम भाई क्या हो रहा है ये बताइए।
0: जासिम भाई कह रहे हैं मैं भी दावत देने आया।
2: दोपहर में नैप का गेम हो रहा है नहीं हो रहा है
5: भाई? मेरा तो सुबह को जो है ना, सुबह को मैं तो
0: भैया ने कितना सुलवाओगे, ये उठी 12 बजे है।
2: नाजिया बहुत ज्यादा कोफ्त खाने लगी है आपसे, आपको मालूम है इसी वजह से।
0: नहीं नहीं, मुझे ये अजीब मतलब मुझे लग रही है भाई को इतना माशाल्लाह इतना अच्छा मौका मिलता है, दिन में उठते हैं
2: कितनी खुश हो रही है अपने जैसा किसी को देख के।
0: मुझे बड़ी खुशी
5: माशाल्लाह
0: माशाल्लाह लगाइए, माशाल्लाह नजर न लगे वाकई। अब फिर ये नैप ले लें,
2: अब फिर नैप लेंगे मुझे ऐसे ही लग रहा।
5: अब नहीं
2: हमसे बात करके तो जरूर बनती हुई है,
0: बनती
2: बनता है, बनता बनता है।
0: नहीं तो आपकी तो नैप की गुंजाइश नहीं है ना, आप रैप करें।
2: बहुत गुंजाइश निकल रही है, भर भर के 1.5-2 लीटर।
0: अरे भाई कितना अच्छा खासा माशाल्लाह माशाल्लाह
2: यार, आप अपनी भी बात देखिए ना, 12 घंटे खुद सो के उठ रही हैं आप, उसके बाद आप 15-15 मिनट की नैप भी ले रही हैं।
0: 15 घंटे के सो के उठते हैं उल्टे लटक के, फिर अरे इनको आप खुद देखिए माशाल्लाह, इनके घर जाइए कभी आप, कर देंगे जो माशाल्लाह।
2: झूमर ही नहीं घर में,
0: ये लटके हुए
2: घर में झूमर किसी वजह से नहीं है, टूट गए
0: तोड़ दिए गए। अरे भाई मेरी एंट्री नहीं है इनके घर में, आप क्यों इतने परेशान है? आप जाइए, आपको माशाल्लाह ये दिखाएंगे भी, मिलवाएंगे भी, बैठाएंगे भी, लटकाएंगे भी।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
5: मतलब मटन बिरयानी का प्रोग्राम बन गया क्या, लटका के छीलना है?
2: क्या बात है यार,
0: कोरमा कह रहे थे।
2: कितनी इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं आज,
0: भूले नहीं तुम्हारा तो। अच्छा नहीं, ऑन अ सीरियस नोट ये बताइए कि आपको ऐसा फील फ्रेश फील करते हैं सो के जब उठते हैं? जब
5: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रोज, क्योंकि मेरा अच्छा, तो
0: क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सो जाओ ना तो थोड़ा सा आदमी सुस्त भी हो जाता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। ऐसा तो नहीं होता कि सुस्त हो जाए बॉडी
5: सोने के मामले में? सो के उठने में कभी भी सुस्त नहीं होता, मुझे कितना भी सुलाते रहो मैं सोता रहूंगा आराम से।
0: अरे तो मेरे भाई है भाई।
2: बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आप माशाल्लाह से दो ही आदमी हैं कदर में जो हो रहे हैं, क्या बात है भाई।
0: मुझे काम मिल रही है सुनने तभी तो माशाल्लाह लगा रही हूँ।
6: घर में भी हमारे घर में भी इसी चीज पे लड़ाई हुआ, हमारी मैडम इसी चीज पे लड़े है कि तुम्हारे पास सोना ही सोना है, मैंने सोना ही सोना और कुछ नहीं करना है।
0: सेट है भाई आपकी लाइफ माशाल्लाह।
2: नहीं वो एक्चुअली ये लड़ाई दूसरी बात पूरी है, आप समझे नहीं, वो दूसरे सोने की बात कर रही है। वो कह रही सोना ही सोना चाहिए, सोना ही सोना, आप कह रहे हैं कि आप वो सोना कहती हैं, आप जाके सो जाते हैं।
6: अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बतेरा है भाई।
2: आए, हाए, मेरा दोस्त कैसा जासिम भाई जैसा। नादिया की आंखें चमक गई एकदम,
0: इतना सोना मेरी आंखें आगे चमक।
2: चलिए साहब जासिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जरूरी ब्रेक लेना है वरना बात लंबी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो भाई एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम दोनों, यूं गए और यूं वापस आए। सुनते रहिए FM 107।

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: لیجیے صاحب, بجے دو, دو بج کے صحیح تین منٹ اور حاضر خدمت ہیں.
0: آپ سن رہے ہیں انرجی آر, انرجی آر آر جے نازیہ اور آر جے سرور کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
2: تو بھائی بات چیت تو ہوتی رہے گی اور آپ کی کال کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی دیر میں ہم کال لیتے ہیں, چھوٹا سا بریک لیں گے, آپ کے میسیجز شامل کر لیں ذرا پروگرام کے اندر. کیا کہتے ہیں, وی ول وش سعودی. اچھا یہ میرے خیال میں امین بھائی کے ٹائم کا میسج اب پہنچا ہے ہمیں, کیا ایسی ہی بات ہے. السلام علیکم کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہشام ہے ہمارے ساتھ.
3: اوکے
2: بڑھتے ہیں آگے. السلام علیکم. کبیر الاسلام کو میرا سلام کہنا. بالکل یار, کبیر الاسلام صاحب اگر آپ ہمیں سن بھی رہے ہوں, مجھے نہیں لگتا شاید سن رہے ہوں گے کیونکہ وہ ان کے نیپ لینے کا ٹائم ہو گیا ہے اب. میں ضرور پہنچا دوں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد بھائی ہمارے ساتھ, شہزادہ سلیم. کبیر بھائی
3: ہاں جی.
2: السلام علیکم نازیہ میم اور سرور بھائی, ہم ہیں آپ کے ساتھ ایف ایم 107.
3: شہزادہ جی کیسے ہیں,
2: خیریت سے؟ السلام علیکم. کبیر بھائی کے بگ باس کا ہوسٹ بنایا جائے گا, آپ تیار ہیں؟
3: ایک
2: تو طارق جمیل صاحب جب ایسی باتیں کرتے ہیں مجھے بڑی شرم سی آتی ہے. عرفان القاسمی صاحب ہمارے ساتھ
3: بریانی کھا کے تیار ہیں.
2: یہ میرے خیال میں صبح کچھ ان کا سوال اس طریقے کا تھا اور اس میں حسب روایت مجھے کہیں نہ کہیں خان ساما اور
3: اس میں سب کام کرتے بگ باس میں روٹیشن سے, بٹ رہے گا یہ کہ آپ کے ساتھ ٹیم کون سی رہے. میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ.
2: اوکے نادیہ, اللہ حافظ نادیہ, اللہ حافظ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ سر جب ہم گاؤں میں کھانا کھاتے تھے تو کھانا کھانے کے بعد باہر دوست کھڑے ہوتے تھے, پھر ہم ان کے ساتھ گھومنے نکل جاتے تھے اور پورے گاؤں کا چکر لگاتے تھے, لیکن یہاں تو بس کھانا کھاتے ہیں اور پھر واپس ڈیوٹی پر نکل جاتے ہیں.
3: تو یہی تو اکرم جی نے بولا تھا کہ آپ جو ہے نا کھانا کھا کے سوئیے نہیں, آپ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے.
2: مخین بماری ادھر ہو گیا, میم اور قاف. مبین بخاری صاحب خائے اور میم میں تھوڑا. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. نادیہ جی, سرور جی, آپ کو اور تمام لسنر کو گڈ آفٹر نون. قطر ایم بی بی. اب پتا چلا نیند نیند ہوتی ہے, میرے 89C لائک میں سونا ہے تو سونا ہے.
3: صحیح کیا آپ نے, طے سونا ہے تو سونا ہی ہے.
2: السلام علیکم سرور بھائی, کیسے ہیں آپ؟
3: وعلیکم السلام.
2: شادی کے بعد کون سی نیپ؟ اے میرا بھائی, اس سے آگے میں پڑھ ہی نہیں سکتا میسج. راتیں کی نیند ختم ہو چکی ہے, آپ سونے کی بات کر رہے ہیں. محمد رانا ہمارے ساتھ.
3: ارے کیسی بات کر رہے ہیں؟
2: صحیح بات کر رہے ہیں. مجھے جانتا
3: بات کیوں کر رہے ہیں؟
2: میں آلو کھلاؤں گی سرور بھائی کو.
3: یہ تو سمی ہے.
2: نہیں, جو بیل قطر انیس.
3: کھلاؤں گی,
2: کھلاؤں گی لکھا ہوا یار, پتا نہیں. بہرحال جو بھی ہوں, ایکچولی اچھا ہی نہیں لگا سن کے آلو کے نام پہ. تو ہم کیا,
3: مجھے تو بہت اچھا لگا.
2: کہہ رہے ہیں ہیپی نہیں, ہیپی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ آفٹر نون نازیہ جی اور سرور بھائی, کیسے ہیں آپ دونوں؟ ہوپ ویل. ویلکم ٹو انرجی آر. یوسف بھائی, ہیپی منڈے آفٹر نون. یوسف بھائی
3: تھینک یو. یوسف جی تھینک یو. کے حوالے سے
2: کوئی بات نہیں کری آپ نے. السلام علیکم سرور بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی مقصود بھائی ہمارے ساتھ. السلام علیکم بھائی. بہت اچھے لوگ ہیں جو 15 منٹ میں فریش ہو جاتے ہیں. میں تو جب ایک بار سوتا ہوں تو پھر اگر دوپہر کو سویا تو شام کو ہی اٹھوں گا, کار میں ہوں یا بیڈ پہ.
3: کون ہے ہمارا بھائی؟
2: محمد حسین. آپ کو نازیہ جی سے سلام دعا ہوئی تھی آپ کو؟ یہ فون پہ بھی آپ کو اپنی جو پریشانی ہے
3: وہ دے سکتے ہیں. میں بھی 15 منٹ میں سو کے نہیں اٹھ پاتی. مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ 15 اور 10 منٹ میں لوگ سو کے سو بھی لیتے ہیں اور اٹھ بھی جاتے ہیں.
2: 50 منٹ ہوتے ہیں جب آپ گھڑی دیکھتی ہیں, آپ کو 15 لگ رہا ہوتا ہے.
3: ہاں ہاں میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ میں 15 اور 10 منٹ میں نہیں اٹھ سکتی.
2: کوئی بات نہیں, ہوتا ہے. ایسی بیماریاں جو ہیں ان میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو دکھ صاف رہا ہے؟ چشمے کی ضرورت پڑتی ہے
3: سر؟ آپ تو مجھے بنا چشمے کے بنا سر.
2: السلام علیکم سر بھائی. ڈھاکہ والا کبیر آپ کو چھپ چھپ کے سن رہا ہوگا, यार यासीन मुल्ला साहब यार, एक तो पता नहीं क्यों लियाकत ने कबीर ने बताया नहीं था कि वो ढाका से हैं। मैं मुझे बड़ा क्या कहते हैं उसको, क्या सरप्राइज को क्या कहते हैं हिंदी उर्दू में, भारत वो हुआ कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, लंच के बाद कैलोल्ला कर लेना चाहिए 20 मिनट, इनफ। नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, मीरा गालमन,
3: मीरा
2: या मेरा कोई तो है। ओहो भाई इस पे कॉल आ गई, मैसेज कैसे पढूं? नाजिया इनको बताइए कि कॉल किस पे करना है।
3: जो हमें कॉल कर रहे हैं हमारे 666 वाले नंबर पे, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप हमें कॉल कीजिए, नंबर है 443-443-7-7।
2: चलिए मैसेज का सिलसिला, रईस खान भी आ गए।
3: नंबर भूलने नहीं
2: दिया आपने, आदत हो गई आपकी बात काटने की। मैं कल परसों ही सोच रहा था कि हम लोग अपने जब प्रोग्राम से बाहर होते हैं, जब भी हम एक दूसरे को कोस रहे होते हैं नाजिया, ये सही नहीं हो रहा है।
3: मैं खुद कह रही हूं कि आपके साथ तो कभी सही नहीं हुआ, मेरे साथ क्यों बुरा हो। हमारे साथ
2: और कौन है हमारे साथ?
4: जी मेरा नाम रेहान है।
3: रेहान,
2: यार रेहान भाई कैसे हैं? खैरियत से? कहां से ताल्लुक है रेहान भाई और कहां हैं?
4: नहीं, पाकिस्तान लाहौर।
2: ओके
3: लाहौर, अच्छा। सो रेहान आज हम पूछ ये रहे हैं कि जो पावन ऐप है आप ले पाते हैं कि नहीं?
2: यार मुझे मैं रिश्तेदारी तो निकाल लूं पहले यार, लाहौर में आपको मालूम है मेरा खानदान। अच्छा
4: मुझे मुझे मुझे कराची का भी बहुत पता है, मैं को 9 साल कराची में रहा।
2: मेरा भाई कैसा रेहान भाई जैसा है यार, क्या बात कर दी तुमने लाजिया।
4: अरे
3: आप बेफिकर रहे
2: यार, रेहान आपको किसी ने कहा है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है? नाजिया माइक बंद कर दूंगा मैं, एक मिनट।
3: मैं बता रही हूँ कहीं से भी आपका ताल्लुक हो, इनका हर जगह से ताल्लुक।
2: तारीफ तो कर दूं रेहान भाई, पहली बार बात हो रही है मुझसे नाजिया से आपकी?
4: नहीं, मेरी आपसे भी एक दो दफा बात हुई है कभी।
2: क्या मैंने आपको पहले बताया कि आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है?
4: आपने आपने खैर ये वाले वर्ड्स तो नहीं कहे थे, लेकिन मुझे आपने और कबीर ने 2-3 दफा कहा है कि आप पॉडकास्ट करें।
2: यार
4: आई बिलीव इट मींस
2: नहीं, और नाजिया जी ने आपकी आवाज सुन ली। नाजिया जी और महेश भट्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, स्टार रातों रात बना देती हैं ये, और पॉडकास्ट तो नाजिया जी से ऐसे जुड़े हुए कि क्या ही बताऊं मैं। तो अब हो सकता है कमिंग टाइम में आपको साइन किया जाए आज की 5 के लिए। अच्छा 2 ही आई है अभी, 3। रेहान भाई, रेहान भाई तो क्या कहते हैं सोने के मामले में आप कैसे हैं?
4: जी जी, मैं असल में एक दो तस्वीर करना चाहूंगा पहले।
2: ओके ओके गो अहेड।
4: थोड़ा सा ये जो कैलूला और पावर नैप है ये दोनों एक चीज नहीं होते, डिफरेंट। जो कैलूला है वो बेसिकली सियस्टा कहते हैं, सियस्टा की उर्दू जो है वो कैलूला है।
2: Okay.
4: तो कैलूला का टाइम जो है वो डिफरेंट है, वो नॉर्मली 1 घंटे के आसपास होता है।
2: अच्छा।
4: और जो पावर नैप है इट इज लेस देन 30 मिनट्स 20 मिनट टाइप के लिए जो है वो पावर नैप है। तो ये जो नॉर्मली दोपहर के खाने के बाद जो सोने की ट्रेडिशन है मोस्टली मेडिटेरेनियन के इलाके में या यहाँ पे भी या गर्म इलाकों में, तो उसको कैलूला या सियस्टा कहते हैं, वो थोड़ा सा लंबा होता है। दैट इज क्लोज टू 45 मिनट्स टू एन आवर।
2: आपका डॉक्टर ने
4: नहीं, मेरी बात हुई है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं जहाज का ड्राइवर।
2: जहाज के ड्राइवर है?
3: सर भाई मुंह तो बंद कर लीजिए, जहाज अंदर ही ना लैंड हो।
2: पायलट नहीं, मैं मुझे खाने बड़े पसंद है ना यार, फ्लाइट के तो अब रिहान भाई से दोस्ती करनी पड़ेगी, गहरी दोस्ती करनी पड़ेगी।
3: नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज गो अहेड, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप चुप रहिए।
4: तो ये थोड़ा सा फर्क है, बिकॉज ये जो पावर नैप है ये किसी भी टाइम पे आप ले सकते हैं, नॉर्मली दिन में ही है, बट ये फौरन दोपहर के खाने के बाद वाला जो है, बट खैर उसमें भी लोग लेते हैं, टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आप कम टाइम के लिए ले रहे हैं तो वो पावर नैप है, कुछ लोग नासा नैप भी कहते हैं, बट जो कैलूला है सियस्टा उसका थोड़ी सी ड्यूरेशन ज्यादा होती है।
2: यार अच्छा हुआ बताया, सियस्टा के नाम पे तो मैं सियस्टा के नाम पे तो आज तक गाड़ी ही जानता था, मगर अच्छा हुआ आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया। और रेहान भाई इस इजाफे के साथ साथ अब नाजिया की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि ऑलरेडी 12 घंटे सोना, पावर नैप, अब सियस्टा, और
4: तो पूरा नहीं कर सकते। नहीं लेकिन मैं इट वाज surprisingly
3: both are good, this is what he wants.
4: जी जी both are good, but surprisingly समझ नहीं आई कि कैसे आपके सब लिसनर जो हैं वो एग्जैक्टली 15 मिनट सो सकते हैं ऐसा होता नहीं है मेरे साथ तो कम से कम
3: मेरे साथ भी नहीं होता रिहान जी
4: कई दफा ऐसा होता है कि नॉर्मली आधा पौना घंटा हो ही जाता है बल्कि कई दफा तो ऐसा होता है
2: नहीं वो 15 मिनट कह रहे हैं रियान भाई मैं आपकी बात काटूंगा 15 मिनट कह रहे हैं उसके बाद 50 मिनट के बाद ही आंख खुल रही उन सबकी ऑफिस जा रहे हैं तो बातें और सलावातें भी सुन रहे हैं
4: लेकिन आपके सारे के सारे आपके साथ लिस्टनर तो यही कह रहे थे जी 15 मिनट मेरे साथ तो
3: मैं पता है मैं अजीब गिल्ट में बैठी हुई हूँ कि बाकी लोग 15 मिनट सो भी रहे हैं उठ भी जा रहे हैं
4: और मैंने कभी अगर ट्राई जी लग जाता है मैंने कभी ट्राई किया तो अक्सर तो ऐसा होता है कि दोपहर में दोपहर के खाने के बाद सोए तो आंख खुली तो 7-8 बज रहे हैं अब समझ ही नहीं आया अगला आधा घंटा कि ये सुबह के 7 हैं या रात के
3: 7
4: आप जो है वो पता नहीं कैसे लोग हैं ये कि
2: जो 15 मिनट में उठ रहे हैं
4: टाइमर चलता है
2: हाँ नहीं यार वाकई है
3: आपको रिहान जी और हैरत होगी सर्वर के बारे में जान के सर्वर भाई सिर्फ 3 मिनट सोते हैं कहते चुप जाओ मैं सो रहा हूँ आंखें फाड़े सो रहे हैं
2: भाई
3: फिर उठ गए
2: फिर वाली बात माशाल्लाह कहा करी मेरी चीजों से कितना जलेंगे रिहान भाई यार बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मालूम है आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं रिहान भाई चले गए अधिकारी जी चलो खेलो
3: लिहाज में
2: रियान भाई तशरीफ लाते रहकर ही सुनते हैं हम वैसे यूजुअली
3: आपने जो इन्फॉर्मेशन दी
4: जी नॉर्मली मेरा जो ड्राइविंग का टाइम होता है सुबह बिफोर 6 o'clock और ये 1:30 के बाद तकरीबन 2:30 तक जो है वो
2: अरे तो दोनों ही तरफ से पकड़ रखा हमने सुबह 6 वाले ने और दोपहर में 1:30 वाले ने चलिए सब खुश रहिए बिल्कुल बिल्कुल फ्लाइट में हमें जरूर याद करिएगा बहुत बहुत शुक्रिया
3: नहीं इनको प्लीज मत याद
2: एक गाना तो चलना बनता है एक भी गाना नहीं चला आज हमारे शो में
3: मुझे लग रहा है कॉल सी ले लेते
2: हैं थोड़ा सा वकरा की तो आप हैं यहाँ पे वकरा स्वैग कर दो
3: आप देख ही रहे हैं आपके सामने है कि मैं कह रही हूँ मैं कॉल ले लेती
2: हूँ इसलिए मैंने आगे आपको पढ़ने की इजाजत नहीं दोस्त देख नहीं रहे दोस्त सुन रहे हैं
3: देख रहे हैं आपकी हालत
2: ओके ओके नादिया अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह

0: मुझे पता नहीं इस गाने को सुन के वाखरा वाले याद आ जाते हैं यार। वाखरा में काफी अजीज और अकारिब रहते हैं। नादिया आप मुगालते में मत जाइएगा।
1: नहीं नहीं, मैं अपने को एक्सक्लूड करती हूँ। आपके अजीजों में मेरा नाम होना भी नहीं चाहिए।
0: भाई क्या स्वैग पाया भाई। चलिए जनाब, हुई हमारी वापसी 2:17। आज मुझे इसकी बहुत याद आ रही है। ये 15 मिनट मुझसे मिलता है और ऐसी ऐसी बातें मुझे और नादिया को सुना के चले जाता है कि हम प्रोग्राम में फिर अपने
1: आप,
0: उसकी जबान जो है वो बोलनी पड़ती है।
1: आप
0: सुनाता तो दोनों को है।
1: नहीं, मैं तो आप पे असर होता है।
0: असर तो उस पर ही होता है। आज सत्रह को सत्रह कह के गया मुझसे। नादिया कुछ मैसेज है तो उसके बाद कॉल की जाने बढ़ना है। हम रईस भाई कहते हैं, असल में 15 मिनट में नहीं तो पूरा नहीं होता, लेकिन जिम्मेदारी को की वजह से पूरा हो जाता है। 6 ईयर ओल्ड पिक भेजी है रईस भाई ने ये अपनी, और ये कहा है
1: कि जो देखो देखो कैसे रईस भाई
0: ऐसे हैं।
1: अरे रईस भाई,
0: मेरा भाई कैसा? रईस भाई जैसा।
1: मेरे दिमाग कुछ और पिक्चर थे
0: बहुत। ये उससे मिल रहे हैं, तिरंगा में जो गेंडा स्वामी था उससे काफी मिल रहा है मेरा भाई रईस भाई, मेरी जान। अच्छा, कहते हैं आगे के जिम्मेदारी जो है ना उसकी वजह से रईस भाई उड़ जाते
1: हैं। सही कह रहे हैं। नहीं, वो अलार्म लगाने वाली बात सही कही उन्होंने, बगैर उसके आप फिर सो जाएंगे।
0: भाई रेहान भाई की आवाज तो बिल्कुल आरजे के जैसा है। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि उनको जब मैं छुट्टी पे जाऊँ तो यहाँ मोहम्मद अशफाक साहब उनको कह के जाऊँ, मगर वो भाई जहाज उड़ा रहा होगा ना, यहाँ जमीन पे क्या करेगा। कहते हैं नहीं, कहाँ से नैप ले सकता है, ऑफिस सुबह 8 बजे से 5 बजे तक होता है, लंच टाइम 1/2 आवर में कहाँ टाइम मिलता है। हाँ, थर्सडे ऑफिस हाफ डे होता है तो लंच के बाद थोड़ा नैप 1-1.5 घंटा सो लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
1: यूसुफ भाई है हमारे। बात है, सही बात है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर यहाँ जुड़ गए।
0: हेलो,
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खैरियत से, आप कैसे हैं?
2: अल्लाह का शुक्र है।
1: फैसल जी हमारे साथ क्या?
2: नहीं, मैं शोएब बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा, शोएब जी कैसे हैं आप? खैरियत से
2: जी, अल्लाह का शुक्र है।
1: अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप जो है वो पावर नैप ले पाते हैं, और कितनी देर की आपकी पावर नैप होती है आइडियली?
2: मैं पावर नैप नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरी पावर नैप बहुत लंबी हो जाती है, फिर मेरी आँख 4-5 घंटे के बाद ही खुलती है।
1: सरवर भाई, ज्यादातर लोगों का यही हाल है, लंबा हो जाता
2: है। वैसे भी जाना मैम अभी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोता हूँ, बहुत ज्यादा 10-12 घंटे।
1: सरवर भाई हो गया आपका,
0: किताबी बातें हैं माशाल्लाह। जो आदमी घर में इतना मशगूल रहे, खाने की फिक्र, किचन की फिक्र, सफाई सुथराई की फिक्र, झाड़ू पोछे, डस्टिंग, बर्तन, ये सारी चीजें इंसान को सोने नहीं देती। ये ख्याल जो है ना,
1: वो लगा
0: मैं ख्याल हूँ किसी और का, बर्तन धोता कोई और है।
2: अच्छा, गलत है। मैंने सोने के पूरे रिकॉर्ड तोड़ रखे आज।
0: गोल्ड के मतलब यूमीन भाई सोना, यूमीन भाई गोल्ड
2: सोना, मतलब नींद के मेरे भाई।
0: अच्छा, नींद
2: गोल्ड बहुत महंगा हो रहा है।
1: अरे इनका ये कि नैप नहीं ले रहे 3 मिनट का, बताया आंखें खोल के, यही हालत होनी है इनकी।
2: सर्वर भाई की बात अलग है।
1: हाँ, इनका ही है भैया, 3 मिनट आंखें खोल के लेते हैं नैप।
2: नहीं, मैंने देखे हैं बहुत से लोग जो खड़े खड़े भी सो जाते हैं,
1: ये बैठे बैठे
2: और बहुत
1: खड़े सोते हैं।
0: अरे मुझे अभी, मैं बीच में ये मैसेज भी शामिल कर लूं, इमरान खान साहब का मैसेज है, कह रहे हैं आदाब आप दोनों को, मेरे मामू बैठे बैठे नींद ले लेते हैं, अगर 5 मिनट का भी उनको पास टाइम है तो वो 5 मिनट सो जाएंगे और खर्राटे लेने लगेंगे।
1: सरवर भाई का भी यही हाल है। शिव भाई बताए, ये बैठे बैठे 3 मिनट आंखें खोल के सो रहे होते हैं, अब पूरी बात हो जाएगी 3 मिनट में। पूछा क्या सरवर, मैंने कहा सुनी तो आप क्या कर रहे थे? मैं तो सो रहा था, आंखें खुली है सो रहे हैं।
2: तो घर पे नहीं मिलता ना सोने को, उधर भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, खाली कोई हमारे लिए थोड़ी ना है मेरे भाई। अगर ये आंखें खोल कर
0: कोयला कोयले से कहे तू कितना काला, आए हाय।
2: देखो सर बजाज, पहले से हमारी जिंदगी कैसी थी, लेकिन नींद
0: माशाल्लाह से यार, इतना ज्यादा जब काम होता है, इतनी मेहनत मशक्कत है, तो आदमी को नींद अच्छी आती आती है। आप दिन भर माशाल्लाह लगा रहे हैं धोने धाने, मेरे मतलब बर्तन धोने में, खाना पकाने में, दूसरी चीजों में, तो थक जाते होंगे ना, तो उसके बाद
2: बिल्कुल थक जाता हूँ और नींद पूरी ले लेता हूँ। लेकिन देखो आपकी तरह तो नहीं हूँ ना, ऑफिस में भी आ रहे हैं तो सो रहे हैं, अभी थोड़ी दिन पहले अभी थोड़ी देर पहले आप चमगादड़ बने हुए थे, आपने अपने घर के जोर भी तोड़ दिए, तो आप ये आप ऑडियंस इस बात से अंदाजा लगाए कि कौन ज्यादा परेशान है, मैं आप
0: ये तो डरने लगा भाई मेरा
1: सही कहा
0: दिल पे ले गई ये तो
1: और क्या जब आदमी
0: हकीकत खुल गई तो भाई परेशान हो रहा है पूरे तरीके से शुभ भाई ऐसी बात नहीं है मैं तो मजाक कर रहा था शुभ भाई अच्छा आपने कभी ये सोचा है कि मुझे इतना कैसे पता होगा
2: जी बताइए कैसे पता है
0: ये जो बातें आपके साथ जो गेम हो रहा है पूरा वो मेरे साथ भी तो हो रहा है घर में मसला ये है सारा का सारा दोनों शिकार हैं भाई
2: मोस्टली हर मर्द के साथ है लेकिन पता है बाहर जाके मार्केट में बोलते हैं दोस्तों के साथ अरे नहीं रे ऐसा थोड़ी ना भाई हमारी बीवी हमारे सामने बोलती है क्या और जब घर जाता है हमारी बीवी निकलती
1: बेचारे का
0: भाई वाह वाह क्या कहने वाह वाह वाह वाह
1: नहीं लेकिन हैट्स ऑफ पता है इसमें दुख मत कहिए इसमें शर्म मत कहिए इसमें झिझक मत कहिए इसमें
0: आराम से काम करिए
1: मर्द जो है उसकी कोई प्रेस्टीज या कोई इज्जत में कोई कमी नहीं है आप अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं साथ अरे भाई इसमें क्या शर्म की बात है अगर आप अपनी वाइफ की हेल्प कर रहे हैं
0: कोई सुन रहा होगा इस वक्त जो की इनका मुगालता है कोई नहीं सुन रहा नाजिया जिसको आप सुनाना चाह रही है नहीं सुन रहा है
2: ऐसे ही समझाती है नहीं इसमें कोई शर्म वाली बात थोड़ी भाई आप तो मिले अपने हैं अगर आपने थोड़ा सा घर का काम कर दिया तो इसमें कौन सी बात
1: अब देखिए मैं बहुत ही सीरियस एक बात
0: यार कहीं ऐसा तो नहीं है एक ही कंपनी के थ्रू ठगे गए हम दोनों मेरा मतलब ये साड़ू वाड़ू तो नहीं है मेरे
1: ऐतराफ
0: करता हूँ अपनी गलती का बहुत माजरत चाहता हूँ नाजिया बहुत माजरत
1: आप इनको देखिए माशाल्लाह हिलते भी नहीं अपनी जगह से काम करना तो बहुत दूर है भाई
0: मैं ऐतराफ करता हूँ नाजिया ओके ओके
2: खैर इनका अल्हम्दुलिल्लाह इनका बॉडी शरीर देख कर लगता भी है कि नहीं हिलते होंगे
0: बाद लंबी हो जाएगी
1: बात सच्ची हो जाएगी
0: अब सच में खानदान खुला
1: बहुत अच्छा बोलते हैं
0: अब खानदान खुला
2: हाँ जी अच्छा ठीक है 5 सेकंड लेता हूँ मैंने पता है आप जब आपको देखा ना मैंने वैसे फेस टू फेस तो नहीं देखा लेकिन जब मैंने आपका
0: सोशल
2: देखा बिल्कुल ऐसा मतलब इंजमामुल हक
0: आए मेरा भाई यार किसी अच्छे से मिलाया आपने यार मुझे अल्लाह का शुक्र है नादिया की तरह मैंने कहा कुछ और आप कह देंगे मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के यार
2: जब वो बैटिंग करते थे तो कोई स्टेडियम में उनको बोल देता था आलू
0: हाँ मुझे पता
2: वो भड़क जाते थे
0: वो मैं ही तो था जिसने बोला था यार शिव भाई बात करने का दिल होता मगर क्या करें वक्त कम है बहुत
1: और बहुत ही अच्छा लगा
0: बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया शिव भाई इंशाल्लाह कल तशरीफ जरूर लाइएगा थैंक यू सो मच जल्दी से 3-4 मैसेज ना दिया उसके बाद आखिरी कॉल लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हमें कुछ खाने पीने का वीडियो भेजा अरबाज भाई ने बढ़ते हैं आगे आसिफ भाई मेरा भाई कहते हैं भाई हाजिरी लगाओ बिल्कुल लग गई है कहते हैं मैं करता हूँ कॉल आप बिजी रहते हो नहीं आपका सुन लिया बस काफी है दिल से देसी अरे मेरा भाई प्रोग्राम सुन लिया कहते हैं आसिफ भाई तो काफी कॉल करने की कोशिश करते लगता नहीं कहते सरोज भाई
1: तो मुझे मैक्सिमम कॉल्स ले रहे हैं
0: आप दोनों के शो का लाइव वीडियो देखना है एंड क्रॉस चेक करना है कि नाजिया जी की बातों में कितनी सच्चाई है हमारे एक उस्ताद थे जो 100-100 के साइकिल चलाते थे वो भी 5 किलोमीटर तक यार कम ऑन यार
1: मैं भाई आप बेफिक्र मैं इनका वीडियो भेजूंगा
0: सोते जो हैं वो 5 किलोमीटर सोते हुए साइकिल चला लेते थे
1: सर भाई आपको तो रोते हुए निकाल लेते थे
0: यार ये तो कमाल हो गया कहते सर भाई तिरंगा फिल्म के रईस भाई अल्लाह यूसुफ भाई का बोलना इसमें जरूरी था अच्छा भाई ये तो नादी का गुंजाइश है
1: आप बताइए मुझे
0: हाँ जल्दी से कर लेते हैं बात हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: हेलो
0: रेडियो बंद कर दीजिए पीछे जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक हैं कौन है हमारे साथ
3: मैं
0: शमशाद
3: बोल रहा हूँ रॉयल एयर
0: शमशाद भाई कैसे हैं
1: शमशाद भाई रॉयल
0: कैसे हैं शमशाद भाई
3: ये आप ड्राइवर के हवाले से जो बात कर रहे मैं कुछ बात शेयर करना चाह रहा था
0: जी जी प्लीज
3: तो ये कहते हैं लोग कि मैं गाड़ी चलाऊं उसके बाद चलाने लगी 15 मिनट की मैं सो जा रहा हूँ तो 15 मिनट मैंने मोटर व्हीकल के हिसाब से कोई टाइम नहीं है
0: अच्छा।
3: कम से कम 1 घंटा अगर 400 किलोमीटर आपने गाड़ी चलाया है तो पहला दूसरा नंबर होता है कि ड्राइवर का पहला वर्ड ही होता है डिसिप्लिन अगर आप डिसिप्लिन में गाड़ी चला रहे हैं तो
0: वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है शमशाद भाई, बहुत अच्छी बात।
3: ड्राइवर ड्राइवर के एक एक वर्ड पे मीनिंग होता है, एक एक वर्ड पे थ्री डिसिप्लिन, वी वर्च्यू, हाई इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी।
1: क्या क्या बात है भाई,
0: क्या अच्छी बात बता रहे।
3: मैं खुद एक वॉल्वो बस का कोच कैप्टन हूँ।
0: अच्छा
1: अच्छा
3: जी, जो आप देखते होंगे पाकिस्तान इंडिया में करते हैं, जो आज के डेट में 1.5 करोड़ की आती है वो
0: जी। क्या बात है यार शमशाद भाई, तो बड़ी अच्छी बात, और आपने बड़ी अच्छी बात करी। फिलहाल मजबूरी में इजाजत लेनी होगी क्योंकि वक्त बिल्कुल हुआ जाता है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह ताला कल आपसे कोशिश करेंगे।
3: इस बार हमने फोन मिलाया, किस बार पे आपको लगा?
0: अरे मेरा मेरा भाई, आपकी मोहब्बत है सर, इससे बिल्कुल हम बुरा मत मानिएगा। इंशाल्लाह ताला हम जरूर आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑलराइट देन, तो भाई अब हुआ वक्त के आज के लिए हम आपसे ले लें इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत कोशिश करते हैं मैं और नाजिया के आप लोग की ज्यादा से ज्यादा कॉल लें, ज्यादा से ज्यादा
1: हमारे पास। आप समझते हैं कि टाइम कितना लिमिटेड है एंड सो फॉर दैट हम सबके साथ नहीं जुड़ पाते, उसके लिए माजरत। बट इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम जितने भी लोगों को हम कॉल पे ले सके या जिनसे हम कनेक्ट हो सके थ्रू मैसेजेस।
0: फिलहाल अरिजीत और शश्वत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, एंजॉय कीजिए ट्रैक, देखते सुनते रहिए FM 107
1: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसे ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे।

0: वेबसाइट है जो बेहद काम की है और इससे आप ना जाने कितने काम कर सकते हैं। इसका नाम है ottermind.ai OTTERMIND। क्या है वेबसाइट का नाम? OTTERMIND डी, लास्ट में टी ना सुनाई दे, इसलिए जस्ट क्लियरिफाइंग। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑटर माइंड एक ऐसा एआई है, इट हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन ब्रो। मतलब आप इस पे डॉक्यूमेंट को एनालाइज कीजिए, डॉक्यूमेंट में से कुछ चीज निकालिए, पीडीएफ फाइल को पूरा का पूरा समराइज कीजिए, फोटोज में से कुछ ढूंढना है ढूंढिए, अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स लाइक इस एआई का माइंड मुझे लगता है कि दो तीन मिनट 10-12 एआई को मिला के एक माइंड बना दिया गया है। बहुत बहुत कमाल की वेबसाइट है, बहुत कमाल का एआई है। आई डोंट नो इफ यू आर यूजिंग इट, पर मुझे लगता है कि आप एक बार यूज करना शुरू करेंगे तो यू माइट एज वेल लीन टुवर्ड्स इट मोर, आपको और इसकी तरफ रुझान हो जाएगा। सो ottermind.ai, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ज्यादा होता है तो ट्राई दिस वन। ओके, नाउ लेट्स हैव सम फन। Update. अगली वेबसाइट का नाम है photor.com, FOTOR.com, FOTOR.com। photor.com क्या करता ना, ये मान लीजिए कोई आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है या मान लीजिए कोई विकिपीडिया है और आप उसे एक एंगेजमेंट तरीके से दिखाना चाहते हैं किसी को। कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी नजर में बोरिंग है, यार मजा नहीं आ रहा, प्रेजेंटेशन तो बना दी, अब क्या पढूं मैं? ओके, लेट्स मूव टू द फिफ्थ स्लाइड। ये आजकल बोरिंग हो गया है, नोबडी वांट्स टू डू दिस। अगर आप क्लाइंट को डबल ट्रिपल इंप्रेस करना चाहते हैं तो आपकी जो बनी बनाई प्रेजेंटेशन है उसको photor.com पे जाके अपलोड कीजिए और फिर आप कमाल देखिए, आपकी प्रेजेंटेशन का एक कमाल का वीडियो तैयार होके आपके सामने आ जाए, अमेजिंग वीडियो बनाएगा। और उस वीडियो को सिर्फ बनाएगा नहीं, बाकियों की तरह इस एआई की खास बात यह कि ये उसका एडिटेड वर्जन आपके सामने रख देगा, पूरी टाइमलाइन दे देगा, तो आपको कुछ एडिट करना है, ऑमिट करना है, हटाना है, बीच में से विद इन द होल टाइमलाइन आप एडिट करके हटा सकते हैं। क्या कमाल की चीज है यार, FOTOR, मेक थिंग्स अ लिटिल एंगेजिंग, यू नो, इमर्सिव, इससे आप कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट वन, Update. ये वाली वेबसाइट बहुत लोग यूज करने वाले हैं क्योंकि यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। इसका नाम है pixverse.ai, PIXVERSE, PIXVERCE, pixverse.ai। आप अपनी फोटो के साथ इसमें जाने क्या क्या नहीं बना सकते, सारी ट्रेंडिंग चीजें आप इससे तैयार कर सकते हैं। एंड माय गॉड, किसी को अगर आपको ऑडियो विजुअल गिफ्ट देना ना, इससे बढ़िया कुछ नहीं है भाई, बहुत कमाल का, बहुत बहुत कमाल का। एंड यू कैन प्ले विद इमेजेस, आप ट्राई करके देखिए, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। मुझे बहुत पसंद आया, मतलब इट्स एक्चुअली फन और ट्रेंडी चीजें हैं इसमें। ओके, तो मैं अब जरा एक चीज बता दूं आपको, खबर की तरफ बढ़ेंगे लेकिन एक टिप लेते जाइए, वही खबर भी है। तो लोग कहते हैं कि भाई इजेक्ट करना क्यों जरूरी, जब आप एक यूएसबी ड्राइव लगाते हैं अपने सिस्टम में तो लोग कहते हैं इजेक्ट क्यों करूं मैं तो ऐसी खींच लेता हूं, पेन ड्राइव आज तक खराब नहीं हुई। तो भाई साहब, सिस्टम आपका रिएक्ट पता किस तरह से करता है, जब आप पेन ड्राइव बिना इजेक्ट के निकाल लेते हैं या हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं, आपका कंप्यूटर उस टाइम पे बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, वो मान के चल रहा होता है कि अभी भी पेन ड्राइव कनेक्टेड है और वो बहुत सारी चीजें कर रहा होता है बैकग्राउंड में, काफी प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो जब आप इजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद निकालते हैं तो आपके कंप्यूटर को आप एक मैसेज देते हैं कि भाई मैंने यूएसबी निकाल ली है, आप अपना काम जल्दी निपटा लें। तो उस केस में जो पीसी लैपटॉप व्हाटएवर इट इज, वो जल्दी काम आपका खत्म करता है, आपका डेटा करप्ट होने से बचता है। नहीं हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शानदार, लेकिन होने के चांसेस आप बढ़ाएंगे अगर आप बिना इजेक्ट के करेंगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। मिलते हैं अगली अपडेट में, एंड स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी। हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं वेल्थ मैनेजमेंट पे।

ज्यादा पैसे कमाना है लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है उसे सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है सवाल ये है कि आखिर

वेल्थ मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए सिर्फ इनकम ही लोग समझते हैं कि बड़ी जरूरी है। बहुत से लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज इनकम के बावजूद भी फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो है वेल्थ मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट। अगर हर महीने जितना पैसा आए उतना खर्च हो जाए तो फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव नहीं होता। इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट का पहला कदम है बजटिंग। अब बजटिंग क्यों जरूरी है? देखिए हर महीने अपनी इनकम और एक्सपेंसेस लिखना एक बड़ी अच्छी हैबिट है। ये आपको बताती है कि पैसा कहाँ जा रहा है। देखिए इमरजेंसी फंड एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह होता है जो मुश्किल वक्त में मदद करता है। वहीं पर एक और सवाल है कि वेल्थ मैनेजमेंट और फ्यूचर गोल्स, इस पे कैसे तालमेल बैठाया जाए। हर इंसान के

दोनों जरूरी है। तो वेल्थ मैनेजमेंट हमें अपने आज और कल दोनों को बैलेंस करना सिखाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैसों के बारे में हमारे डिसीजंस हमेशा लॉजिकल नहीं होते। कभी हम इमोशंस में आके शॉपिंग कर लेते हैं, कभी सोशल प्रेशर में आके, कभी अननेसेसरी चीजें खरीद लेते हैं खुद को खुश करने के लिए, कभी फ्यूचर के बारे में सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल सक्सेस का ताल्लुक सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि हैबिट्स और माइंडसेट से है। अब गुड वेल्थ मैनेजमेंट के फायदे क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा फायदा है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है, फ्यूचर सिक्योर महसूस होता है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को आप आसानी से हैंडल कर पाते हैं, कई लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फैमिली के लिए स्टेबिलिटी पैदा होती है। और अगर वेल्थ मैनेजमेंट ना हो तो हर महीने पैसों की टेंशन हो सकती है, डेट बढ़ सकता है, इमरजेंसी में मुश्किल पैदा हो सकती है और फ्यूचर प्लानिंग कमजोर हो सकती है। इसीलिए पैसे कमाना अहम है लेकिन उसे समझदारी से मैनेज करना उससे भी ज्यादा अहम, कितना इम्पोर्टेंट है। तो बस आज हमने और आपने समझा कि वेल्थ मैनेजमेंट कितना जरूरी है, कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका गुड बैलेंस और इसके बीच गुड बैलेंस और इसका गुड चेक। दौलत सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, असल दौलत ये है कि आप जो कमाते हैं उसे कितना समझदारी से मैनेज करते हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट हमें पैसों का गुलाम नहीं बल्कि उसका बेहतर मैनेजर बनाता है। तो क्या आप एक बेहतर मैनेजर हैं अपने वेल्थ के? बताइएगा मुझे जरूर 666-22-107 पर। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुन 3FM 107 दिल

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों फार्मूला 1 की दुनिया में कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जिनका करियर शायद बहुत छोटा हो, लेकिन उनकी कहानी मोटर स्पोर्ट की तारीख में हमेशा जिंदा रहती है। आज हम बात करेंगे फ्रांस के एक ऐसे ही टैलेंटेड ड्राइवर जूल्स बियांची की, जिनका नाम फार्मूला 1 में टैलेंट, हिम्मत और एक अधूरी रह जाने वाली कहानी के तौर पर याद किया जाता है। फ्रांस के नीस शहर में बियांची की पैदाइश 3 अगस्त 1989 को होता है और उनका मोटर स्पोर्ट्स से रिश्ता बहुत कम उम्र में शुरू हो गया था। बियांची ने सिर्फ 3 साल की उम्र में कार्टिंग शुरू की थी। धीरे धीरे उन्होंने जूनियर कैटेगरीज में अपनी स्पीड और ड्राइविंग एबिलिटी का सबूत दिया। फार्मूला रेनो और फार्मूला 3 में उनकी परफॉर्मेंसेस ने मोटर स्पोर्ट के एक्सपर्ट्स की तवज्जो हासिल की। बियांची की तरक्की का एक अहम मोड़ 2009 में आया जब वो फरारी ड्राइवर अकेडमी के पहले मेंबर बने। फरारी ने उनमें फार्मूला 1 का पोटेंशियल देखा था और इसके बाद उन्होंने GP2 सीरीज में भी रेस की और फार्मूला 1 तक पहुंचने का रास्ता बनाया। सन 2013 में बियांची ने मारुसिया के साथ फार्मूला 1 डेब्यू किया। टीम ग्रिड पर सबसे कॉम्पिटिटिव टीम्स में शामिल नहीं थी, लेकिन बियांची ने अपनी ड्राइविंग से सबको मुतासिर किया। उनका सबसे यादगार फार्मूला 1 रिजल्ट सन 2014 मोनाको ग्रैंड प्री में आया। मोंटे कार्लो की तंग और मुश्किल स्ट्रीट्स पर बियांची ने एक जबरदस्त रेस ड्राइव करते हुए 9th पोजीशन हासिल की। इस नतीजे के साथ उन्होंने ना सिर्फ अपने करियर के पहले फार्मूला 1 पॉइंट्स हासिल किए, बल्कि मारुसिया के लिए भी टीम हिस्ट्री के पहले चैंपियनशिप पॉइंट्स स्कोर किए। यह रिजल्ट इसलिए भी खास था क्योंकि मोनाको ग्रैंड प्री वो रेस थी जिसे बियांची बचपन से देखते आए थे। उन्होंने बताया था कि जब वो तकरीबन 5 साल के थे तब उन्होंने पहली मर्तबा मोनाको ग्रैंड प्री को ट्रैक साइड से देखा था। उनके बचपन के हीरो माइकल शुमाकर थे। फरारी के साथ उनका कनेक्शन भी मजबूत होता जाता रहा। 2014 में बियांची को फरारी फार्मूला 1 कार टेस्ट करने का मौका मिला। सिल्वरस्टोन टेस्ट में उन्होंने फरारी के लिए ड्राइविंग की और उनका लॉन्ग टर्म टारगेट स्कुडेरिया फरारी की परमानेंट रेस सीट हासिल करना था, लेकिन फिर अक्टूबर 2014 में सुजुका यानी जापान के शहर सुजुका में वो हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी और फार्मूला 1 की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज मैं आपसे मुलाकात करता हूं और बताता हूं कि कैसे आप नए जमाने के नए फ्रॉड और स्कैम से बच सकते हैं। आज जिस स्कैम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है द फेक इन्फ्लुएंसर इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर स्कैम। क्या है ये स्कैम, कैसे काम करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते यूज के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के जो तरीके हैं वो भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गए। इस नए तरीके के फ्रॉड में स्कैमर्स बहुत ही हाई क्वालिटी और असली दिखने वाली फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं। ये प्रोफाइल्स ऐसी दिखाई जाती हैं जैसे कि वो किसी बहुत ही मशहूर लोकल इन्फ्लुएंसर की हो। मिसाल के तौर पे आपके सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा शख्स आएगा और आप उसको जानते होंगे, या फिर उसके चेहरे का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड में किसी वॉइस का इस्तेमाल कर लिया हो या AI क्लोन बना लिया हो, तो ऐसे में आपके प्रोफाइल पे ये आते हैं, आपकी फीड पे ये आते हैं। और फिर जब आप इनके प्रोफाइल को चेक भी करते हैं, इनके पास हजारों के नंबर्स में एक्टिव फॉलोअर्स होते हैं। इन फेक अकाउंट्स का यूज करके फ्रॉडस्टर्स एक्चुअली लोकल एरिया के छोटे और बड़े अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर्स करने वाले बिजनेसमैन को टारगेट करते हैं। वो इन बिजनेसेस ओनर्स को कॉन्टेक्ट करते हैं और उन्हें एक अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं। स्कैमर्स उनसे कहते हैं कि अगर वो उन्हें कुछ पैसे देंगे तो वो उनकी टेलीविजन रिपेयर, एयर कंडीशनर रिपेयर या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को अपने हजारों फॉलोअर्स के सामने प्रमोट करेंगे, जिससे उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। छोटे बिजनेसेस ओनर्स जो हैं वो अपना काम बढ़ाने और ज्यादा कस्टमर्स पाने के लालच में इनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन इस स्कीम का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब बिजनेस ओनर उन्हें अपफ्रंट प्रमोशनल फी यानी कि एडवांस पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही स्कैमर्स के पास पैसा पहुंचता है वो इन्फ्लुएंसर अकाउंट या तो रातों रात डिलीट कर देता है या फिर वो बिजनेस ओनर के प्रोफाइल को हर जगह से ब्लॉक कर देता है, जिससे उनका पैसा पूरी तरह डूब जाता है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन है, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपसे एडवांस पेमेंट के लिए कहा जाता है बगैर आपसे मुलाकात किए। और कई बार जब आप प्रोफाइल चेक करते हैं तो प्रोफाइल चेक करते हुए जब आप उनके फॉलोवर्स को देखते हैं, उनके फ्रेंड्स को देखते हैं, उसमें अच्छा खासा नंबर होता है। लेकिन यहां पर है असली बात। आमतौर पे लोग अपने प्रोफाइल पे बॉट फॉलोवर खरीद लेते हैं, यानी कि बॉट जो भी रोबोट जैसे होता है वैसे ही बॉट फॉलोवर्स होते हैं जो किसी भी प्रोफाइल को फॉलो करते हैं, और ऐसे लाखों बॉट प्रोफाइल को फॉलो करते हैं।

में हजारों लाखों नंबर दिखते हैं और आप उन पर भरोसा कर लेते हैं। कई बार लाइक और कमेंट भी फेक होते हैं, उनको भी खरीदा जा सकता है। थोड़े पैसे खर्च कर या आपके भी फॉलोवर लेकिन एज अ बॉट बढ़ जाते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है इस पर अगर नजर डालें तो सबसे पहला और जरूरी कदम यह है कि किसी भी इन्फ्लुएंसर को कभी भी पेमेंट करने से पहले उन्हें बहुत ही तरीके से वेरीफाई करें। बिजनेस ओनर्स को इंटरनेट पर अवेलेबल इंडिपेंडेंट एनालिटिक्स टूल का यूज करना चाहिए। इन टूल्स की मदद से वो उस इन्फ्लुएंसर के रियल एंगेजमेंट रेट्स को इजीली चेक कर सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनके फॉलोवर्स असली हैं या फेक हैं। इसके साथ ही उन्हें उनके फॉलोवर काउंट की हिस्ट्री को भी एनालाइज करना चाहिए। अगर फॉलोवर काउंट्स में सडन जंप्स आ रहे हैं तो ये साफ इशारा है कि वो फॉलोवर्स रियल नहीं है बल्कि पेड बॉट्स हैं। इसके अलावा कभी भी सिर्फ फोन पर या चैट पर डील फिक्स ना करें, हमेशा एक फॉर्मल और लीगली साइन कॉन्ट्रैक्ट पर इंसिस्ट करें जिसमें दोनों तरफ से सारी डिलीवरेबल्स और टर्म्स साफ साफ आउटलाइन की गई हो। सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी डायरेक्ट वायर ट्रांसफर, बैंक अकाउंट ट्रांसफर या कैश में एडवांस पेमेंट ना करें। हमेशा ऐसे सिक्योर पेमेंट प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज करें जिसमें बायर प्रोटेक्शन फीचर अवेलेबल हो, ताकि अगर कोई फ्रॉड हो भी तो आप अपना पैसा क्लेम करके वापस पा सकें। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का फ्रॉड अवेयरनेस का प्रोग्राम, जहां पर आपको उम्मीदन इसका सॉल्यूशन भी मिल गया है और किस तरीके से नए लोग नए जमाने में आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: FM 107 दिल से देसी
1: Gen Z Gen X Gen Alpha Millennials ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा
2: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक्स
3: तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं कौन है अपना नाम बता दीजिए एक बारी जरा खुल के पूरा नाम बता दो
4: मेरा नाम है अस्त्रा नाम तो सुना होगा
3: ओके तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि पिछली बार तो हमने काफी ज्यादा आपके बारे में बात करी थी आज इस बार हम जनरेशन टॉक जनरेशन गैप इन सब चीजों के बारे में बात करें नॉट टू मेक इट बोर्डम लेकिन आप एज अ मिलेनियल क्या सोचते हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन 2026
4: ओके मेरे बारे में एक चीज बहुत डिफरेंट है द फैक्ट कि मैं जमाने के हिसाब से चलती हूँ ओके ऑल्दो हूँ मैं मिलेनियल बट आई जेल वेल विद

0: जनरेशन, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारे जमाने में जो सुकून हुआ करता था, जो मतलब खुशियाँ हुआ करती थी, मतलब उस टाइम तो मतलब वाइब अलग था, यू नो. आज तो वो वाइब नहीं मिलता.
1: ओके, वो वाइब नहीं मिलती, तो उस वाइब से क्या कहना है आपको? जैसे मैं यही समझता हूँ कि जो जो मेजर गैप है वो हर चीज़ में, चाहे वो म्यूजिक हो, चॉइस ऑफ मूवीज हो, या फिर इवन कपड़े भी हों, राइट? एंड लोग ये कहते हैं कि आज की जनरेशन थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है?
0: Oh yes, I don't want to sound की like मतलब मैं बुराई कर रही हूँ, but काफी से लोग हैं उनको बहुत सारा ऐसा princess syndrome है आजकल, ऐसा मुझे लगता है.

0: करते थे तो पेरेंट्स बोलते थे हाँ सही किया टीचर्स ने, मतलब तुम ही ने कुछ गलती की होगी। अब अगर टीचर गुस्सा करते हैं ना तो पेरेंट्स आ जाते कि हमारे बच्चे को गुस्सा कैसे किया आप लोग ने, यू नो ये नहीं सोचते कि बच्चे ने शायद कोई गलती की होगी या बच्चे का कुछ इशू हुआ होगा। नहीं, आपने गुस्सा मारा भी नहीं है टीचर ने, बस गुस्सा किया होगा। हमारे नाम में तो हमको तो ऐसे फटाफट ऐसे फुल मिलता था यो स्केल वेल से, बट क्या कह सकते हो
1: बिना वेट किए। तो अब एक पॉजिटिव साइड क्या है, क्योंकि वरना सारे जेन एक्स जेन अल्फा सभी सोचेंगे अरे लग गई है देखो बात करने वाले। बट आई रियली वांट टू नो बिकॉज देयर इज अ वेरी पॉजिटिव साइड जो हम में कमी है वो भी हम अच्छे से बताना चाहते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इज वाज मिसिंग इन आवर एरा?
0: आई कैन टेल यू दैट वेरी वेल कि आजकल की जो जनरेशन ना बहुत इजी गोइंग है, मतलब इतना फालतू का स्ट्रेस नहीं लेते। And उनको ना कॉम्प्लीमेंट जब देते हैं या कुछ कोई देता है ना तो दे वो एकदम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट हमारी जनरेशन में कैसा रहता था बेटे, लाइक अगर कोई अभी हमको कॉम्प्लीमेंट कर देता है हम लोग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते कि ओ शिट ऐसे बोल दिया, यू नो। लेकिन एंड देन सबसे बेस्ट कंपैरिजन मुझे जनरेशन वाइज जो लगता है मुझे कुछ अपने काम पे लगता है। तो अब जैसे मैं यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, okay? तो मुझे मास्टर्स के स्टूडेंट जो होते हैं वो मुझसे बड़े हैं, जो बैचलर्स के स्टूडेंट होते हैं वो मुझसे छोटे हैं, ओके। और ना बीच में कहीं आती हूँ ऑब्वियसली। तो ऐसा होता है कि कभी कभी वो हमारे साथ इंटर्न जैसे काम करते हैं, सो इट्स लाइक कोई ऐसा सिचुएशन रहता है जहाँ पे स्ट्रेस रहता है ना। अब हम ऐसे सोचते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करना है एंड हम अपनी जी जान लगा के उसको काम करते हैं। बट वो करके इजी गोइंग, ओके सॉल्यूशन है लेट्स डू इट, सॉल्यूशन नहीं है चलो कुछ और ढूंढते हैं, यू नो। बहुत इजी एंड चिल गोइंग है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो वर्ड वाइब है ना उनकी वजह से मेरे मुंह पे बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज उनका कैसा रहता है यार काम में मजा नहीं आया, जस्ट अ वाइब इन इट, यू नो। सो आई लव दैट कॉन्फिडेंस और उनका जो एटीट्यूड रहता है ना एकदम चिल एंड इजी गोइंग, लव इट।
1: वेरी नाइस। तो क्योंकि काम की बात हुई जो वर्क प्लेस इतना देखने को मिलता है, आई रियली वॉन्ट टू नो कि जो एक कॉन्सेप्ट मेरी नज़र में बदला है वो एक इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट है। हमारे टाइम पे इंटर्नशिप वॉज टोटली डिफरेंट, हैव यू नोटिस दिस एज वेल? ये बहुत बड़ा चेंज है इंटर्नशिप को लेकर, देखा आपने जेन ज़ हाउ दे डील विद इट एंड हाउ वी वर डीलिंग बैक इन द डे?
0: एब्सोल्युटली। आजकल क्या है ना कि आजकल की जो जनरेशन है वो लोग जब इंटर्नशिप की बात भी आती है ना उनको रहता है कि ठीक है कम से कम टाइम हो और मस्त पेमेंट हो, मतलब ऐसा उनका माइंडसेट है। बट हमारे टाइम पे कैसे रहता था कि इंटर्नशिप मतलब इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम पहले जंप कर लेंगे, दैट यूज्ड टू बी आवर माइंडसेट। बट दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस कि अब दे डोंट दिस दे आर सेटिंग स्टैंडर्ड्स, टू बी ऑनेस्ट दे आर सेटिंग स्टैंडर्ड्स, दे आर सेटिंग अ बार व्हिच इज वे टू हाई, जिसकी वजह से यू नो आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इट्स अमेजिंग। उनको देखकर ना मोटिवेशन भी मिलता है और इंस्पिरेशन भी मिलता है, टू बी ऑनेस्ट।
1: हाँ, और एक चीज और भी रहती है क्योंकि जिस तरीके से लोग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं आजकल के, इट्स लाइक दे डोंट रियली, आई वुड नॉट से दे डोंट केयर, इट्स जस्ट दैट उन्हें वो उस चीज का खौफ नहीं है कि पहला स्टेप लेने में उनकी हालत खराब नहीं होती है, जो होती थी दैट इज फॉर श्योर। तो हैव यू नोटिस्ड पीपल अराउंड यू, कोई ऐसा है जिसको आप मेंशन करना चाहते हो? डू यू थिंक घर में हो या दोस्त में हो कोई ऐसा जेन ज़ी जो आपको याद आ रहा है बात करते करते?
0: मेरे खुद के कॉलीग्स इतने सारे मतलब जेन ज़ी है ना, अभी जैसे हमारे जो यूनिवर्सिटी से जिन्होंने

ग्रेजुएट किए थे Gen Z, of course. तो उसमें है रियान करके एक है, मोहम्मद औदा करके है, सारा जमाल करके है. These are all young generation, you know. तो उनके काम करने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, it's so different. It's so different.

0: हमको काम आ जाता है, तो हम लोग क्या करते ठीक है ब्रेक बाद में लेंगे, पहले काम कर लेते हैं. इनका जैसे लगता है ब्रेक टाइम है, हम क्यों अपना टाइम दे, हमारा तो ब्रेक टाइम है ना, हम बाद में काम कर लेंगे, पहले ब्रेक लेंगे.
1: मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है वो उस चीज को पहले, मतलब आज से अगर 5-6 साल पहले की बात हूँ, टाइम इज रनिंग फास्ट, तो पहले लोग समझते थे यार ये बदतमीजी, लेकिन अभी उस चीज को देख के लगता है कि नहीं, दे आर डूइंग द राइट थिंग. क्योंकि हमें शायद आदत नहीं थी, हमें ये लगता कि डेडिकेशन और ये कर देंगे और बिल्कुल मांझी बन जाएंगे, पहाड़ हिला देंगे, बट दे आर डूइंग द सेम थिंग, इज जस्ट दैट वो अपने टाइम को कहीं ना कहीं निकालना जानते हैं, एंड they don't get scared easily. That's what I feel.
0: That too. हमारे टाइम पे सिर्फ ऐसे हम लोग सुनते थे कि work life balance होना चाहिए. ये लोग करके बता रहे हैं.
1: ये तो फाइन.
0: हम लोग करके बताएंगे.
1: And have you noticed a change? ये जो choices हैं music की या movies की, इसमें आपने कुछ changes देखे हैं कि choices बदली हैं?
0: Let's not talk about it. Music. As much as I respect the generations and everything, but music तो हमारे टाइम का था यार. Come on. म्यूजिक में जो मिठास होती थी, जो वर्ड्स में मिठास होती थी, आजकल के लिरिक्स में कुछ नहीं है. मतलब आप खुद ही सुन लो सॉन्ग्स, कैसे कैसे सॉन्ग थे, और जब उनको लिरिक्स नहीं समझ आते, हमारे टाइम में सॉन्ग बैठा के उसके मतलब कुछ भी कचरा बना रहे हो लोग.
1: तो ये कहना चाहती हूँ कि मतलब पहले जो थी, अभी वाइब पे चल रहा है सब कुछ, द वर्ड इज वाइब बेसिकली आई थिंक. और पहले जो था इट मैटर्ड के भैया क्या लिखा है तुमने, कितना खूबसूरत लिखा है, वो मैटर करता था. अभी सब कुछ वाइब है.
0: एग्जैक्टली. आजकल सिर्फ वाइब पे चलता है, फिर चाहे अच्छे अभी वो धुरंधर का सॉन्ग ही देख लो ना. मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसके सॉन्ग में लिरिक्स नहीं है और उसकी म्यूजिक पे सब चल रहा है. मतलब क्या, there is no meaning to that song. But everybody is vibing on that song.
1: अच्छा एक और चीज है, क्योंकि हमने choices की बात करी है, एक choice उनके पास नहीं है जो यहाँ पर भी है. I think जितने बच्चे अपने होम कंट्री ज्यादा नहीं जा पाते, यहीं पे पले बड़े हैं, होता है लोग कहते हैं कि यार पहले था कि थोड़ा ग्रुप ग्रुप में रहते थे, बार बार घूमते थे ना, एवरीबॉडी दे आर सराउंडेड बाय टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा अकेलापन थोड़ा सा हो जाता है, ये देखने को मिलता है.
0: या वो ही मैं कह रही हूँ ना, वो माहौल खुशियाँ नहीं रही. लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमारे टाइम पर कैसा था, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा थी नहीं, तो हम लोग ऐसे मौके ढूंढते थे वेयर वी कुड गेट टुगेदर, और बच्चे बच्चे रहते थे, वो लोग बड़े बनने की कोशिश नहीं करते थे. आजकल कैसे रहता है, मतलब बच्चे भी मतलब हमसे बड़े लग रहे हैं. रिसेंटली मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, ओके, एंड वो फीस पे करने के लिए आई थी, एंड देन शी वाज जस्ट पेइंग द फी, एंड हम लोग कैसी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, एंड देन शी वाज लाइक, मैंने उसका आईडी देखा, एंड वो बॉर्न थी कुछ शायद 2007-2008 में. मुझे इतना इसे एकदम धक्का लगा, पता है, I'm like, oh my God, कितनी छोटी है ये. Anyway, मैं कर रही थी काम, and then

0: एंड देन शी टुक अ गेस एंड देन उसने मुझे मतलब कुछ अर्ली 20s अपने करीब वाले एज में बोला. आई एम लाइक नहीं बेटा आप मुझसे बहुत छोटे हो. एंड जब मैंने उसको अपनी एज बताया शी वाज लाइक आप ऐसे लगते क्यों हो पता है. नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पेल बोस्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूं मैं आपको बट ऑनेस्टली यू नो काफी आजकल कैसे बच्चे हैं जो बच्चे नहीं दिखते अभी.
1: एंड व्हाई डू यू थिंक ऐसा क्यों है मतलब
0: क्योंकि मतलब अब मैं
1: एक्सपोजर
0: एक्सपोजर काफी लोग को बुरा लग जाएगा.
1: नहीं मे बी द एक्सपोजर टू एवरीथिंग बिकॉज हर अच्छी चीज से भी एक्सपोजर उनका हमसे कहीं कहीं गुना ज्यादा है. सो आई थिंक दैट मैच्योरिटी मेंटली टेक्स अनदर राउट एंड वो थोड़ा सा अपीयरेंस में भी आ जाता है.
0: एग्जैक्टली अभी कहता था हमारे यहाँ पे कैसा रहता था कि बच्चे खाने नहीं खा रहे दो थप्पड़ लगाए पूरा प्लेट साफ. अभी आजकल क्या था आपको तो पता ही होगा खाना नहीं खा रहे फोन दे दो रो रहे हैं फोन दे दो. एक तरह से ठीक है इट्स हेल्पिंग द पेरेंट्स यू नो कि थोड़ा उनको भी थोड़ा सा सांस लेने और

0: उन पे टाइम मिल जाए. बट ऑन द अदर नोट देखा जाए तो वो लोग इतने ऑब्सेस हो जा रहे हैं उस चीज से कि मतलब उनको पता चल गया है कि खाना नहीं खाएंगे तो फोन मिल जाएगा, थोड़े अखरे करेंगे तो यू नो फर्क खेलने मिल जाएगा गेम वेम फोन पर.
1: इसका कोई सोल्यूशन नजर आता है या फिर ये पार्ट एंड पार्सल है ऑफ दिस एरा, क्या लगता है?
0: आई थिंक दिस इज अ डेड एंड. इसके बाद कोई मुझे लगता है आगे वाली जनरेशन में, अरे हमारे लाइक ओके आई डोंट वांट कीप सेइंग हमारे टाइम पर, बट यू नो व्हेन वी वर इन स्कूल हमको फोन अलाउड नहीं रहता था, हमको कोई टेक्नोलॉजी अलाउड नहीं रहती थी. अगर वॉच भी पहनो तो ऑब्वियसली वो मतलब नॉर्मल डायल वाली वॉच पहनो. बट आजकल कैसा है कि बच्चे स्कूल जाने से पहले लिस्ट आ जाती है स्कूल से कि टैब चाहिए, फोन चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे आ रही है. हमारे नाम भी सर्कुलर होते थे राइट. आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी पे आ रहा है तो लाइक अब बच्चों का क्या है, वो लोग भी सोचते हैं कि हम क्यों मतलब घर वर जाके खेलें, ऑनलाइन किसी गेम वेम में कनेक्ट हो जाएंगे पबजी वबजी टाइप पे, उधर ही बात भी हो जाएगी, गेम वेम ही खेल लेंगे.
1: बट हाउ जेन जी आर यू, देखो कदम से कदम मिला के तो चलना पड़ेगा क्योंकि रेस नहीं है, मैराथन है राइट. तो कितनी चीजें आपने अपनाई हैं अभी तक जो जो जेन जीज की हैं, जो खास हैं, यू थिंक यार ये थोड़ा कूल है, मेरे को भी करना है?
0: अभी वो तो बहुत स्पॉन्टेनियसली होता है, मतलब कोई सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, आई एम लाइक नहीं आई एम नॉट टू ओल्ड फॉर दिस, लेट्स गो.
1: जैसे कि स्मार्ट वॉचेज है, स्मार्ट वॉचेज जो है अभी भी कुछ जैसे हमारे जो उसके एरा के हैं उन लगता है अरे यार कौन यार इनको चार्ज करते रहेगा बैठे बैठे, मगर जेंजीज आर just mad about it, crazy about smartwatches, है ना?
0: Oh, I can't live a day without smartwatch, by the way.
1: हाँ, तो देखा, एक point मिला मुझे.
0: मिला, definitely मिला.
1: हाँ, मिला मुझे. तो
0: लेकिन उसमें you know कुछ चीजें अच्छी भी है ना उसमें, जैसे smartwatch में आपको पता चल जाता है कि आपकी heartbeat क्या है, pulse rate क्या है, you know all of these things जो healthy चीजें होती है वो are really cool. अब जैसे अगर मेरा फोन कहीं दूसरी जगह रखा है बट मेरा फोन लाइक वॉच कनेक्टेड है, कॉल आ रही है, कॉल ले लिया, इट्स कन्वीनियंट यू नो.
1: ये सारी जो बातें हैं जरा अभी होल्ड करके रखिएगा बिकॉज़ वी नीड टू टेक अ ब्रेक.
2: जेन जी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक्स. जनरेशन टॉक्स.
1: और डू यू थिंक एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम ये कहते तो रहते हैं हमारा एरा, बट अभी अगर उस एरा की तरह जीना पड़ जाए तो जी नहीं पाएंगे, क्या लगता है?
0: नहीं, मुझे लगता मैं जीऊंगी.
1: क्या बात है?
0: मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हूँ. मैं थोड़ी सी यस, आई एम काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल, क्योंकि अभी भी अगर मुझे किसी को कुछ बर्थडे विश करना है, आई स्टिल लुक फॉर अ पेन एंड पेपर वाला सीन जहाँ पे मैं लेटर लिखूँ, लाइक ग्रीटिंग कार्ड्स बनाओ, या फिर आई एम लिटिल ओल्ड स्कूल. आई फील किसी को खुश करने के लिए आई वुड प्रेफर यू नो गोइंग होम कुकिंग टुगेदर रादर देन गोइंग आउट फॉर डिनर्स और लंच.
1: जैसे कुछ अपने जमाने को देखा हो आपने और आप चाहती है वो अब गायब हो चुका है, बट आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस देम टू दैट थिंग.
0: अब जैसे बेसिक एग्जांपल ले लो आप कि हम लोग जब बचपन में जब मैकडॉनल्ड्स वगैरह जाते थे ना तो इतना मजा, दैट यूज्ड टू बी लाइक अ विंटर वंडरलैंड फॉर मी, यू नो इट यूज्ड टू बी लाइक अ वेरी बिग थिंग. सो आई यूज्ड टू वेट कि हम लोग कब मैकडॉनल्ड्स जाएंगे, हम वहां पे खेलेंगे, एंड वो वहां की वाइब भी अलग होती थी. इट यूज्ड टू बी कलरफुल, इट यूज्ड टू बी किडिश. अभी वो एलिगेंस में स्टैंडर्ड के चक्कर में अब सब कुछ इतना बोरिंग बना दिया है. और Let's start with basic. आजकल स्कूल के बच्चे भी लाते मारिकानो और पता नहीं क्या क्या पीते हैं. हमारे टाइम पे हम पीते थे एक बड़ी कप दूध के अंदर दो चुटकी कॉफी डालकर, बिकॉज कैफीन नहीं पीना है बच्चों को. What is that about?
1: But have you tried something जो आज के दौर में माचा वाचा तो ट्राई कर लिया होगा?
0: मैंने माचा ट्राई किया, मैंने इतना रिग्रेट किया ना।

0: बाय गॉड, ऐसा लग रहा था मैं घास फूस का ऐसे जूस बना के पी रही हूँ, इतना गंदा। बाय गॉड, आई वांटेड टू थ्रो अप।
1: And since you're old school, तो कोई ऐसी materialistic चीज है जो लगता है कि यार इस एरा में तो मजे आते हैं? जैसे मुझे लगता है कि अगर यार वो थोड़ा सा VCR वगैरह को सिस्टम होता तो बहुत मजे आ जाते हैं, थोड़ा सा सीन रहता है, वो रेंट करने का जो मजा है मूवीज का वो अभी नहीं है, यू जस्ट गेट एवरीथिंग अराउंड। डू यू थिंक ऐसा कुछ है?
0: तो सब मिल जाता है। वो पहले के टाइम पे जैसे वो कैसेट्स डाल के हम लोग सॉन्ग सुनते थे और बीच में अटक जाती थी, तो फिर उसका रील निकाल कर उसको ऐसे घुमा घुमा कर यू नो उसको सही करके रील डालकर यू नो सॉन्ग सुनते थे। और फिर ये मैंने पहले भी बोला था, बट
1: डू यू थिंक ओवर इन्फॉर्मेशन जो अभी है, इन्फॉर्मेशन ओवर भी नहीं कहूँगा, है अवेलेबल है, कोई ऐसी चीजें जो सोचती हो कि अभी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, मतलब जस्ट लेट इट बी यार, इसको नहीं होना चाहिए था अवेलेबल, ये भी अवेलेबल है, ऐसा कुछ है? डू यू थिंक आज की जनरेशन के लिए?
0: आई थिंक देयर इज मच इन्फॉर्मेशन स्पेशली अबाउट जो आजकल डिजीज वगैरह को लेकर, मतलब जो हेल्थ इश्यूज को लेकर जो इन्फॉर्मेशन बाहर आती है, आई मीन इट्स गुड एक तरीके से फॉर अवेयरनेस इज गुड, बट ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। बस बच्चे बच्चे ये सब पढ़ से पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, एंड इवन फॉर लाइक जैसे मेडिसिन वगैरह यूज करने वाली होती है, एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स आई फील नहीं होनी चाहिए। बच्चों को एक लिमिट तक इन सब चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन हो तो अच्छा हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द राइट इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द राइट पर्सन, बट डॉक्टर्स एंड एवरीवन, यू नो, एक क्लिक पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, दे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स।
1: और इन जेन जी से कोई कोई टर्म सीखे, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इनकी ब्लू कलर की डिक्शनरी लगे, तो क्या क्या क्या सीखा?
0: स्किबिडी
1: और क्या सीखा?
0: एंड देन क्लॉक इट,
1: अरे वो वो वो वो,
0: आई एम लाइक क्या क्लॉक इट करते रहते हैं हम।
1: हां ये तो है, पर
0: someone recently told me something. Yeah. मैंने कुछ किया था and they, that person was office में, someone wanted to compliment, they like you're crushing it bro. I'm like मैंने कुछ नहीं किया, इतना अच्छा तो किया, right? Yeah, that means you're doing it too good. I'm like crushing it too good, मतलब make it make sense bro.
1: आजकल जो ट्रेंड मैंने भी दिखा है, एंड आई एम सो श्योर सुनने वाले भी और आपने भी अग्री करेंगे, आजकल जो कॉन्टेंट कंजम्पशन है, एंड आई एम नॉट उन कैटेगरी में नहीं आता जो कहते हैं वायलेंस दिखोगे तो वायलेंट हो जाओगे, दैट डजंट मेक एनी सेंस, ऐसा होता नहीं है,
0: बट वायलेंट हो इतने फेमस भी होते हैं।
1: पर मेरा ये है कि कंटेंट जो है आजकल ऐसा हो गया कि अनटिल अनलेस आप थोड़े से अजीब हरकत नहीं करते तो आप बिकते नहीं है, इधर इट इज नेगेटिव और इधर इट इज क्रिंज, वही बिकता है, यू हेट इट बट यू स्टिल गिव इट अटेंशन, यू नो। तो ये इस मॉल में फंस गए हैं क्या, ऐसा लगता है? क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, मतलब यू कैन बी गुड एंड फिर भी आप यू कैन बी अ सेल आउट, लेकिन अभी क्या है कि आपको कुछ तो अतरंगी करना पड़ेगा।
0: दैट इज ट्रू, आपको अगर फेमस होना है, वायरल होना है, उसको लेम करो, द लेम इज द न्यू कूल, दैट्स हाउ आई फील। जितना आप लेम होंगे उतना कूल बनोगे।
1: हाँ, ये पर ये मैसेज पता नहीं क्या है, है तो ये नेगेटिव मैसेज ही, इससे बचने का कोई तरीका है मैडम मोहतरमा? कुछ आता है दिमाग में कि नहीं यार मैं कैसे किसी को मना करूं, किसी जेंजी को, कि बेटा लेम मत बन, मत शामिल हो इस भीड़ में? Do you have anything to tell them? क्या मैसेज होगा?
0: The thing is, आजकल की जेंजी इतनी फास्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है, आप उनको समझाने जाओगे आप चार सुन के खुद चुप बैठ जाओगे।
1: तो कुछ नहीं समझाना भाई साहब, समझाने में जो मर्जी आया करो।
0: आप समझाने जाओगे आप बोलोगे मैंने क्यों कोशिश की, व्हाई डिड आई इवन ट्राई।
1: ओके, एंड मैंने एक,
0: आई विल गिव यू एन एग्जांपल, तो वेप अतो बच्चे लोग कर रहे हैं, तो और कॉफी वगैरह सब पीते ना, तो मैं बैठी थी एंड मेरा रिसेंटली एक सेशन हुआ था वेयर आई एड्रेस द स्टूडेंट्स की यू नो ड्रग्स निकोटीन वेप वगैरह बहुत गंदी बातें नहीं करना, इट्स ऑल रॉन्ग एंड यू नो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल प्रोहिबिटेड एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, बेसिकली अवेयरनेस सेशन था। तो आई वाज सो पैशनेट एंड डेडिकेटेड विद दिस टॉपिक कि मैं हर रोज एटलीस्ट एक इंसान को

0: ये बात बोल रही थी. तो ऐसे एक स्टूडेंट आई एंड देन यू नो इट वाज अराउंड दोपहर के कुछ 2 बजे थे और वो एकदम सोती हुई हालत में आई. तो मैंने उसको गुड आफ्टरनून बोला एंड देन वो मुझे देखकर वो बोली कि गुड मॉर्निंग. I was like, it's afternoon, you know. So, she said, no, I just woke up, so it's a morning for me. I'm like, yeah, you need some coffee, you need some caffeine. So, she said, who drinks coffee? You. I'm like, yeah. I was like, wow, there's finally a person who said no to caffeine as a kid. Like, the next sentence, I was like, sir, who drinks caffeine? Get me a Red Bull. I'm like, no, ho gayi baat, ho gayi. So like, just get me a Red Bull, bro. That is what is gonna wake me up. I'm like, sahi hai, sahi daro.
1: ये एक मेजर इशू है. और एक जो मैं पिछले साल से इस बारे में बात करता रहा हूँ वो ये है कि एक तो पेरेंट्स कहते हैं भाई हम फोन वो नहीं देते, वो खैर उनका जाती मामला है, वो अपनी तरफ से मैनेज करेंगे. पर मैंने ना जब से बच्चों को ये फॉलोअर्स को लेके लड़ाई करते हुए देखा है, मुझे हजम होना बंद हो गया है. डू यू सी दैट कॉम्पिटिशन अराउंड यू?
0: या बट आजकल ऐसा भी हो रहा है कि वो पेड फॉलोअर्स वगैरह खरीद लेते हैं. कंपटीशन तो है डेफिनेटली, ये ऑर्गेनिक फॉलोअर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसलिए वो लोग वो कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे जब कुछ काम नहीं करता है तो पैसा काम कर जाता है उनका.
1: हाँ, ओके. एंड जो खर्च करने का जो तौर तरीका है वो भी बदला है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जो
0: ओह माय गॉड, बिगड़ गए आजकल के बच्चे. और आई विल ब्लेम माई सेल्फ अ लिटिल बिट कि मैं भी बच्चों को बिगाड़ देती हूँ, बिकॉज मेरे खुद के भी मतलब भांजी भतीजे वगैरह है. सो ऐसा होता था कि पहले मतलब जब कुछ चाहिए होता था ना, विश करती थी कि काश ये मिल जाए एंड देन वी वुड बी ऑन अ बजट, यू नो, कि 2 रियाल मिल गया हफ्ते का, 5 रियाल मिल गया. बट अभी ऐसा है कि बच्चों से मुँह से निकलता है एंड देन इट जस्ट the parents or the aunts jo bhi hai unko bas aisa rehta hai ki bachon ko khush karna hai, so they just want to give them that, no? So I feel they're very lucky to be honest.
1: Aur Qatar mein kitni pocket money honi chahiye agar main ek baat karu ek 16 saal ke bacche ki?
0: Aajkal 5000 se kam to pocket money wo log lete nahi hai, to be honest. Nahi lete. Unka rehta hai ki oh my god, my latte is like 35 riyals, come on.
1: 500 to 1000.
0: I'm talking about power, yeah.
1: Okay.
0: Because unke khalke bhi to waise hi hote hai.
1: Okay.
0: Because they want to do all fancy stuff. They say mini wonder, like play area chale gaye, kahin pe baith ke do burger kha liya. Aisa wala koi karta nahi hai aajkal. Hamari generation hi karti hai. I still meet my school friend. मतलब ही नहीं पता था हमको.
1: ओके, तो एक चीज जो यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द जेन ज़ीज़ राइट नाउ, जो लगता है कि यार मैं अगर ये थोड़ा सा इनके साथ कर लूं, पेस अप कर लूं तो सही रह जाएगा, व्हाट इज दैट वन थिंग?
0: As I said, ऐसा स्पेसिफिक तो कुछ है नहीं, बट आई रियली रियली वांट टू लर्न उनका जो चिल वाला जो एटीट्यूड है ना, वो मुझे थोड़ा सा चाहिए. वो जो I wouldn't say careless, of course. It's carefree, you know, a little bit carefree, a little bit irresponsible wala jo hota hai na. It's not too bad. It's not even too good. It's neutral. Like, kuch nahi kar diya to, arey theek hai na, koi nahi, kar lenge, big deal.
1: And that makes me come to the last point. मैं एक चीज़ देखता हूँ और मैं जैसे इतने सारे compliment दिया भी है and kudos to that girl, but जो मैं मानता हूँ they are a bit मोर फोकस्ड. ये मुझे लग रहा है कि आपको भी लगता है कि ये थोड़े ज्यादा फोकस्ड है, हम थोड़े पैनिक्ड वाले फोकस हैं. डू यू थिंक सो?
0: नहीं,
1: ओके,
0: नॉट वेरी फोकस्ड.
1: नॉट वेरी फोकस्ड,
0: बहुत आउट है उनका फोकस, बहुत आउट है. आई फील वो लोग का फोकस रहता नहीं.
1: अच्छा, रहता ही नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि तो चिल मोड में फोकस कर रहे हैं, तो शायद मुझे उस वजह से ज्यादा लग रहा है कि ये कर लेंगे टाइप का सीन है.
0: नहीं, उनका फोकस पैम बहुत कम रहता है.
1: ओके,
0: अगर उनको आप किसी लेट्स से आप किसी जनरल से बात कर रहे हो किसी टॉपिक पे, वो लोग बहुत इंटरेस्टिंगली आपसे 5 मिनट बात करेंगे, उसके बाद

0: आप देखना वो लोग आउट ऑफ जोन हो जाएं।
1: हाँ वो चीज नहीं, मैं कह रहा हूँ करियर वाइज, लाइक इफ दे हैव एन आई फॉर समथिंग ना, लाइक कोई स्टार्टअप वार्टअप है, तो फिर तो दे विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग उसके पीछे।
0: That is true. जब तक आप उनके उनके सेंटर पॉइंट को हिट नहीं करोगे ना, तब तक दे विल नॉट बी इन फोकस।
1: हाँ, वो उनकी जो इमोशनल डिमांड्स हैं उनको पूरा किए बिना तो कोई कंपनी उनको हायर भी नहीं कर पाएगी, ये आज का फैक्ट है। इफ यू वांट टू हायर एजेंसी, आपको भाई साहब उनके दिमाग को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, आपकी नहीं चलने वाली, बिकॉज़ दे आर गुड एट एवरीथिंग।
0: आपने ये वीडियो देखा होगा, बहुत ट्रेंडिंग है, काफी लोगों ने भी देखा होगा ये वीडियो, वेयर टू मीटिंग चल रही है, बॉस है और दो तीन और कॉलीग्स है, एंड देन एक कॉलीग का वीडियो ऑफ रहता है, तो बॉस बोलते हैं ठीक है हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, कैन यू प्लीज ऑन योर कैमरा, तो वो जिसका कैमरा बंद होता है वो बोलती है नहीं नहीं अभी आई एम ओके, आई विल जस्ट स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, मैं बात कर रही हूँ, एंड देन वो बॉस इंसिस्ट करता है, एंड जब वो कैमरा ऑन करती है she has a face mask on her face and like the party rehti hai and then the boss says ki ye sab aapko break time pe karna chahiye to wo bolta hai work from home mein break kahan hota hai no and then they try to make everything too much fun and easy
1: या तो उसी बात को लेके मुझे लगता है पर जैसे वो टाइम वो जो उनका बर्दाश्त करने की हद है वो तो नहीं है, वो 5 मिनट से ज्यादा किसी की सुनेंगे नहीं। लास्टली अ मैसेज टू द मिलेनियल्स नॉट द जेन ज़ीस, अपनी जनरेशन को क्या एडवाइस है?
0: मिलेनियल्स को मैं ये एडवाइस करूंगी इट्स ओके, मतलब इट्स ओके कि जेन ज़ीस आर यू नो सो चिल एंड एवरीथिंग, ट्राई टू वर्क विद देम, थोड़ा चिल हो जाओ अभी, हम बड़े हो गए हैं बट दिल से छोटे रहेंगे तो वी विल बी इन यू नो बेनिफिट, मतलब लेट बी हैप्पी, इतना लाइफ का स्ट्रेस लेकर अपनी हेल्थ खराब करने का कोई फायदा नहीं है, गिव योरसेल्फ सम टाइम, आई नो कि लाइफ थोड़ी सी टफ है विद द सिचुएशन एंड एवरीथिंग, बट इस सब के बीच में अपने आप को वक्त देना, अपने आप से बात करना, अपने आप को मतलब यू नो हैविंग दैट सेल्फ केयर सेल्फ लव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
1: ब्यूटीफुली पुट,
0: वेरी इंपॉर्टेंट,
1: ये बात तो सच है, मतलब लेट्स हैव फन एट लीस्ट, लाइफ बहुत जरूरी है।
0: On that note, मैं सैटरडे जा रही हूँ पैरासीलिंग के लिए and I am so excited.
1: Please लिंक भेजे हमें भी और बहुत जरूरी है बिकॉज मोटिवेट हो गया मैं लास्ट लाइन से नहीं जरूर जरूर लिंक मुझे चाहिए उसका एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, आई नो कि बहुत बिजी शेड्यूल है क्योंकि हम लोग तो फन करते नहीं है तो काम ही करते हैं तो ये टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल्सो ये जब पब्लिक सुनेगी, पब्लिक जो भी सुन रही है अभी, सो आप मैसेज कर दें जरूर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बहन, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जज़ाकअल्लाह, यू ऑलवेज बीन अ फैमिली, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, ख्याल रखिए अपना, अस्सलाम वालेकुम।
2: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107, दिल से देसी।
3: दोस्तों मैत्राज ऐप के जरिए वर्क वीजा आसानी और तेजी से जारी किया जा सकता है, जिसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत भी नहीं होती। इस खदमत से फायदा उठाने के लिए सबसे पहले मैत्राज ऐप की होम स्क्रीन पर जाकर वीजा का इंतखाब करें, फिर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हुए वर्क वीजा का ऑप्शन चुनें। वर्क वीजा के सफहे पर मुतालिक एप्लीकेशन नंबर सिलेक्ट करने के बाद इशू वीजा पर क्लिक करें। इसके बाद एप्लीकेंट की कौमियत या नेशनैलिटी का इंतखाब करें और उसके पासपोर्ट की वाजे कॉपी अपलोड करें। फिर एक साफ और वाजे पर्सनल फोटोग्राफ अपलोड करें। तमाम मालूमात अपलोड करने के बाद जाती डेटा का एहतियात से जायजा लें और यकीन कर लें कि तमाम तफसीलात दुरुस्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। दरख्वास्त जमा करते ही अमल मुकम्मल हो जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए मुतालिका अथॉरिटी को भेज दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि ये डिजिटल सर्विस वीजा के इजरा के अमल को मजीद आसान, तेज और मौसर बनाती है और मुस्तफीद अफराद को घर या दफ्तर से ही अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करने की सहूलत फराहम करती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने, और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने

0: हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो क्यों समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: यस नाउ वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. हाँ जी, तो कैसा लगा आपको हमारे शो का सबसे पहला गाना दिल तो पागल है. एंड आई कुड सी कि मेरे व्हाट्सएप पर और भी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी तक हम तो ये वाला गाना रिक्वेस्ट करने वाले थे. इट्स गुड फॉर यू, आपने पूरा पूरा इन्जॉय किया. और अभी हम अपनी रिक्वेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं. सबसे पहली रिक्वेस्ट हमारे रेगुलर लिसनर्स ने की है एंड दे रियली वॉन्ट टू लिसन टू दिस सॉन्ग. और बहुत ही खूबसूरत गाना है, तो सोशल मीडिया से मिलाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 तक इन गानों की रिक्वेस्ट आई है. तो अब जो डुएट कॉम्बिनेशन हम प्ले करने वाले हैं, दैट्स वेरी यूनिक. एसपी बालसुब्रमण्यम एंड केएस चित्रा की आवाज में, एंड द सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी रोजा. ये हसी वादियां बहुत और बेहद खूबसूरत गाना है, तो जरूर हम इसे पूरा पूरा एंजॉय करने वाले हैं. और उसके बाद यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट है लता मंगेशकर कुमार सानू की आवाज में मदहोश दिल की धड़कन, एंड इट्स फ्रॉम द मूवी जब प्यार किसी से होता है. वाओ, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत रिक्वेस्ट जो कि आपकी राहों में आने वाली है. और आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, गैस कीजिए, सोचिए, मतलब गैस नहीं करना है, सोचना है कौन सा गाना है, कौन सा वो डुएट गाना है आपके फेवरेट सिंगर्स का जो आप इंजॉय करना चाहते हैं. तो जल्दी से मैसेज करें 6622107 पर अपने डेडिकेशंस. बने रहें FM 107 पर दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस माय देसी ऑडियंस, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता द रिक्वेस्ट शो पर। आज की जो थीम है बड़ी स्पेशल है कि जो डुएट सिंगर्स होते हैं ना, जिनके कॉम्बिनेशंस आपको बहुत पसंद है और उनकी आवाज़ें आपकी ज़िंदगी की हर एक प्रॉब्लम को हील कर देती है, सॉल्व कर देती है, बस उन्हीं गानों की आज रिक्वेस्ट करनी है। तो ज़रूर शेयर करें आपके फेवरेट सिंगर्स, वो भी डुएट, ठीक है। सो 666-22-107 666-22-107 इज़ आर नंबर। आप इसके ज़रिए हमसे शेयर कर सकते हैं, चाहे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं FM 107 के, और अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो रिक्वेस्ट आई है वो है सैयद हुसैन साहब की, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक। मतलब काफ़ी अरसे के बाद इस गाने की रिक्वेस्ट किसी ने की है, एंड ये 2000 का गाना है, बट ये गाना इंस्पायर्ड था 90s के पाकिस्तानी सॉन्ग बोहे बारियां से, एंड द सॉन्ग इज
2: हम तुम्हारे तुम्हारे सनम हम तुम्हारे।
1: हाँ जी, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ का ये गाना है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान का ग्रेट कॉम्बिनेशन। सो ये गाना हम पूरा पूरा इंजॉय करने वाले हैं। उसके बाद नूरा की रिक्वेस्ट है जो कि

हमारे सोशल मीडिया से आई है एंड जब इस गाने को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मोहब्बतों के पत्ते हर जगह यूं उड़ते जा रहे हैं। Once again, Udit Narayan, लेकिन लता मंगेशकर जी की आवाज़ के साथ। So it's a very, very beautiful track जो कि पूरा पूरा हम आपको सुनाने वाले हैं। ये दोनों ही गाने हम तुम्हारे हैं सनम एंड हमको हम ही से चुरा लो इज कमिंग अप ऑन योर वे। और आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सोचिए ना, अपने फेवरेट सिंगर्स जो कि डुएट में है, कॉम्बिनेशन में है, कौन सी वो आवाज़ें हैं जो आप बहुत पसंद करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट कीजिए, उनके गानों की रिक्वेस्ट कीजिए, अपनी स्टोरीज के साथ, अपने डेडिकेशन के साथ 666-22-107 पर। और अभी बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: Ladies and gentlemen,
4: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
2: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दो हवाले कबीर के साथ।
0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो A for Amita ke saath, only on FM 107. Dil se desi.
3: Yes, now welcome. FM 107 sun rahe hain aap. Main hoon aapki A for Amita. तो जनाब द रिक्वेस्ट शो पर कैसा लग रहा है ये हिट हिट गाने? वैसे कहा जाता है ना कि फिल्मी दुनिया की कुछ प्लेबैक की मशहूर जोड़ियां ऐसी हैं कि अगर उनका जिक्र ना करो तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अधूरा सा है कि नहीं। मतलब ये जो आवाज़ें ऐसा लगता है कि मेड फॉर ईच अदर हैं, जैसे कि किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़, कुमार सानू अलका याग्निक, अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल एंड द लिस्ट गोज ऑन। और अभी जिस रिक्वेस्ट को हम प्ले करने वाले हैं वो भी बड़ी यूनिक सी जोड़ी है, दैट इज आतिफ असलम एंड श्रेया घोषाल की आवाज़। और इस रिक्वेस्ट को किया है अहमद साहब ने और कहते हैं कि अमिता ये गाना मेरी बेटर हाफ को डेडिकेट कर दो। चलिए, आपने रिक्वेस्ट किया तो ये गाना तो डेफिनेटली प्ले होगा। और इस फिल्म में मतलब तेरे नाल लव हो गया फिल्म का ये गाना है और इस फिल्म में रितेश देशमुख जिनीलिया भी रियल लाइफ बेटर हाफ्स हैं। तो चलो इंजॉय करते हैं। कौन सा गाना है? पिया ओरे पिया। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक जो कि आपकी राहों में पूरा पूरा आएगा। और उसके बाद एक और बड़ा ही शानदार गाना है, मतलब दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, राहत फतेह अली खान एंड तुलसी कुमार की आवाज़ में, एंड द सॉन्ग इज़ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। और इसकी रिक्वेस्ट की है जहीद अरमान ने। तो ये दोनों ही गाने आपकी राहों में पूरे पूरे आने वाले हैं। और आप कौन सा गाना इन्जॉय करना चाहते हैं शेयर कीजिए ना 666-22-107 पर। वो कौन से डुएट सिंगर्स हैं जो कि आपके फेवरेट हैं और उनकी आवाज़ आपके लिए कभी पुरानी नहीं होती? शेयर कीजिए FM 107 पर दिल से दे।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: घूम कर शेक अप आंखों में फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अप दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
3: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा
4: तो ये जानने के लिए सुनिएगा Generation Talk, Generation Talk with RJ Kabir and RJ Safa every Tuesday at 3 PM. At 3 PM. Only on FM 107, Dil Se Desi.
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
5: Yes, and now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और अब वक्त हो चला है आपकी रिक्वेस्ट के साथ साथ क्विज खेलने का
2: क्विज टाइम
5: तो क्विज टाइम पर मैं आपको ये बेहतरीन सा गाना सुनाती हूँ आपको इन दोनों सिंगर्स के नाम पहचानना है

0: बताएं बताएं बताएं, ये दो जो खूबसूरत आवाजें आपने सुनी वो किन सिंगर्स की है, उनके नाम लिखें अपने नाम के साथ एंड लेट मी सी कि आप में से कितने लोग सही जवाब देते हैं और ये गाना पूरा पूरा आपका होगा। और अभी हम जल्दी से हमारी अगली रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज़ एंड कभी कभी लव डुएट से हटकर दोस्ती के डुएट्स की बात करें तो शाहरुख खान और काजोल की दोस्ती भी कुछ इसी तरह की है कि जो इस गाने में दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है।
1: सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा।
0: तो सैफ की रिक्वेस्ट है एंड ये गाना पूरा पूरा मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। प्लस एक और यूनिक कॉम्बिनेशन है हिमेश रेशमिया एंड असीस कौर का एंड सैयद अरसलन बुखारी साहब ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है। अफसाना बनाया आपने जो कि आपकी राहों में आने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब देखिए द रिक्वेस्ट शो बिल्कुल अपने मुकाम पर पहुंच रहा है, आखिरी मुकाम पर पहुंच रहा है, तो लेट्स एंजॉय दिस गाना लाइक दिस सॉन्ग्स और उसके बाद क्विज टाइम पे देखते हैं कि आपने कितने सही जवाब दिए। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: Yes, now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और हमारा द रिक्वेस्ट शो बिल्कुल आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। तो क्विज टाइम पर मैंने आपको एक गाना सुनाया था और कहा था कि इन दोनों सिंगर्स की आवाजों को पहचानो। एंड मुझे जवाब आए हैं, लेकिन बहुत अलग अलग जवाब आए हैं। चलिए मैं जल्दी से बता ही देती हूँ। सही जवाब है आतिफ असलम एंड अलीशा चिनॉय, और ये बेहद ही खूबसूरत गाना है तेरा होने लगा हूँ। और मोहम्मद यूसुफ खान, सबीर, नूरा और इनायत ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो ये गाना आपके नाम हो रहा है। और इसी के साथ मैं कहूँगी आप मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी मेरी मुलाकात अब कल होगी। तो जाने से पहले ये कहना बनता है हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। गेम चेंजर
1: सीजन 2। असलम दोस्तों, खेल सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं, ये है जज्बा, मेहनत और वो इरादा जो तारीख हमारा है। ये है चेंजर शो, एक सफर उन स्पोर्ट्स हीरोज के साथ जिन्होंने ना सिर्फ अपना गेम बदला दुनिया को नए अंदाज में सोचने पर मजबूर किया। लेकिन शो शुरू करने से पहले स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। गेम चेंजर सीजन 2। AFC चैंपियंस लीग 2 2026-2027 का आगाज हो गया है, जहां एशिया की सेकेंड टियर मेंस क्लब कंपटीशन में 32 क्लबें विनिंग स्टार्ट के लिए मैदान कर रही हैं। कल रविवार को जहां हमारा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलेगा और ये मुकाबला सौ में होने वाली एशियन 2027 की तैयारियों का हिस्सा है। और तीन मैचों की टेस्ट क्रिकेट सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त देकर क्लीन स्वीप मुकम्मल कर ली। तो दोस्तों, ये थी स्पोर्ट्स अपडेट्स और इसके साथ अब हम शुरू करते हैं गेम चेंजर, जो आज हमारा टॉपिक है। और आज हम बात करेंगे सैयद करमानी के बारे में। या दोस्तों, वो विकेट कीपर जिन्होंने इंडियन क्रिकेट का स्टैंडर्ड बदल दिया। गेम चेंजर सीजन 2। तो सैयद करमानी का नाम अगर हम लेते हैं तो शायद आज की जनरेशन के लिए उतना फेमिलियर ना हो जितना MS धोनी, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर का है। लेकिन अगर हम इंडियन क्रिकेट की तारीख को गौर से देखें, अगर हम ये समझना चाहें कि इंडिया में विकेट कीपिंग को एक सीरियस क्रिकेटिंग आर्ट किसने बनाया, अगर हम ये देखना चाहें कि एक विकेट कीपर सिर्फ विकेट्स के पीछे खड़ा रहने वाला खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच का मोमेंटम बदलने वाला क्रिकेटर कैसे बन सकता है, तो एक नाम बहुत जोर से सामने आता है, सैयद करमानी। एक नाम, एक पेयर ग्लव्स और एक ऐसा करियर जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को सिर्फ कैचेस और स्टंपिंग्स नहीं दिए बल्कि एक स्टैंडर्ड दिया। आज का सवाल है कि सैयद करमानी गेम चेंजर क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम का हिस्सा थे? नहीं। क्या सिर्फ इसके लिए कि वो 1983 वर्ल्ड कप के बेस्ट विकेट कीपर सेलेक्ट हुए? नहीं। क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने 88 टेस्ट मैचों में 198 डिसमिसल्स का रिकॉर्ड बनाया? ये भी पूरी कहानी नहीं है दोस्तों। करमानी की असल कहानी ये है कि उन्होंने इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे दौर में विकेट कीपिंग को एक्सीडेंस का नाम दिया, जब इंडिया के पास वो क्लास स्पिनर्स थे, जब पिचेस अनप्रेडिक्टेबल होती थी, जब विकेट कीपर को हर गेंद पर अलर्ट रहना पड़ता था और जब विकेट कीपिंग को बैटिंग के मुकाबले में अक्सर सेकेंडरी रोल समझा जाता। किरमाणी ने कहा, नहीं, ये मैं सब चेंज करूंगा। विकेट कीपर भी मैच विनर हो सकता है, विकेट कीपर भी टीम की बैकबोन हो सकता है और कभी कभी विकेट कीपर का एक कैच पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री बदल सकता है। आज हम इसी शख्सियत की कहानी सुनेंगे, सैयद करमानी की कहानी। एक ऐसा बचपन जहां क्रिकेट अभी का नहीं था। सैयद मुस्तफा हुसैन करमानी की पैदाइश 29 दिसंबर 1949 को मद्रास यानी आज के चेन्नई में हुआ। लेकिन उनकी क्रिकेटिंग जर्नी सिर्फ चेन्नई से नहीं जुड़ी, उनकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बेंगलोर, आज के बेंगलुरु शहर में गुजरा और यहीं से उनकी क्रिकेटिंग आइडेंटिटी डेवलप हुई। आज हम जब किसी यंग को देखते हैं तो उनके पास एकेडमीज होती हैं, स्पेशलिस्ट कोचेस होते हैं, वीडीएसएस होता है, फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं। लेकिन करमानी के दौर में क्रिकेट की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फैसिलिटीज लिमिटेड थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थे और सबसे अहम बात, सेल्फ लर्निंग बहुत ज्यादा थी, यानी खुद से सीख लो।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

किरमानी के करियर में एक शख्सियत का बहुत अहम रोल रहा है दोस्तों, केकी तारापोरे। तारापोरे ने उनमें विकेट कीपिंग की एबिलिटी देखी और फिर उनकी ट्रेनिंग का एक अजीब लेकिन बहुत खूबसूरत सिलसिला शुरू हुआ। किरमानी को लेजेंडरी इंडियन स्पिनर्स के सामने विकेट कीपिंग का मौका मिलने लगा। ये एक नौजवान विकेट कीपर और सामने इंडिया के ग्रेटेस्ट स्पिनर्स में से कुछ नाम सुन लीजिए, बिशन सिंह बेरी, यड़ापल्ली प्रसाद, बी एस चंद्रशेखर। और इन गेंदबाजों को कीप करना यानी विकेट कीपिंग करना कोई मामूली बात नहीं था। स्पिन बॉलिंग के सामने विकेट कीपर को बैट्समैन से भी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। गेंद कब टर्न करेगी, कितनी टर्न करेगी, कब नीचे रहेगी, कब बाउंस करेगी, बल्लेबाज के बैट का एज कहां जाएगा, और अगर कीपर स्टंप्स के करीब खड़ा है तो रिएक्शन के लिए वक्त कितना है, सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। किरमानी ने इसी एनवायरनमेंट में अपनी क्राफ्ट डेवलप की। इसी जय के साथ एक इंटरव्यू में किरमानी ने खुद बताया था कि उनकी विकेट कीपिंग एजुकेशन लेजेंडरी स्पिनर्स के सामने हुई। उनके मुताबिक विकेट कीपर की असिबिलिटी का इम्तिहान तब होता है जब वो स्पिनर्स के सामने खड़ा हो, और यहाँ से समझ आता है कि किरमानी सिर्फ टैलेंटेड नहीं थे, वो ट्रेंड थ्रू एडवर्सिटी थे। फारूक इंजीनियर के बाद बड़ी जगह और बड़ी जिम्मेदारी। अब जरा उस वक्त का इंडियन क्रिकेट इमेजिन कीजिए। इंडिया के पास विकेट कीपिंग में पहले ही एक बड़ा नाम था, फारूक इंजीनियर। इंजीनियर स्टाइलिश थे, एग्रेसिव थे, कैरिस्मेटिक थे, और उनकी विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों ने इंडियन क्रिकेट पर गहरा असर छोड़ा। ऐसे खिलाड़ी के बाद विकेट कीपर बनना आसान काम नहीं था, और किरमानी को पता था कि कंपैरिजन होगा, लोग कहेंगे इंजीनियर के बाद कौन, और फिर उन्होंने जवाब दिया अपने ग्लव से, यानी विकेट कीपिंग ग्लव से। सैयद किरमानी ने 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में टेस्ट डेब्यू किया, और सिर्फ दूसरे टेस्ट में उन्होंने एक इनिंग्स में 6 डिसमिसल्स के उस वक्त के वर्ल्ड रिकॉर्ड को इक्वल किया था, यानी डेब्यू के बाद ही एक सिग्नल मिल गया था। ये विकेट कीपर सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं है, ये अपनी आइडेंटिटी बनाने आया है। लेकिन क्रिकेट में कोई करियर सीधा नहीं होता, किरमानी के साथ भी अप्स एंड डाउन्स आए, कभी फॉर्म गई, कभी सिलेक्शन का मसला हुआ, कभी उनकी कीपर पर सवाल थे। और 1979 यानी 1979 वर्ल्ड कप ओडीआई क्रिकेट के वक्त वो इंडियन स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, उन्हें बाहर कर दिया गया था, यानी ही वाज ड्रॉप्ड। लेकिन यहाँ किरमानी की पर्सनालिटी का एक इम्पोर्टेंट पहलू सामने आता है। उन्होंने हार को फाइनल रिजल्ट नहीं समझा, वो वापस आए, और जब वापस आए तो और मजबूत विकेट कीपर के तौर पर आए। अक्सर विकेट कीपर के बारे में एक स्टीरियोटाइप होता है, अगर कीपर अच्छी कीपिंग करता है तो कहा जाता है बैटिंग एवरेज थोड़ी कम है, कोई बात नहीं, चल लेगा, और अगर बैटिंग अच्छी हो तो कहा जाता है कीपिंग एवरेज है लेकिन बैटिंग स्ट्रांग है। किरमानी ने दोनों डिपार्टमेंट में अपनी वैल्यू दिखाई। उनकी स्टाइलिश ऑर्डर बैटिंग नहीं थी, वो फ्लैशी बैट्समैन नहीं थे, लेकिन जब टीम मुश्किल में होती किरमानी का टेम्परमेंट सामने आता। इसी वजह से उन्हें एक वक्त पर क्राइसिस मैन भी कहा गया, और ये निकनेम सिर्फ तारीफ के लिए नहीं था, उन्होंने वाकई मुश्किल वक्त में इंडिया को बचाया। 1979 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉम्बे यानी आज का मुंबई शहर में वानखेड़े जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, उस वेन्यू में किरमानी ने 101 नॉट आउट रन बनाए। वो इनिंग्स तकरीबन 5 घंटों तक चली। सोचिए, विकेट कीपर, लोअर ऑर्डर बैट्समैन, और फिर एक टेस्ट सेंचुरी, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ये सिर्फ स्कोरबोर्ड पर एक नंबर नहीं था, ये एक मैसेज था, किरमानी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए दोस्तों। उनके पास पेशेंस है, उनके पास टेक्निक है, और प्रेशर में, दबाव में टिकने की एबिलिटी है। इसी तरह बाद में उन्होंने 2 10 सेंचुरीज स्कोर की, दोनों वानखेड़े स्टेडियम में आई। 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ उनका 102 रन्स भी एक रिमार्केबल लोअर ऑर्डर इनिंग्स थी। यानी सैयद किरमानी का फॉर्मूला सिंपल था, पहले ग्लव से टीम को वैल्यू दो, और अगर जरूरत हो तो बैट से भी टीम को बचा लो। अब एक सवाल, विकेट कीपर की ग्रेटनेस मेजर कैसे करेंगे, सिर्फ कैचेस से, सिर्फ स्टंपिंग से?

सिर्फ डिसमिसल्स के नंबर से या फिर उनकी एबिलिटी से कि वो बॉलर्स को कितना सपोर्ट करता है। किरवानी की ग्रेटनेस को समझने के लिए हमें उस क्रिकेट को समझना होगा जो वो खेल रहे थे। इंडिया का स्पिन क्वाड्रेट, बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, ये नाम सिर्फ बॉलर्स के नाम नहीं थे दोस्तों, ये बैट्समैन के लिए नाइटमेयर थे और विकेट कीपर के लिए भी चैलेंज थे। स्पिन के सामने विकेट कीपर को अक्सर स्टंप्स के करीब आना पड़ता है और अगर बॉल टर्न करे तो कीपर के पास रिएक्शन का वक्त बहुत कम होता है। क्रिकेट ने इस आर्ट को मास्टर किया। बीसीसीआई के रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 160 कैचेस और 38 स्टंपिंग्स किए, यानी कुल मिलाकर 198 डिसमिसल्स। उनके 38 स्टंपिंग्स उस वक्त के इंडियन रिकॉर्ड के तौर पर भी बहुत सिग्निफिकेंट थे। और एक और रिमार्केबल फैक्ट, इंग्लैंड के खिलाफ 1981-1982 टेस्ट सीरीज के दौरान इंडिया के बॉलर्स ने 1964 रन कंसीड किए ओवरऑल कुल मिलाकर, लेकिन किरमानी ने 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट में एक भी बाई कंसीड नहीं किया। यह स्टैटिस्टिक आम फैन को शायद बोरिंग लगे, लेकिन विकेट कीपिंग समझने वाले के लिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि बाई का मतलब है गेंद बॉलर से निकली, बल्लेबाज ने मिस की और कीपर भी मिस कर गया। किरमानी के ग्लव्स ने गेंद को इतनी कंसिस्टेंसी से कंट्रोल किया कि 3 टेस्ट में एक भी बाई नहीं। दोस्तों बता दो कि ये ग्लैमर नहीं, ये हाईलाइट रील भी नहीं, लेकिन यही एक्सेलेंस होती है और गेम चेंजर्स अक्सर इसी इनविंसिबल एक्सेलेंस से बनते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इंडियन क्रिकेट की उस ग्लोरियस टाइम तक, 1983-1983, वो तारीख का वो साल जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इंडिया इंग्लैंड पहुंचा वर्ल्ड कप खेलने, ओडीआई वर्ल्ड कप, लेकिन फेवरेट्स इंडिया नहीं था, वेस्ट इंडीज चैंपियंस थे, दिफाई चैंपियन। और वेस्ट इंडीज सिर्फ चैंपियंस नहीं थे, वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे डोमिनेंट फोर्स टीम थी। क्लाइव लॉयड की टीम, विव रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रीनिच, टेस्मन हेन्स, मालकम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर, ऐसी टीम जिसके सामने इंडिया को कोई सीरियस कंटेंडर नहीं समझ रहा था। खुद गिरमानी ने बाद में याद किया कि इंडियन टीम को पहले अंडरडॉग समझा जा रहा था और उनका इनिशियल टारगेट नॉकआउट स्टेज तक पहुंचना था, लेकिन पहला ही मैच के खिलाफ और इंडिया जीत गया 34 रन से, ब्रिलियंट विक्ट्री। और सडनली ड्रेसिंग रूम में बिलीफ, यू नो, सेल्फ बिलीफ की बात करते हैं हम लोग, वो पैदा हुआ। किरमानी ने कहा था कि उस जीत ने टीम के कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड कप में सिर्फ एक अपसेट काफी नहीं होता, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। और इंडिया के सामने जिम्बाब्वे थी और यही किरमानी ने ग्लव्स के साथ अपना पहला बड़ा वर्ल्ड कप स्टेटमेंट दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ ग्लव्स का एक मास्टर क्लास ओकेजन, इंसिडेंट, कुछ भी कहिए, और वो तारीख था June 11th, 1983, इंडिया वॉज प्लेइंग जिम्बाब्वे। इंडिया ने मैच में विकेट कीपिंग के पीछे किरमानी पर भरोसा किया और किरमानी ने 5 कैचेस, एक वर्ल्ड कप मैच में विकेट कीपर के तौर पर उस वक्त का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट। इंडिया ने जिम्बाब्वे को 155 पर रेस्ट्रिक्ट किया, ये ग्रुप मैच की बात कर रहा हूँ, और किरमानी के 5 कैचेस ने इंडियन बॉलिंग अटैक को वो सपोर्ट दिया जो हर कप्तान अपने कीपर से आता है। अब जरा पिक्चर इमेजिन कीजिए, बॉल बॉलर के हाथ में, बैट्समैन क्रीज पर, स्लिप में फील्डर और पीछे किरमानी, हर डिलीवरी पर रेडी, कैच किरमानी, दूसरा एज किरमानी, फिर एक और चांस किरमानी, विकेट कीपर का नाम यही होता है। लेकिन जब कीपर कंसिस्टेंटली चांसेस कन्वर्ट करता है तो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कप्तान अटैकिंग फील्ड्स लगा सकता है और बल्लेबाज को पता होता है कि एक हल्का सा मिस सीधा ड्रेसिंग रूम पर, यानी विकेट कीपर सिर्फ विकेट के पीछे नहीं होता, वो पूरे बॉलिंग अटैक का क्लॉक एक्सटेंड होता है। और किरमानी ने 1983 में ये रोल खूबी। चलिए अब चलते हैं टनब्रिज वेल्स, जब किरमानी ने कपिल देव को सहारा दिया, एक मैच है और अब बात यह है 1983 की सबसे लेजेंडरी कहानियों में से एक, और ये मैच भी इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का था।

इंडिया बैटिंग कर रहा था और स्कोर बोर्ड 17 रन पर 5 विकेट, लोग घबरा गए थे ये हो क्या रहा है, 17 रन एंड 5 विकेट इंडिया और लेकिन जिम्बाब्वे ये कौन सी है भाई, अब क्या कोई एक छोटा मोटा, आई मीन इट्स नॉट अ कंटेंडर जिम्बाब्वे, सोचिए सेमीफाइनल की रेस और इंडिया 17-5, ऐसे वक्त में कोई भी टीम कोलैप्स कर सकती है, लेकिन क्रीज पर आए कप्तान कपिल देव और फिर जो हुआ वो क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। कपिल देव ने 175 नॉट आउट बनाए, उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन हम अक्सर एक नाम भूल जाते हैं दोस्तों, सैयद जुतबा हुसैन किरमानी क्रीज पर आए जब इंडिया ऑलरेडी डीप ट्रबल में था, कपिल देव ने अटैक का जिम्मा संभाला और किरमानी का काम क्या था, सिंपल स्टे देयर सपोर्ट कपिल, स्ट्राइक को रोटेट करो, रिस्क को कम करो और कप को बैटिंग करने दो। किरमानी ने खुद बाद में बताया कि उन्होंने कपिल से कहा था कि तुम अपना नेचुरल गेम खेलो, मैं दूसरी तरफ से मैक्सिमम सपोर्ट और स्ट्राइक दूंगा, और फिर इंडिया 17-5 रिकवर कर गया। कपिल देव 175 नॉट आउट रन्स और कपिल और किरमानी के दरमियान 126 रन की अनबीटन नाइन्थ विकेट पार्टनरशिप बनी, उस वक्त ये ओडीआई रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी। किरमानी 24 रन पर नॉट आउट और स्कोर इंडिया का रहा 266/8 और जिम्बाब्वे 235 ऑल आउट बहुत करीब इंडिया जीत गया, लेकिन 31 रन से सीधा मार्जिन। और अगर कपिल और किरमानी स्पेशली अगर वो सपोर्ट नहीं देते तो कपिल देव 175 रन कैसे बनाते और इंडिया को ये 266 रन कैसे मिलते। लेकिन इस मैच को अगर हम सिर्फ कपिल देव की 175 के तौर पर देखें तो कहानी अधूरी रह जाती है दोस्तों। कपिल ने इनिंग्स बनाई लेकिन किरमानी ने उस इनिंग्स को सपोर्ट दिया। और कभी कभी गेम चेंजर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, ठीक है ना, गेम चेंजर वो है जो सही वक्त पर सही रोल समझ लेता है। किरमानी ने वही किया, एक पार्टनरशिप जो नंबर से ज्यादा बड़ी थी। क्रिकेट में पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ रन नहीं होता, पार्टनरशिप का मतलब ट्रस्ट है। कपिल को पता था मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है जो पैनिक नहीं करेगा, किरमानी को पता था मेरा कप्तान अटैक करेगा, मुझे बस उनका साथ देना है, यही टीम क्रिकेट होते हैं दोस्तों। और जैसे किरमानी गेम चेंजर थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे हीरो बनना है, उनका फोकस था टीम को जीतना है, अगर कैचेस लेने हैं लो, अगर स्टंपिंग करनी है करो, अगर 100 बनाना है बनाओ, अगर 24 नॉट आउट रहकर कप्तान को 175 तक पहुंचना है वो भी करो, और यही उनकी ग्रेटनेस थी। फाइनल लॉर्ड्स में हुआ था 25 जून 1983 को और फिर वेस्ट इंडीज, एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियंस, दूसरी तरफ इंडिया, एक ऐसी इंडियन टीम जिसने ये टूर्नामेंट शुरू ही अंडर डॉग के तौर पर किया था। अब ट्रॉफी सामने थी, इंडिया ने बैटिंग की, स्कोरबोर्ड पर 183, आज के T20 जमाने में 183 कुछ नहीं लगता दोस्तों, लेकिन उस वक्त 60 ओवर वर्ल्ड कप में फाइनल वेस्ट इंडीज के बोलिंग अटैक से 183 डिफेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझा जा रहा था। इंडिया को फील्डिंग में परफेक्ट होना था और विकेटकीपर को बिल्कुल फ्लॉलेस। किरमानी के सामने वेस्ट इंडीज के डेंजरस बैट्समैन थे क्विनेज, हैंस, रिचर्ड्स, लॉयड, डुजों, और फिर वो मोमेंट आया विव रिचर्ड्स, वेस्ट इंडीज का सुपरस्टार, इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट। कपिल देव की तरफ से एक शॉट हवा में गया, कपिल ने पीछे भागकर कैच लिया, लेकिन उस इनिंग्स में विकेट कीपिंग का एक और इम्पोर्टेंट मोमेंट भी था, किरमानी ने फाउद बकास का कैच लिया और वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया की फील्डिंग और विकेट कीपिंग का प्रेशर बढ़ता गया। आखिरकार वेस्ट इंडीज की टीम 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और इंडिया बिकेम वर्ल्ड चैंपियंस और किरमानी टूर्नामेंट के बेस्ट विकेट कीपर। बीसीसीआई के मुताबिक 1983 वर्ल्ड कप में किरमानी को बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड मिला, यह अवार्ड एक सिल्वर ग्लव और सिल्वर बॉल से एसोसिएटेड था। सोचिए वर्ल्ड कप जीता और टूर्नामेंट का बेस्ट विकेट कीपर भी, ये सिर्फ मेडल नहीं था, ये रिकॉग्निशन था कि इंडिया के पास दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर्स में से एक था। लेकिन किरमानी सिर्फ 1983 नहीं थे, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, अगर हम किरमानी को सिर्फ 1983 वर्ल्ड कप से डिफाइन करेंगे तो हम उनकी लेगेसी को बहुत छोटा कर देंगे।

1983 उनकी कहानी का सबसे फेमस चैप्टर है, लेकिन पूरी किताब नहीं। उन्होंने इंडिया के लिए 88 टेस्ट मैचेस खेले और 49 ओडीआई मैचेस। टेस्ट में उनके नाम 2,759 रन्स, 2 सेंचुरीज, 160 कैचेस और 38 स्टंपिंग्स हैं। ओडीआईज में उन्होंने 27 कैचेस और 9 स्टंपिंग्स किए। लेकिन नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका एरा। वो एक ट्रांजिशन के दौर में इंडियन क्रिकेट का हिस्सा थे। पहले इंडिया की स्ट्रेंथ स्पिन थी, फिर कपिल देव की वजह से पेस बॉलिंग का ये नया चैप्टर शुरू हुआ और किरमानी ने दोनों एरर्स में कीपिंग की। ये कोई छोटी बात नहीं। आप स्पिन के सामने टेक्निक चेंज कर रहे हैं, पेस के स्टांस और पोजीशनिंग एडजस्ट कर रहे हैं, बॉल की स्पीड मुख्तलिफ, बाउंस मुख्तलिफ, रिएक्शन टाइम मुख्तलिफ, लेकिन स्टैंडर्ड सेम हाई। बीसीसीआई ने भी हाईलाइट किया कि जब इंडिया की फेमस स्पिन क्वार्टेट की जगह कपिल देव की लीडरशिप में सीम अटैक उभरने लगा, सैयद किरमानी ने अपने गेम को नए बॉलिंग अटैक के मुताबिक अडाप्ट किया। यही होता है दोस्तों गेम चेंजर, जो वक्त के साथ खुद को चेंज करे। किरमानी की एक और इनिंग्स या पार्टनरशिप अक्सर 1983 वजह से ओवरशैडो हो जाती है। 1983 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। सुनील गावस्कर, वेस्ट इंडीज, चेन्नई, गावस्कर ने 236 रन बनाए, वो भी अनबीटन यानी नॉट आउट रहे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टेस्ट सेंचुरी था, 30th सेंचुरी, और उनके साथ 9th विकेट पर सैयद किरमानी, दोनों 183 की अनबीटन पार्टनरशिप बनाई। अब जरा इमेजिन कीजिए, गावस्कर ऑलरेडी ग्रेट, वेस्ट इंडीज अटैक ऑलरेडी लेजेंडरी, और दूसरी तरफ लोअर बैटर और दूसरी तरफ लोअर ऑर्डर विकेटकीपर, लेकिन किरमानी क्रीज खड़े हैं, बॉल को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप को बिल्ड कर रहे हैं और गावस्कर को सपोर्ट दे रहे हैं। ये फिर वही फिलॉसफी है, टीम को जो चाहिए वो करो, आपको कभी स्टार बनना पड़ेगा, कभी सपोर्ट एक्ट, कभी क्राइसिस मैनेजर, कभी साइलेंट कंट्रीब्यूटर। किरमानी सब कुछ बन सकते थे। 1980 में इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस का प्रेशर आज से कम नहीं था। राइवलरी इंटेंस थी, हर रन इंपॉर्टेंट, हर विकेट इंपॉर्टेंट, हर विकेट कीपर हर बॉल का हिस्सा। पाकिस्तान के खिलाफ एक सीरीज में किरमानी ने 17 कैचेस और 2 स्टंपिंग्स किए, जो उस वक्त इंडिया के एक सीरीज में डिसमिसल्स के रिकॉर्ड को इक्वल करता था। ये नंबर्स बताते हैं कि वो कितने कंसिस्टेंट थे। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किरमानी दबाव से घबराते नहीं थे, उनका स्टाइल फ्लैम्बॉयंट नहीं था। वो ग्लव्स हवा में उठाकर शो नहीं करते थे, वो हर स्पोर्ट डिसमिसल के बाद थिएट्रिक्स नहीं करते थे, उनका काम था गेंद को पकड़ना और वो करते थे, बाखूबी किया, दिखाया। और यहाँ पे एक चीज बताऊं कि क्राइसिस मैन का मतलब क्या होता है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप किसी क्रिकेटर को गेम चेंजर कहना चाहेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए? क्या वो सिर्फ 100 बनाए या 5 विकेट्स ले या 5 कैचेस या मैच विनिंग 6? मेरे ख्याल में गेम चेंजर वो होता है जो मैच की डायरेक्शन बदल दे। किरमानी ने ये काम बार बार किया, कभी ग्लव से, कभी बैट से, कभी पार्टनरशिप से, कभी कम्युनिकेशन से, कभी प्रेशर एब्जॉर्ब करके, और कभी दूसरे खिलाड़ी को अपना बेस्ट परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस देकर। 1983 जिम्बाब्वे मैच इसी का परफेक्ट एग्जांपल है, कपिल याद रखती है, लेकिन किरमानी का रोल टैलेंट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल, इसीलिए उनकी कहानी हमें क्रिकेट का एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन दे रही है। हर चेंजर स्कोरबोर्ड पर सबसे ऊपर नहीं होता, कभी गेम चेंजर स्कोरबोर्ड के पीछे है, कभी ग्लव्स पहनने होता है, कभी 24 नॉट आउट होता है, और कभी सिर्फ एक कैच लेता है, लेकिन वो कैच मैच का रुख बदल देता है। तो फिर सैयद किरमानी ने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया? सबसे पहली चीज विकेट कीपिंग की क्रेडिबिलिटी। उन्होंने प्रूव किया कि विकेट कीपर स्पेशलिस्ट होता है, उनकी अपनी क्राफ्ट होती है, उनका अपना साइंस होता है, उनकी अपनी फिटनेस और टेक्निक होती है। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी। एक टेस्ट या एक वर्ल्ड कप मैच में अच्छा परफॉर्म करना एक बात है, एक डिकेड तक इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट के पीछे खड़े रहना वो बिल्कुल अलग लेवल है। तीसरी चीज एडेप्टेबिलिटी, स्पिन से पेस, सब कॉन्टिनेंट से ओवरसीज, टेस्ट क्रिकेट से ओडीआई क्रिकेट, किरमानी ने अपने गेम को एडजस्ट किया। चौथी चीज टेम्परमेंट, प्रेशर।

डिकेड्स बाद भी जारी रही और यही लेगेसी की निशानी है। करियर खत्म हो जाता है लेकिन इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होता। कटवाली ने क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी गेम से रिश्ता नहीं तोड़ा। वो कनाडा स्टेट एसोसिएशन से जुड़े सिलेक्शन रोल्स में आए, नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रहे, यानी उनका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस सिर्फ उनके ग्लव्स तक लिमिटेड नहीं था। वो गेम को दूसरे एंगल से भी समझते थे, प्लेयर के तौर पर, विकेटकीपर के तौर पर, टीम मेंबर के तौर पर और बाद में एडमिनिस्ट्रेटर और सेलेक्टर के तौर पर। ये एक और रीजन है कि उन्हें गेम चेंजर कहना बिल्कुल मुनासिब है। उन्होंने सिर्फ इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने उसको समझा भी। आज जब हम इंडियन विकेट कीपर्स की बात करते हैं तो नेचुरली नाम आता है एम एस धोनी, उनके बाद ऋषभ पंत, फिर के एल राहुल ने भी विकेट कीपिंग की, लेकिन इन सबसे पहले इंडिया में स्पेशलिस्ट विकेट कीपिंग के स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करने वालों में सैयद करमानी का नाम बहुत ऊपर आता है। धोनी का स्टाइल डिफरेंट था, पंत का स्टाइल डिफरेंट है, करमानी का स्टाइल अपनी जगह यूनिक था, लेकिन एक कॉमन थ्रेड है, इंडिया को विकेट कीपर पर ट्रस्ट करना।

0: विकेट कीपर टीम कमजोर नहीं होता है, वो टीम के इंजन का हिस्सा होता है। बॉलर को कॉन्फिडेंस चाहिए, कीपर दो। कैप्टन को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कीपर दो। बैट्समैन का एज, कीपर पकड़े। स्पिनर को स्टंपिंग चाहिए, कीपर करे। लोअर ऑर्डर को पार्टनरशिप चाहिए, कीपर बैटिंग करे, यानी विकेट कीपर टीम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों। और किरमा इस रोल के मास्टर थे। 1983 वर्ल्ड कप फाइनल, वेस्ट इंडीज बैटिंग, इंडिया के लिए हर विकेट प्राइसलेस और विकेट कीपर के ग्लव्स में हर चांस की कीमत ट्रॉफी के बराबर। किरमानी ने फाइनल में बकास का कैच पकड़ा और पूरे टूर्नामेंट में उनकी विकेट कीपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग रही कि उन्हें बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड मिला। लेकिन मेरी नजर में किरमानी का सबसे खूब एस्पेक्ट ये है कि उनकी ग्रेटनेस एक कैच में नहीं थी, वो हंड्रेड्स ऑफ ओवर्स में थी। हर विकेट के पीछे, हर प्रैक्टिस सेशन में, हर स्पिनर के सामने, हर एज पर, हर स्टंप का करीब, हर प्रेशर सिचुएशन में ग्रेटनेस रेपुटेशन से बनती है दोस्तों। और किरमानी ने रेपुटेशन को आर्ट बना दिया। क्रिकेट की दुनिया में कुछ प्लेयर्स स्पॉटलाइट को अट्रैक्ट करते हैं और कुछ प्लेयर्स स्पॉटलाइट को दूसरों पर शाइन करने देते हैं। किरमानी दूसरी कैटेगरी के थे। 1983 में कपिल देव का 175 सबसे बड़ा हेडलाइन बना। गावस्कर का नाम हमेशा हेडलाइंस में रहा। इंडिया की वर्ल्ड कप विक्ट्री में मोहिंदर अमन को ऑफ द मैच अवार्ड मिले, लेकिन किरमानी वो ग्लव्स के पीछे रहते थे और अपना काम करते थे। शायद इसी वजह से उनकी स्टोरी आज के फैंस के लिए उतनी फेमस नहीं, लेकिन क्रिकेट की हिस्ट्री में उनका फुटप्रिंट बहुत गहरा है। कुछ हीरो स्पॉटलाइट्स के पीछे खड़े होते हैं, कभी स्टंप्स के पीछे, कभी स्कोर कार्ड के नीचे, और कभी हिस्ट्री के उन पेजेस पर, इन्हें हम अक्सर जल्द से ही पलट देते हैं। लेकिन जब हम इंडियन क्रिकेट की असली फाउंडेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो सैयद किरमानी का नाम वहां जरूर मिलता है। और शायद इसीलिए सैयद किरमानी सिर्फ एक फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर नहीं, वो इंडियन क्रिकेट के जिंजर हैं। अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कैरेक्टर के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: गेम चेंजर सीजन 2।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
2: गुरु जेब में कितना भी पैसा हो, मोबाइल अगर कम चार्ज है 1% 2% है तो मसला हो सकता है अभी भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल आप सभी का। 6:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और ये शो
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजी
4: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: हाँ जी, दिल से देसी। और ये बात मैंने इसलिए कही है कि कल मेरे को सामना करना पड़ा भाई। वो तो कहो कि यार किस्मत अच्छी है तो बच गए, लेकिन बड़ी हालत खराब हो जाती है अगर मोबाइल कम चार्ज हो। आपके पास दुनिया का पैसा हो भाई, आजकल दौर ऐसा चेंज हुआ है कि दुनिया का पैसा हो लेकिन उसके बाद भी आप लाचार फील कर सकते हैं। आपके पास 100 रियाल हो, 200 रियाल हो, 1000 रियाल हो, लेकिन मोबाइल ही 1% पे हो तो आप क्या करेंगे? अरे नुकसान है भाई। आपके पास कार है तब भी नुकसान है, और नहीं है तो ज्यादा बड़ा नुकसान है। जैसे कल मेरे पास कार नहीं थी, मोबाइल 2% पे था, एकदम उसकी जान निकल रही थी, आत्मा निकलने को थी उसकी। कैब मैंने बुक करा ली थी, पैसे मेरे पास पूरे मुकम्मल थे, ऑफिस में लगा है ना ATM निकाल लिया था कल मैं लेकर आया था भाई। फिर मैंने पैसे निकाल तो लिए, अब मेरे पास पैसे भी हैं। मोबाइल जो है वो चार्ज सिर्फ 2% पे था जब मैंने कैब बुक करी। कैब को आने में 5 मिनट, और जिस कैब को मैंने बुक करी पहली, एक तो होता है कि कैब तुरंत मिल जाती है यहाँ पे, लेकिन कैब को बुक करने के बाद वो वाला कैब जो परेशान ना करे वो कैसे हो सकता है? 2% पे मोबाइल, जिस कैब को बुक करा वो आ नहीं रही, 5 मिनट 7 मिनट निकल गए, 1% पे आ गया। अब भाई साहब मेरी दो चीज लुब लुब कर रही है एक दिल और एक मेरे मोबाइल का बैटरी। भाई एकदम लुब लुब लुब चालू था, लुब लुबा रही थी उत्ते में जो है। मैंने उसको तुरंत कैंसिल करा जो 5 मिनट 10 मिनट लगा रही थी, फिर मैंने दूसरी बुक करी, दूसरी तुरंत बुक हो भी गई। अब 1% पे जब बुक कर रहे थे तो हालत खराब थी कि भाई अगर नहीं बुक होगी तो क्या करेंगे, मोबाइल अगर चार्जिंग ही खत्म हो गई तो क्या करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं भाई। वो जैसे ही बुक हुई दूसरी वाली कैब, मैंने उसका नंबर नोट किया अपने बुद्धि में, ऑब्वियसली अभी तक तो अपन मोबाइल में ही नोट्स बनाते थे। उसके बाद वो कैब वाला आया भाई, मेरी जान में जान आई। और फिर वो 1% सोचो कब तक चला होगा, ये अब आपको बताना है कि वो 1% कब तक चला कार में बैठने के बाद, ये अब आप बताइए। नंबर 666-22107, हालांकि ये सवाल नहीं है आज का, लेकिन फिर भी भाई मैं तो यही कहूंगा कि हमेशा मोबाइल चार्ज रखो, पैसे हो ना हो। कई बार तो अब इससे पहले वाली सिचुएशन में था कि पैसे नहीं है, कैश नहीं है, कैब में बैठे तो उसको फॉरन पे नहीं है उसके पास, उसको कैश ही चाहिए और कैश है नहीं, और जब कैश आ गया तो मोबाइल चार्ज नहीं। क्या जिंदगी है ऐसा क्यों लग रहा है कि कायनात मजे ले रही है मैं तो इतने मुश्किल से ढूंढ भी ना रहा हूं भाई कि जिस कायनात को आप दिल से ढूंढो वो कायनात पूरी मिलाने में लग जाए।

0: भाई मेरे को क्यों मिलाने में लग, मेरे को ऐसा लग रहा है निपटाने में लग रही कायनात। कोई नहीं, इंसान का मेन मकसद है जिंदा बचना, अपन जिंदा बच गए। बाकी इतना तो बताओ कि आपको क्या लगता है कार में बैठने के बाद मेरा मोबाइल कब तक जिंदा रहा होगा 1% के साथ। नंबर 666-2217।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: तो दोस्तों मैसेज जरा देख लें। सलाम वालेकुम, सलाम यूसुफ भाई कहते हैं और हैप्पी ट्यूसडे इवनिंग। हैप्पी ट्यूसडे इवनिंग, कहाँ थे बहुत दिनों बाद। फिर एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, फौरन बंद ही हुआ होगा? नहीं, फौरन ही तो बंद नहीं हुआ, ये वाली बात बता दी है। नाम क्या है? अजीज। अजीज भाई मैं आजीज हो गया हूँ अपने मोबाइल से यार, और अभी भी मालूम है कितना परसेंट है? 20%। अच्छा ये भी अभी 5-7 ही बचा होता, वो तो हमारे ऑफिस में अब्दुल्ला भाई हैं, अब्दुल्ला भाई ने चार्जर दे दिया। चार्जर देने के बाद इसकी जान में जान आई है भाई। मैं आजकल कुछ ज्यादा ही तूफानी कर रहा हूँ यार, या हो जा रहा है तूफानी अपने आप। इतना तो मैं तूफानी कर नहीं रहा हूँ जितना जिंदगी में तूफानी हो जा रहा है यार। क्या जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम, आपके मोबाइल घर जाने तक। क्या बात है, बिल्कुल सही भाई। वो 1% जिसपे मेरी लुब लुब कर रही थी, ये 1% भाई घर तक गया है मेरे। पूरी आंख खोली हुई थी, मैंने कहा अरे ये ऐसा क्यों लग रहा है कि सही में कायनात चिढ़ा ही रही है। मिलके भाई बहुत खेल हुआ हमारे साथ, लेकिन ठीक है, जिंदा बचना एक लौता काम है, जिंदा बच गया यही इंपॉर्टेंट है। यही थे फजील, आपको डेली सुन रहा हूँ लेकिन मैसेज के लिए टाइम नहीं था। ओके कोई बात नहीं यूसुफ भाई, फिलहाल आज के सवाल की तरफ आते हैं। सवाल क्या है?
3: मेरे सवाल का जवाब दो, दो ना।
0: हाँ जी, तो आज का सवाल बहुत ही चिल टाइप का है, ठीक है। मैंने सोचा यार ट्यूसडे का है वक्त, ऐसा ट्यूसडे सबसे बेकार दिन लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों। संडे सही लगता है, मंडे भी सही लगता है, ट्यूसडे से एक अलग। तो मैं कहा हल्ला जो है वो नहीं करेंगे, हल्लू हल्लू सवाल करेंगे। तो सवाल जो है वो अचीवमेंट को लेकर है। अच्छा एक तो होती है अचीवमेंट की, भाई मैंने बहुत को तो कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने जिंदगी में ऐसा कर लिया। अभी वो नहीं है आज का सवाल। आज का सवाल है कि ऐसी कोई अचीवमेंट जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप रिच हैं, आप वेल्दी हैं, ठीक है। अब वो सुकून को लेकर भी हो सकता है कि भाई मैं किसी ग्रुप का एडमिन बन गया हूं इसलिए मैं रिच मानता हूं अपने आप को। हाँ तो ये भी जवाब हो सकता है, ठीक है। रिच मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आपके पास लग्जरी है तो रिच है। अगर आप किसी ग्रुप के एडमिन हैं, अगर आपको लगता है बस यही तो रिचनेस है भाई, जब चाहूं किसी को मना कर सकता हूं, जब चाहूं ग्रुप में मैसेज जो डालने का ऑप्शन है उसे ऑफ कर सकता हूं, यही तो रिचनेस है, ठीक है, तो भी आप बता सकते हैं। उसके अलावा और क्या क्या छोटी छोटी वजहें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, नॉट अबाउट द अमाउंट। टुडे इज़ नॉट अबाउट द वेल्थ और लग्जरी, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी छोटी चीज़।

सुकून, पीस, पीसफुल, फूल नहीं, पीस आपको लगता है वो क्या है? ऐसी वो छोटी चीज क्या है जिसकी वजह से आपको सुकून मिलता है, पीस फील होता है, वो आपको बताना है. नंबर है 666-22-107, 666-22-107. फिलहाल 6:08 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और आपके मैसेज का इंतजार है. बाकी मैसेज तो आ रहे हैं. अलैकुम, 984 वाले भैया ने कॉल कर दी. पिछले एक हफ्ते से 984 वाले भैया को पता नहीं है कि कॉल किस नंबर पे करनी है, भूल जा रहे हैं क्या. कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77, 443-443-77. ये वाला नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं. बाकी एक मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, राशिद मियां क्या हाल चाल है? राशिद भाई ने कहा है, अच्छा ये एक्चुअली मेरे उसका मैसेज दिया उन्होंने. मैं वही कहूँ यार, ये सवाल का जवाब कैसे आ सकता है? इन्होंने कहा है कि भाई आपका मोबाइल 2 मिनट बाद मर गया होगा. नहीं भाई, जिंदा था, बता तो दिया मैं, घर तक जिंदा था यार. फिर एक बार तो इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि यार ये बस चल जाए चल जाए, फिर भाई हमारे उम्मीद पे घर तक खड़े उतरे हैं. ओके, अस्सलाम वालेकुम भाई, घर पे बैठ के डैश डैश ए, अच्छा चलो ओटीटी, घर पे बैठ के ओटीटी पर 3 घंटा लगातार सीजन देख सकता हूँ, यही है वेल्दीनेस. ओ वेल्दीनेस, ये भी तो एक लाइफ ही है भाई साहब. अगर आप घर पे बैठ के, काम का कोई चिंता नहीं है आपको, काम आए आए कोई बात नहीं यार, अपना काम है, जब होगा होगा, देखी जाएगी, और 2-3 घंटा बैठ के कोई सीरीज, कोई टीवी, कोई मूवी देख सकते हैं, इससे इससे अच्छा, इससे अच्छा भी कुछ ना कुछ तो होगा. अभी लिखेंगे लोग, कुछ ना कुछ तो लिखेंगे. फिर उसके बाद एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, बस अच्छा खाना मिल जाए उसी में खुशी खुशी जा मेरी तो, खुशी है मेरी तो. ठीक है, ये कौन भाई हैं? मुबशर मुबीन इनका नाम है, क्या बात है. ये देखो, मुझे लगता है ये एक और प्लस पॉइंट है, जहां पर आप आराम से बैठकर खाना खा लें. अब ये भी है कि अच्छा खाना मिल जाए, अगर आप खुद बना रहे हैं तब तो अच्छा खाना है, लेकिन बीवी बना रही तो फिर शक है. तो मेरे भाई तो मेरे को पता नहीं ना, वो तो फिर आप डिसाइड करेंगे. और फिर खुद से भी अगर खाना बना रहे तो क्या मालूम अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा है. लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है खाना खाते हुए तो लग्जरी है भाई, ये रिचनेस है. बट इन सब में अगर टॉप पे अगर रिचनेस की बात करी जाए तो ये टीवी वाली बात है कि घर पे बैठ के अगर हम 3 घंटा ओटीटी देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, सीजन कोई पूरा देख सकते हैं एक बार में, ये है वेल्दीनेस, ये है रिचनेस. रियाज अहमद कहते हैं, फजिल भाई मैं एक टाइम पर रिच होता हूँ जब मैं सोने लगता हूँ, बस फिर अपनी आई शुरू. ये लफ्ज थोड़ा हार्ड है लेकिन ठीक है, शुरू. बंगला गाड़ी सब खरीद कर सो जाता हूँ और सुबह उठकर फिर वही. अरे सपने, वाह वाह. लेकिन कुछ लोगों का सच में, मैं एक नाम तो नहीं लूंगा कौन, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे लोगों हमारे ऑफिस में भाई, उनके लिए नींद सबसे इंपॉर्टेंट है. मतलब उनका ऐसा है कि मेरा बच्चा रो रहा हो मेरे को ठेंगा फरक नहीं पड़ता. यार थोड़ा थोड़ा मैं भी वैसा हूँ, मेरे को नींद सबसे टॉप पे लगती है. नींद के बाद अगर कुछ आता है जिंदगी में तो वो खाना है, खेलना है ना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है. अगर मेरे साथ ऐसा हो कि खाना बहुत तगड़ा है, नींद आ रही है, तो मेरा होगा पहला नींद. मेरे साथ ऐसा हो कि भाई जो है किसी दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको आज तुम्हें दिन भर रात भर देखना है, और नींद, तो मेरा है कि यार नींद विथ नींद विद अलार्म. ठीक है, नींद विद अलार्म. फिर एक और ऑप्शन आता है जिसमें यह है कि एक बच्चा है बहुत ज्यादा रो रहा है, उसको अगर एक बार दूध पिलाओ तो लंबा सो जाएगा आराम से. लेकिन यह भी एक ऑप्शन है कि भाई दूध जो है हर 2-3 घंटे में पिलाना है बच्चे को, छोटा बच्चा 2-3 महीने का, ठीक है, उसको हर 2-3 घंटे में दूध पिलाना है. लेकिन मेरी नींद भी इंपॉर्टेंट है, बट एक बार अगर दूध पिलाने के बाद वो सो रहा है तो सोने दो. तो मेरा है कि भाई नींद टॉप पे, कि नींद ले लूंगा जब तक बच्चा नहीं चिल्ला रहा है तब तक नहीं उठाऊंगा बीच में, सो रहा है तो सोने दो बच्चों को. अरे फजील भाई बच्चा दुबला हो जाएगा, कोई बात नहीं, भूख लगी को खुद ही मांगेगा. अभी नींद इंपॉर्टेंट है बाबू. तो मेरा यह है कि नींद अपनी पूरी मुकम्मल होनी चाहिए. और रियाज भाई के हिसाब से मेरी और रियाज भाई की दोस्ती बड़ी गहरी हो सकती है. इनने क्योंकि लिखा है, मेरा रिश्ता तो भाई यही है कि सो जाऊं एक बार तो फिर शुरू हो जाता है. जो लफ्ज लिखा है मैं

बोलने में अच्छा नहीं लगेगा बस। भाई काफी प्लानिंग के बाद अब फैमिली के साथ रहना हो रहा है, मेरे लिए यही है वेल्दी कमी। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली में, कि आप 4 साल 5 साल रह रहे हो तन्हाई में, अकेलेपन में, दस्तरखान पे अकेले बैठकर खाना खाना, एक रूम में रहना, रात भर नींद नहीं आती थी भाई। हाँ वो अब, लेकिन आप फैमिली को बुलाने की जद्दोजहद करते हैं, बहुत कोशिशों के बाद वीज़ा लगता है, आप फ्लाइट टिकट कराते हैं, फिर जब जिस दिन आना होता है उस दिन की खुशी, फिर जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं, फैमिली पहुंच जाती है तो उनको लेने जाने की खुशी, घर आते हैं उनको घर में देखने की खुशी, आवाज़ की खुशी, साथ में बैठ के खाने की खुशी, इससे बढ़कर कोई वेल्दीनेस नहीं है, इससे बढ़कर कोई रिचनेस नहीं है। फिर उनके साथ शहर में घूमना, जो शहर जो जगह बोरिंग लगती है वो बोरिंग जगह भी अब नहीं लगती, क्योंकि अब फैमिली के साथ है वो जगह और खूबसूरत लगने लगती है। और ये बात मेरा दिल जो है इससे खुश हो जाता है कि यार अब आप फैमिली के साथ हैं ऐसे शहर में जहां पर आप काफ़ी लंबे वक्त तक अकेले रहे। और मानव ने ये बात कही है, मानव राव इनका नाम है, काफ़ी प्लानिंग के बाद अब फैमिली के साथ रहना, और मुझे इस बात का एहसास है, ये बड़ी चीज़ है। सर्वर भी के लाइफस्टाइल के बारे में बताएं। ये जो अभी कुछ देर पहले मैं लाइफस्टाइल बता रहा था ना कि नींद फिर खाना, सर्वर भाई का इम्पॉर्टेंट है खाना, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं सेकेंडरी। कि सरवर भाई को भयंकर नींद आ रही है लेकिन सामने खाना बढ़िया वाला है, पहले खाना, बहुत बेहतरीन दोस्त बैठे हुए हैं, हंसी मजाक हो रहा है लेकिन खाना भी है, दोस्त को हटाओ पहले खाना। बच्चा रो रहा है पहले उसको खाना देना है, लेकिन सरवर भाई को भी भूख लग रही है, पहले सरवर भाई का खाना। और मुझे लगता है कि सरवर भाई अपनी जगह सही है। अगर आप नहीं खुश है तो आप किसी को खुश कैसे रख पाएंगे, सिंपल सा है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ सोचना है यार। आप खुश नहीं तो छोड़ो, ऐसी जिंदगी है, ऐसी ऐसी जिंदगी में आग लगे। मैं सच में, मतलब अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है लेकिन फिर भी लोग आपसे कह रहे हैं भैया ऐसा है कि हमारी नींद पूरी हो जाए इसलिए तुम जगो, मेरा ठेंगा जगे भाई। फिलहाल हिमेश रेशमिया की आवाज में खूबसूरत से ट्रैक सुनते हैं। आपके लिए सवाल अभी भी जारी है, आपके लिए पैसे वैसे की बात नहीं हो रही आज, आपके लिए असल में रिचनेस क्या है, क्या अचीव किया है अभी तक या इन कुछ दिनों में जो आपको लगता है ये रिचनेस है। नॉट अबाउट द अमाउंट, नॉट अबाउट द कार, नॉट अबाउट द लग्जरी, ये आप हल्की बातें ऐसी जो आपके दिल के बड़े करीब है। नींद हो सकता है, खाना हो सकता है, घर हो सकता है, आप नया लिया हो, है ना, अब हो सकता है आप किसी अच्छी लोकेलिटी में रह रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप बताइए, नंबर है 666-22-107, 666-22-107।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
2: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
1: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
3: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर्स। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर, हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 PM हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
0: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
6: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। 6:26 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और अब वक्त आ गया है कि बाकी लोगों के मैसेज देखे जाएं। और अगर आपने अब भी ट्यून इन किया है तो आज का सवाल जो है वो बहुत ही आसान सा है, कोई भारी भरकम सवाल नहीं है। आप जिस चीज़ को रिचनेस समझते हैं उस पर है आज का सवाल।

मतलब ये पैसा, ये बंगला, ये गाड़ी, इन सब चीजों को हटा दिया जाए तो आपके लिए असली वेल्थ या सुकून या रिचनेस क्या है? ऐसी क्या अचीवमेंट हो आपकी जिसमें ऑब्वियसली गाड़ी, बंगला, मकान ये सब नहीं है लेकिन वो एक रिचनेस है, ठीक है? जैसे अभी तक मैंने कहा ना कि किसी का भी सुकून से बैठकर खाना खा लेना ये भी रिचनेस है, क्योंकि कई लोग भाग दौड़ में खाते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो वर्किंग हैं, अपना उसी कपड़े को पहन के, जो इवन डिलीवरी राइडर्स हैं वो उसी कपड़े को पहन कर किसी रेस्टोरेंट में जल्दी जल्दी खाना खाते हैं फिर नेक्स्ट डिलीवरी की तरफ भागते हैं, कुछ कैब ड्राइवर्स हैं जो कहीं पर रुकते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं फिर उसके बाद कस्टमर के लिए भागते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो घर से टिफिन लेकर जाते हैं ऑफिस में खाते हैं, रात हो जाती है रात में बाहर खाते हैं या फिर यू नो घर पर, ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए खाना सुकून से फैमिली के साथ बैठना, जैसे एक भाई थे उन्होंने कहा कि यार फैमिली को बड़ी जद्दोजहद के बाद अपने कतर में यहाँ पर बुलाया, फैमिली के साथ रह रहे हैं, ये एक तरह का मानव उनका नाम है, ये एक तरह का लग्जरी है, रिचनेस है। वैसे ही आपके लिए क्या रिचनेस है? नॉट अबाउट दी कार, बंगला, गाड़ी, ये सब नहीं। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और एक ये मैसेज किस भाई का सलाम लिखा है शाम साहब का, वालेकुम अस्सलाम। नसीम साहब कहते हैं फैमिली आने के एक वीक हैप्पी रहता है उसके बाद टेंशन शुरू हो जाती है ये नसीम भाई ने कहा है और इस पर जवाब हमें लगता है मानव भाई ही देंगे हाँ मतलब इस पर

मैं तो कुछ नहीं कर सकता, देखो ठीक है। उसके अलावा एक और ये भाई का मैसेज है, क्या नाम है इनका, ये है कि बैटरी 100% मतलब पैसे होने चाहिए। सही है मेरा भाई। अच्छा मतलब मोबाइल में बैटरी हो तो भी दिल जो है वो सुकून का रहता है। वैसे ये बात तो है यार, कल मेरे साथ जो हुआ है ना भाई, उसके हिसाब से तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि कल की अगर देखी जाए तो मेरी अमीरी, मेरी अचीवमेंट यही होती कि यार ये 10% होता, अगर वो 10% होता तो मेरे को सुकून मिलता, या कोई चार्जर मेरे को ला कर दे देता है। 1% में कल जो मेरी लुब हुई है ना भाई, वो मैं ही समझ सकता हूँ। खान साहब ने लिखा है, फॉर मी मेरे लिए है पैसा होना, बैटरी का 100% होना। अच्छा, ठंडी ठंडे मौसम में रहना, खाना पेट भर कर खाना, और यार ये सब जो आपने बताया ये तो कतर में सबके पास नहीं है। ठीक है, इनका कहना है दोस्तों कि जेब में पैसा, फोन 100%, ठंडी जगह पे रहना यानी कि ऑब्वियसली एसी वगैरह चलता रहे, पेट भरा रहे, पूरी नींद कंप्लीट हो, यही सबसे बड़ी चीज़ है, और सर पर लोन ना हो, और सुकून यही है भाई। देखो मेरा मानना है खान साहब कि सारी चीज़ें किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास जेब में पैसे हैं तो 100% बैटरी नहीं है। एक वक्त पे हो सकता है कि पैसे उसके जेब में हो और बैटरी पूरी हो, एसी में हो, खाना लेकिन फिर उसके पास नहीं रहेगा, पेट भरा नहीं रहेगा, या पूरी नींद नहीं हुई होगी। ये तो है, देखो मैं इस पर कहूँगा कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाएगा। फिर शोएब भाई ने तस्दीक कर दी है कि सरवर भाई भी अच्छे आदमी है। अरे तो मैंने कौन सा यार उनको, ये क्या माहौल में ऐसा तो नहीं चल रहा है सरवर भाई बुरे आदमी है, ऐसा नहीं है भाई। मतलब बताना पड़ रहा है। मोहसिन मोमिन इनका नाम है, सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई। मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, सोचा आज FM 107 के व्यूवर्स में बांट दूँ। आ जाओ दो दो EMI ले जाओ। अरे मेरा रिचनेस बहुत है ये तो, लेकिन बैंक की तरफ। रिचनेस भी है, लोन भी है, बस फर्क इतना है रिचनेस अकाउंट में नहीं, लोन बैंक अकाउंट में है। चलो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इस मैसेज के बाद भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर लाला दिल भेज दिया, दिल बड़ा है मोहसिन मोमिन साहब का। दिन पे दिन अगर बढ़ती चली जा रही है तो फिर तो मसला है, 2 EMI से 1 EMI पे आ जाओ मेरा भाई, वरना बहुत ज़्यादा ही वक्त हो जाएगा। फजील भाई तमाम लिसनर को और आपको सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फिर ये मैसेज है किस भाई का, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मत बोलो यार भाई, मैं एक राइडर हूँ, जिंदगी सर बहुत मसरूफ होती है, इसकी वजह से हमारा दिल बहुत टूटा हुआ है सर। मुझे बस घूमना अच्छा लगता है, भागना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, गेम्स वगैरह खेलना अच्छा लगता है, जिम करना मतलब बस गेम हो, इसलिए तो ये प्रसार नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता क्योंकि हम बहुत मशरूफ़ होते हैं, राइडर बहुत मशरूफ़ होता है, 17-15 घंटे ड्यूटी करनी होती है। ओके हाँ, वही मैं कहना कि यार ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, जहाँ पर अगर आप सुकून से बैठकर कभी कभार खाना खा लें वही आपके लिए बहुत रिचनेस होती है, फैमिली के साथ बैठकर एक दस्तरखान में खाना खा लें वो एक रिचनेस होती है, सुकून होता है। लेकिन इंशाल्लाह एक ना एक वक्त ज़रूर आएगा कि जहाँ पर आपको सुकून मिलेगा। फिर एक और मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई, बाकी सब छोड़ो, सीमेंट का क्या रेट चल रहा है आजकल। हुसैन भाई ठीक है, ये मजदूर वाली बात ना करो मेरा भाई, और हम तो वैसे भी मजदूर आदमी हैं, मिस्त्री थोड़ी हैं, हमें क्या मालूम, ठेकेदार थोड़ी हैं हम। अगर आपको कुछ पता हो तो बिल्कुल इत्तला करिए। बाकी अपने पास कोई काम नहीं है, लोग हैं जहाँ पर जिनके घरों में काम चल रहा है, मैं वो बता सकता हूँ। फजील मेरी बेटी एंजल, अल्लाह की रहमत, उसको देख के सारे गम सारे परेशानी ख़त्म हो जाती है। शाम को ऑफिस से घर आने के बाद घर एक टाइट हग करना तो सारे जहाँ का सुकून, सारे जहाँ के खुशियाँ माशाल्लाह ये मिलती हैं, ये मेरे लिए सारे दुनिया की वेल्थ है, क्या बात है। देखा, ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको इमोशन के साथ करने चाहिए, और इसमें यही है कि यार अगर किसी को गले लगा लेना, किसी ग्रुप का एडमिन होना, पेट भर के खा लेना, सुकून की नींद पूरी मुकम्मल, 10 घंटे की 8 घंटे की नींद पूरी हो जाए, यही रिचनेस है, यही वेल्दी पना है जो अपने को चाहिए भाई साहब। आगे लिखा है फजील, आपको तो पता ही होगा, आप भी तो अभी एक बेटी के फादर

मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी छोटी है, अभी थोड़ा बड़ी हो जाए तब इसकी बातें सुन के आपको भी ये महसूस कर, आप भी ये महसूस करेंगे, अरे नहीं हम महसूस करते हैं भाई, हमें ये एहसास होता भी है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि मुझे अभी तक जो फील हो रही है, सुबह उसकी आँख खुले और वो हंस कर ही आपको ग्रीट करे, 4 महीने की है लेकिन वो हंसती है, तो मेरे को ये लगता है कि हाँ चलो ठीक है। अपना वो नहीं होता ना कि अब्बा दूध पिला दो, सुबह 6 बजे ये नहीं होता भाई। और इससे खूबसूरत बात तो कोई हो ही नहीं सकती है कि आपकी नींद वो मुकम्मल होने दे रही है, 12 के बाद 9 बजे भाई, और वो भी ऐसे नहीं चिंगाड़ के उठ रही है, वो उनका ये है कि ठीक है जब ये माँ बाप उड़ जाएंगे तो देखी जाएगी, अभी अपना खेल लेते हैं, अभी उन्होंने दोनों हाथ से लड्डू बनाना सीखा है। अभी लड्डू बना रही है वो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते हुए एक और मैसेज है, नसीम भाई का मबरूक, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, वालेकुम अस्सलाम। नाम भाई ने लिखा नहीं है, मैं ऊपर देख लेता हूँ, ऊपर भी कहीं पर नाम तो नहीं लिखा है, फरीद हैदराबादी। ओके फरीद साहब, फिलहाल अब मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी मैसेज नहीं, अब दूसरे वाले मैसेज की तरफ आपको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि खत की तो बात है ही है, एक खत आपको लिखना है और ये खत होना चाहिए आपके उन सपनों को लेकर जिसे आप मुकम्मल होता देखना चाहते हैं, जैसे कि ये सारी बातें हुई ना, अगेन इसमें कोई पैसा कोई लग्जरी, जैसे कि भाई मेरे को कार लेनी है फलाने ब्रांड की या फिर बंगला या गाड़ी, ये सब नहीं होना चाहिए। एक सुकून की बात जो आपके लिए रिचनेस है और वो सपना है अभी आपका, वो क्या है? मेरा ये है, जिसमें थोड़ा तो जमीन की बात है, कि यार एक जो है ऐसी जगह हो, ऐसा घर हो जहाँ पर गार्डन हो, अब्बा अम्मा के साथ फैमिली के साथ बैठ के सुकून से चाय पिया जाए या बारबेक्यू हो, ये मेरा सपना है, अचीव हो सकता है और बहुत ही आसान है, बट ये होता नहीं, हो नहीं पाता यार। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कभी कोई नहीं है, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बात है, आप मुल्क में नहीं है, आप शहर में नहीं है, गर्मी बहुत हो रही है, ये सब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हो नहीं पाता कि बारबेक्यू कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, अपनी कोर फैमिली के साथ। वैसे तो दोस्तों यारों के साथ बहुत हो जाता है, लेकिन दोस्तों के साथ यारों के साथ ये कहीं और पर भी चल जाता है, बट फैमिली के साथ बैठ कर जिस घर में गार्डन हो, सुकून से चाय के साथ बारबेक्यू हो रहा हो, ये चाहिए, चाहिए अपने को। मेरा सुकून ये है, बाकी आप लिख सकते हैं डियर ड्रीम वट एवर, फिर आप बोल सकते हैं। और एक बड़े ही बेहतरीन शख्स ने ये बात कही भी है, लिखी भी है, कि जब भी आपको कुछ चाहिए ना तो लिखा करो, सोचा करो अपने बॉडी से, अपने मन से, अपने दिल से, उस पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात किया करो, तभी वो सच होती है। नेगेटिव मत सोचा करो और ना ही अपने आप से नेगेटिव बोला करो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उम्मीद है कि आपका मैसेज आएगा 666-22107 पे, एक खत 666-22107 पे, एक खत आपके उन ड्रीम्स के लिए जिनमें गाड़ी बंगला पैसा ये सब नहीं है, लेकिन वो ड्रीम ऐसा है जो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है काफ़ी लंबे वक्त से, बट आपके दिल में वो बसा बैठा है। अब वो नींद भी हो सकती है, वो सुकून से बैठ के चाय पीना, खाना खाना भी हो सकता है, सुकून से बैठ के एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। फिलहाल सोनू निगम की आवाज में एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं, वापस आते हैं कुछ ही देर में, दिल से देसी।

0: हाँ जी सड़ी गली आजा आयुष्मान खुराना की आवाज में ट्रैक सुना आपने एफएम 107 पे 6:44 हमारे स्टूडियो घड़ी में। अब मैसेज की तरफ आते हैं जल्दी से, और ये मैसेज है आपके अपने खत या कहें आपके अपनी वो सपने जिनको आप कन्फेस करना चाहते हैं, जिनको चाहते हैं मुकम्मल होता हुआ देखना, जिसमें लग्जरी तो बिल्कुल नहीं है लेकिन सुकून भरपूर है। सबसे पहला ये मैसेज बहुत लंबा है, बचपन से एक ख्वाहिश थी, अरबाज खान लिखते हैं, बचपन से मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग और फिट बनाऊंगा, इंशाल्लाह मैं जिम करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, रनिंग करूंगा, जंपिंग करूंगा और गेम्स भी खेलूंगा। आज शायद मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो मैं चाहता हूं, लेकिन मेरा ये ख्वाब अभी भी मेरे दिल में है। इंशाल्लाह एक दिन मैं अपनी मेहनत से ये सब हासिल करूंगा। मुझे पता है कि हर चीज़ टाइम और मेहनत से मिलती है, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त आए मैं हार नहीं मानूंगा। इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब मैं पीछे मुड़ कर देखूंगा और कहूंगा जो ख्वाब बचपन से देखा था आज मैंने उसे हासिल कर लिया। इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और अपनी बचपन की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूंगा। एक ऐसा शख्स जो आपने लिखा है ये बात, एक ऐसा शख्स जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल जगह से आता है या एक ऐसे जगह से आता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो और वो इस तरह के सपने देखे और मुकम्मल करने के लिए अपना शहर, अपना गांव, अपना घर छोड़े, तो इंशाल्लाह उसकी ये चाहत ज़रूर पूरी होगी और पूरी होती भी है। काफ़ी कुछ आपने देखा भी होगा अरबाज भाई कि कुछ ना कुछ धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिख रहा है, कई सपने पूरे हो भी रहे हैं और थोड़ा सा इंतज़ार और इंशाल्लाह ये भी जो है वो पूरा हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये पूरा हो। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। वालेकुम अस्सलाम एहसान नुबैद कुरैशी ने मुबारक लिखा, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, थैंक यू सो मच। फिर एक और भाई हैं अजीज़ लिखते हैं, डियर ड्रीम जो भी अच्छा देखता हूँ मुकम्मल हो जाया करो। ये तो धमकी है साफ साफ। नहीं ठीक है, सामने से धमकी भी चलेगा, मतलब आपकी अपनी इच्छा है भाई साहब। फिर एक और मैसेज है और लिखते हैं, सलाम वालेकुम अस्सलाम, मेरा सपना है फैमिली के साथ एक वैकेशन पे लेके जाऊं और वो ही सबसे अच्छा पल होगा। अरे यार ये वैकेशन वाला एक और भाई ने लिखा है, इनका नाम क्या है, अबरार इनका नाम है, ओके। एक और मैसेज है, अतीक इनका नाम है, ये भी हाँ इन्होंने लिखा था कि मैं सोचता था अपने सारे रिलेटिव और फैमिली के साथ बड़े बस में कहीं अच्छी जगह पे जाऊं, यानी कि वेकेशन वगैरह। अच्छा ये बड़ी अजीब बात है कि फैमिली के साथ और साथ ही साथ रिलेटिव को कौन ले जाना चाहता है भाई, ठीक है अच्छी बात है। फैमिली और रिलेटिव के साथ जाएं, लोकेशन पे जाना इतना नहीं है, इरादा नहीं है, सॉरी ओके, लोकेशन पे जाना इरादा नहीं है लेकिन जर्नी का मजा लेना और ये मैं अपने से करना चाहता हूँ। ओह नाइस, क्या बात है अतीक साहब, ये तो खुशी की बात है कि आप रिलेटिव के साथ सबको ले जाना चाहते हैं। और ये कभी कभार होता है जब बचपन में आपको सारे रिलेटिव अच्छे लग रहे होते हैं ना, दिल करता है कि सबके साथ एक साथ घूमने जाऊंगा, मजे करूंगा, दिल खुश होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, अजान की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे कुछ ही देर में और बाकी लोगों के मैसेज एफएम 107 पे, दिल से देसी।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: रोशनी। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगु सुनने के लिए समात कीजिए नूर इस्लाम। तर्तीबो पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल, जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर जो अक्सर हमारी नजरों से छुप जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सरवन मिर्जा और आज का हमारा टॉपिक है द साइड हसल माइंडसेट, पैशन, प्रोजेक्ट्स एंड पर्पस बियॉन्ड ऑफिस आवर्स। हम रोज ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, डेडलाइंस पूरी करते हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ अपनी जॉब में ही काम करते हैं? क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारी डेस्टिनेशन से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है? आज हम बात करेंगे उन ख्वाबों की, उन जुनूनों की, उन पैशंस की जो ऑफिस आवर्स के बाद जिंदा होते हैं, उन छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स की जो हमें महसूस करवाती हैं कि हम जिंदा हैं, क्रिएटिवली अलाइव हैं। आज का एपिसोड उन सब लोगों के नाम है जो रात को डायरी खोलकर आइडियाज लिखते हैं, जो वीकेंड पर अपने ख्वाबों की बुनियाद रखते हैं और जो कहते हैं मैं सिर्फ अपनी जॉब नहीं, मैं उससे ज्यादा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक मीनिंगफुल सफर के साथ। दोस्तों सवाल सीधा है, जरा सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो हम में से ज्यादा लोग जवाब देते हैं मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हम वाकई ये जानते हैं कि हम कौन हैं? हमारी सोसाइटी ने एक आदत बना ली है सेल्फ वर्थ को जॉब टाइटल से जोड़ने की। जैसे अगर टाइटल बड़ा हो तो इंसान बड़ा है, और अगर टाइटल छोटा हो तो इंसान की वैल्यू भी छोटी है। लेकिन असल बात ये नहीं है दोस्तों, इंसान की असली कीमत उस वक्त समझ आ जाती है जब वो अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए कुछ करता है, वो भी बिना किसी टाइटल के। मसलन एक ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटर जो सुबह 9 से 5 तक फाइल्स अरेंज करता है, मगर शाम को अपनी कॉलोनी के बच्चों को फ्री ट्यूशन देता है, क्या ये बंदा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है? बिल्कुल नहीं, ये एक टीचर भी है, एक मेंटर भी है, एक रोल मॉडल भी। एक सिक्योरिटी गार्ड जो रात भर ड्यूटी करता है मगर छुट्टी के दिन अपने मोबाइल से कुकिंग वीडियोस बनाता है, क्या ये सिर्फ गार्ड है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, शेफ बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हमारे असली रोल्स उन काम में छुपे होते हैं जो हम शौक से करते हैं। हमेशा याद रखिए, वैल्यू टाइटल से नहीं इम्पैक्ट से बनती है। सोसाइटी का एक मिसकंसेप्शन भी है कि अगर जॉब से पैसा नहीं आ रहा तो वो काम बेकार है, लेकिन साइड हसल काफी दफा बिना पैसों के

से शुरू होता है सिर्फ पैशन से और धीरे-धीरे वो लोगों की जिंदगी बदल देता है दोस्तों कुछ रोजमर्रा की जिंदगी के एक्शंस हैं जो काफी मैटर करते हैं भाई किसी का दिल रखना किसी को मोटिवेट करना किसी की मदद करना अपनी स्किल शेयर कर देना अपने बच्चों को डेली नए आइडियाज देना या बताना और वहीं अपनी फैमिली के लिए इमोशनल सपोर्ट बनना ये सब वैल्यू क्रिएशन है बिना डेजिग्नेशन के साथियों मीनिंगफुल जिंदगी टाइटल के बगैर भी गुजारी जा सकती है बस यही समझना बेहद जरूरी है आप अपने एक्शंस अपने जुनून अपने साइड प्रोजेक्ट से पहचान बनाते हैं टाइटल्स सिर्फ लेबल्स हैं

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन स्किल्स की, उन टैलेंट्स की और पैशंस की जो हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम सोचते ही नहीं। इससे क्या होगा, आखिर इसका फायदा क्या है? भाई टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन असल बात यह है कि हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ पोटेंशियल होता है। आइए दोस्तों, अब कुछ स्किल्स डिस्कवर करने की बात करते हैं बियॉन्ड आर वर्क। थोड़ा सा वक्त निकालिए और खुद से पूछिए, मुझे क्या चीजें नेचुरली अच्छी लगती हैं? भाई मैं किन एक्टिविटीज में टाइम का पता नहीं चलने देता? लोग मुझसे किस चीज की मदद मांगते हैं? आप हैरान हो जाएंगे। ज्यादा लोग अपनी बेस्ट स्किल्स को नॉर्मल चीज समझकर इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जो बंदा डिजाइन पसंद करता है वो कैनवस से फ्रीलांसिंग कर सकता है। जो कुकिंग पसंद करता है वो वीकेंड पर 5-10 क्लाइंट्स के लिए भाई फूड प्रिपेयर करके स्टार्ट कर सकता है एक छोटा सा काम। जो लोग फोटोग्राफी पसंद करते हैं वो इवेंट्स, प्रोडक्ट्स या फैमिलीज की शूट कर सकते हैं, why not? जो पब्लिक स्पीकिंग पसंद करते हैं भाई वो पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो दिन भर हम वो रील्स देखने में तो अपना वक्त गुजार देते हैं, लेकिन क्या हम खुद भी कर सकते हैं? अपने आप से कभी ये सवाल किया है? तो दोस्तों, अभी तक की बात से एक बात समझ में आ जाती है कि सक्सेस सिर्फ बड़ी सैलरी नहीं होती, सक्सेस अपने आप में स्किल को ग्रो करना है। क्या आपने अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखा है? आपने अपने आइडियाज को आवाज दी है? और क्या आपने अपनी आइडेंटिटी को जॉब से अलग पहचाना है? ये सारी चीजें, ये सवाल अपने आप से जरूर कीजिए। भाई कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह होता है, जितना यूज करेंगे उतना ही ग्रो होगा। छोटे से स्टार्ट करें, 10 मिनट्स डेली राइटिंग, 15 मिनट्स ऑफ डेली कोर्स, 20 मिनट डेली साइड प्रोजेक्ट्स वगैरह, यही आइंदा कल आपका बिजनेस, ब्रांड या पर्सनल आइडेंटिटी बन सकता है। भाई इस एरा का सबसे बड़ा चैलेंज है कंपैरिजन। सोशल मीडिया हमें लगातार बताता रहता है कोई और ज्यादा सक्सेसफुल है, कोई और ज्यादा टैलेंटेड है, कोई और ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन याद रखिए, कंपैरिजन किल्स क्रिएटिविटी। आपका सफर आपका है, बस एक रूल याद रखिए, प्रोग्रेस छोटी हो सकती है लेकिन रुकनी नहीं चाहिए। साइड हसल माइंडसेट का मतलब है इरादा मजबूत रखना, लर्निंग कंटिन्यू करना, फेलियर्स को फीडबैक समझना और प्रेशर को फ्यूल बनाना। रेजिलियंस तब बनती है जब आप हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हैं।

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: तो दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे कुछ सवालात कर लेता हूं या एक सवाल छोड़ देता हूं जाने से पहले, जो शायद आपके दिल के दरवाजे खोल देगा। आप कौन हैं जब जॉब टाइटल हट जाए? आप कौन सा काम शौक से कर सकते हैं, फ्री में भी कर लेते हैं? आप कौन सी एक्टिविटी करते वक्त खुद को जिंदा महसूस करते हैं? आप क्यों सोच रहे हैं कि स्टार्ट करना मुश्किल है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आज आपने स्टार्ट नहीं किया तो एक साल बाद आप कहाँ होंगे? जिंदगी का असल मजा तब आता है जब इंसान अपने आप को पहचानता है और फिर उस पहचान को दुनिया के साथ शेयर करता है। आपकी असली कीमत किसी डेजिग्नेशन, किसी सैलरी स्लिप, किसी विजिटिंग कार्ड से डिफाइन नहीं होती। आपकी वर्ड्स, आपके एक्शंस, आपके कैरेक्टर और आपके पैशन से डिफाइन होती है। आज रात जब आप सोएं तो सिर्फ एक सोच लेकर सोएं, मैं इस दुनिया में एक रोल प्ले करने आया हूं और वो रोल सिर्फ मेरी ही जॉब से नहीं होगा। आप क्रिएटर हो सकते हैं, थिंकर हो सकते हैं, ड्रीमर हो सकते हैं, और आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट छुपा है जो दुनिया को इंस्पायर कर सकता है। तो दोस्तों, एक बात क्लियर है, हमारी पहचान सिर्फ हमारी नौकरी नहीं, हमारी वर्थ हमारे जज्बात, एक्शन और रिलेशनशिप से डिफाइन होती है। अपने आप से ये सवाल पूछिए, मैं अपनी जिंदगी को किस तरह मीनिंगफुल बना रहा हूँ? आप जितने भी रोल्स प्ले करते हैं, घर पर, ऑफिस में, सोसाइटी में, सब इम्पोर्टेंट हैं। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी वैल्यूज को समझिए और अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। याद रखिए, आपकी ह्यूमन वर्थ किसी टाइटल से नहीं, आपकी इंसानियत से है। इसी के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

हुआ सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं वेल्थ मैनेजमेंट पे. पैसा कमाना जरूरी है या उसे संभालना जरूरी है. आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे. अक्सर लोग समझते हैं कि अमीर बनने का मतलब ज्यादा पैसे कमाना है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है. सवाल ये है कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है और क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, क्या हर शख्स के लिए होता है. तो चलिए पहले मैं आपको समझाती हूँ कि वेल्थ मैनेजमेंट है क्या. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसों को प्लानिंग के साथ मैनेज करना. यानी कितना पैसा कमाया, कितना पैसा सेव किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना पैसा फ्यूचर के लिए सिक्योर रखना है. अगर एक इनकम वेल्थ मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा. देखिए सिर्फ इनकम ही लोग समझते हैं कि बड़ी जरूरी है. बहुत से लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार रहते हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज इनकम के बावजूद भी फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं. फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो है वेल्थ मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट. अगर हर महीने जितना पैसा आए उतना खर्च हो जाए तो फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव नहीं होता. इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट का पहला कदम है बजटिंग. अब बजटिंग क्यों जरूरी है? देखिए हर महीने अपनी इनकम और एक्सपेंसेस लिखना एक बड़ी अच्छी हैबिट है. ये आपको बताती है कि पैसा कहाँ जा रहा है. देखिए इमरजेंसी फंड एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह होता है जो मुश्किल वक्त में मदद करता है. वहीं पर एक और सवाल है कि वेल्थ मैनेजमेंट और फ्यूचर गोल्स, इसमें कैसे तालमेल बैठाया जाए. हर इंसान की कुछ ड्रीम्स होते हैं. घर खरीदना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बच्चों की एजुकेशन है या फिर एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट है. ये गोल्स सिर्फ ख्वाहिशों से पूरे तो नहीं होंगे. इनके लिए प्लानिंग और डिसिप्लिन दोनों जरूरी है. तो वेल्थ मैनेजमेंट हमें अपने आज और कल दोनों को बैलेंस करना सिखाता है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैसों के बारे में हमारे डिसीजंस हमेशा लॉजिकल नहीं होते. कभी हम इमोशंस में आके शॉपिंग कर लेते हैं, कभी सोशल प्रेशर में आके, कभी अननेसेसरी चीजें खरीद लेते हैं खुद को खुश करने के लिए, कभी फ्यूचर के बारे में सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं. इसीलिए फाइनेंशियल सक्सेस का ताल्लुक सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि हैबिट्स और माइंडसेट से है. अब गुड वेल्थ मैनेजमेंट के फायदे क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे बड़ा फायदा है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है, फ्यूचर सिक्योर महसूस होता है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को आप आसानी से हैंडल कर पाते हैं, कई लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फैमिली के लिए स्टेबिलिटी पैदा होती है. और अगर वेल्थ मैनेजमेंट ना हो तो हर महीने पैसों की टेंशन हो सकती है, डेट बढ़ सकता है, इमरजेंसी में मुश्किल पैदा हो सकती है और फ्यूचर प्लानिंग कमजोर हो सकती है. इसीलिए पैसे कमाना अहम है लेकिन उसे समझदारी से मैनेज करना उससे भी ज्यादा अहम, कितना इम्पोर्टेंट है. तो बस आज हमने और आपने समझा कि वेल्थ मैनेजमेंट कितना जरूरी है, कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका गुड बैलेंस और इसके बीच गुड बैलेंस और इसका गुड चेक. दौलत सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आप कितना कमाते हैं. असल दौलत ये है कि आप जो कमाते हैं उसे कितना समझदारी से मैनेज करते हैं. तो वेल्थ मैनेजमेंट हमें पैसों का गुलाम नहीं बल्कि उसका बेहतर मैनेजर बनाता है. तो क्या आप एक बेहतर मैनेजर हैं अपने वेल्थ के? बताइएगा मुझे जरूर 666-22-107 पर. फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए

स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज मैं आपसे मुलाकात करता हूं और बताता हूं कि कैसे आप नए जमाने के नए फ्रॉड और स्कैम से बच सकते हैं। आज जिस स्कैम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है द फेक इन्फ्लुएंसर इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर स्कैम। क्या है ये स्कैम, कैसे काम करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते यूज के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के जो तरीके हैं वो भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। इस नए तरीके के फ्रॉड में स्कैमर्स बहुत ही हाई क्वालिटी और असली दिखने वाली फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं। ये प्रोफाइल्स ऐसी दिखाई जाती हैं जैसे कि वो किसी बहुत ही मशहूर लोकल इन्फ्लुएंसर की हो। मिसाल के तौर पे आपके सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा शख्स आएगा और आप उसको जानते होंगे, या फिर उसके चेहरे का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड में किसी वॉइस का इस्तेमाल कर लिया हो या AI क्लोन बना लिया हो, तो ऐसे में आपके प्रोफाइल पे ये आते हैं, आपकी फीड पे ये आते हैं। और फिर जब आप इनके प्रोफाइल को चेक भी करते हैं, इनके पास हजारों के नंबर्स में एक्टिव फॉलोअर्स होते हैं। इन फेक अकाउंट्स का यूज करके फ्रॉडस्टर्स एक्चुअली लोकल एरिया के छोटे और बड़े अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर्स करने वाले बिजनेसमैन को टारगेट करते हैं। वो इन बिजनेसेस ओनर्स को कॉन्टेक्ट करते हैं और उन्हें एक अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं। स्कैमर्स उनसे कहते हैं कि अगर वो उन्हें कुछ पैसे देंगे तो वो उनकी टेलीविजन रिपेयर, एयर कंडीशनर रिपेयर या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को अपने हजारों फॉलोअर्स के सामने प्रमोट करेंगे, जिससे उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। छोटे बिजनेसेस ओनर्स जो हैं वो अपना काम बढ़ाने और ज्यादा कस्टमर्स पाने के लालच में इनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन इस स्कीम का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब बिजनेस ओनर उन्हें अपफ्रंट प्रमोशनल फी यानी कि एडवांस पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही स्कैमर्स के पास पैसा पहुंचता है वो इन्फ्लुएंसर अकाउंट या तो रातों रात डिलीट कर देता है या फिर वो बिजनेस ओनर के प्रोफाइल को हर जगह से ब्लॉक कर देता है, जिससे उनका पैसा पूरी तरह डूब जाता है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन है, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपसे एडवांस पेमेंट के लिए कहा जाता है बगैर आपसे मुलाकात किए। और कई बार जब आप प्रोफाइल चेक करते हैं तो प्रोफाइल चेक करते हुए जब आप उनके फॉलोवर्स को देखते हैं, उनके फ्रेंड्स को देखते हैं, उसमें अच्छा खासा नंबर होता है। लेकिन यहां पर है असली बात, आमतौर पर

लोग अपने प्रोफाइल पे बॉट फॉलोअर खरीद लेते हैं, यानी कि बॉट जो भी रोबोट जैसे होता है वैसे ही बॉट फॉलोअर्स होते हैं जो किसी भी प्रोफाइल को फॉलो करते हैं, और ऐसे लाखों बॉट प्रोफाइल को फॉलो करते हैं, उसमें हजारों लाखों नंबर दिखते हैं और आप उन पर भरोसा कर लेते हैं। कई बार लाइक और कॉमेंट भी फेक होते हैं, उनको भी खरीदा जा सकता है थोड़े पैसे खर्च कर, या आपके भी फॉलोअर लेकिन एज अ बॉट बढ़ जाते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है इस पर अगर नजर डालें तो सबसे पहला और जरूरी कदम यह है कि किसी भी इन्फ्लुएंसर को कभी भी पेमेंट करने से पहले उन्हें बहुत ही तरीके से वेरीफाई करें। बिजनेस ओनर्स को इंटरनेट पर अवेलेबल इंडिपेंडेंट एनालिटिक्स टूल का यूज करना चाहिए। इन टूल्स की मदद से वो उस इन्फ्लुएंसर के रियल एंगेजमेंट रेट्स को इजीली चेक कर सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनके फॉलोअर्स असली हैं या फेक हैं। इसके साथ ही उन्हें उनके फॉलोअर काउंट की हिस्ट्री को भी एनालाइज करना चाहिए। अगर फॉलोअर काउंट्स में सडन जंप्स आ रहे हैं तो ये साफ इशारा है कि वो फॉलोअर्स रियल नहीं है बल्कि पेड बॉट्स हैं। इसके अलावा कभी भी सिर्फ फोन पर या चैट पर डील फिक्स ना करें, हमेशा एक फॉर्मल और लीगली साइन कॉन्ट्रैक्ट पर इंसिस्ट करें जिसमें दोनों तरफ से सारी डिलीवरेबल्स और टर्म्स साफ साफ आउटलाइन की गई हो। सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी डायरेक्ट वायर ट्रांसफर, बैंक अकाउंट ट्रांसफर या कैश में एडवांस पेमेंट ना करें। हमेशा ऐसे सिक्योर पेमेंट प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज करें जिसमें बायर प्रोटेक्शन फीचर अवेलेबल हो, ताकि अगर कोई फ्रॉड हो भी तो आप अपना पैसा क्लेम करके वापस पा सकें। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का फ्रॉड अवेयरनेस का प्रोग्राम, जहां पर आपको उम्मीदन इसका सॉल्यूशन भी मिल गया है और किस तरीके से नए लोग नए जमाने में आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते हैं FM 107, दिल से देसी स्कैम अलर्ट।

अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आपकी सेहत बेहद अहम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू की जिसका ताल्लुक हम सबकी रोजमर्रा जिंदगी से है और वो है हमारा निज़ाम-ए-निज़ाम यानी डाइजेशन। हम खाना खाते हैं लेकिन अक्सर ये नहीं सोचते कि हमारे जिस्म के अंदर ये खाना किस तरह डाइजेस्ट

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों फार्मूला 1 की दुनिया में कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जिनका करियर शायद बहुत छोटा हो, लेकिन उनकी कहानी मोटर स्पोर्ट की तारीख में हमेशा जिंदा रहती है। आज हम बात करेंगे फ्रांस के एक ऐसे ही टैलेंटेड ड्राइवर जूल्स बियांची की, जिनका नाम फॉर्मूला 1 में टैलेंट, हिम्मत और एक अधूरी रह जाने वाली कहानी के तौर पर याद किया जाता है। फ्रांस के नीस शहर में बियांची की पैदाइश 3 अगस्त 1989 को होता है और उनका मोटर स्पोर्ट्स से रिश्ता बहुत कम उम्र में शुरू हो गया था। बियांची ने सिर्फ 3 साल की उम्र में कार्टिंग शुरू की थी। धीरे धीरे उन्होंने जूनियर कैटेगरीज में अपनी स्पीड और ड्राइविंग एबिलिटी का सबूत दिया। फॉर्मूला रेनो और फॉर्मूला 3 में उनकी परफॉर्मेंसेस ने मोटर स्पोर्ट के एक्सपर्ट्स की तवज्जो हासिल की। बियांची की तरक्की का एक अहम मोड़ 2009 में आया जब वो फरारी ड्राइवर अकेडमी के पहले मेंबर बने। फरारी ने उनमें फॉर्मूला 1 का पोटेंशियल देखा था और इसके बाद उन्होंने GP2 सीरीज में भी रेस की और फॉर्मूला 1 तक पहुंचने का रास्ता बनाया। सन 2013 में बियांची ने मारुसिया के साथ फॉर्मूला 1 डेब्यू किया। टीम ग्रिड पर सबसे कॉम्पिटिटिव टीम्स में शामिल नहीं थी, लेकिन बियांची ने अपनी ड्राइविंग से सबको मुतासिर किया। उनका सबसे यादगार फॉर्मूला 1 रिजल्ट सन 2014 मोनाको ग्रैंड प्री में आया। मोंटे कार्लो की तंग और मुश्किल स्ट्रीट्स पर बियांची ने एक जबरदस्त रेस ड्राइव करते हुए 9th पोजीशन हासिल की। इस नतीजे के साथ उन्होंने ना सिर्फ अपने करियर के पहले फॉर्मूला 1 पॉइंट्स हासिल किए, बल्कि मारुसिया के लिए भी टीम हिस्ट्री के पहले चैंपियनशिप पॉइंट्स स्कोर किए। ये रिजल्ट इसलिए भी खास था क्योंकि मोनाको ग्रैंड प्री वो रेस थी जिसे बियांची बचपन से देखते आए थे। उन्होंने बताया था कि जब वो तकरीबन 5 साल के थे तब उन्होंने पहली मर्तबा मोनाको ग्रैंड प्री को ट्रैक साइड से देखा था। उनके बचपन के हीरो माइकल शुमाकर थे। फरारी के साथ उनका कनेक्शन भी मजबूत होता जाता रहा। 2014 में बियांची को फरारी फॉर्मूला 1 कार टेस्ट करने का मौका मिला। सिल्वरस्टोन टेस्ट में उन्होंने फरारी के लिए ड्राइविंग की और उनका लॉन्ग टर्म टारगेट स्कुडेरिया फरारी की परमानेंट रेस सीट हासिल करना था। लेकिन फिर अक्टूबर 2014 में सुजुका, यानी जापान के शहर सुजुका में वो हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी और फॉर्मूला 1 की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जापानीज ग्रैंड प्री के दौरान तेज बारिश हो रही थी। ट्रैक पर रिकवरी व्हीकल मौजूद था जो एड्रियन सुतील की डैमेज सोबर को हटा रहा था। बियांची की मारुसिया वेट कंडीशंस में कंट्रोल से बाहर हुई और रिकवरी व्हीकल से टकरा गई। उन्हें सीवियर हेड इंजरी हो गई और सर्जरी के बाद वो इंटेंसिव केयर में रहे। बियांची कई महीने तक इस चोट के बाद ट्रीटमेंट में रहे। नवंबर 2014 में उन्हें जापान से फ्रांस ट्रांसफर किया गया। वो आर्टिफिशियल कोमा से बाहर आ गए थे, लेकिन उनकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्रिटिकल थी। 17 जुलाई 2015 को सिर्फ 25 साल की उम्र में जूल्स बियांची इस दुनिया को छोड़ गए। फॉर्मूला 1 ने एक ऐसे ड्राइवर को खो दिया जिसे फरारी और मोटरस्पोर्ट कम्युनिटी के एक बहुत टैलेंटेड फ्यूचर स्टार के तौर पर देखती थी। जूल्स बियांची का फॉर्मूला 1 करियर सिर्फ 2 सीजन तक रहा दोस्तों, लेकिन मोनाको में उनका 9th प्लेस फिनिश और मारुसिया के लिए पहले पॉइंट्स उनकी लेगेसी का अहम हिस्सा बन गए। दोस्तों बियांची की कहानी हमें याद दिलाती है कि मोटरस्पोर्ट सिर्फ स्पीड और ट्रॉफीज का नाम नहीं, इसमें करेज, ख्वाब और सैक्रिफाइस भी शामिल है। जूल्स बियांची एक ऐसा नाम जिसका फॉर्मूला 1 सफर छोटा था, लेकिन जिसकी याद मोटरस्पोर्ट की दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगी। अगले हफ्ते एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। बात करेंगे कतर की उन मिठाइयों की जो छोटी सी खुशी, मेहमान नवाजी और खास मौकों को और भी यादगार बना देती हैं। कतरी मिठाइयाँ सिर्फ चीनी और जायके का नाम नहीं, इनमें खजूर, साफरान, इलायची, शहद, गुलाब के पानी और आटे जैसे सादा अज्जा शामिल होते हैं। ये चीजें कतर के माहौल, पुराने तिजारती रवाबित और घरेलू पकवान की रिवायत की अक्स हैं। कतर के रिवायती डेजर्ट्स में लुकिमात को बहुत खास मकाम हासिल है। नाम का मतलब ही छोटे छोटे लुकमे, ये मैदे के नरम बैटर से बनाए जाने वाले गोल पकौड़ियों की तरह होते हैं। इन्हें तेल में तलकर सुनहरी रंग दिया जाता है और फिर खजूर के शीरे, चीनी के शरबत या फिर शहद से मीठा किया जाता है। बाहर से हल्की सी खस्ता और अंदर से नरम लुकिमात गरम चाय या अरबी कहवे के साथ बहुत पसंद किए जाते हैं। लुकिमात की कामयाबी का राज इसके तवाज़ुन में है। अगर तेल ज्यादा गर्म हो तो बाहर का रंग जल्दी बदल सकता है और अंदर का हिस्सा मुकम्मल नहीं पकता। अगर तेल कम गर्म हो तो लुकिमात ज्यादा चर्बी जज्ब कर सकती है, इसीलिए ये छोटी सी मिठाई बनाने में भी तजुर्बे और तवज्जो की जरूरत होती है। रमजान में लुकिमात की खुशबू अक्सर शाम के वक्त गलियों और घरों तक पहुंचती है। रोजा खोलने के बाद घर वाले और मेहमान इसे चाय के साथ खाते हैं। फैमिली गैदरिंग्स में इसे पेश करना मेहमान की तवज्जो और इज्जत का एक खूबसूरत तरीका समझा जाता है। एक और पुराना डेजर्ट है खपीसा। ये आमतौर पर भुने हुए आटे, खजूर, मक्खन या घी और खुशबूदार मसालों से तैयार किया जाता है। इसके बुनियादी जो अज्जा हैं वो सादे हैं, लेकिन खजूर और मसालों की वजह से इसमें गहरा जायका पैदा होता है। खबीसा पुराने सफर, घरेलू जखीरे और मकामी वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने की रवायत को जाहिर करता है। कतरी मिठाइयों में खजूर का किरदार बहुत अहम। सहरा और गल्फ की जिंदगी में खजूर गजाइत, सहूलत और मेहमान नवाजी की अलामत रही है। खजूर को सीधा पेश किया जा सकता है या फिर इसे हलवे, केक, मिठाई या फिर भरे हुए खजूरों की सूरत में दिया जा सकता है। खजूर का मीठा जायका कहवे के हल्के कड़वेपन के साथ एक दिलकश तवाजुन पैदा करता है। ज़ाफ़रान, इलायची और गुलाब का पानी भी कतरी मिठाइयों में खुशबू और शनाख्त पैदा करते हैं। साफरान के सुनहरे रंग से मिठाइयाँ दिलकश नजर आती हैं, जबकि इलायची गरम और कहवे से मिलती जुलती खुशबू देती है। गुलाब का पानी मिठास में एक नरम और ताजगी का एहसास शामिल कर देता है। रिवायती मिठाइयाँ अक्सर छोटे बर्तन या प्लेट में पेश की जाती हैं। मकसद ये होता है कि मेहमान आसानी से ले सके और मेजबान

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ रहिए अपडेटेड सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का मेरा नाम है फजील और ये शो है कतर 2026 क्या हाल चाल है दोस्तों और इस शो में जहां पर आपको हर एक चीज हर एक इवेंट हर एक एग्जीबिशन अनाउंसमेंट कतर का फ्यूचर क्या है उन सब के बारे में पता चलता है चाहे वो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट को लेकर बात हो चाहे वो यू नो वीकेंड में क्या कुछ हो रहा है मॉल्स में क्या एक्टिवेशंस है सारी डिटेल्स आपको इस शो में पता चलती है जिसका नाम है कतर 2026 तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर अनाउंसमेंट के बारे में कि कतर में कतर टूरिज्म और विजिट कतर ने ऑफिशियली क्या अनाउंस किया है और फिर कतर में होने वाले या आने वाले इवेंट्स के बारे में क्योंकि ये जो अक्टूबर का महीना है ये सबसे बेस्ट होने वाला है इसके दो वजह हैं एक तो यार देखो मौसम बहुत ही लाजवाब होगा और हल्की यू नो ठंडे मौसम में आप बाहर निकले और फिर दूसरा इवेंट्स ऐसे ऐसे इवेंट्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में होते हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है और हॉस्पिटैलिटी कतर की तो लाजवाब है ही है फिर उसके बाद वीकेंड के अट्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे कतर स्टार्स लीग होने वाला है उसमें क्या कुछ होगा इस पर भी हम यू नो राबता करेंगे बात करेंगे और फिर कतर की न्यू ओपनिंग्स के साथ साथ हम बात करेंगे कॉन्सर्ट के बारे में म्यूजिक लवर्स के लिए भी तो कुछ खास होना चाहिए और फिर मॉल एक्टिवेशन से लेकर हम बात करेंगे एग्जीबिशन सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के बारे में तो सबसे पहले मेजर अनाउंसमेंट कतर का क्या है उस पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों कतर टूरिज्म और विजिट कतर ने ऑफिशियली अपना नया कतर कैलेंडर 2026-27 नेशनल प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है इस नए प्रोग्राम का मकसद कंट्री के एंटरटेनमेंट कल्चरल और स्पोर्ट्स सेक्टर्स को बड़े लेवल पर एक्सपेंड करना है ये पूरे देश के टूरिज्म को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए एक बड़ा कदम इस अनाउंसमेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि अब बड़े और फेमस फेस्टिवल को कैपिटल सिटी यानी कि दोहा से बाहर शिफ्ट और एक्सपेंड किया जा रहा क्योंकि अभी तक जितने भी इवेंट्स होते थे मेनली फोकस होता था दोहा लेकिन अब दोहा से बाहर भी होगा सो दोहा के बाहर जो अलकोर में रह रहे हैं या फिर यू नो थोड़े दूर दराज इलाके में रह रहे मेन शहर में नहीं रह रहे हैं उनके लिए भी काफी कुछ है ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कतर के अलग अलग रीजन की यूनिक आइडेंटिटी है उनके कल्चर को सेलिब्रेट किया जा रहा है और पूरी कंट्री में रौनक हो इसलिए भी और इस नए प्लान के मुताबिक मशहूर कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल भी आ रहा है इस पर भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस बार का कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल लुसेल सिटी के वाटर फ्रंट पर एक ग्रैंड तरीके से वापस लौट रहा है इसके अलावा विंटर एक्टिवेशंस के लिए भी नए लोकेशन सेलेक्ट किए गए हैं वेस्टर्न कतर के रग्ड लैंड्स के ब्रूक में इको टूरिज्म इवेंट्स होंगे और इसके साथ ही लोगों के लिए काफी अवेटेड दोहा आउटडोर्स सीजनल फ्रेमवर्क भी शुरू किया जाएगा इन सभी बदलावों और एक्सपेंशंस को आसान बनाने के लिए अथॉरिटीज ने एक यूनिफाइड डिजिटल टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ये एक सिंगल नेशनल पोर्टल है जहां से सिटीजंस रेसिडेंट्स और इंटरनेशनल टूरिस्ट किसी भी इवेंट के पासेस और टिकट्स को आसानी से ढूंढ सकेंगे और खरीद सकेंगे ये डिजिटल इंटीग्रेशन कतर के एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेवल ईयर के बाद किया गया है जो आने वाले ऑटम और विंटर टूरिज्म सीजन के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करेगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं आने वाले इवेंट के बारे में जिस पर बहुत ज्यादा एक्चुअली बात हो रही है वो है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर और कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में मिड अक्टूबर से बड़े इंटरनेशनल एग्जीबिशन और हाई प्रोफाइल कन्वेंशन जो शुरू होने वाले हैं उनके बारे में हॉस्पिटैलिटी कतर 2026 और फूड कतर 2026 ये दोनों इवेंट्स DECC में एक साथ चलेंगे जो फूड बेवरेजेस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के टॉप ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स और कलिनरी इनोवेटर्स को बिजनेस डील्स के लिए एक साथ लाएंगे मिलिपोल कतर 2026 ये ग्लोबल इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी एग्जीबिशन है जो अक्टूबर 20 से 22 तक चलेगा फिर सिटीस्केप कतर रियल स्टेट एंथुजियास्ट के लिए ये बड़ा इवेंट अक्टूबर 27 को DECC में ओपन होगा। इसमें थोड़ा अभी वक्त है, और भी काफी इवेंट्स हैं जिसके बारे में आपको वक्त के साथ पता चलेगा, क्योंकि कई इवेंट्स लेट अक्टूबर में शुरू हो रहे हैं। इसी के साथ अगर हम वीकेंड के अट्रैक्शन के बारे में बात करें, तो इस 8 अक्टूबर यानी कि थर्सडे के दिन कतर में वीकेंड लेजर एक्टिविटीज की एक शानदार और एक्शन पैक्ड शुरुआत हो रही है, जिसमें स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट और आउटडोर अट्रैक्शंस दोनों शामिल हैं। फुटबॉल लवर्स के लिए पूरे देश के अलग अलग स्टेडियम अरीनाज में शाम 5 से कतर स्टार्स लीग के मैचेस एक साथ शुरू हो रहे हैं। इस स्पोर्ट्स लाइनअप में सबसे बड़ा और आइकॉनिक मैच कतर स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस अल रयान स्पोर्ट्स क्लब के बीच सेंट्रल दोहा के सुहेम बिन हमद स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, जहां लोकल सपोर्टर्स के लिए एकदम इंटेंस और एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। जो फैमिलीज सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट के पास रहती है, उनके लिए अल शाहानिया वर्सेस लुसेल स्पोर्ट्स क्लब का गेम अल रयान के हिस्टोरिक अहमद बिन अली स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके अलावा तीसरे एलीट फेस ऑफ यानी कि अल अहली दोहा वर्सेस अल सैलिया स्पोर्ट्स क्लब के बीच जो मैच होगा वो होगा हमद बिन खलीफा स्टेडियम में, जो कि बड़ा ही लाजवाब होने वाला, और ये कांटे की टक्कर आपको जरूर देखना चाहिए। ये सभी टिकेटेड और फैमिली फ्रेंडली आउटडोर स्टेडियम स्पेक्टेकल्स लोगों के लिए एक परफेक्ट वीकेंड आउटिंग का ऑप्शन बनने वाले हैं। स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स के अलावा जो फैमिलीज एक रिलैक्स्ड और सुकून भरी शाम बिताना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी ऑप्शंस हैं। लोग ओल्ड दोहा पोर्ट लुसेल बुलेवार्ड के नए अपग्रेडेड ओपन एयर प्रोमेनेड्स में जा सकते हैं, वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा सुहाना जो वेदर है उसका भी मजा ले सकते हैं। सीजनल पॉपअप मार्केट्स, इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट, इंस्टॉलमेंट्स, लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, बहुत कुछ होने वाला है। ये सारी डिटेल्स आपको यही कतर 2026 में मिलती रहेंगी। और भाई, जब इतनी सारी चीजों के बारे में बात हो रही है, तो कतर के कमर्शियल लैंडस्केप में इस महीने बड़े लेवल पर इंस्टीट्यूशनल और रिटेल सेक्टर की न्यू ओपनिंग्स के बारे में भी बात होनी चाहिए। नया कुछ क्या है कतर में? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से देखा जाए तो मिनिस्ट्री ने अपना आने वाला पब्लिक ऑक्शन फ्रेमवर्क ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। इसके तहत अक्टूबर 4, 2026 से एक बड़ा 2 वीक पब्लिक बिडिंग इवेंट शुरू होने जा रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें न्यू ओपनिंग्स की, तो साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि जो कतर का साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क है, यहाँ के टेक स्पेसेस में स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज खोली जा रही हैं, जो खास तौर पर स्मार्ट सिटी ऑटोमेशन और एंटरप्राइज सेस प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करेंगे। तो आपके लिए कुछ नया भी, साइंस से जो रिलेटेड बच्चे हैं, जो साइंस को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, साइंस के आसपास रहना चाहते हैं, उनके लिए भी जबरदस्त कतर साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क में कुछ खास जरूर है। लेकिन अब बात करेंगे हम कतर के कॉन्सर्ट के बारे में। कतर में कौन सा कॉन्सर्ट हो रहा है, फूड फेस्टिवल में क्या कुछ है, मॉल के एक्टिवेशन में कुछ नया आ रहा है कि नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कॉन्सर्ट से। दोस्तों, अगर हम कॉन्सर्ट के बारे में बात करें, तो अक्टूबर 9 को QNCC में आपके लिए आ रहा है इन बिटवीन मिडिल ईस्ट टूर। ये एक अनोखा टूर होने वाला है, QNCC में होगा, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में। इस कॉन्सर्ट में मशहूर OPM डायनेमिक डुओ TJ मॉन्टेड और KZ तांदिंगन जो हैं वो आ रहे हैं। एक के बाद एक कंसेक्यूटिव सोल्ड आउट अरीना शोज के बाद स्टेज पर अपनी अकूस्टिक हिट्स और बेहतरीन वोकल से ये दोनों समा बांधने वाले हैं। इसके बाद यानी कि मंथ के एंड में भी यानी कि 31 अक्टूबर को भी कुछ खास है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा रुक कर बात करेंगे, यानी कि अगले के अगले हफ्ते हम इस पर थोड़ा नजर डालेंगे, वरना आप भूल जाएंगे। 31 अक्टूबर कटारा ओपेरा हाउस में बड़ा ही कुछ खतर का ऑर्केस्ट्रा जो है एक तरह से वो आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं बताने वाला, थोड़ा सा रुक कर एक दो हफ्ते थोड़ा और गुजर जाने दीजिए, तब हम उस पर बात करेंगे। लेकिन

दोस्तों जो खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर बोले तो DECC में अक्टूबर 12 से 14 अक्टूबर तक कतर का प्रीमियर डेडिकेटेड फूड एंड बेवरेजेस एग्जीबिशन यानी कि फूड कतर 2026 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये इवेंट कतर के वाइब्रेंट कल्नरी सीन को सेंटर स्टेज पर लेकर आएगा। इस मेजर कल्नरी गैदरिंग में इंटरनेशनल फूड मैन्युफैक्चरर्स, टॉप टीयर रीजनल शेफ और इनोवेटिव हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे इकट्ठा होंगे। यहाँ पर लोगों को ग्लोबल डाइनिंग ट्रेंड्स, फूड प्रोसेसिंग ब्रेक थ्रू और लाइव मैन्युफैक्चरिंग डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिलेगा। बड़ा ही लाजवाब होने वाला है, बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही अक्टूबर 9 से अक्टूबर 24 तक कतर के रिटेल डेस्टिनेशन पर शॉपर्स के लिए इमर्सिव और इंटरैक्टिव मॉल एक्टिवेशंस भी शुरू हो रहे हैं। वैसे अगर हम मॉल एक्टिवेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको एजदान मॉल अल वकरा की तरफ रुख करना चाहिए। ये मॉल ग्लो इन लाइट, अ मैजिकल वर्ल्ड ऑफ लाइट्स एंड फन होस्ट कर रहा है। ये एक स्पेशलाइज्ड इंडोर एक्टिवेशन है जो मॉल के सेंट्रल वॉकवेज को एक ग्लोइंग वंडरलैंड में बदल देगा। यहां पर नियॉन आर्ट इंस्टॉलेशंस, फ्लोरोसेंट फैमिली चैलेंजेस और शानदार कस्टम फोटो बैकड्रॉप्स देखने को मिलेंगे जो वीकेंड मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए परफेक्ट है। उसके अलावा अगर आप अलखोर की तरफ रहते हैं और थोड़ा करीब ढूंढ रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली अलखोर नहीं, लेकिन अगर आप लुसेल के आसपास हैं तो फिर प्लेस वेंडोम मॉल आपके लिए है, मॉल ऑफ कतर भी आपके लिए है। इन दोनों लग्जरी शॉपिंग हब्स में लोकलाइज्ड पॉपअप स्टेजेस, क्रिएटिव फैशन प्रेजेंटेशंस और इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट जोन्स शुरू किए जा रहे हैं जो उनके नए कॉर्पोरेट सेटअप के साथ मैच भी करेगा। तो बड़ा ही लाजवाब होने वाला है। अब बात कर लेते हैं फैमिली इवेंट्स के बारे में कि कतर में कोई ऐसी जगह बताओ फजील जहां पर फैमिली जा सके और फैमिली के लिए इवेंट हो। तो मैं आप फैमिली वालों से गुजारिश करूंगा कि आप जाएं फायर स्टेशन म्यूजियम। फैमिली के लोग यहां दो शानदार कंटेम्प्रेरी आर्ट शोकेसेस का जो एक्सपीरियंस है वो कर सकते हैं। अक्टूबर 25 तक चलने वाला है। पहला है अहमद अल हमार बिटवीन रस्ट एंड आर्ट और दूसरा है हाइफा अल खुजाई थ्रेड्स ऑफ मेमोरी। ये पब्लिक कलेक्शंस बच्चों और पेरेंट्स दोनों को ही मिक्स्ड मीडिया स्ट्रक्चर्स, टेक्सटाइल्स और ट्रेडिशनल सेरेमिक्स के जरिए मॉडर्न कतरी हेरिटेज का एक बेहतरीन और किड फ्रेंडली रूप दिखाते हैं। दूसरा है आउटडोर वेन्यूज यानी कि ओल्ड दोहा पोर्ट और लुसेल बुलेवार्ड। जो लोग खुली जगह या आउटडोर सेटिंग पसंद करते हैं उनके लिए यहाँ के स्प्रॉलिंग प्रोमेनेड्स पर फैमिली एंटरटेनमेंट जोन्स शुरू किए जा रहे हैं। इनमें स्ट्रीट बस्कर्स, लाइव थिएट्रिकल पॉपअप्स और स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी वर्कशॉप शामिल है ताकि जब तक पेरेंट्स हार्बर के पास बैठकर रिलैक्स करें, बच्चे जो है आराम से सिक्योरिटी के साथ सेफ फील करें और तरीके से एंटरटेन होते रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं कतर के नेशनल विजन 2030 के बारे में जिसमें सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं, स्मार्ट सिटी अपडेट्स हैं, एजुकेशन इनिशिएटिव हैं और भी बहुत कुछ। सबसे पहले अगर हम बात करें सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में तो कतर ने लॉन्ग टर्म ग्रीन ग्रोथ के लिए अपने कमिटमेंट को बढ़ा दिया है। इसमें सबसे मेन अल हारसा सोलर PV पावर प्लांट है जो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके कार्बन फुटप्रिंट को ड्रास्टिकली कम कर रहा है। देश का टारगेट यानी कि कतर का टारगेट है 2030 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 25% तक कम करना। इसके साथ स्मार्ट सिटी की भी अपडेट्स हैं। कतर का अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तास्मू स्मार्ट कतर प्रोग्राम के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहा है जो AI और IoT टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है। इसमें लुसेल सिटी एक यूनिफाइड स्मार्ट इकोसिस्टम की तरह काम करती है जहां एक सेंट्रलाइज्ड कमांड और कंट्रोल सेंटर से रियल टाइम डेटा के जरिए म्युनिसिपल ऑपरेशन मैनेज होते हैं। वही मुशरिप डाउनटाउन का एक सस्टेनेबल रीजनरेशन प्रोजेक्ट है जिसमें पैसिव कूलिंग वाली 100 से ज्यादा लीड सर्टिफिकेट बिल्डिंग्स हैं। उसके अलावा अगर हम एजुकेशन इनिशिएटिव की बात करें कतर की तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर ह्यूमन कैपिटल फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज कर रही है। इसी के चलते कतर की 7 सिटीज ने यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज को ज्वाइन किया है और अब स्कूल करिकुलम्स में रीजनल सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस को एक्टिवली जोड़ा जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्ट चेंजेस के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रेटजीज के चलते कतर का 70% पब्लिक बस फ्लीट फुल्ली इलेक्ट्रिक हो चुका है।

0: है जिसका टारगेट 2030 तक 100% यानी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा करना है। अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो कतर थर्ड नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2024-2030 के तहत कतर डिजिटल इकोनॉमी हब लोकल स्टार्टअप्स के लिए ऑफिशियली इंक्यूबेटर का काम कर रहा है। ये हब एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर यानी कि SaaS, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, फिनटेक और एडवांस्ड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है ताकि देश की डिपेंडेंसी हाइड्रोकार्बन मार्केट पर कम हो सके। तो दोस्तों ये था आज का कतर 2026। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक कतर 2026 के बारे में बात करते हुए और कतर के तमाम इवेंट्स, एग्जीबिशन और कतर के नेशनल विजन 2030 से अलाइन होता हुआ ट्रांसपोर्ट के चेंजेस, स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में, एजुकेशन इनिशिएटिव के बारे में और सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से दही से।
1: कतर 2026 RJ फजील के साथ रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
3: ऑन FM 107। दिल से देसी।

वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन, आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही। आज ही सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: अपने बेटे से कहता है, देखो ये पूरे 12 महीने में एक महीना है, खास मेहमान जिसका इंतजार सब करते हैं। जैसे कोई प्यारा मेहमान आए तो घर साफ किया जाता है, कमरा सजाया जाता है, दिल खुश हो जाता है। वैसे ही रमजान रूह का मेहमान है, दिल के घर में आता है और हमें बेहतर बना देता है। अब बच्चा ये सवाल करता है कि रमजान हमें कैसे बदलता है, तो उसका जवाब बाबा इन अल्फाज में देते हैं कि रमजान तो दिल को नरम करता है, रूह को साफ करता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तुम्हारे पास रमजान आया है, एक बाबरकत महीना जिसमें जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, हथकड़ियां लगा दी जाती है, जंजीरें बांध दी जाती हैं उनके पैरों में। यानी बेटा ये वो महीना है जिसमें नेकी करना आसान और बुराई छोड़ना आसान हो जाता है। तो अब सवाल ये कि बच्चे का, ठीक है तो फिर हम नेकी का काम करें, अब कुरान का इसमें क्या है, कुरान का क्या काम है, क्या रोल है? अब बाबा इस तरह समझाते हैं बेटे को, बेटा कुरान तो रमज़ान की रूह है, जैसे जिस्म के बगैर रूह नहीं वैसे कुरान के बगैर रमज़ान कैसे। कुरान और रमज़ान इन दोनों के आपस में अपने ताल्लुकात हैं, एक हर्फ पढ़ो तो 10 नेकी और फिर सवाब और भी 10 गुना बढ़ा दिया जाता है। बच्चा कह रहा है यानी एक हर्फ पर 100 नेकी। अब अब्बू कहते हैं कि हाँ बेटा, और अल्लाह चाहे तो और भी बढ़ा देते हैं, इसीलिए रमज़ान में हम कुरान ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा सुनते हैं और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो सभी इकराम प्यारे बच्चों, हमारे गार्जियंस जो हमें सुन रहे हैं, ये मुकालमा दरअसल शेयर करना इसका मकसद ये है कि हम भी अपने बच्चों से इस तरह मुखातिब हों और उन्हें समझाने की कोशिश करें, उन्हें इतने स्पेस दें कि वो इस तरह के सवालात आपसे कर सकें और फिर आप बातों को खोलते जाएं कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए है, अमल करने के लिए है, एक बाबरकत किताब है ताकि लोग इसकी आयतों पर गौर करें। कुरान हमें सोचना सिखाता है, कुरान हमारा दिल बदलता है, ज़िंदगी संवारता है। अब रमज़ान आने से पहले हमें क्या करना है, अगर कोई बच्चा आपसे सवाल करता है या फिर आप उनसे सवाल करें तो देखें वो क्या जवाब देते हैं। जवाब तो ये होना चाहिए कि आप उन्हें पहले ये समझाइए, देखो इम्तिहान से पहले तैयारी करते हो तुम, तो रमज़ान से पहले भी तुम अपनी तैयारी कर लो। ये तैयारी क्या है, दिल की तैयारी, ये सिर्फ सामान वो ख़रीदने की तैयारी नहीं, दिल साफ करें, गुस्सा कम करें, शुक्र ज़्यादा करें, कुरान से दोस्ती शुरू कर दें, कुरान पढ़ना शुरू कर दें अब से, ताकि बाद में ये ना लगे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ अब मुझे अपने कुछ प्रेशर या दबाव है। नहीं, रमज़ान से पहले ही तुम तैयार रहो, गोया कि रमज़ान इधर आए और तुम कहो खुश आमदीद रमज़ान, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। तो शायद कुछ सही से याद रखो, यानी कम से कम इसका मतलब तो तुम लोग समझ गए होगे कि रमज़ान यानी कुरान का महीना है और कुरान दिल की रोशनी है, रमज़ान अल्लाह के करीब आने का मौका है। इस तरह बच्चों एक ही आयत अगर तुम पढ़ लेते हो ना तो यही तुम्हारे दिल में चिराग बन जाएगी। और ये आयत में पता नहीं क्या क्या तालीमात हैं जो सारी ज़िंदगी तुम्हें अंधेरे से बचा सकती हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, बच्चों को हमारी अपनी आंखों के ठंडक बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहें हमारे साथ।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
0: जी सामने कराम, प्रोग्राम के इस मरहले में अब हम वालिदैन और जो गार्जियंस हैं बच्चों के, उनके हवाले से कुछ पैगामात हैं हमारे, क्योंकि आज का मौजू काफ़ी अहम है और हम रमज़ान के करीब करीब हैं। अच्छे से जान लीजिए कि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, एक ख़ास मेहमान है जो साल में एक मरतबा आता है और हमारे घरों के साथ साथ हमारे दिलों के दरवाजे भी खटखटाता है। ये वो मेहमान है जिसके लिए सिर्फ घर नहीं बल्कि दिल तैयार किए जाने चाहिए, दिल साफ किए जाएं, दिल से बोझ हटाए जाएं, गुस्सा हसद शिकायतें इनको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल दें ताकि दिल में कुरान के लिए जगह बन सके। प्यारे वालिदैन, रमज़ान से फ़ायदा अचानक नहीं उठाया जाता कि अब अचानक रमज़ान शुरू हो गया और फिर आप बच्चों पर प्रेशर डाल रहे हैं, नहीं नहीं, तैयारी लेनी है। बच्चे के इम्तिहान से पहले आप उनका टाइम टेबल बनाते हैं, रमज़ान से पहले भी उनके लिए एक टाइम टेबल बनाइए और कुरान के करीब से करीब तरीन करने की कोशिश करें ताकि जब रमज़ान आए तो इबादत की जो कुछ मशक्कत है या फिर इबादत

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
4: हेलो,
5: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट
4: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
6: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।

जिन लोगों को पीछे रह जाने की इजाजत दे दी गई थी वो अल्लाह के रसूल का साथ न देने और घर बैठे रहने पर खुश हुए और उन्हें गवारा न हुआ कि अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करें। उन्होंने लोगों से कहा कि इस सख्त गर्मी में न निकलो। इनसे कहो कि जहन्नम की आग इससे ज्यादा गर्म है, काश इन्हें इसका शऊर होता। अब चाहिए कि ये लोग हंसना कम करें और रोएं ज्यादा, इसलिए कि जो बदी ये कमाते रहे हैं उसकी जजा ऐसी ही है कि इन्हें इस पर रोना चाहिए। अगर अल्लाह इनके दरमियान तुम्हें वापस ले जाए और आइंदा इनमें से कोई ग्रोह जिहाद के लिए निकलने की तुमसे इजाजत मांगे तो साफ कह देना, अब तुम मेरे साथ हरगिज नहीं चल सकते और न मेरी मायत में किसी दुश्मन से लड़ सकते हो। तुमने पहले बैठ रहने को पसंद किया था तो अब घर बैठने वालों ही के साथ बैठे रहो, और आइंदा इनमें से जो कोई मरे उसकी नमाज जनाजा भी तुम हरगिज न पढ़ना और न कभी उसकी कब्र पर खड़े होना, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और वो मरे हैं इस हाल में कि वो फासिक थे। इनकी मालदारी और इनकी कसरत औलाद तुमको धोखे में न डाले। अल्लाह ने तो इरादा कर लिया है कि इस माल औलाद के जरिए से इनको इसी दुनिया में सजा दे और इनकी जानें इस हाल में निकले कि वो काफिर हों। जब कभी कोई सूरत इस मजमून की नाजिल हुई कि अल्लाह को मानो और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो तुमने देखा कि जो लोग इनमें से साहिब मकदरत थे वही तुमसे दरखास्त करने लगे कि उन्हें जिहाद की शिरकत से माफ रखा जाए, और उन्होंने कहा कि हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठने वालों के साथ रहें। इन लोगों ने घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया और इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया गया, इसलिए इनकी समझ में अब कुछ नहीं आता। बखिलाफ इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उन लोगों ने जो रसूल के साथ ईमान लाए थे अपनी जान और माल से जिहाद किया, और अब सारी भलाइयां उन्हीं के लिए हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। ये है अज़ीम शान कामयाबी।